0: की बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
1: के हे स्वामी जी, हस्बैंड बेबू बताओ बेलन कहां है? तो तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? सिर पे छोरा है, नगर में खोज रहे हो, अब तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर है और तुम बाहर खोज रहे हो, तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? तुम मेरे पागल हो। परमात्मा खोजने से प्राप्त नहीं होता है, परमात्मा तो खो जाने से प्राप्त होता है। जो उसमें खो जाता वो पा जाता। तो जिन खोजा तिन पाइया, खो जाने का मतलब उसमें डूब जाओ, अंदर में डूब जाओ, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। बादल हटते ही सूर्य दिखाई देने लगता है, सूरज की रोशनी नीचे आ जाती है। सूर्य की रोशनी तो हमेशा रहती है, अभी थोड़ा बादल है, ढका हुआ है, बादल हटने दो, सूर्य अपने आप दिखाई पड़ेगा। वैसे ही अंदर परमात्मा है, वो ढका हुआ है माया में, थोड़ा माया को हटने दो, परमात्मा तुम्हें दिखाई पड़ेगा। और तुम खोजते मंदिरों में, तुम खोजते तीर्थों में, तुम खोजते यहां वहां हो। खोजो यहां, देखना भैया कोई जगत जननी चिल्ला रही, उनकी सुनो कोई, बाकी प्रवचन बाद में, पहले जगत जननी की सुनो, नहीं तो वो पृथ्वी तोड़ देंगे। लगता है उन्होंने चैन या हार खो दिया है, वो खोजने आई थी भगवान को, लगता है उनका चैन चली गई है या हार चला गया है और पकड़ भी लिया है हमें लगता है। ठीक है, बैठो जगत जननी, आते हैं रक्षक। हाँ सुनो, तो परमात्मा को पाने का सर्वोत्तम मार्ग है खो जाना। मेरे पागलों, अंत में हम एक ही बात कहेंगे, तुम सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ। तुम भगवान के हो जाओगे तो भगवान भी तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारी मुसीबतें कम होनी नहीं है। आदमी की मुसीबतें कहां कम होती हैं? आदमी चाहे कम हो जाता है, मुसीबतें कम नहीं होती। सिर का दर्द ठीक हो तो पेट दर्द करता, पेट का दर्द ठीक हो तो पड़ोसी दर्द करता है, पड़ोसी का दर्द ठीक हो तो पड़ोसन दर्द करती, वो ठीक हो तो घरवाली प्राण नहीं छोड़ती, फिर बच्चे, फिर झंझट लगे ही रहते हैं। हम चाहते हैं तुम्हारा एक ऐसा पर्चा बन जाए कि समस्याएं जितनी आती जाएं सो आती जाएं, समाधान सबका होता जाए। क्या तुम भी ऐसा चाहते? आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? हैं?
2: जोर से बोलो जी।
1: प्रत्येक का कौन कौन चाहता? वाह, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी तीन बातें मानना। पहली, आज से लहसुन प्याज बंद कर देना। दूसरी, पेशी शुरू कर देना। और तीसरी, जब भी उनके चरणों में जाना कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। तुम हमारे और हम तुम्हारे। एक बात और, प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। न जिंदगी के न जीवन के, न शंका के न समस्या के। मानो कि हम बता दें कि चलो तुम्हारी शादी 2027 में हो जाएगी, तो अगला प्रश्न तुरंत उठेगा किससे होगी। भाई लड़की से होगी, क्या नाम होगा? मुन्नी भाई। कैसी दिखती होगी गुरुजी? गोरी। कहां की? दिल्ली की। दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में कहां? लाजपत नगर, वो भी बहुत बड़ा है। बाप का नाम फोकन लाल। फिर भी प्रश्न खत्म होंगे कि नहीं? जीवन में प्रश्न आते ही रहना है और आते रहेंगे, और तुम उत्तर पाने कभी हमारे पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी YouTube पर, कभी Google बाबा पर, कभी Facebook पर, उत्तर खोजते ही रहते। हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान मिले, हर प्रश्न का उत्तर मिले, और एक दिन ऐसा आए कि तुम उत्तर बन जाओ, प्रश्न खत्म हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि तुम अपने आप में उत्तर बन सकते हो, प्रश्न खत्म हो जाए, और उसका उपाय और उपादान इतना ही है कि या तो भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो, या तो भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो। अब भगवान पे छोड़ दिया, जो जलते हैं उन्हें जलाओ। तुम हमारे पास आए हो, कुछ लोग विरोध करेंगे और करना भी चाहिए, जो अपना सामना नहीं कर सकते वो विरोध करेंगे। अपन आदमी ही ऐसे हैं कि या तो कोई हमारी तारीफ करेगा या गाली बकेगा, छोड़ तो सकता नहीं है अपन को। दो में से कुछ एक करेगा, और जिसने हमें जाना नहीं वो विरोध करेगा, जो जान लेगा वो विरोध थोड़ी करेगा, यहीं का होकर के रह जाएगा। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे भी कहेंगे कि जीना सीखना है तो आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ पल तुम मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं, क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से हूं लड़ा, हर पल मुसीबत में रहा हूं खड़ा। मेरे पीछे जिसका हाथ है वो बजरंग मली मेरे साथ है। मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी मुड़ा नहीं, मैं कभी रुका नहीं, इसलिए आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता हूं। हमने इतनी मुसीबतें झेल ली कि अब मुसीबत आती है तो लगता है खुजली हो रही, और तुम्हें मुसीबत आती है तो हाय दैया, छाती फट गई, हाय दैया, मरे राम, हाय दैया, अरे बाप रे मर गए। तुम छाती पीटने लगते हो, बस हम में और तुम में इतना ही अंतर है, तुम पर विपत्ति आती है तो तुम हाय दैया करके छाती पीटते हो, हम पे विपत्ति आते तो हम भीतर कहते चाय बनाओ रे। देखा जाएगा, और कर भी क्या सकते भैया, अब आ गई मुसीबत तो आ गई, बुलाने थोड़ी गए थे हम मुसीबत को, आ गई है तो देखा जाएगा, और अपन को ही तो झेलना है। तुम चाहे रो चाहे गाओ, मुसीबत तो रहनी है। अब मान लो तुम्हें फोड़ा हो गया, अब क्या करोगे, चाहे रो चाहे गाओ, हमें जुखाम हो गया, अब चाहे हम जो करें, अब हो गया सो हो गया, बाहर में गया, जुखाम के भी मजे ले रहे, हम बीच बीच में नाक बंद कर लेते हैं तो शरीर ही फड़फड़ाता, तो भीतर से आवाज आती है तो सांस तो छोड़ो, हम कहते तुम पहले जुखाम छोड़ो। लो चल रही लड़ाई, अब जुखाम खुद कंफ्यूज है कि इसके शरीर में रहे कि छोड़े, इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। खैर घर पे तुम ट्राई मत करना हमारी आदतें, वरना सांस ना छोड़ी तो तुम्हें छूट गए। राम नाम सत्य है, न जुखाम रहेगा न जुखाम वाला। हम बता रहे हैं अपने अपने तरीके हैं जीने के मुसीबतों से, हम पे भी मुसीबत आती है, हम पे भी झंझट आते हैं, कुछ लोग हमारे लिए भी लगे रहते, विपत्तियां आती हैं, क्या नहीं, आज दरबार वहां मैदान में लगाना था, यहां वहां बारिश हो गई, साउंड वहां गया नहीं, तो हमने हाय दैया थोड़ी किया, छाती थोड़ी पीटी, ना ना ना, दो घंटा लेट से ही यहाँ टीन सेट में लगा लेंगे, लो बढ़िया, पानी भी कल बरसता रहे नो प्रॉब्लम, आज बरसता रहे नो प्रॉब्लम, यहाँ दरबार लग रहा है आनंद है। अब मान लो वहां दरबार ना लगता, फिर छाती पीटते, लो हद हो गई, हमारे चेले सुनते नहीं, ये नहीं करते, अब भाड़ में गया, कौन किसकी सुनता, और चेले कहाँ हमारी सुनेंगे, ये अपने बाप की नहीं सुनते थे, आओ हमारी कहाँ सुनेंगे, हलवा में सुनेंगे, और जो अपने बाप की सुनते होते तो यहाँ होते ही, जब इनने अपने बाप की नहीं मानी हमारी क्या मानेंगे, खाक, जब हमारी नहीं माननी है तो हम पहले ही माइंड सेट में बाहर में जाओ, तुम अपनी ठठरी भराओ, जब तुम्हें मानना हो सो मानना, हम ना तुम्हें कहेंगे। एक आदमी हमसे बोला, बोला कि यदि आप ऐसा करोगे हम अनशन पे बैठ जाएंगे, उनका तुम्हें बाप की कसम है अनशन पे बैठ जाना, हम कोई गुरुजी होंगे तुम्हें अनशन से उठने नहीं देंगे, तुम उठोगे भी तब भी हम कहेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं उठना चाहिए इस आदमी को अनशन से। बोला हम भोजन छोड़ देंगे, हमका तुम भोजन की बात करते, हम तुमसे पानी छोड़वाएंगे, जल्दी निपटो। और आदमी होंगे कोई जो डर जाए तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी भपकियों से कि हम तुम्हारा, एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले धमकी दे रहा था कि बाबा बागेश्वर का हम घेराव करेंगे, हमका चेले वैसे ही घेरे रहते हैं, तुम और आ जाओ, हम सेल्फी तुम्हें भी देंगे बेटा, भभूति देंगे, हमारा तुम घेराव करने आओ, तुम्हें ये भरोसा हो कि हम डर जाए, तो तुम ऐसे गुरु ना समझना कोई, हम तो थोड़ा उल्टे ही गुरु है, तो हमारे पास आओगे घेराव करने, हम तुम्हें भभूति बांट देंगे और दो चार को भूत और खिलवा देंगे, लो करो घेराव, तो तुम्हें लग रहा होगा कि कोई और गुरु है तो डर जाएंगे, अपन तो बहुत उल्टे आदमी है, हम हर चीज उल्टी ही सोचते हैं उल्टी ही चलते, पर तुमसे हम यही कहेंगे मेरे पागलो हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, हर बात पर मुस्कुराओ, बालाजी के चरण शरण को पकड़ लो, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कितनी भी जिंदगी में मुसीबत संकट तो आएंगे, पर संकट मोचन यदि जीवन में रहेंगे तो तुम घबरा ना पाओगे, और हम तुम्हें संकट मोचन देना चाहते हैं, हम तुम्हारी बाह को बालाजी के चरणों में पकड़ना चाहते, और सुनो एक दिन के लिए नहीं सदा सदा के लिए, क्योंकि तुम पे मुसीबतें तो आनी ही आनी है भैया, हमसे दोस्ती कर लो, काम आएंगे हम, बड़े काम आएंगे, ऐसा आदमी तुम्हें मिलेगा भी नहीं, कर लो दोस्ती बड़े काम आएंगे, सब लुट जाएगा तब भी तुम हमारी तरह मुस्कुराओगे, भाड़ में गया लुट गया कौन सा, अपने बाप का गया, यहीं से मिला था यहीं लुट गया, जय बजरंग बली की, चलो भैया भंडारा खाएंगे अपन, आओ। हाँ कुछ साल पहले हमको एक अधिकारी ने धमकी दी कि बाबा तुम बहुत बोलते हो, एक आध दिन जेसीबी चलवा दी जाए, हमका कल चलाते हो आज चला दो, बड़ा चौंक गया अधिकारी, सामने ही बैठा था, चौंक गया, बोले कैसी बातें करते हो, बहकी बहकी, हम कहा ये तुम भपकियां किसी और को देना, हम तो डरने वाले नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये आश्रम हमने नहीं बनाया, जनता के पैसे से बना, जनता के लिए बना। हमारे बाप पे तो मकान भी नहीं था, जनता ने चंदा दिया, दान दिया, हमने जनता के लिए बनवा दिया। और गिरेगा भी तो जनता का गिरेगा, अपने बाप का हलवा गिरेगा। वो भी चौंक गया, बोले बहुत खतरनाक आदमी हो तुम। हमका तुम फंसे नहीं हो अभी हमें, और तुम कभी हवेली पे आ मत जाना, वरना इतना छीलेंगे हम तुम्हें, इतना छीलेंगे कि तुम हमारा मकान गिराओगे बेटा, हमारा आश्रम गिराओगे, हम तुम्हारा घर ऐसा गिरवाएंगे, तुम्हारे घरवाली के बारे में बताएंगे, घरवाली के साथ ना बैठ पाओगे तुम। हाँ, इतनी टेंशनें भर देंगे तुम्हारे दिमाग में। फिर चुप हो गया। उस दिन के बाद आज भी हमारी दीक्षा लिए चेला बन गया है आजकल हमारा, बना एक साल बाद, पर अपन ने दीक्षा दे रखी है, रोज ओम बागेश्वराय नमः जप रहा है। हमका बने रहो चेला, खुश रहो। अब वो जब भी हमारे पास आता है हम पूछ रहे थे कहो जेसीबी आएगी क्या, तो तुरंत दूर से ही हाथ जोड़ता कि कृपा करो, बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई बातें करो गुरु जी, अब छोड़ दो, तब अनजाने में हम बोल गए, अब थोड़ी बोलेंगे। कोई बात नहीं, खुश बने रहो, यही हम तुमको सिखाना चाहते। हम तो सिर्फ गुरु हैं, जीना सिखा सकते तुम्हें, आओ तुम्हें पागल बनाए। और पागल बनने का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल होने का मतलब तुम आज से घर जाना और ऐसी हरकतें करना हंस के कि घर वाले भी टेंशन में हो जाएं कि कहां से आए। हाँ, अब वो पड़ोसी तो टेंशन में हो ही जाए जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहा था, वो पूछे जरा इसका पता करो कौन से दरबार में जा रहा है, तब बता देना। लगा के आग सोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। बागेश्वर धाम की, बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हें काटनी है, हमारी हम काट रहे हैं।
3: कौन से ग्रह आपको ईश्वर के मार्ग पर ले चलते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति वैराग्य का रास्ता पकड़ लेता है? वैराग्य का क्या है ज्योतिष कनेक्शन और क्या है वैराग्य की जीवन में भूमिका, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ भारत मंडपम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आज पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेश उत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा का भोग लगाने के लिए खास तरह के मोदक तैयार, उकड़ीचे मोदक, लोटस बिस्कॉफ मोदक समेत कई वैरायटी से सजे बाजार। महाराष्ट्र के अकोला में अनोखे बप्पा, पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे ने आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई इको फ्रेंडली गणपति। गणेश उत्सव पर दे रहे हैं आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बिहार के बोधगया में दिखा अलौकिक नजारा, 4000 दीपों से बना धर्म चक्र, पूर्वजों की आत्मा की शांति और विश्व शांति के लिए किया विशेष धार्मिक अनुष्ठान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
7: क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। भारत ने लगातार 10वीं बार फाइनल में बनाई जगह, जबकि 7 बार खिताब जीत चुका है भारत। 13 सितंबर को पाकिस्तान या श्रीलंका से भारत का फाइनल मैच। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर बनाए 149 रन। लक्ष्य की पीछा करने के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम, 20 ओवर में 7 विकेट पर महज 109 रन ही बना पाई। शेफाली वर्मा ने 64 रन की तूफानी पारी खेली। कैप्टन हरमनप्रीत ने 24 रनों का दिया अहम योगदान। ऋचा घोष ने 21 और प्रतीका रावल ने 20 रन बनाए। गेंदबाजी में भी भारत का जलवा बरकरार। दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके। नंदिनी शर्मा को मिले 2 सफलताएं। श्री चरणी और प्रेमा रावत को 1-1 विकेट। जयपुर में गणेशोत्सव से पहले बप्पा के भोग का नया ट्विस्ट आया। 11 तरह के मोदक, 14 वैरायटी के लड्डू तैयार। मोदक में आया लोटस बिस्कॉफ का स्वाद। पारंपरिक मिठाई को मिला मॉडर्न टच। नटेला व्हाइट चॉकलेट मोदक बना आकर्षण का केंद्र। जेंजी के लिए खास फ्लेवर तैयार। मैंगो सिगार से बदला मोदक का स्वाद। इस बार मिठाई में दिखा नया एक्सपेरिमेंट। मोदक में देसी स्वाद भी बरकरार। मथुरा पेड़ा, मावा और मोतीचूर मोदक शामिल। रोज गुलकंद और ठंडाई केसर मोदक का जलवा। कीवी आमंड और बटर स्कॉच मोदक बने खास। कीवी आमंड डिलाइट मोदक ने खींचा ध्यान। एक बॉक्स में कई स्वादों का सरप्राइज मिला। लोगों को लुभा रहा काजू कतली मोदक का स्वाद। मोतीचूर से बना बापा का खास केक। लड्डू केक को बादाम पिस्ता से सजाया गया। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिली। मोदक की लगातार बढ़ी डिमांड। तरह तरह के मोदक से सजे बाजार। बप्पा के भोग की खास तैयारी की गई। लड्डू सम्राट बना खास आकर्षण। 1967 स्वाद की पहचान बरकरार। लड्डू सम्राट के मोदक मशहूर हैं। प्रसाद बनकर घर घर तक पहुंचते हैं। मोदक की कई खास वैरायटी तैयार की गई। गणेशोत्सव से पहले मिठाई बाजार गुलजार हुआ। उकड़ी चे मोदक की सबसे ज्यादा डिमांड। मोदक की बिक्री में बड़ा उछाल आया। मोदक खरीदने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। बापा के पसंदीदा भोग पर नजर। परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम। मुंबई में मोदक की मिठास देखने को मिली। घर घर बन रहे उकड़ी के मोदक। गणपति बापा का है प्रिय भोग। उकड़ी का मोदक बना खास आकर्षण। मुंबई में घरों में उकड़ी के मोदक बनाए जाने की खास परंपरा। चावल के आटे से बनता है उकड़ी मोदक। चावल के आटे में मीठे के मिश्रण से बढ़ता है मोदक का स्वाद। उकड़ी का मोदक महाराष्ट्र की पहचान। परंपरा और संस्कृति से है जुड़ाव। गणेशोत्सव में मोदक का प्रसाद रिश्तेदारों को भी बांटते हैं। सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम। मोदक बनाने का उत्साह बरकरार। लालबाग और काली चौकी में मोदक की रौनक। महाराष्ट्र के अकोला में अनोखे गणपति। पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे का अद्भुत हुनर देखने को मिला। आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई प्रतिमा। बिना देखे बनाए मिट्टी के बप्पा। पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। 20 साल से पर्यावरण की मुहिम। इको फ्रेंडली गणपति का संदेश। बाजार की प्रतिमा से बचने की अपील। बप्पा आए प्रकृति भी मुस्कुराए। पर्यावरण पूरक गणपति का दे रहे हैं संदेश। बापा की मिट्टी की प्रतिमा अपनाने की अपील। जल संरक्षण पर भी जोर। गणपति विसर्जन से जल स्रोत बचाने की पहल। घर पर ही बापा के विसर्जन की अपील की गई। प्रकृति बचाने का अनोखा तरीका। गणेशोत्सव पर आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण। आठ महीने पहले गाय के गोबर से गणपति बनाने के काम को मिली पहचान। देश भर से इन मूर्तियों के मिल रहे हैं ऑनलाइन ऑर्डर। गाय के गोबर से बनी गणपति प्रतिमाएं वजन में हल्की हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन्हें प्राकृतिक रंगों से सजाया जा रहा है। गणपति को सिंहासन, गद्दे, तकिए, माला, जनेऊ और वस्त्रों से सजाया जा रहा है। अलग अलग रूपों में बनी ये प्रतिमाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं। गोबर के गणपति को चांद, मोर और दूसरे आकर्षक आधारों पर सजाया जा रहा है। हर प्रतिमा को अलग लुक दिया जाता है, इसलिए कोई भी दो मूर्तियां जैसी नहीं नजर आती। इन मूर्तियों को घर के गमले में विसर्जित कर उसी मिट्टी में पौधा लगाया जा सकता है। ऐसी मूर्तियों से पर्यावरण को नुकसान कम होता है। नोएडा के क्लेइंग थॉट्स में मिट्टी से गणपति बनाना सिखाया जा रहा है। लोग अपने हाथों से गणपति की मूर्ति तैयार कर रहे हैं। इस बार बाजार से मूर्ति लाने की बजाय घर पर ही गणपति बनाएं। मिट्टी से बनी मूर्ति पूजा के बाद आसानी से पानी में घुल सकती है। क्लेइंग थॉट्स की पूजा वर्मा लोगों को मिट्टी से अलग अलग चीजें बनाना सिखाती हैं। इन दिनों उनकी वर्कशॉप में मिट्टी के गणपति बनाने की खास ट्रेनिंग चल रही है। गणपति पूजा में लोग ऐसी मूर्ति चाहते हैं जिसे पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसी वजह से मिट्टी से बनी गणपति की मूर्तियों की मांग बढ़ रही है। वर्कशॉप में बच्चे और बड़े दोनों मिट्टी से गणपति बनाना सीख सकते हैं, यानी इस बार बप्पा बाजार से नहीं आपके अपने हाथों से आ सकते हैं घर। गणेश चतुर्थी से पहले गणेश प्रतिमाओं से सज गए हैं जयपुर के बाजार। छोटे से लेकर 5 फीट तक की मूर्तियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इस बार गणेश प्रतिमाओं में अलग अलग राज्यों की संस्कृति नजर आ रही है। कहीं राजस्थानी साफा तो कहीं पंजाबी पगड़ी और शाही ताज नजर आ रहा है। लालबाग के राजा की तर्ज से लेकर शिवलिंग, सर्प और स्वर्ण थीम तक की प्रतिमाएं बाजार में छाई हुई हैं। रंग बिरंगे डिजाइन भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। पीओपी के मुकाबले इको फ्रेंडली मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं। विसर्जन के बाद बची हुई मिट्टी को पौधों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी में अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। भक्त अभी से अपनी पसंद की गणेश प्रतिमा खरीद रहे हैं ताकि बाद में मनपसंद मूर्ति की कमी ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में मिट्टी के गणपति बनाने की बड़ी वर्कशॉप कराई। इसमें स्कूलों के हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री पंकजा मुंडे और गणेश नाइक ने भी बच्चों के साथ मिट्टी की मूर्तियां बनाई। वर्कशॉप का उद्देश्य गणेश उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। साढ़े 6,000 से ज्यादा बच्चों ने जेजे आर्ट कॉलेज की मदद से मिट्टी की गणपति मूर्तियां बनाई। इस बड़े आयोजन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। वर्कशॉप में बच्चों ने सीखा कि कैसे पर्यावरण बचाते हुए बप्पा की मूर्ति तैयार की जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से दूरी बनाने का संदेश दिया। वर्कशॉप में बच्चों को मिट्टी की मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग दी गई। सरकार का संदेश साफ, बप्पा की मूर्ति बने और प्रकृति भी बचे। अंबाजी मंदिर में नडियाड भक्तों की 162 साल पुरानी परंपरा आज भी जारी है। श्रावण 13-14 और अमावस पर भक्त पैदल पहुंचकर पूजा, गरबा और हवन करते हैं। श्रावणी अमावस पर मां अंबा को 56 भोग का अन्नकूट लगाया गया। भक्तों ने अन्नकूट आरती में शामिल होकर मां का आशीर्वाद लिया।
8: Thank you.
7: नडियाड से निकली ध्वज यात्रा में हनुमान जी, महाकाली और काली मां की झांकी आकर्षण बनी। गरबा करते हुए बड़ी संख्या में भक्त अंबाजी मंदिर पहुंचे। अंबाजी में नडियाड संघ के भक्तों ने दो दिन रुककर विशेष पूजा अर्चना की। अब 20 सितंबर से शुरू होने वाले भादरवी पूनम महामेले को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। इससे पहले श्रावण अमावस के दिन नडियाड संघ के भक्तों ने दो दिन तक अंबाजी में रुककर मां जगत जननी अंबा की पूजा की। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल देखा गया।

0: 12 सितंबर को देश भर में मनाया जाएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व। इस अवसर पर श्री हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब को देश विदेश से लाए गए फूलों से सजाया जाएगा। 50 टन से ज्यादा फूलों से की जाएगी सजावट। अलग अलग जगहों से 60 किस्मों के फूल सजावट में होंगे इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल से विशेष कारीगर आकर करेंगे फूलों से सजावट। 1604 ईस्वी में हुआ था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश। झारखंड में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की मुहिम जारी। मजदूरी और अन्य जोखिम भरे काम कर रहे बच्चों की पहचान कर स्कूल में किया जा रहा है एडमिशन। बच्चों ने पारिवारिक और आर्थिक तंगी को बताया पढ़ाई छूटने की वजह। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह के तहत चलाया जा रहा है स्कूल एनरोलमेंट प्रोग्राम। अकोला में अनोखा बैल पोला। कोनवाड़े में गौवंश को खिलाई पूरन पोली। कांग्रेस विधायक ने निभाई अनोखी पहल। पूरन पोली खिलाकर गौवंश को आजादी। बंद गौवंश को पहले खिलाया नैवेद्य। पोला और गौ सेवा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। गौवंश को आजाद कर बोले विधायक पोला पर इससे बड़ी खुशी नहीं, बैल किसान का सच्चा साथी। रूस यूक्रेन युद्ध के मृतकों के लिए अनुष्ठान। काशी से नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध रूस से ऑनलाइन जुड़ी। नीना ने कराया धार्मिक अनुष्ठान। पिशाच मोचन तीर्थ में हुआ विधान। मृत आत्माओं की शांति की कामना की गई। पिता एंड्रे की आत्मा के लिए भी अनुष्ठान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: कौन से ग्रह आपको ईश्वर के मार्ग पर ले चलते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति वैराग्य का रास्ता पकड़ लेता है? वैराग्य का क्या है ज्योतिष कनेक्शन और क्या है वैराग्य की जीवन में भूमिका, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पेट की समस्याओं के बारे में, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में, और ज्योतिष के अनुसार उनका क्या समाधान किया जाए, इस विषय में बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति देव संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, यानी पेट की समस्याओं के बारे में। पेट की समस्याओं के पीछे मुख्य रूप से कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, पाचन तंत्र के पीछे, डाइजेशन के पीछे बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है। कुंडली का पंचम, सप्तम और नवम, ये तीन भाव आपके डाइजेशन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, खास तौर से पंचम भाव। बृहस्पति आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा भी आपके पाचन तंत्र पर, आपके डाइजेशन पर असर डालते हैं। राहु आंतों का स्वामी है, इंटेस्टाइन पर असर डालता है, इसीलिए पाचन तंत्र के मामले में राहु की भूमिका भी हो जाती है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति और व्यक्ति की संगति का भी पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। यानी आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मेंटल कंडीशन आपके डाइजेशन पर गहराई से असर डालती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। पेट की पहली समस्या है कि लगातार आपका पेट झड़ता रहता हो, लगातार आपका पेट गड़बड़ रहता हो, लूज मोशन जैसी संभावनाएं बनी रहती हों, क्या उपाय करेंगे? पहली बात, भोजन निश्चित समय पर करें। कभी जल्दी खा लिया, कभी देर में खा रहे हैं, ऐसा ना करें। तामसिक प्रकृति के मांस मदिरा जैसा आहार बंद कर दें। भोजन के पहले भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान शिव को याद करें, तब भोजन करना आरंभ करें। अगर लूज मोशन की शिकायत ज्यादा है तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिएगा और कमर में एक सफेद धागा या चांदी अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों को लूज मोशन होता है, पेट झड़ता रहता है और कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन के कब्ज के शिकार हो जाते हैं। अगर कब्ज की शिकायत हो तो क्या करेंगे? रात को सोने के पहले ईसबगोल की भूसी का सेवन करना फायदेमंद होगा। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ आपको रखना चाहिए। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइएगा और अपनी कमर में एक लाल धागा बांध लीजिएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता हो, अगर कब्ज की शिकायत ज्यादा रहती हो तो एक ओपल या एक मोती अगर आप सलाह लेकर के धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेट की समस्याओं पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गले में, छाती में, पेट में जलन होती है। अक्सर एसिडिटी की समस्या उनको परेशान करती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर एसिडिटी की समस्या है? तनाव कम से कम पालिए। जो लोग ज्यादा तनाव पालते हैं उनको एसिडिटी ज्यादा होती है। भोजन करने के बीच में जल ग्रहण मत करिए और अगर

लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार होगा और रात को भोजन करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट जरूर टहलिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो एसिडिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। अब जानते हैं आपके पाचन तंत्र के बारे में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र को, डाइजेशन को ठीक रखने के उपाय क्या हैं? सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर रखिए। उस दिन अनाज का सेवन मत करिए। इस व्रत में जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करिए। अगर पेट की दिक्कतें ज्यादा रहती हैं तो पीला पुखराज बिल्कुल धारण मत करिए। सलाह लेकर पेट की दिक्कत होने पर एक मोती या एक ओपल धारण करिएगा और रोज सुबह कुछ समय उगते हुए सूर्य की रोशनी में रहिएगा। अगर ये उपाय आप निरंतर करते जाएं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र बेहतर बना रहेगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं, दूषित विचारों से बचना चाहते हैं, तो गले में एक तुलसी की माला धारण करिए और नियमित रूप से चंदन का तिलक अपने माथे या अपने कंठ पर लगाइए। आपको लाभ होगा, मन की अपवित्रता दूर होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ भारत मंडपम, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आज पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। मुंबई से लेकर

0: जयपुर तक गणेश उत्सव की भव्य तैयारी। बप्पा का भोग लगाने के लिए खास तरह के मोदक तैयार। उकड़ी ट्रे मोदक, लोटस बिस्कॉफ मोदक समेत कई वैरायटी से सजे बाजार। महाराष्ट्र के अकोला में अनोखे बप्पा। पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे ने आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई इको फ्रेंडली गणपति। गणेश उत्सव पर दे रहे हैं आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट। मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट। तो वहीं 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। बिहार की बोधगया में दिखा अलौकिक नजारा। 4000 दीपों से बना धर्मचक्र। पूर्वजों की आत्मा की शांति और विश्व शांति के लिए किया विशेष धार्मिक अनुष्ठान। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज। महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर लगातार 10वीं बार फाइनल में पहुंचा भारत। मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है बंपर कमाई। सातवें दिन फिल्म ने की 8 करोड़ 28 लाख की कमाई। पहले हफ्ते में नेट कलेक्शन 146 करोड़ के पार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैराग्य के ग्रह के बारे में। कौन से वो ग्रह होते हैं जिनका असर वैराग्य से होता है, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर ध्यान में या पूजा में आपका मन गहराई से नहीं लगता, गहरे तरीके से ध्यान या पूजा नहीं कर पाते, तो पूजा के समय भगवा वस्त्र धारण कर लें या भगवा शॉल, भगवा अंगोछा या भगवा अंग वस्त्र डाल लें अपने ऊपर। इसके बाद पूजा करें, मन को एकाग्र कर पाना आसान होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 11 सितंबर 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः 8:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 1:16 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम को 7:08 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आखिर वैराग्य होता क्या है।
1: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वैराग्य के बारे में। दो स्थितियां होती हैं, संसार और वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? देखिए, मानव का जीवन जुड़ने और टूटने से चलता रहता है। जुड़ने के पीछे राग होता है, जुड़ने के पीछे राग की भूमिका होती है और चीजों के टूटने के पीछे विराग होता है। इसी विराग को वैराग्य कहा जाता है। हर तरह के सांसारिक सुखों से दूर जाने का जो भाव है, दूर जाना नहीं, दूर जाने का जो भाव है, सांसारिक चीजों में लिप्त ना होने का जो भाव है, वो वैराग्य है। ये व्यक्ति को जीवन में रहकर भी जीवन से मुक्ति का लाभ देता है और बिना वैराग्य के भाव के आए हुए ईश्वर की उपलब्धि हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते। यानी संसार में रहेंगे, दुनिया के सारे काम करेंगे, लेकिन किसी चीज से अटैच नहीं होंगे, किसी चीज में लिप्त नहीं होंगे, इस भावना को वैराग्य कहा जाता है।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग हो

शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना।

0: मॉर्निंग भोर में 4:10, जन्म स्थान है गुड़गांव। काजल कह रही है कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। काजल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में। आपके विवाह के योग बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। आपका विवाह शीघ्र हो जाए, बेहतर हो जाए, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब जानेंगे कि कब व्यक्ति वैराग्य का वरदान पाता है, वैरागी हो जाता है।
0: अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति वैराग्य के रास्ते पर चलता है, वैरागी हो जाता है। देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो गया तो आदमी को बड़ी मानसिक पीड़ा होती है और आदमी का मन दुनिया की चीजों में नहीं लग पाता और ऐसे लोग सत्य की तलाश में वैराग्य का रास्ता पकड़ लेते हैं। चंद्रमा का संबंध चतुर्थ भाव से हो, अष्टम भाव से हो या द्वादश भाव से हो, तो ये तीनों भाव मोक्ष के त्रिकोण हैं। चंद्रमा का इन भावों में होना बहुत हद तक आदमी के अंदर आध्यात्मिकता जगा देता है। अगर कुंडली में नवम भाव का स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और वैराग्य का रास्ता पकड़ लेता है, ऐसा देखा गया है। अगर कुंडली में केतु प्रभावशाली हो तो लोग वैराग्य का रास्ता पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कुंडली में अगर 12वें केतु है तो मोक्ष मिलेगा इसी जन्म में। ऐसा कुछ आसान नहीं है। केवल केतु के 12वें बैठने से ही अगर मोक्ष मिलने लगता तो हर साल करोड़ों लोगों को मोक्ष मिल जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केतु द्वादश में हो, चंद्रमा गड़बड़ हो, शनि का केतु से संबंध हो और वैसी अनुकूल दशा आए तब मोक्ष जैसी स्थितियां बनती हैं। केवल केतु के 12वें बैठने से मोक्ष नहीं मिलता, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अगर किसी का जन्म अमावस्या का है या पूर्णिमा का है तो उसके अंदर भी आध्यात्मिकता काफी होती है। अमावस्या पर सूर्य की शून्यता और पूर्णिमा पर चंद्रमा की प्रबलता, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है और ये व्यक्ति को आध्यात्मिक जन्म देती है और ऐसे लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं।
1: और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वैराग्य के बारे में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि कब व्यक्ति वैराग्य का मार्ग छोड़ देता है।
0: बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भूत सवार होता है कि मैं संन्यास लूंगा, मैं आध्यात्म के रास्ते पे चलूंगा, मैं ईश्वर की उपलब्धि करूंगा। बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन बीच में ही रास्ता छोड़ करके चले आते हैं, वैराग्य का मार्ग छोड़ देते हैं। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में शुक्र की भूमिका मजबूत हो तो ऐसे लोग संन्यास लेने के बाद भी भोग छोड़ नहीं पाते और ऐसे लोग संन्यास छोड़कर बाद में वापस सांसारिकता में लौट आते हैं। कुंडली का तीसरा, सातवां या ग्यारहवां काम त्रिकोण अगर मजबूत हो गया तो ऐसे लोग बहुत दिन तक वैराग्य में नहीं रह पाते, बहुत दिन तक कष्ट नहीं उठा पाते और बीच में वैराग्य का रास्ता छोड़ करके भाग चलते हैं। चंद्रमा अगर द्विस्वभाव राशि में हो, ड्यूअल राशि में हो, तो ऐसे लोग तो निर्णय ही नहीं ले पाते कि मुझे संन्यास में जाना है कि सांसारिकता में जाना है, मुझे ईश्वर की उपलब्धि करनी है या धन की उपलब्धि करनी है, उस चक्कर में कंफ्यूज बने रहते हैं और अंततः वैराग्य का रास्ता छोड़ देते हैं। अगर कुंडली में वायु तत्व प्रबल हो गया, वायु तत्व अगर कुंडली में मजबूत हो गया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता, कुछ दिन तीर्थ यात्रा करेगा, नदियों पे रहेगा, मंदिरों में रहेगा, साधना में रहेगा, बाद में सब छोड़ के वापस दुनिया में लौट आएगा। राहु का संबंध अगर शुभ ग्रहों से बन जाए, खासतौर से राहु और बृहस्पति का संबंध हो, राहु और चंद्र का संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि व्यक्ति बड़े जोश में आके अध्यात्म और वैराग्य के रास्ते पर आगे बढ़ता है, लेकिन लंबे समय तक उस रास्ते पर नहीं रह पाता, कुछ दिन बाद सब कुछ छोड़ करके वापस संसार में, पैसे में, समाज में लौट आता है।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि,

के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: होगी, किसी परिजन की चिंता होगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करे तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि वैराग्य के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में ईश्वर का आकर्षण पैदा हो, आप आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ें, आपके मन में वैराग्य आए, तो क्या करें? नियमित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करिए। भगवान से नियमित प्रार्थना करने से आपको लाभ होगा। संगति, खान पान और अपनी सोच का ध्यान रखिएगा। जब भी समय मिले भगवान के नाम का कीर्तन करिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी मौका मिले भगवान के नाम का कीर्तन करें। और अगर साधना मार्ग पर चल रहे हैं तो एक दिन में ही आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, एक दिन में ही चमत्कार हो जाएगा, ऐसी आशा मत करिएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहते। यानी मन बड़ा दुर्गम है, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, अभ्यास और वैराग्य करके आप इस मन को कंट्रोल कर पाएंगे और वैराग्य के आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो याद रखिए, मन को कंट्रोल करके वैराग्य के रास्ते पर चलने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, तब जा करके आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
1: और इसी के साथ जानेंगे आज के अंतिम राशिफल के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहता है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल।
0: मकर राशि, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें, दौड़ भाग बढ़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जीवन को व्यवस्थित करें तो अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: के योग हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न राधे श्याम जी ने हमें लिखा है, अलीगढ़ से लिखते हैं। राधे श्याम जी की जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1965, जन्म का समय शाम के 4:30, जन्म का स्थान है अलीगढ़। राधे श्याम जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राधे श्याम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से 1 साल अभी लगेंगे साल 2027 में प्रयास करने पर आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी अगस्त 2027 के बाद से बेहतर हो जाएगी। 2 उपाय करिए, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए या गुड़ का दान करिए, तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: आज का चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं?
0: जी आज का अंतिम प्रश्न सचिन जी ने हमें लिखा है और सचिन जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। सचिन जी की जन्म की तारीख है 13 नवंबर 1980, जन्म का समय सुबह के 9:30, जन्म स्थान है फरीदाबाद। सचिन कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी बदलने का एक ऑफर आया है जिसमें मुझे वापस दिल्ली या दिल्ली के आसपास जाने का अवसर मिल रहा है, क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। सचिन, आपकी कुंडली के हिसाब से जो नौकरी का ऑफर है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आप उस ऑफर पर विचार करिए और अगर परिवर्तन होता है तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास आ जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। साल 2029 के पहले किसी व्यापार में मत जाइएगा, आराम से नौकरी करते रहिए, जीवन आपका बेहतर बना रहेगा। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 11 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम रहेगी, करियर में धीरे धीरे स्थिरता आती जाएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन का इस साल विशेष ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती है आज की जिज्ञासा।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या संन्यास में घर द्वार का परिवार का त्याग करना आवश्यक है? देखिए, संन्यास का अर्थ है मन को सत्य वस्तुओं में न्यस्त रखना, लगाए रखना। ये स्थिति परिवार में रहकर भी आ सकती है कि आप परिवार और समाज में रहें और उसमें लिप्त ना हो। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से व्यक्ति कहीं भी संन्यास की स्थिति में आ सकता है।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं 11 सितंबर 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। आपकी धन संबंधी तमाम समस्याएं बड़े आराम से दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 सितंबर शुक्रवार रात 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कौन सी धातु का प्रयोग करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुडलक राशि है तुला। आपको लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा।
1: और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं गुडलक के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि पूजा और ईश्वर की तरफ मन लगे इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। जितना संभव हो ईश्वर के नाम का जप करें, हर समय भगवान का नाम जप करें। खान पान और आचरण की शुद्धि पर ध्यान दें और नियमित रूप से सत्संग या स्वाध्याय करना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो पूजा में ध्यान में आपका मन अवश्य लगेगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: कौन से ग्रह आपको पेट की समस्याएं दे सकते हैं? पेट की अलग अलग समस्याओं के कारण क्या हैं? पेट की समस्याओं का क्या है समाधान? किन उपायों से होगा इसका निदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: कहते हैं एक पंथ दो काज, और इसकी शानदार मिसाल इन दिनों श्रीनगर में देखने को मिल रही है, जहां पर एक कश्मीरी कलाकार ने कश्मीर की मशहूर पेपर मैशो कला को सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया है।
3: श्रीनगर की इस छोटी सी वर्कशॉप में कला का एक नया रूप आकार ले रहा है। यहाँ पर काम में जुटी हुई आर्टिस्ट कुलसुम सिमरन इरशाद अपने हाथों से इस फूलदान को तैयार कर रही है। यहाँ पर सिर्फ फूलदान ही नहीं बल्कि और भी तमाम चीजें हैं जिनको कुलसुम अपने हाथों से बनाती है। खास बात यह है कि इन्हें इस चीज से बनाया जाता है जिसे आमतौर पर बेकार समझा जाता है। अब कुलसुम कश्मीर की सदियों पुरानी पेपर मैशे आर्ट में इस सामग्री को इस्तेमाल कर रही है, जो बाकी लोगों के लिए भले ही कचरा है लेकिन कलाकार के लिए कंचन से कम नहीं। ये सामग्री है डल झील में उगने वाली घास, वनस्पतियाँ और खरपतवार, जिनका वैसे तो कोई भी इस्तेमाल नहीं, लेकिन कुलसुम इसे अपने आर्ट के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
4: मकले मगर मे अमी चाहत ज्यादा बहस ये मकले ये क्राफ्ट तोस खत्म गुन मे अम क्राफ्ट ज्यादा चाहत फिक्र मे पोत आ मे ये ख्याल दिमाग मज अगर ये पेपर मकले पोस क्या करो बुकन न तुल वन कदम बह बचा गोडनेथ ये क्राफ्ट ये बह पगह बचा तिकन कर बह गोडनेथ कोशिश पोस आन मे ये गास छ आसान द्रमुन।
3: पेपर मैशे की कला को परवान चढ़ाने के लिए करीब 5 साल तक पारंपरिक तरीके से काम करने के बाद कागज की बढ़ती कीमत और उसकी कमी की चिंता ने कुलसुम को नए रास्ते की तलाश पर मजबूर कर दिया, लिहाजा सिमरन ने डल झील में पैदा होने वाली जलीय वनस्पतियों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। सिमरन इन्हें झील से निकालती है, अपने वर्कशॉप में लाती है और फिर पीस कर रंग मिलाती है। इसके बाद साँचों पर लगाकर इन्हें खूबसूरत आकृतियों का रूप दे देती है।
5: क्यों मैं से सिमरन वाइज लड़की है जो जल्दी पिक करते हैं। अगर किसी लड़की को मैं एक माह कोई सेटअप बताता हूँ उसको एक महीने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, इसको एक दफा बताते वो जल्दी पिक करते थे। इस वजह से ये हर अब मशवरे मेरे साथ है, हम दोनों मिलके मीटिंग करते हैं हमें आगे नेक्स्ट सेटअप क्या करना है, तब ये मुझे बिल्कुल साथ दे रहे हैं, तब जाकर हम कामयाब हो गए।
3: पेपर मैशे की कला को ग्रास मैशे में तब्दील कर चुकी कुलसुम की कोशिश अब इस आर्ट को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की है। साथ ही इनके लिए इस प्रयोग का मकसद सिर्फ एक पुरानी कला को बचाना नहीं बल्कि झील की सफाई, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी इस पहल से जुड़ा है। इनकी ये कोशिश डल झील की सफाई में भी मददगार साबित हो रही है।
4: सोच रलो ढलस पे करो कम सारी हाउस बोट तम सोरे ये मलब वेस्ट मकरियार यह सोरे ग डलस मे मे ये मोहमूली ये पहल कर अगर मे सकई नाई वल अंद प डलस अंद प वसान तम कर मे अत मावन तम कर मे अत मपोट मुमकिन बह मज कामयाब क्या मे ये लकट मकट पहल अंकस ये।
3: डल झील को साफ रखना और प्रदूषित करने से बचाना सबकी जिम्मेदारी है, लिहाजा कुलसुम के लिए ये मुहिम कश्मीर की विरासत के साथ झील और भविष्य को भी संवारने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ भावुक कर जाएंगे।
6: अगर साथ निभाने वाला सच्चा हो तो दुनिया की सारी धन दौलत फीकी लगने लगती है। संसाधन भले ही सीमित हो लेकिन प्यार का एहसास अनलिमिटेड होता है। तस्वीर देखिए, लाइन में खड़े होकर पति अपना काम पूरा कर रहे हैं, तभी पत्नी की नजर उनके माथे के पसीने पर पड़ती है और हाथ में पकड़े पेपर से ही उन्हें हवा करने लगती है। पत्नी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। लोग कह रहे हैं उम्र के हर पड़ाव पर ऐसा ही जीवन साथी मिले। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन बेंच बॉय के नाम से मशहूर फेंग युक्सियांग इसके मिसाल हैं। महज 2 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चीन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 586 अंक हासिल किए और हुबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अब चिलचिलाती धूप में फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। उनका जज्बा हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। माँ तो माँ ही होती है, काम चाहे कितने भी हो, बच्चों के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। इस वीडियो में भी माँ की ममता का ऐसा ही खूबसूरत अंदाज नजर आया। माँ रोटी बनाने में व्यस्त है, लेकिन इसी बीच अपने लाल को दुलारना भी नहीं भूल रही। कभी प्यार से उसे छूती है तो कभी अपने आंचल के करीब कर लेती है, और बच्चा भी माँ का प्यार पाकर खिलखिला रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो माँ बच्चे के इसी अनमोल रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता, और जब हाथों में कला हो तो साधारण दीवार भी खूबसूरत कलाकृति में बदल जाती है। चीन की जेंजी पीढ़ी की एक लड़की इन दिनों अपने अनोखे हुनर की वजह से वायरल हो रही है। सीमेंट की मदद से वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी बेहद असली दिखने वाली रिलीफ म्यूरल कलाकृतियां बना रही है। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल से दीवार पर उभरी हुई नक्काशी करती है। उसका ये अनोखा अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा खेल देखकर शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाए। बच्चों को थैले में डालकर रेस कराई गई, और रेस शुरू होते ही बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। कोई तेजी से आगे बढ़ रहा था तो कोई संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा था, लेकिन तभी एक बच्चा थोड़ी दूर जाते ही गुलाटी खाकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे, फिर प्यार से बच्चे को उठाए। बच्चों की इस मजेदार रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों

0: कौन से ग्रह आपको पेट की समस्याएं दे सकते हैं? पेट की अलग अलग समस्याओं के कारण क्या हैं? पेट की समस्याओं का क्या है समाधान? किन उपायों से होगा इसका निदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं विदेशी मेहमान। भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम, आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेश उत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा को भोग लगाने के लिए खास तरह के मोदक तैयार, उगडीचे मोदक, लोटस बिस्कॉफ मोदक समेत कई वेराइटी से सजे बाजार। महाराष्ट्र के अकोला में मूर्तिकार शरद कोकाटे ने दिखाई अनोखी प्रतिभा, आंखों पर पट्टी बांधकर महज 6 मिनट में बनाए निर्विकार बप्पा की मूर्ति, इको फ्रेंडली गणेशोत्सव का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। क्रिकेट मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप के सेमीफाइनल्स में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 40 रन से हराकर लगातार 10वीं बार फाइनल में पहुंचा भारत। मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है बंपर कमाई। सातवें दिन फिल्म ने की 8 करोड़ 28 लाख की कमाई। पहले हफ्ते में नेट कलेक्शन 146 करोड़ के पार।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: शुभ समाचार की शुरुआत गणेशोत्सव के साथ करेंगे। 14 तारीख यानी सोमवार से गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर बप्पा के स्वागत के लिए ना सिर्फ जोरदार तैयारियां की गई हैं, बल्कि उनके लिए शानदार और भव्य पूजा पंडाल भी बनाए गए हैं। खासकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक थीम पर आधारित पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जो अभी से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। तो ये अलग अलग रंग भी आपको दिखाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने शिरडी में बाबा को स्वर्ण मुकुट अर्पित किया और इसकी कीमत 14 लाख रुपए है। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त ने मंदिर समिति को इसे भेंट किया, तो इसमें और क्या है खास वो भी आगे आपको बताएंगे। तो साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन भी आपको लिए चलेंगे, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। आज से इसकी शुरुआत दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। इस समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली को सजाने संवारने का काम चल रहा है। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है, तो ये खूबसूरती भी थोड़ी देर में होगी आपके सामने। तो वहीं खूबसूरत श्रीनगर की मशहूर डल झील की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। जी हां, आपको बता दें झील की लहरों के बीच बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों का मजा मिल रहा है। कश्मीर में शुरू हुए पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बीच डल झील का ये सिनेमाई अंदाज खासा आकर्षण बटोर रहा है, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे। इसके अलावा बात क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज की भी होगी। जी हाँ, महिला एशिया कप के सेमीफाइनल्स में भारत ने शानदार जीत हासिल की। उसने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर लगातार 10वीं बार फाइनल में एंट्री की। अब आगे किसकी होगा और कैसी होगी हार और कैसा होगा ये मुकाबला, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का। मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। मोदक की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। तरह तरह के मोदक से बाजार सज चुके हैं। बापा के पसंदीदा मोदक खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। जयपुर में भी गणेशोत्सव से पहले बप्पा के भोग में नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। इस बार अलग अलग स्वाद और फ्लेवर के 11 तरह के मोदक, 14 वैरायटी के लड्डू तैयार किए गए हैं। मोदक में लोटस बिस्कॉफ का स्वाद डाला गया है, तो वहीं नटेला व्हाइट चॉकलेट मोदक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। जेंजी के लिए खास फ्लेवर तैयार किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में मिट्टी के गणपति बनाने की बड़ी वर्कशॉप कराई। इसमें स्कूलों के हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। वर्कशॉप का मकसद गणेशोत्सव को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। 6,500 से ज्यादा छात्रों ने जे आर्ट कॉलेज की मदद से मिट्टी की गणपति मूर्तियां बनाई। इस बड़े आयोजन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। बिहार के बोधगया में दिखा अनोखा नजारा, जहां 4,000 दीपों से धर्म चक्र बनाया गया। विदेशी श्रद्धालुओं ने यहां खास पूजा की। थाईलैंड, ताइवान और जापान से श्रद्धालु पहुंचे और पूर्वजों की शांति के लिए दीप जलाए, सुख समृद्धि की भी कामना की। भारत में कल से सजेगा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का महामंच। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। आज दोपहर करीब 2 बजे ईरानी राष्ट्रपति पिज़ेशकियान दिल्ली पहुंचेंगे। ब्रिक्स बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी। आज दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी होने जा रही है। इस साल ब्रिक्स 20 साल पूरे कर रहा है। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने अपनी मेगा फिल्म फ्रेंचाइजी श्रीमद भागवतम भाग 1 विष्णु रात का टीजर पोस्टर जारी कर दिया है। भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित इस शानदार लाइव एक्शन फिल्म को श्रीमद भागवतम की 7 भागों वाली सिनेमाई कहानी का पहला चैप्टर बताया गया है। आकाश सागर चोपड़ा और अमृत सागर चोपड़ा की यह फिल्म 2027 में दुनिया भर के प्रीमियर बड़े फॉर्मेट सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने जूनियर एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम के 19 गोल के जवाब में पाकिस्तानी टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। भारत ने पहले हाफ में 10 और दूसरे हाफ में 9 गोल्स किए। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई। दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन ने इतिहास रच दिया। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में हालांकि मैच ड्रॉ रहा, खत्म हुआ, लेकिन पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन ने 13 साल बाद खिताब अपने नाम कर लिया। ईस्ट जोन की इस जीत में सबसे बड़ा चेहरा कप्तान ईशान किशन रहे। कप्तान ईशान किशन ने मैच में 270 और 80 रन बनाकर 350 रन जोड़े। शंघाई में इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट एल्फ शुआन 2.0 लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस खास रोबोट ने लोगों के सामने गाना भी सुनाया और चेहरे से कई तरह के भाव भी प्रकट किए। शंघाई के एक कार्यक्रम में इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सबसे ज्यादा हैरानी की लोगों को इसकी इंसानी जैसे चेहरे और हाव भाव ने दी। तो वहीं रोबोट सामने वाले के हिसाब से अपने भाव बदलता है। चेहरे में लगे कई छोटे सिस्टम अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते हैं।
8: 可以跟他挥挥手，他就会看向你。

और शुभ समाचार की शुभ शुरुआत गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों के साथ। बप्पा के पधारने में अब बस दो दिन बाकी हैं। दो दिन बाद हर घर हर शहर बप्पा के रंग में रंगा नजर आएगा। हर दिल में बस एक ही नाम होगा, गणपति बप्पा मोरया। गणेश उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। बप्पा के पंडाल से लेकर बप्पा के श्रृंगार में भव्यता का रंग चढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर गणेश मंडल और आयोजकों में खासा उत्साह देखा गया। एक तरफ जहां बप्पा की विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति के भव्य श्रृंगार के लिए भी खास आभूषण तैयार करवाए जा रहे हैं। सूरत में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के भारी भरकम और आकर्षक आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। भक्त अपनी पसंद और प्रतिमा के आकार के मुताबिक इन आभूषणों के विशेष ऑर्डर दे रहे हैं। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक थीम आधारित पूजा पंडाल बनाए गए हैं। ऐसा ही एक पंडाल पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के लिए बनाया गया है, जो अभी से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो देखिए किस तरह से शहर शहर बप्पा के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, बप्पा के आगमन की तैयारियां हो रही हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग शहरों में किस तरह से बप्पा के भव्य स्वागत की तैयारियां लोग कर रहे हैं, किस तरह की सजावट होगी, क्या आभूषण उनको अर्पित किए जाएंगे, वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं।

0: विघ्नहर्ता के स्वागत में बज उठे हैं ढोल नगाड़े, डमरू और शंख। भक्ति में मग्न होकर झूम रहे हैं भक्त। लोगों में ये उत्साह और ये उमंग गणेशोत्सव को लेकर है, जिसकी शुरुआत दो दिन बाद होने जा रही है। इसलिए शहर शहर उनके स्वागत की जोरदार तैयारी भी की गई है, जिसकी एक तस्वीर पुणे से आई है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के लिए शानदार पूजा पंडाल बनाया गया है। ये पूजा पंडाल वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, इसलिए मंदिर की दरो दीवार पर राधा कृष्ण की लीलाओं को बेहद सुंदरता से उकेरा गया है।
1: 14 सितंबर को इसी पंडाल में पूरे देश भर के और महाराष्ट्र के गणेश भक्त दिखाई देंगे। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट का ये जो मंदिर है आपको दिखाई दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम नगरी में जो प्रेम मंदिर है उसकी प्रतिकृति है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी भव्य दिव्य प्रतिकृति बनाई गई है। दगड़ूशेठ के जो गणपति है, श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की मूर्ति यहाँ पर बिठाई जाएगी। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पंडाल है। और यहाँ पर जो पिलर है, मतलब ये जो मंदिर है, इसका काम जो है लगभग हो चुका है।
0: भगवान गणेश का ये पूजा पंडाल देखने में जितना सुंदर और आकर्षक है उतना ही भव्य भी है, क्योंकि इस थीम आधारित पूजा पंडाल की ऊंचाई करीब 135 फीट है, जबकि इसकी लंबाई करीब 90 फीट और चौड़ाई 55 फीट है। आयोजक कहते हैं कि प्रेम मंदिर थीम के जरिए दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
2: श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट की ओर से भारत के विभिन्न मंदिरों की रिप्लिका ये गणेश उत्सव में सजावट के लिए बनाई जाती है। और इसमें दो भूमिका है, हमारे देश की जो सांस्कृतिक परिचय है वो लोगों तक जा सके, और हमारे नेशनल इंटीग्रिटी जो है, राष्ट्रीयत्व की भावना जो है, देशभक्ति की भावना है, वो इससे बढ़ती है। इसीलिए हम भारत के विभिन्न मंदिरों की प्रतिकृति सजावट के रूप में बनाते हैं। इस साल हमारा जो भारत का प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है वृंदावन, वहाँ का प्रेम मंदिर की प्रतिकृति हमने यहाँ बनाई है। इसके पीछे यही एक कारण है कि आज विश्व में जो युद्ध सदृश परिस्थितियाँ हैं उसको नज़र रखते हुए पूरे दुनिया को गणेश उत्सव के माध्यम से और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रेम का संदेश हम देना चाहते हैं।
0: ये पूजा पंडाल अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। सड़क से गुजरने वाले लोग रुककर इस खूबसूरत पंडाल को निहार रहे हैं। खासकर युवा तो इस पंडाल की खूबसूरती को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।
3: लग रहा है जब आप आएंगे तो अच्छा ही लगेगा। और ये जो नया उन्होंने किया है, जो मतलब कृष्णा का जो डेकोरेशन किया है, बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। जब आप आएंगे तो और ज्यादा ही खूबसूरत दिखेगा। और नए नए आइडिया लाते हैं हर बार कुछ अलग करते, तो बेस्ट ही लगता है।
4: बहुत अच्छा लगा, लाइक हमारे जो स्टेट का, दूसरे स्टेट का जो सब कुछ है वो यहाँ पे भी दिखाना चाहते हैं सब लोग, तो हाँ बहुत अच्छा लगा।
0: गणेशोत्सव का ये पर्व न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। यही वजह है कि पुणे के गणेश मंडलों ने मिलकर कश्मीर में गणेशोत्सव मनाने में मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी पंडितों को भगवान गणेश की मूर्तियां सौंपी गयी। इस पहल के लिए कश्मीर के रहने वाले संदीप कौल ने पुणे के गणेश मंडलों का धन्यवाद अदा किया।
5: अच्छा माहौल है, हमने जीरो से स्टार्ट करा था और आज के डेट पे हमारे साथ 5-8 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जिनको कि जैसे हम कल यहाँ पे पहुँचे तो बहुत फ़ोन आ रहे थे कि आप कब पूछेंगे, कब गणपति बापा हमारे घर आए, कब हमें आशीर्वाद दे और कब हमें उनका विसर्जन करें। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने जीरो से स्टार्ट करके आज हमने 5-8 हज़ार लोग इसमें जोड़े हैं, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा। तो बहुत बहुत अच्छा माहौल है।
0: साल 2022 में श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के एक मंदिर में गणेश स्थापना हुई और फिर गणेश विसर्जन हुआ, जिसका दायरा साल दर साल बढ़ता गया। और अब गणेशोत्सव घाटी के 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित करने की तैयारी है, जहां पुणे से भेजी जा रही मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: दोबप्पा के स्वागत की तैयारियां अब अपने ही अंतिम चरण में हैं। बप्पा की प्रतिमाएं धूमधाम से पंडालों में पहुंचने लगी हैं और अब जब पूरा देश बप्पा का स्वागत करने के लिए तैयार है तो जीएनटी कैसे पीछे रहने वाला है। जीएनटी की टीम भी विघ्नहर्ता के स्वागत में जुटी हुई है। जल्द ही जीएनटी में भी बप्पा पधारने जा रहे हैं और ऐसे में हमारी टीम का उत्साह भी अपने चरम पर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ समय में विघ्नहर्ता पधारेंगे और किस तरह से विघ्नहर्ता की प्रतिमा का चयन किया गया है वो तस्वीर आप देखिए।
7: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो भाई देखिए बप्पा पधारने वाले हैं। हम सब लोगों की तैयारी, पिछली बार ये दोनों लड़कियां गई थी, गीतिका और शगुफ्ता, क्या तैयारी आपने की है गीतिका इस बार?
8: मैंने इस बार तैयारी की कि इस बार हम जो बप्पा लेकर आएंगे वो हम लेके आएंगे जेंजी की थीम पे।
7: Oh my God. जेंजी से तो पूछ लो, तो जेंजी आपकी चॉइस क्या है? जेंजी का कलर कौन सा होना चाहिए बप्पा का?
9: येलो थीम पे होने चाहिए और कमल में विराजमान एकदम बढ़िया से गणपति।
7: शगुफ्ता सोचा कुछ?
10: मैं तो इनफैक्ट तैयारी करके बैठी हूँ भाई, देखना चाहती हूँ तो मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शंस लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए, ठीक है? ये इधर जैसे गीतिका ने कहा ना कि आपको जेंजी स्टाइल चाहिए, जेंजी अल्फा बीटा सब डाल दिया मैंने, कोई पीछे हमने छोड़ना नहीं है। इस बार पहली मूर्ति है देखिए ये, ठीक है, कमल पर विराजे हुए जिन्होंने
7: नंदनी ने डिमांड किया ये कि कमल पर विराजे होने चाहिए, पीला रंग होना चाहिए। नंदनी बताओ भाई ये मूर्ति कैसी लग रही है?
11: बिल्कुल बढ़िया, यही ऐसी ही थीम हमें रखनी चाहिए और ऐसे ही बप्पा पधारने चाहिए जीएनटी पर।
7: ठीक है शीतल, शीतल क्या कैसा लग
12: अच्छी है? थोड़ी और अच्छी हो सकती है, इनका श्रृंगार और अच्छा हो जाए।
10: ऑप्शन सेकंड है मेरे पास, दिखा दीजिए। मैं ऑप्शन सेकंड पे जा रही हूँ, ये रहा आपका ऑप्शन सेकंड। कलरफुल
12: बहुत अच्छी है।
10: सरगम आप बताइए जरा,
13: लाल बास्टर राजा जो है ना उससे इंस्पायर्ड अगर कुछ हो तो क्या बात है। और देखिए पर्यावरण की बात होती है, रहती है, इको फ्रेंडली गणपति, शाडू के मिट्टी के गणपति, हम लगातार बुलेटिन में बात कर रहे हैं शुरू इसके बारे में।
10: सारे ऑप्शन निकाले हुए
13: निकाले
10: तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे, बहुत सारे गणपति की पिक्चर उन्होंने निकाली है। शगुफ्ता हो जाए शुरू,
12: मैं थर्ड पे जा रही हूँ, ये रहा आपके पास थर्ड ऑप्शन, ये भी देख लीजिए जरा
10: किसको अच्छे लगे, मतलब अपनी अपनी डिमांड्स आप बता सकते हैं भाई, भगवान सुन रहे हैं विघ्न हरने के लिए।
7: मुझे ना ये, मुझे ये टर्कोइज कलर बड़ा पसंद है, येलो भी मेरा फेवरेट है, पिंक भी अच्छा लग रहा है, तो मतलब सारे कलर्स अच्छे लग रहे हैं। शीतल
12: हाँ, जो फूल और इनका श्रृंगार है वो भी अच्छा लग रहा है, माला भी अच्छी लग रही है और बप्पा तो है ही खूबसूरत।
7: एक और देख लेते हैं।
10: सो क्यूट, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मेरे कौन से फेवरेट है। आई थिंक मैं और गीतिका ने डिसाइड किया था कि बाल बाल रूप जो होता है ना गणपति का, वो सबसे मनमोहक रूप होता है और सबसे सुंदर दिखता है।
7: तो ये जेंजी नहीं, ये तो जेन एल्फा वाले बप्पा हो जाएंगे।
10: और बीटा हो गया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं।
12: ये नेक्स्ट भी आपके
7: बहुत क्यूट है,
12: क्यूट गणपति है हमारे, क्यूट बप्पा।
7: जो नीचे मूषक महाराज है ना वो भी बड़े क्यूट लग रहे हैं।
10: नेक्स्ट है, ये AI जनरेटेड विजुअल है।
7: तो चलिए मुझे लग रहा है, हाँ, मुझे लग रहा है कि हम सबकी चॉइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट मैच हो रही हैं, बट अब देखना ये है कि जब हम जाएंगे वहाँ पे हमें क्या वाकई जेंजी या फिर क्यूट से प्यारे से पापा। कलर येलो, राइट? येलो कलर।
10: अच्छा नवजोत, क्योंकि गणपति की बात हो रही है तो पहले ये बताइए मोदक कहाँ से आएंगे?
7: एक सेकंड, इस मोदक का जवाब जो दो मुंबईया लड़कियां ना वही
10: देंगे। अच्छा मैं ये बता दूं, मोदक ओरिजिनल मोदक होना चाहिए, चावल का बेस होना चाहिए, बीच में नारियल होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए। अगर देसी मोदक आया तो मैं तो नहीं खाने वाली।
12: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शगुफ्ता ने कि चावल की जो कोटिंग होती है अंदर, नारियल और गुड़ का जो मिक्सचर होता है, ओहो माउथ वाटरिंग एकदम। और लास्ट टाइम नवजोत मोदक लेकर आई थी।
7: चलिए इस बार कर पा रहे हैं कोशिश, इस बार कोशिश ये रहेगी। और लास्ट टाइम तो शगुफ्ता और गीतिका पे जिम्मेदारी थी, इस बार भी आप ही पे जिम्मेदारी, हमने चॉइसेस बता दिए,
10: सबके कंधों पे है। चलो फिर एक बार फिर से गणपति बाप्पा मोरया।
7: अच्छा शीतल ने एक और ढूंढी है पिक्चर,
12: सोशल मीडिया पे वायरल गणपति है जो इस टाइम
7: हम दिखा देते हैं। ये सोशल मीडिया पे वायरल गणपति,
12: इनका श्रृंगार, इनके आभूषण ऐसे है ना, बस देखते ही नजर यहाँ पर टिकी जा रही है। ऐसे बप्पा आ जाए तो बस इनको देखते रहो।
10: तो मुझे लगता है हमें देखना होगा जब लेने जाएंगे बप्पा को, तो हमें किस तरह के बप्पा।
7: तो याद रख लेना सबकी चॉइसेस।
10: मैं एक और चीज बता दूं, जब आप चुनाव करने जाते हैं ना तो गणपति बप्पा
13: खुद आपके पास आते हैं, आप चुनाव नहीं करते हैं। जहाँ पर आंखें जाकर ठहर गई, उन्होंने
12: अपने आप रास्ता बना।
7: ये पिछली बार आई थिंक शगुफ्ता ऐसा हुआ था ना,
13: आंखों के साथ आंखें
12: मिलती हैं। खुद हमें चुना था, हमने उनको नहीं चुना था, उन्होंने हमें चुना था।
7: चलिए, मन में आस्था होनी चाहिए बस, और फिर उसके बाद देखिए बप्पा खुद आएंगे। बस अपनी कोशिश हमारी बस यही रहेगी कि हम जाएं और अपनी चॉइसेस के हिसाब से बप्पा को
12: लेकर
14: फिर से गणपति बप्पा
7: मोरया,
14: मंगल मूर्ति
7: मोरया।
6: तो गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही देश भर के बाजार गणेश प्रतिमाओं से सज गए हैं। बाजार में इन दिनों एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाएं बिक रही हैं। ज्यादातर लोग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं खरीदना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में मूर्तिकार इको फ्रेंडली मूर्तियां ज्यादा तैयार कर रहे हैं। ये इको फ्रेंडली मूर्तियां बांस, मिट्टी और पराली के अलावा गाय के गोबर से भी तैयार की जा रही हैं, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। देखिए,
15: अलग अलग आकार और डिजाइन की एक से बढ़कर एक खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं जो एक नजर में ही देखने वालों का मन मोह ले। ऐसी मनोहारी मूर्तियों से देश के बाजार सजे हैं। जामनगर से जयपुर तक और झांसी से लेकर पाली तक बाजारों में गणेशोत्सव की रौनक हर तरफ देखते ही बन रही है। ये मूर्तियां देखने में जितनी सुंदर और आकर्षक हैं, उतनी ही विशेष भी हैं, क्योंकि ये मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं, यानी ऐसी चीजों से बनी हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता नहीं है।
16: बाजार भी सज चुके हैं, तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है गणेश उत्सव की। वो समय है जब हर एक व्यक्ति बाजार में आ रहा है, अपने मन पसंद के गणेश जी चुन रहा है। कुछ लोग अपनी थीम के हिसाब से ऑर्डर्स दे रहे हैं और पूरा मार्केट सजा हुआ है, क्योंकि तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। गणेश उत्सव होगा, कुछ लोग 3 दिन के लिए, कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 5 दिन के लिए, तो कुछ पूरे 11 दिन के लिए अपने घरों में गणेश जी महाराज को विराजित करते हैं। 14 तारीख वो शुभ दिन है जिस दिन सभी के घर में गणेश जी जाएंगे, और 11 दिन तक जो पूजा होती है, अर्चना होती है, बहुत ही खास होती है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की मूर्तियां इस समय पे जयपुर के बाजारों में भी नजर आ रही है, जिसमें थीम्स भी बहुत सारी नजर आ रही है। श्रृंगार अलग अलग टाइप का नजर आ रहा है, जिसमें सर्प रूपी गणेश जी भी हैं, जिसमें शिवलिंग के साथ में गणेश जी भी हैं, लाल बागचा राजा की झलक भी यहाँ दिख रही है, तो डबरू बाबा की भी झलक दिख रही है।
15: बीते कुछ वर्षों में लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते गणेशोत्सव के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड भी बढ़ रही है। यही वजह है कि कारीगर डिमांड और ट्रेंड के हिसाब से ही मूर्ति निर्माण का काम महीनों पहले शुरू कर देते हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियों के ऑर्डर को पूरा किया जा सके।
17: 4 दिन पहले मूर्ति देना पड़ रही है। हाँ, महंगाई तो है ही, और जो इस बार जो आगमन का प्रोग्राम चलने लगा तो आदमी 4-5 दिन पहले ही मूर्ति मांगने लगा।
18: 6 महीने पहले से काम शुरू हो जाता है मूर्तियों का, जब ही ग्राहकों को पूरा तैयार करके दे पाते हैं।
19: अच्छा, कहाँ कहाँ की बुकिंग है?
18: बुकिंग तो बाहर की भी है, लोकल की भी है।
15: ज्यादातर कारीगर इको फ्रेंडली मूर्तियां बांस, मिट्टी और पराली से तैयार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाते हैं। ये मूर्तियां भी मिट्टी की मूर्तियों की तरह ही देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं, और इनसे भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
20: मतलब बहुत ही शुद्ध है, अपने हर घर के काम में भी पहले जब तक गोबर का लिपन नहीं होता तब तक अपन अपने घर को भी शुद्ध नहीं मान सकते, तो मैं गोबर को बहुत ही शुद्ध मानता हूँ, पीओपी और मिट्टी से भी बहुत शुद्ध मानता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप घर पे ले जाओ इसको और घर पे ही विसर्जन करो इसको, और विसर्जन होने के बाद में इसी के पानी को मतलब आप अपने पेड़ पौधों में डाल दो, ये खाद का काम भी करते हैं।
15: घर और पूजा पंडालों में विराजने वाली इन गणेश प्रतिमाओं का लोग तरह तरह के आभूषणों से श्रृंगार भी करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी से बप्पा को सजाते हैं। ऐसे में डायमंड सिटी सूरत में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के आकर्षक और भारी भरकम आभूषण तैयार करवाए गए हैं। इनमें भगवान गणेश की पादुकाएं, कंगन, हाथों के आभूषण, मुकुट समेत विभिन्न प्रकार के आभूषण शामिल हैं। इन आभूषणों की विशेषता ये है कि ये सामान्य आकार के छोटे मोटे आभूषण नहीं है, बल्कि गणेश प्रतिमाओं के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, ताकि गणेश प्रतिमा को उत्सव के दौरान भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सके। जयपुर से रिदम जैन, पाली से भरत भूषण जोशी, झांसी से अजय झा और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गणेश उत्सव पर मोदक वाली मिठास।
1: गुड़ नीज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
24: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: कौन से ग्रह आपको पेट की समस्याएं दे सकते हैं? पेट की अलग अलग समस्याओं के कारण क्या हैं? पेट की समस्याओं का क्या है समाधान? किन उपायों से होगा इसका निदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे विदेशी मेहमान, भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम, आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा को भोग लगाने के लिए खास तरह के मोदक तैयार, उगडीचे मोदक, लोटस बिस्कॉफ मोदक समेत कई वैरायटी से सजे बाजार।
5: महाराष्ट्र के अकोला में मूर्तिकार शरद कोकाटे ने दिखाई अनोखी प्रतिभा, आंखों पर पट्टी बांधकर महज 6 मिनट में बनाए निर्विकार बप्पा की मूर्ति, इको फ्रेंडली गणेशोत्सव का दिया संदेश।
4: छत्तीसगढ़ की साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी।
5: क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 40 रन से हराकर लगातार 10वीं बार फाइनल में पहुंचा भारत।
4: मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर कर रही है बंपर कमाई, 7वें दिन फिल्म ने की 8 करोड़ 28 लाख की कमाई, पहले हफ्ते में नेट कलेक्शन 146 करोड़ के पार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: स्वागत है आपका शुभ समाचार में, चलिए आपको लेकर चलते हैं मोदक और लड्डुओं की ऐसी दुनिया में जो इन दिनों गणेशोत्सव की रौनक में आबाद है। बाजारों में तरह तरह के फ्लेवर्स लिए मोदक और लड्डू कैसे ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं, मुंबई में मोदक की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, तरह तरह के मोदक से बाजार सज चुके हैं, बप्पा के पसंदीदा मोदक खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, बाजारों में परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को भी मिल रहा है। तो वहीं जयपुर में भी गणेशोत्सव से पहले बप्पा के भोग में नया ट्विस्ट देखने को मिला, इस बार अलग अलग स्वाद और फ्लेवर के 11 तरह के मोदक, 14 वैरायटी के लड्डू तैयार किए गए हैं। मोदक में लोटस बिस्कॉफ का स्वाद डाला गया है, तो वहीं नटेला व्हाइट चॉकलेट मोदक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, जेंजी के लिए ये खास फ्लेवर तैयार किए जा रहे हैं।

0: गणेशोत्सव में मोदक, जो सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि बप्पा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्तिभाव का प्रतीक है। इसलिए गणपति बप्पा के आगमन पर मोदक चढ़ाना मानो अपनी खुशियां और प्रेम उनके चरणों में अर्पित करने के समान ही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के बीच घर घर मोदक बनाने की परंपरा निभाई जा रही है, तो दुकानों पर भी मोदक की अलग अलग वेराइटीज शोकेस की गई हैं।
1: अब फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है मुंबई महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव 14 तारीख से हर कोई मनाने वाला है। थोड़ा सा देखें, तमाम अलग अलग तरीके के मोदक यहाँ पर सजाए गए हैं और रखे भी गए हैं, और एक तमाम संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपने मन का जो मोदक है वो लेते हैं।
0: दरअसल कई नई वेराइटीज के साथ ये स्वादिष्ट मोदक मुंबई के सालों पुराने लाडू सम्राट मिठाई की दुकान की रंगत बढ़ा रहे हैं।
2: अलग खोबरे का ये खोबरा मावा है, ये रेगुलर मावा मोदक है।
1: इसके खोबरे मावे के अंदर ये पूरा खोबरे है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है,
2: खोबरा और मावा रहता है। यस।
1: और ये पीला वाला
2: ये मावा का है, ये अपना रेगुलर मावे का है, देन ये केसर वाले मावे का है।
1: अच्छा,
2: और ये कंदी मावा है।
1: रंग बिरंगी मोदक, हाँ ये पिंक है, ग्रीन है, ये ऐसे क्यों, ये अलग अलग स्वाद है इसका भी?
2: हाँ जी हाँ, ये जैसे स्ट्रॉबेरी का है, पिस्ता का है, अंजीर का है, चॉकलेट का है, एंड रेगुलर काजू का है। ये सब काजू में बनते हैं, ये काजू में अलग अलग फ्लेवरिंग्स यूज करके बनाया जाता है।
1: अच्छा, मतलब हम लोग अब उस मोदक की तरफ चल रहे हैं जो महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति भी है ना, ये हर घर में बनाई जाती है, तो इसके बारे में ही आप बता रहे थे। तो ये इसके अंदर क्या क्या है मिश्रण में?
2: मिश्रण में बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही टेस्टी है। फ्रेश कोकोनट है, जैगरी है, कार्डमम है, केशर है, ड्राई फ्रूट्स है, बस सिंपल है।
0: मंगल मूर्ति के इस खास भोग की जबरदस्त खरीदारी दुकान मालिकों को काफी खुश भी कर रही है, क्योंकि इस बार खासकर लाडू सम्राट ने मोदकों की कीमत बढ़ाई नहीं है।
2: सबसे ज्यादा ट्रेंड में तो मावे के मोदक से है, उसके अलावा काजू के मोदक जो है, ड्राई फ्रूट मोदक वगैरह। इस साल जो आपको मालूम होगा इतने सारे इंसिडेंट्स हुए ये साल में कि बिकॉज ऑफ वॉर या जो भी है, शुगर प्राइजेस वगैरह की वजह से सब प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़े हैं, बट इस बार भी हमने प्राइजेस बढ़ाए नहीं, सो इस वजह से थोड़ा और इनफ्लो ज़्यादा है।
0: ये दुकान आज की पीढ़ी के पसंदीदा फ्लेवर्स वाले मोदक भी बनाती है, लेकिन उगदीचे मोदक के साथ कई और पारंपरिक मोदकों के लिए प्रसिद्ध ये दुकान कभी साल 1967 में खोली गई थी, जो आज तक प्रसाद के रूप में घर घर मोदकों की खुशबू और मिठास पहुंचा चुकी है। कुछ ऐसी ही मिठास गुलाबी नगरी की फिजा में भी घुल रही है, जहां बप्पा के इस प्रिय भोग में मिठास का एक नया ट्विस्ट परोसा गया है। करीब 12 फ्लेवर्स के मोदक और 16 फ्लेवर्स के लड्डू यहाँ खरीद के लिए रखे गए हैं।
3: देखेंगे तो इसमें काजू कतली के फ्लेवर्स, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड हो गए, कुछ जेंजी रिलेटेड हो गए, जैसे लोटस बिस्कॉफ हो गया, कैरमल हो गया, न्यूटेला हो गया, कुछ थोड़ा सा फंकी फ्लेवर्स हो गए, ठंडाई केसर, रोज गुलकन, और बाकी हमारा जो बेसिक लड्डू वाला फ्लेवर होता है मोतीचूर कानपुरी, वो हमने क्यूरेट किया है, पेड़े के फ्लेवर्स में किए हैं। तो इस तरह की आपको तरह तरह की रेंज देखने को मिलेगी जो हर एज ग्रुप और हर टेस्ट वाले पर्सन को सुटेबल हो।
0: गणेश चतुर्थी से पहले जयपुर में मिठाइयों का एक से बढ़कर एक नया अंदाज ग्राहकों को भी काफी लुभा रहा है, खासकर जेंजी, क्योंकि इसमें स्वाद के साथ ही सेहत का भी खास ख्याल रखा गया है, और ये मिठास लड्डुओं की 16 वेराइटीज में भी साफ नजर आ रही है।
3: डू में जैसे हमने शुगर, आजकल हम सुन रहे हैं शुगर बहुत हाई पे है, उसकी रेट्स भी, और फिर लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उससे रिलेटेड हमने शुगर फ्री ऑप्शंस बनाए हैं कुछ, जिसमें मैंगो कीवी डिलाइट लड्डू, हमारे खजूर बेस्ड लड्डू हो गए, और फिर रोज फैंटेसी, कॉफी हेजलनट, बेल्जियन चॉकलेट, इस तरह के हमने मैंगो केसर और जेस्टफुल बॉल जिसमें काजू का बेस है, इस तरह के कुछ कुछ लड्डू क्यूरेट कर रहे हैं।
0: तो आप जयपुर में रह रहे हो या फिर मुंबई में, ऐसे कई छोटे बड़े शहरों में सहूलियत और डिमांड के अनुसार मोदक और लड्डुओं की बाजार में भरमार है, और क्योंकि मोदक और लड्डू हमेशा से ही गौरीपुत्र की पसंदीदा मिठाई भी रहे हैं, ऐसे में इन दोनों का ही मीठा स्वाद हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, भक्ति और विश्वास से आखिर में मिठास ही हासिल होती है, और इसी मिठास का एहसास गणेशोत्सव के शुभारंभ से पहले महसूस भी हो रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अच्छा दीपाली, आपको मोदक ज्यादा पसंद है या लड्डू? मुझे मोदक पसंद है।
5: तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मोदक और लड्डुओं की ऐसी दुनिया में जो इन दिनों गणेशोत्सव की रौनक में आबाद है। बाजारों में तरह तरह के फ्लेवर्स लिए मोदक और लड्डू कैसे ग्राहकों की पसंद बन रहे हैं, चलिए आपको मुंबई और जयपुर से ऐसे ही त्योहार की मिठास का एहसास लिए तस्वीरें दिखाते हैं।

0: ऐसे ही एक बड़े ही सुंदर से घर में यहाँ पर हम मौजूद हैं और सामने मराठी मानस यानी कि मराठी संस्कृति दर्शाती एक ऐसी लीडिंग है जो इस समय मोदक का निर्माण कर रही है और स्पेशली जो मराठियों को बहुत पसंद है, साथ ही साथ इसका वाकई में टेस्ट बहुत ज़्यादा गजब का होता है और यहाँ पर जितने भी घर होते हैं सभी लोग अपने घरों में मोदक इस तरह का बनाते हैं जिन्हें प्रसाद के रूप में बप्पा को भी चढ़ाया जाता है, साथ ही साथ दूसरे भी जो त्यौहार हैं उसमें भी चढ़ाया जाता है, रिश्तेदारों को भी दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ यहाँ पर बना करके बाहर भी चीज़ें भेजी जाती हैं। इस मोदक का नाम क्या है?
1: ये उकड़ी के मोदक है, महाराष्ट्र। हाँ,
0: नॉर्मली मराठी और जो मानुस हैं यहाँ पर और गणेश उत्सव में उकड़ी के मोदक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और आसान है घर में बनाना?
1: मतलब आसान तो मतलब इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल ही है।
0: अच्छा, तो कितनी देर से बना रहे हो, कितने मोदक अभी तक आपने बना लिए?
1: दो घंटे से मैं तो लगी हुई यहाँ पे इसमें। अच्छा, मोदक बनने में। और मैंने अभी एक 20-21 बनाए हैं।
0: 21 बनाए और ये यहाँ पर रखा भी हुआ है, ये देखिए बकायदा। थोड़ा सा दिखाएं आप वैनी, इसको उठाइए अपने हाथों में, मोदक को आपने बनाया है, बड़ा सुंदर लग रहा है। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी दिखाएं, ये देखिए ये है उकड़ी का मोदक। अच्छा, ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उकड़ी से क्या कहते हैं, उकड़ी का मतलब क्या है?
1: मतलब वो चावल का आटा रहता है, ये जो ये व्हाइट कलर का चावल का आटा है और उसके अंदर मतलब ये गुड़ और खोबरा जो नारियल रहता वो पीसा हुआ रहता है उसमें मिक्स करके गुड़ और नारियल वो मिक्स करके
0: वगैरह भी
1: और ये काजू बादाम और ऊपर से केसर भी डालते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर जो मिश्रण है वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आ रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है और वाकई में स्वाद बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। उकड़ी का मोदक मुझे लगता है कि दूसरे भी राज्यों में बहुत ही रेयर जगह मिलता होगा लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के हर घरों में बन रहा है तो शॉप में तो होगा ही। सुना है कि ये जो मोदक है आप दूसरों को भी आप बेचते भी हो, आप डोर टू डोर आप सप्लाई, क्या कहेंगे?
1: हाँ, मतलब मैं अभी मेरा होम टू होम बिजनेस है, मतलब मैं घर से ही लोगों को कुछ ऑर्डर रहेगा तो ऐसे ही देती हूँ।
0: कितने ऑर्डर आ गए? ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं?
1: हाँ, अभी तो फिलहाल 2-4 ये है इंक्वायरीज।
0: मतलब पूरा ये जो गणेश उत्सव है इसमें आप पूरे परिवार के साथ घुल जाएंगे, राइट?
1: यस।
0: कुछ कहना चाहेंगी? तमाम लोग आपको देख रहे हैं एक मराठी मानुस की तरफ से।
1: मतलब अभी गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो अभी बापा का मतलब पागल जैसे लोग रहते हैं बापा के लिए, दीवानी की पूरी। और हमारे ये लालबाग परेल एरिया में तो पूछो ही मत, बहुत सारे हम गणेश गली है, चिंतामणि है सामने, हमारे सामने और हमारा रंगारी बदक चालक गणपति वो तो अभी मतलब बहुत ही अच्छा देखा गया, मतलब रंगारी बदक चाल ने तो लोगों को आइए, अच्छे से आइए, मतलब शांति से लाइन से जाइए और मतलब कुछ ये मत करिए, मतलब ज़्यादा शोर शराबा ये विदाउट करके अच्छे से शांति से, हाँ, सुरक्षा से
0: परिवार
1: परेशान मत कीजिए।
0: कितना बढ़िया आपने बोल दिया। तो ये देखिए इस तरह से गणेश उत्सव इस समय हर जगह मनाया जा रहा है और स्पेशली उकड़ी का जो ये मोदक है इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मुझे तो लगता है कि जैसा कि वैनी ने बताया कि यहाँ पर आइए, बड़े प्यार से दर्शन करिए अपने परिवार के साथ सुरक्षा के साथ, तो यहाँ पर आकर के उकड़ी का मोदक खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वाकई में इसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।
2: गणेशोत्सव नजदीक आया तो बाजार सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाओं से सज गए। अलग अलग आकार और डिजाइन की गणेश प्रतिमाएं इन दिनों बाजार में बिक रही हैं और कारीगर भी ऑर्डर के हिसाब से प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। ज्यादातर लोग इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में बाजार में मिलने वाली मूर्ति क्या वाकई में पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, ये संदेह मन में रहता है। ऐसे में आप कैसे घर बैठे मिट्टी से गणेश प्रतिमा बना सकते हैं, इसी पर हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की ये रिपोर्ट देखिए।

0: सबसे पहले हम एक बेस बनाएंगे. बेस होता है जिसपे हम उसको बिठाएंगे पूरी मूर्ति को. तो आप अप्रोक्सीमेटली एक बड़ा साइज का गणेश मिट्टी लीजिए और उसको एक लड्डू की फॉर्म में शेप करिए. कोशिश करिए नीचे कोई कपड़ा या न्यूज़पेपर बिछाओ, क्योंकि अगर हम टेबल पे डायरेक्टली उसको बनाएंगे तो वो चिपक जाएगा. फिर आपको अपनी हथेली की मदद से उसको फ्लैट करना है, एक रोटी की तरह पलट पलट के इसको हम अच्छे से फ्लैट करेंगे. साथ में आप एक पानी ले लीजिए और उसमें एक स्पॉन्ज ले लीजिए. पानी अच्छे से उसमें से स्क्वीज होना चाहिए और उसको आप पूरा स्मूथ कर सकते हैं स्पॉन्ज की मदद से. अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो आप फिंगर्स की मदद से भी उसको स्मूथ कर सकते हैं. इस लड्डू को हम एक मोदक की शेप में कोशिश करेंगे कि दे सकें. ये देखिए, ये इनका एब्डोमेन होगा, उनका पेट होगा. अगर आप ज़्यादा मोटा लेंगे तो ज़्यादा बड़ा बनेगा. तो जितनी क्ले है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं. इसको आप पानी की मदद से थोड़ा स्मूथ करिए. थोड़ा थोड़ा क्ले को नीचे की तरफ खींचना है. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. इससे क्ले की मूर्ति के पार्ट जब अलग हो जाते हैं, वो इसलिए कि हम वो जुड़ते ठीक से नहीं है. ये जोड़ने का बेहतर तरीका है. लड्डू को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे और एक कैरेट शेप देंगे, गाजर की शेप देंगे, जिसमें हम आगे से वो पतला होगा, पीछे से थोड़ा मोटा होगा. इसको भी हम पानी से थोड़ा सा स्मूथ करेंगे. इसको हम आगे की तरफ से जोड़ के देखिए ध्यान से, क्योंकि हम ये बैठे हुए मूर्ति बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाएंगे और इसको भी हम थोड़ा पीछे की तरफ घुमाएंगे. ऐसा लगेगा जैसे वो चौकड़ी मार के बैठे हैं. हम जो सिर है वो थोड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि पूजा के अनुसार गणपति जी थे वो एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर एलिफेंट का हेड लगा, तो एलिफेंट हेड प्रोपोर्शनेटली थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा हेड थोड़ा क्यूट भी लगता है और पूजा के टाइम पे दिखता भी है. तो हम पहले देखेंगे हल्का सा क्ले लगा के कि कैसा लग रहा है. अगर हमें ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, थोड़ा छोटा करना है छोटा करिए. अच्छा लगने के बाद हम इसको प्रॉपर बॉल की शेप देंगे एक. ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको जोड़ना, अच्छे से जोड़ना ज़रूरी है. ये देखिए, क्ले को खींचते हुए नीचे लेके जाएंगे. अब हाथ बना रहे हैं. हाथ के लिए भी हमने क्ले का बॉल लिया और उसको थोड़ा सा लंबा करके एक हाथ से आशीर्वाद देंगे और एक हाथ पे लड्डू रखेंगे. ये देखिए, ये लड्डू बनाया, एक तरफ से पतला करके गाजर जैसा बनाया, थोड़ा सा पानी से उसको स्मूथ किया और ये देखिए हल्के हाथ से इसको जब मोड़ेंगे या लगता है कि क्रैक आ रहा है तो वो क्रैक को आप स्मूथ कर दीजिए. आप देखिए आपको कहाँ लगाना है, आपको लंबी लगानी है छोटी. मुझे थोड़ी छोटी चाहिए तो मैं ऊपर से तोड़ लूँगी. जहाँ पे भी लगाना है हम थोड़ा सा ये स्लिप लगाएंगे, स्क्रैच करेंगे, इस पर भी लगाएंगे. और ये देखिए हल्का 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हल्के हाथ से इसको हम ब्लेंड करेंगे. कानों को आप ऐसे पकड़िए, बराबर तरीके से रखिए और थोड़ा दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हल्का सा दबा के आपको पहले ब्लेंड करना है. ब्लेंड करने से क्या होगा कि इनके जुड़ जाएंगे अच्छे से, उसके बाद गिरेंगे नहीं. ये देखिए दोनों तरफ से ब्लेंड करेंगे. टिप शेयर कर रही हूँ, कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट पंखे में या धूप में बैठ के ना बनाएं, क्योंकि बहुत जल्दी क्ले सूखती है. ठंडी जगह पे बनाइए, अगर एसी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर पंखा है तो थोड़ा पंखे से दूर करके बनाइए, क्ले बहुत जल्दी सूखती है. वाटर कलर्स थोड़े से डल होते हैं, एक्रिलिक और पोस्टर कलर्स थोड़े से शाइनिंग होते हैं, वो आप कर सकते हैं. और थोड़े थोड़े मार्केट में बीड्स आती हैं, गोटा आता है, वो लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए. तो ये सब वाटर सोल्यूबल कलर्स हैं, आराम से पानी में घुल जाते हैं, बट एक हफ्ते बाद. लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने दो दिन पहले ही बनाया गणेश और गीला है, तो भी आप मेटालिक कोई गोल्डन कलर आता है वो भी आप यहाँ कर सकते हैं. या आप कोई कलर नहीं करना चाहते तो आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं सिर्फ, तो वो भी बहुत सुंदर आता है. अल्फा बप्पा है, आप ध्यान से देखिए, हमने इनके फेस पे कलर नहीं किया है. फेस हमारा बिल्कुल मिट्टी का ही बना हुआ है. हमने उनके बालों पे रंग किया है, उनकी धोती पे और बेस पे. तो ये पोस्टर कलर्स हैं, ये फटाफट से पानी में घुल जाते हैं.
1: इस तरह से तैयार किए गए इको फ्रेंडली गणेशा को आप आसानी से विसर्जन के दिन अपने घर की किसी बाल्टी या टब में विसर्जित कर सकते हैं और फिर उस पानी को आप अपने घर के गमले या किसी पेड़ पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि आपके बप्पा आपके घर से विदा तो ज़रूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आसपास ही हमेशा मौजूद रहेंगे. कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा.

0: और अब बात ब्रिक्स सम्मेलन की कर लेते हैं, जिसका आज से आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में होना है। 11 देशों की सदस्यता वाले इस समूह पर पूरी दुनिया की नजर है। इस समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली को सजाने संवारने का काम चल रहा है। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। भव्य रोशनी और सजावट की वजह से चमक दमक रही है दिल्ली, और दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम जनता, यात्री, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने 22 सड़कों पर डायवर्जन करने के साथ ही वैकल्पिक रास्तों का रूट प्लान भी तैयार किया है। और चलिए इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों के इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए जिया माने की फनी इंस्टा स्टोरी।
1: तुझे लगता नहीं आजकल तेरी जुबान ज्यादा चलने लग गई?
2: हाँ तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने?
1: नहीं।
2: तो फिर जो आता है वही चलाऊंगी ना।
1: लोग अब लड़ते नहीं, बस फोटो लाइक करना बंद कर देते हैं। आजकल लड़ाई भी डिजिटल हो गई।
0: और इन्हीं तमाम खबरों के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देशों दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं विदेशी मेहमान। भारत मंडप में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक।

महाराष्ट्र में अकोला के मूर्तिकार शरद कोकाटे ने दिखाई अनोखी प्रतिभा। आंखों पर पट्टी बांधकर महज 6 मिनट में बनाई निर्विकार बप्पा की मूर्ति। इको फ्रेंडली गणेशोत्सव का संदेश दिया। मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेशोत्सव की भव्य तैयारी। बप्पा को भोग लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं खास तरह के मोदक। बाजार में लोगों की पसंद बने उगदीचे और लोटस बिस्कॉफ मोदक। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट। मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट। 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम देखने को मिली। पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस। करोदा गांव के मेले में पूरी से खरीददारी परंपरा। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज। महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश को 40 रन से हराकर लगातार 10वीं बार फाइनल में पहुंचा भारत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पेट की समस्याओं के बारे में, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में और ज्योतिष के अनुसार उनका क्या समाधान किया जाए, इस विषय में बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः 8:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 1:16 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:08 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति देव संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की यानी पेट की समस्याओं के बारे में। पेट की समस्याओं के पीछे मुख्य रूप से कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, पाचन तंत्र के पीछे, डाइजेशन के पीछे बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है। कुंडली का पंचम, सप्तम और नवम, ये तीन भाव आपके डाइजेशन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, खास तौर से पंचम भाव। बृहस्पति आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा भी आपके पाचन तंत्र पर, आपके डाइजेशन पर असर डालते हैं। राहु आंतों का स्वामी है, इंटेस्टाइन पर असर डालता है, इसीलिए पाचन तंत्र के मामले में राहु की भूमिका भी हो जाती है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति और व्यक्ति की संगति का भी
पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, यानी आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मेंटल कंडीशन आपके डाइजेशन पर गहराई से असर डालती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, अभी काम में जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। पेट की पहली समस्या है कि लगातार आपका पेट झड़ता रहता हो, लगातार आपका पेट गड़बड़ रहता हो, लूज मोशन जैसी संभावनाएं बनी रहती हों, क्या उपाय करेंगे? पहली बात, भोजन निश्चित समय पर करें, कभी जल्दी खा लिया, कभी देर में खा रहे हैं, ऐसा ना करें। तामसिक प्रकृति के मांस मदिरा जैसा आहार बंद कर दें। भोजन के पहले भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान शिव को याद करें, तब भोजन करना आरंभ करें। अगर लूज मोशन की शिकायत ज्यादा है तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिएगा और कमर में एक सफेद धागा या चांदी अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों को लूज मोशन होता है, पेट झड़ता रहता है, और कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन के, कब्ज के शिकार हो जाते हैं। अगर कब्ज की शिकायत हो तो क्या करेंगे? रात को सोने के पहले इसबगोल की भूसी का सेवन करना फायदेमंद होगा। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ आपको रखना चाहिए। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइएगा और अपनी कमर में एक लाल धागा
बांध लीजिएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता हो, अगर कब्ज की शिकायत ज्यादा रहती हो, तो एक ओपल या एक मोती अगर आप सलाह लेकर के धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेट की समस्याओं पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान दें, चोट चपेट से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गले में, छाती में, पेट में जलन होती है, अक्सर एसिडिटी की समस्या उनको परेशान करती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर एसिडिटी की समस्या है? तनाव कम से कम पालिए। जो लोग ज्यादा तनाव पालते हैं उनको एसिडिटी ज्यादा होती है। भोजन करने के बीच में जल ग्रहण मत करिए। और अगर एसिडिटी की समस्या है तो फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। एक मोती सलाह लेकर के धारण करिए, इससे एसिडिटी की स्थिति में सुधार होगा। और रात को भोजन करने के बाद 5-10 मिनट जरूर टहलिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो एसिडिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। अब जानते हैं आपके पाचन तंत्र के बारे में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र को, डाइजेशन को ठीक रखने के उपाय क्या हैं? सप्ताह में एक दिन व्रत जरूर रखिए। उस दिन अनाज का सेवन मत करिए। इस व्रत में जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करिए। अगर पेट की दिक्कतें ज्यादा रहती हैं
तो पीला पुखराज बिल्कुल धारण मत करिए, सलाह लेकर पेट की दिक्कत होने पर एक मोती या एक ओपल धारण करिएगा और रोज सुबह कुछ समय उगते हुए सूर्य की रोशनी में रहिएगा। अगर ये उपाय आप निरंतर करते जाएं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र बेहतर बना रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, किसी परिजन की चिंता हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, दौड़ भाग बढ़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, यात्रा की स्थिति आपके लिए बन रही है, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं, दूषित विचारों से बचना चाहते हैं, तो गले में एक तुलसी की माला धारण करिए और नियमित रूप से चंदन का तिलक अपने माथे या अपने कंठ पर लगाइए, आपको लाभ होगा, मन की अपवित्रता दूर होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: हे स्वामी जी, हस्बैंड बेबू बताओ बेलन कहां है? तो तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? सिर पे छोरा है, नगर में खोज रहे हो, अब तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर है और तुम बाहर खोज रहे हो, तुम्हें उल्लू ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? तुम मेरे पागलो, परमात्मा खोजने से प्राप्त नहीं होता है, परमात्मा तो खो जाने से प्राप्त होता है। जो उसमें खो जाता वो पा जाता, तो जिन खोजा तिन पाइया। खो जाने का मतलब उसमें डूब जाओ, अंधर में डूब जाओ, घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। बादल हटते ही सूर्य दिखाई देने लगता है, सूरज की रोशनी नीचे आ जाती है। सूर्य की रोशनी तो हमेशा रहती है, अभी थोड़ा बादल है, ढका हुआ है, बादल हटने दो, सूर्य अपने आप दिखाई पड़ेगा। वैसे ही अंदर परमात्मा है, वो ढका हुआ है माया में, थोड़ा माया को हटने दो, परमात्मा तुम्हें दिखाई पड़ेगा। और तुम खोजते मंदिरों में, तुम खोजते तीर्थों में हो, तुम खोजते यहां वहां हो, खोजो यहां, देखना भैया कोई जगत जननी चिल्ला रही, उनकी सुनो कोई, बाकी प्रवचन बाद में, पहले जगत जननी की सुनो, नहीं तो वो पृथ्वी तोड़ देगी, लगता है उन्होंने चैन या हार खो दिया है। वो खोजने आई थी भगवान को, लगता है उनका चैन चली गई है या हार चला गया है, और पकड़ भी लिया है हमें लगता है। ठीक है, बैठो जगत जननी, आते हैं रक्षक। हाँ सुनो, तो परमात्मा को पाने का सर्वोत्तम मार्ग है खो जाना। मेरे पागलों, अंत में हमें एक ही बात कहेंगे, तुम सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ, तुम भगवान के हो जाओगे तो भगवान भी तुम्हारे हो जाएंगे। तुम्हारी मुसीबतें कम होनी नहीं है, आदमी की मुसीबतें कहां कम होती हैं, आदमी चाहे कम हो जाता है, मुसीबतें कम नहीं होती। सिर का दर्द ठीक हो तो पेट दर्द करता, पेट का दर्द ठीक हो तो पड़ोसी दर्द करता है, पड़ोसी का दर्द ठीक हो तो पड़ोसन दर्द करती, वो ठीक हो तो घरवाली प्राण नहीं छोड़ती, फिर बच्चे, फिर झंझट लगे ही रहते हैं। हम चाहते हैं तुम्हारा एक ऐसा पर्चा बन जाए कि समस्याएं जितनी आती जाएं सो आती जाएं, समाधान सबका होता जाए। क्या तुम भी ऐसा चाहते? आप एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? हैं?
2: जोर से बोलो जी।
1: प्रत्येक का कौन कौन चाहता? वाह, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी तीन बातें मानना। पहली, आज से लहसुन प्याज बंद कर देना। दूसरी, पेशी शुरू कर देना।
2: और तीसरी,
1: जब भी उनके चरणों में जाना कह देना तुम हमारी और हम तुम्हारे। तुम हमारे और हम तुम्हारे। एक बात और, प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। न जिंदगी के न जीवन के, न शंका के न समस्या के। मानो कि हम बता दें कि चलो तुम्हारी शादी 2027 में हो जाए, तो अगला प्रश्न तुरंत उठेगा किससे होगी भाई? लड़की से होगी? क्या नाम होगा? मुन्नी भाई। कैसी दिखती होगी गुरुजी? गोरी। कहां की? दिल्ली की। दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में कहां? लाजपत नगर, वो भी बहुत बड़ा है। बाप का नाम फोकन लाल। फिर भी प्रश्न खत्म होंगे कि नहीं? जीवन में प्रश्न आते ही रहना है और आते रहेंगे, और तुम उत्तर पाने कभी हमारे पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी यूट्यूब पर, कभी गूगल बाबा पर, कभी फेसबुक पर, उत्तर खोजते ही रहते। हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान मिले, हर प्रश्न का उत्तर मिले, और एक दिन ऐसा आए कि तुम उत्तर बन जाओ, प्रश्न खत्म हो जाएं। और ऐसा हो सकता है कि तुम अपने आप में उत्तर बन सकते हो, प्रश्न खत्म हो जाए, और उसका उपाय और उपादान इतना ही है कि या तो भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो, या तो भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो। अब भगवान पे छोड़ दिया, जो जलते हैं उन्हें जलाओ। तुम हमारे पास आए हो, कुछ लोग विरोध करेंगे और करना भी चाहिए, जो अपना सामना नहीं कर सकते वो विरोध करेंगे। अपन आदमी ही ऐसे हैं कि या तो कोई हमारी तारीफ करेगा या गाली बकेगा, छोड़ तो सकता नहीं है अपन को, दो में से कुछ एक करेगा। और जिसने हमें जाना नहीं वो विरोध करेगा, जो जान लेगा वो विरोध थोड़ी करेगा, यहीं का होकर के रह जाएगा। इसलिए मेरे पागलो, हम तुमसे भी कहेंगे कि जीना सीखना है तो आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ पल तुम मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं, क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से हूं लड़ा, हर पल मुसीबत में रहा हूं खड़ा। मेरे पीछे जिसका हाथ है वो बजरंग मली मेरे साथ है, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी मुड़ा नहीं, मैं कभी रुका नहीं। इसलिए आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता हूं। हमने इतनी मुसीबतें झेल ली कि अब मुसीबत आती है तो लगता है खुजली हो रही, और तुम्हें मुसीबत आती है तो हाय दैया, छाती फट गई, हाय दैया, मरे राम, हाय दैया, अरे बाप रे मर गए। तुम छाती पीटने लगते हो, बस हम में और तुम में इतना ही अंतर है, तुम पर विपत्ति आती है तो तुम हाय दैया करके छाती पीटते हो, हम पे विपत्ति आते तो हम भीतर कहते चाय बनाओ रे। देखा जाएगा, और कर भी क्या सकते भैया, अब आ गई मुसीबत तो आ गई, बुलाने थोड़ी गए थे हम मुसीबत को, आ गई है तो देखा जाएगा, और अपन को ही तो झेलना है। तुम चाहे रो चाहे गाओ, मुसीबत तो रहनी है। अब मान लो तुम्हें फोड़ा हो गया, अब क्या करोगे, चाहे रो चाहे गाओ, हमें जुखाम हो गया, अब चाहे हम जो करें, अब हो गया सो हो गया, बाहर में गया, जुखाम के भी मजे ले रहे, हम बीच बीच में नाक बंद कर लेते हैं तो शरीर ही फड़फड़ाता, तो भीतर से आवाज आती है तो सांस तो छोड़ो, हम कहते तुम पहले जुखाम छोड़ो। लो चल रही लड़ाई, अब जुखाम खुद कंफ्यूज है कि इसके शरीर में रहे कि छोड़े, इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। खैर घर पे तुम ट्राई मत करना हमारी आदतें, वरना सांस ना छोड़ी तो तुम्हें ही छूट गए। राम नाम सत्य है, न जुखाम रहेगा न जुखाम वाला। हम बता रहे हैं अपने अपने तरीके हैं जीने के मुसीबतों से, हम पे भी मुसीबत आती है, हम पे भी झंझट आते हैं, कुछ लोग हमारे लिए भी लगे रहते हैं, विपत्तियां आती हैं, क्या नहीं, आज दरबार वहां मैदान में लगाना था, यहां वहां बारिश हो गई, साउंड वहां गया नहीं, तो हमने हाय दैया थोड़ी किया, छाती थोड़ी पीटी, ना ना ना, दो घंटा लेट से ही यहाँ टीन सेट में लगा लेंगे, लो बढ़िया, पानी भी कल बरसता रहे नो प्रॉब्लम, आज बरसता रहे नो प्रॉब्लम, यहाँ दरबार लग रहा है आनंद है। अब मान लो वहाँ दरबार ना लगता, फिर छाती पीटते, लो हद हो गई, हमारे चेले सुनते नहीं, ये नहीं करते, अब भार में गया, कौन किसकी सुनता, और चेले कहाँ हमारी सुनेंगे, ये अपने बाप की नहीं सुनते थे, आओ हमारी कहाँ सुनेंगे, हलवा में सुनेंगे, और जो अपने बाप की सुनते होते तो यहाँ होते ही, जब इनने अपने बाप की नहीं मानी हमारी क्या मानेंगे, खाक, जब हमारी नहीं माननी है तो हम पहले ही माइंड सेट में बाहर में जाओ, तुम अपनी ठठरी बढ़ाओ, जब तुम्हें मानना हो सो मानना, हम ना तुम्हें कहेंगे। एक आदमी हमसे बोला, बोला कि यदि आप ऐसा करोगे हम अनशन पे बैठ जाएंगे, उनका तुम्हें बाप की कसम है अनशन पे बैठ जाना, हम कोई गुरुजी होंगे तुम्हें अनशन से उठने नहीं देंगे, तुम उठोगे भी तब भी हम कहेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं उठना चाहिए इस आदमी को अनशन से। बोला हम भोजन छोड़ देंगे, हमका तुम भोजन की बात करते, हम तुमसे पानी छोड़वाएंगे, जल्दी निपटो। और आदमी होंगे कोई जो डर जाए तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी भपकियों से कि हम तुम्हारा, एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले धमकी दे रहा था कि बाबा बागेश्वर का हम घेराव करेंगे, हमका चेले वैसे ही घेरे रहते हैं, तुम और आ जाओ, हम सेल्फी तुम्हें भी देंगे बेटा, भभूति देंगे, हमारा तुम घेराव करने आओ, तुम्हें ये भरोसा हो कि हम डर जाए तो तुम ऐसे गुरु ना समझना कोई, हम तो थोड़ा उल्टे ही गुरु है, तो हमारे पास आओगे घेराव करने, हम तुम्हें भभूति बांट देंगे और दो चार को भूत और खिलवा देंगे, लो करो घेराव। तो तुम्हें लग रहा होगा कि कोई और गुरु है तो डर जाएंगे, अपन तो बहुत उल्टे आदमी है, हम हर चीज उल्टी ही सोचते हैं उल्टी ही चलते, पर तुमसे हम यही कहेंगे मेरे पागलो हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, हर बात पर मुस्कुराओ, बालाजी के चरण शरण को पकड़ लो, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कितनी भी जिंदगी में मुसीबत संकट तो आएंगे, पर संकट मोचन यदि जीवन में रहेंगे तो तुम घबरा ना पाओगे, और हम तुम्हें संकट मोचन देना चाहते हैं, हम तुम्हारी बाएं को बालाजी के चरणों में पकड़ना चाहते, और सुनो एक दिन के लिए नहीं सदा सदा के लिए, क्योंकि तुम पे मुसीबतें तो आनी ही आनी है भैया, हमसे दोस्ती कर लो, काम आएंगे हम, बड़े काम आएंगे, ऐसा आदमी तुम्हें मिलेगा भी नहीं, कर लो दोस्ती बड़े काम आएंगे, सब लुट जाएगा तब भी तुम हमारी तरह मुस्कुराओगे, भाड़ में गया लुट गया कौन सा, अपने बाप का गया, यहीं से मिला था यहीं लुट गया, जय बजरंग बली की, चलो भैया भंडारा खाएंगे अपन, आओ। हाँ कुछ साल पहले हमको एक अधिकारी ने धमकी दी कि बाबा तुम बहुत बोलते हो, एक आध दिन जेसीबी चलवा दी जाए, हमका कल चलाते हो आज चला दो, बड़ा चौंक गया अधिकारी, सामने ही बैठा था चौंक गया, बोले कैसी बातें करते हो, बहकी बहकी, हमका ये तुम भपकियां किसी और को देना, हम तो डरने वाले नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये आश्रम हमने नहीं बनाया, जनता के पैसे से बना, जनता के लिए बना। हमारे बाप पे तो मकान भी नहीं था, जनता ने चंदा दिया, दान दिया, हमने जनता के लिए बनवा दिया। और गिरेगा भी तो जनता का गिरेगा, अपने बाप का हलवा गिरेगा। वो भी चौंक गया, बोले बहुत खतरनाक आदमी हो तुम। उनका तुम फंसे नहीं हो अभी हम, और तुम कभी हवेली पे आ मत जाना, वरना इतना छीलेंगे हम तुम्हें, इतना छीलेंगे कि तुम हमारा मकान गिराओगे बेटा, हमारा आश्रम गिराओगे, हम तुम्हारा घर ऐसा गिरवाएंगे, तुम्हारे घरवाली के बारे में बताएंगे, घरवाली के साथ ना बैठ पाओगे तुम। हाँ, इतनी टेंशन भर देंगे तुम्हारे दिमाग में। फिर चुप हो गया। उस दिन के बाद आज भी हमारी दीक्षा लिए है, चेला बन गया है आजकल हमारा, बना एक साल बाद, पर अपन लोगों ने दीक्षा दे रखी है, रोज ओम बागेश्वराय नमः जप रहा है। हम का बने रहो चेला, खुश रहो। अब वो जब भी हमारे पास आता है हम पूछ लेते, कहो जेसीबी आएगी क्या, तो तुरंत दूर से ही हाथ जोड़ता कि कृपा करो, बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई बातें करो गुरु जी, अब छोड़ दो, तब अनजाने में हम बोल गए, अब थोड़ी बोलेंगे। कोई बात नहीं, खुश बने रहो, यही हम तुमको सिखाना चाहते। हम तो सिर्फ गुरु हैं, जीना सिखा सकते तुम्हें, आओ तुम्हें पागल बनाए। और पागल बनने का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल होने का मतलब तुम आज से घर जाना और ऐसी हरकतें करना हंस के कि घर वाले भी टेंशन में हो जाएं कि कहां से आए। हाँ, अब वो पड़ोसी तो टेंशन में हो ही जाए जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहा था, वो पूछे जरा इसका पता करो कौन से दरबार में जा रहा है, तब बता देना। लगा के आग सोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। बागेश्वर धाम की, बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हें काटनी है, हमारी हम काट रहे हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
12: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से

0: आदमी भी नहीं कर सकता, आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अर्पित किया 14 लाख स्वर्ण मुकुट रुपए का और मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को भेंट किया 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र में अकोला के मूर्तिकार शरद कोकाटे ने दिखाई अनोखी प्रतिभा, आंखों पर पट्टी बांधकर महज 6 मिनट में बनाई निर्विकार बाप्पा की मूर्ति, इको फ्रेंडली गणेशोत्सव का दिया संदेश। मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, बाप्पा को भोग लगाने के लिए बनाए जा रहे खास तरह के मोदक, बाजार में लोगों की पसंद बने उगडीचे और लोटस बिस्कॉफ मोदक। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम, पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस, करोदा गांव के मेले में पूरी से खरीदारी परंपरा। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे विदेश मेहमान, भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम, आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 40 रन से हराकर लगातार 10वीं बार फाइनल में पहुंचा भारत।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों में रंगा पूरा देश, पंडालों में दिया जा रहा है अंतिम स्वरूप, तैयार की जा रही है बप्पा की विशाल और प्रतिमाएं। कर्नाटक के बेलगामी में चरम पर भव्य गणेशोत्सव की तैयारियां, ढोल नगाड़ों के बीच अपने अपने पंडालों में भेजी जा रही है गणपति की विशाल प्रतिमाएं। अलग अलग आकारों और स्वरूपों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़े भक्त सड़कों में, गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष, भक्तों में उत्साह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तैयार की जा रही है गणपति की कई तरह की प्रतिमाएं, जोरों पर मूर्तियों में रंग भरने और सजाने का काम। वाराणसी में भी बप्पा की मूर्तियों का निर्माण कार्य जोरों पर जारी, घर से लेकर पंडालों के लिए बनाई जा रही है प्रतिमाएं। महाराष्ट्र के अकोला में अनोखे गणपति, पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे का अद्भुत हुनर, आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई प्रतिमा। बिना देखे बनाए मिट्टी के बप्पा, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश, 20 साल से पर्यावरण की मुहिम, इको फ्रेंडली गणपति का संदेश। बाजार की प्रतिमा से बचने की अपील, बप्पा आए प्रकृति भी मुस्कुराए, पर्यावरण पूरक गणपति का दे रहे हैं संदेश। बप्पा की मिट्टी की प्रतिमा अपनाने की अपील, जल संरक्षण पर भी जोर, गणपति विसर्जन से जल स्रोत बचाने की पहल। घर पर ही बप्पा के विसर्जन की अपील, प्रकृति बचाने का अनोखा तरीका, गणेशोत्सव पर आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण। जयपुर में गणेशोत्सव से पहले बप्पा के भोग का नया ट्विस्ट, 11 तरह के मोदक, 14 वैरायटी के लड्डू तैयार, मोदक में आया लोटस बिस्कॉफ का स्वाद। पारंपरिक मिठाई को मिला मॉडर्न टच, न्यूटेला व्हाइट चॉकलेट मोदक बना आकर्षण, जेंजी के लिए खास फ्लेवर तैयार, मैंगो सिगार से बदला मोदक का स्वाद। इस बार मिठाई में दिखा नया एक्सपेरिमेंट, मोदक में देसी स्वाद भी बरकरार, मथुरा पेड़ा मावा और मोतीचूर मोदक शामिल। रोज गुलकंद और ठंडाई केसर मोदक का जलवा, किवी आलमंड और बटरस्कॉच मोदक बने खास, किवी आलमंड डिलाइट मोदक ने भी खींचा ध्यान। एक बॉक्स में कई स्वाद का सरप्राइज, लोगों को लुभा रहा काजू कतली मोदक का स्वाद, मोतीचूर से बना बप्पा का खास केक, लड्डू केक को बादाम पिस्ता से सजाया। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, मोदक की लगातार बढ़ी है डिमांड, तरह तरह के मोदक से सजे बाजार। बप्पा के भोग की खास तैयारी, लाडू सम्राट बना खास आकर्षण, 1967 से स्वाद की पहचान बरकरार। लाडू सम्राट के मोदक मशहूर हैं, प्रसाद बनकर घर घर तक पहुंचते हैं, मोदक की कई खास वैरायटी तैयार। गणेश उत्सव से पहले मिठाई बाजार गुलजार, उगडीजे मोदक की सबसे ज्यादा डिमांड, मोदक की बिक्री में बड़ा उछाल। मोदक खरीदने उमड़ रही है लोगों की भीड़, बापा के पसंदीदा भोग पर नजर, परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम। मुंबई में मोदक की मिठास, घर घर बन रहे उकड़ी के मोदक, गणपति बप्पा का प्रिय भोग। उकड़ी का मोदक बना खास आकर्षण, मुंबई में घरों में उकड़ी के मोदक बनाए जाने की खास परंपरा। चावल के आटे से बनता है उकड़ी मोदक, चावल के आटे में मीठे के मिश्रण से बढ़ता है मोदक का स्वाद। उकड़ी का मोदक महाराष्ट्र की पहचान, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा, गणेश उत्सव में मोदक का प्रसाद रिश्तेदारों को भी बांटते हैं। सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम, मोदक बनाने का उत्साह बरकरार, लालबाग और काली चौकी में मोदक की रौनक। शिरडी के साईं दरबार में भक्त की अनोखी भेंट, छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। नौ तोले का सोने का मुकुट, 14 लाख रुपए अनुमानित कीमत, इस मुकुट पर की गई है शानदार कारीगरी। मनोकामना पूर्ण होने पर सपरिवार मंदिर समिति को भेंट किया गया है ये मुकुट। 55 वर्षों से लगातार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आता है ये परिवार। महाराष्ट्र के परभणी में दिखी बैल पोल उत्सव की रौनक, वहीं किसानों ने अपने बैलों का किया भव्य श्रृंगार, जताया आभार। पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस, रंग बिरंगे रंगों से सजाए बैलों के सिंह। बिहार के बोधगया में दिखा अध्यात्म का अनोखा नजारा, विदेशी श्रद्धालुओं ने 4000 दीपों से बनाकर धर्म चक्र की खास पूजा। पूर्वजों की शांति के लिए थाईलैंड ताइवान और जापान से आए विदेशी श्रद्धालुओं ने जलाए दीप, सुख समृद्धि की भी की कामना। विश्व शांति के लिए किए गए कई विशेष अनुष्ठान, शंकराचार्य मठ में आयोजित किया गया दीप उत्सव। विदेशी श्रद्धालुओं के साथ बौद्ध भिक्षुओं ने भी की पूजा अर्चना, सनातन मंत्रों का किया उच्चारण। बोधगया में 6 दिन तक होगी विशेष पूजा, 7वें दिन होगा हवन। अठारहवीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार, सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आना जारी। ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंचे पुतिन, एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया स्वागत, 4 लेयर के सुरक्षा घेरे में रहेंगे रूसी राष्ट्रपति। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, दिल्ली की 35 से ज्यादा सड़कों पर असर, वीवीआईपी मूवमेंट के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन। ब्रिक्स समिट के लिए सजाई गई है राजधानी दिल्ली, रंग बिरंगे फूल और पोस्टर से सजावट, साफ सफाई का विशेष ध्यान। ब्रिक्स समिट से पहले राजधानी दिल्ली रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है, भारत मंडपम, 3 मूर्ति सर्कल और कौटिल्य मार्ग सर्कल हुआ रोशन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट। मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र में अकोला के मूर्तिकार शरद कोकाटे ने दिखाई अनोखी प्रतिभा। आंखों पर पट्टी बांधकर महज 6 मिनट में बनाई निर्विकार बप्पा की मूर्ति, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव का दिया संदेश। मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेश उत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा को भोग लगाने के लिए बनाए जा रहे खास तरह के मोदक, बाजार में लोगों की पसंद बने उकडीचे और लोटस बिस्कॉफ मोदक।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गणपति की। बस दो दिन बाकी हैं और इसके बाद 14 सितंबर से गणेश उत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। घर घर में विनायक विराजेंगे। मुंबई सहित महाराष्ट्र और देश के भी तमाम शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंडाल सज चुके हैं। आम लोग भी अपने घरों में गणपति को लाने के लिए, उनके स्वागत के लिए भरपूर उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखाई जा रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं हम कि 10 दिनों के उत्सव के दौरान गणपति को किस तरह से दिव्य भोग लगाने की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है, कितनी रौनक चारों ओर इस उत्सव के सिलसिले में देखने को मिल रही है। तो वहीं अपने स्पेशल शो में हम आपको विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, मंगल मूर्ति की महिमा भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो क्यों प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनकी पूजा क्यों की जाती है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादि काल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में है, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उससे अलौकिक मायने क्या है और क्या वो हमारे जीवन से किस प्रकार से गहरे जुड़े हुए हैं, देखिए।

0: सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिया जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया, लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम कृष्ण शिव शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं।
1: किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार कर्तव्य सरलता ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है, विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है। यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से।
0: सनातन संस्कृति में मंगल मूर्ति भगवान गणेश की अनंत महिमा आखिर क्यों है? इसलिए कि वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि और ज्ञान की प्रतिष्ठा हर युग में हर देश काल परिस्थिति में सम्यक रूप से बनी रहती है। गणेश जी ने अपने स्वयं के मन भावन स्वरूप से दुनिया को ये संदेश दिया है कि हमें अहंकार का ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान के अहंकार में नहीं रहना है। अहंकार का ज्ञान हो जाए तो कष्ट क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ज्ञान का अहंकार होगा तो हम माया मोह के जाल में फंस जाएंगे। लौकिक नजरिए से भी देखें तो अहंकार का वजन ही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। अहंकार के बोझ से मुक्त होने का संदेश अपने स्वरूप से गणपति बप्पा ने कैसे दिया है, इसे एक पौराणिक प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं जगत जननी माँ जानकी मन में गणेश जी का ध्यान कर उनसे अनुनय विनय करती हैं कि आप धनुष का भार कम कर दें। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयों के जरिए वो स्वामी तुलसीदास ने इसका अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। माँ जानकी गणेश जी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक, वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज मेरी बिनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूलकाय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे माँ जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती हैं? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। इसी तरह पप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: लौकिक स्वरूप में गणेश जी चार भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की तीन भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। हाथी मदमस्त मन का प्रतीक है, और मन पर नियंत्रण अगर इंसान ने खो दिया तो जीवन के सफर में आनंद से वंचित हो जाएगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण है। जो विषयों में आसक्त है वो बंधन में है, और जिन्होंने भोग विलास रूपी विषयों से सहज विराग पा लिया है वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं।
1: भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी हैं। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मन स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा हैं, अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है।
0: गणेश जी के दो विवाह को अगर हम सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो ये हमें भ्रम में डाल देंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया है। दरअसल रिद्धि और सिद्धि हमारे लौकिक जीवन का पारलौकिक सामंजस्य है। रिद्धि का सार है विवेक, संपदा और उत्थान, जबकि सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि और सिद्धि का पाणी ग्रहण कर गणेश जी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य रूपी रिद्धि है तो उसे संभालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करें, तभी आपके जीवन में उत्थान का स्थायित्व आएगा। पुराणों में गणेश जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम है शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है, अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन जीने की कला अनादिकाल से ही सिखा रहे हैं।
2: गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी का आह्वान किए बगैर सनातन का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि चाहे राम कृष्ण हो या जगत जननी माँ जगदम्बा, सबकी पूजा से पहले गणपति की पूजा का विधान क्यों है? गणपति बप्पा की पौराणिक कथाओं के माध्यम से आप ये बात शायद जानते भी हो, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसका बेहद ही गुढ़ और अलौकिक रहस्य। दरअसल गणपति के प्रथम पूज्य होने का हमारे शरीर के भीतर गुप्त रूप से मौजूद चक्रों का बहुत अद्भुत रिश्ता है। गणपति का स्थान हमारे मूलाधार चक्र में भी माना जाता है और मूलाधार को जागृत किए बगैर मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है।

0: मौजूदा युग में हम भगवान गणेश के लौकिक स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। अपने मौजूदा स्वरूप में गणपति बप्पा बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सुख समृद्धि प्रदायक हैं और शुभ और लाभ के अधिष्ठाता हैं। पर गणेश का पारलौकिक स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। शास्त्र कहते हैं कि गणपति की पूजा से हम ज्ञानवान होते हैं, लेकिन योग शास्त्र के मुताबिक गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे स्थूल शरीर में 7 चक्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, जिनका स्थान हमारी रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक माना गया है।
1: ये जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, ये ऊर्जा के केंद्र है। ये चक्र शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं, शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित रहता है, संतुलित व्यवहार करता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की संतुलन के लिए इन केंद्रों का, इन ऊर्जाओं का, इन चक्रों का सक्रिय होना बहुत आवश्यक होता है।
0: अगर किसी इंसान को अपने जन्म का मूल हेतु जानना है तो उसे बाह्य जगत से विमुख होकर अंतर की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जाना होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में 7 चक्र का स्थान कहाँ है और कौन उनके स्वामी हैं। इनमें से पहला है मूलाधार चक्र, जिसका स्थान है बॉटम स्पाइन यानी रीढ़ का निचला हिस्सा। गणपति इस चक्र के देवता माने जाते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका स्थान है जननांग के ठीक पीछे और नाभि के नीचे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इसके स्वामी माने जाते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान है नाभि के ठीक पीछे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र, जिसका स्थान हृदय के बीचों बीच है। भगवान राम, माता सीता और भक्त हनुमान इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। पांचवा है विशुद्धि चक्र, जिसका स्थान गले के बीचों बीच कंठ के पास है। माँ सरस्वती इस चक्र की स्वामिनी मानी जाती हैं। छठा है आज्ञा चक्र, जिसका स्थान दोनों भौहों के ठीक बीच में है। ये वही स्थान है जहाँ शिव का तीसरा नेत्र है, इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती को इस चक्र का स्वामी माना जाता है। सातवा और अंतिम है सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसका स्थान मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में माना गया है और साक्षात शिव इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी इंसान को मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो उसे सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ता है। चूंकि गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, इसलिए मूलाधार को जागृत करने के लिए गणपति के रूप स्वरूप का ध्यान और उनकी वंदना अनिवार्य मानी जाती है। यही वजह है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है।
1: भगवान गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। अगर किसी कारण से यह चक्र असंतुलित है तो भगवान गणेश का चिंतन करने से, भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणेश के मूल मंत्रों का जप करने से, भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती है तथा मूलाधार चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र संतुलित होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं, मूलाधार चक्र के जो देवता हैं, वो भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश पृथ्वी तत्व को निरूपित करते हैं और मूलाधार चक्र भी इस पृथ्वी तत्व को निरूपित करता है। इस कारण से जब भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो उसमें स्थिरता आती है, जागृति आती है और मूलाधार चक्र में संतुलन बना रहता है।
0: मूलाधार चक्र में ही हमारी कुंडलिनी गुप्त रूप में विद्यमान है। मूलाधार चक्र की साधना से हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत ऊर्जा का स्रोत से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होते ही इस संसार की निस्सारता और परम तत्व के महात्म का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। कुंडलिनी जागरण गणपति की कृपा के बिना संभव नहीं है।
1: मोक्ष का जो पहला द्वार है, मोक्ष का जो पहला द्वार बताया गया है, वह बताया गया है भगवान गणेश जी को। कारण क्या है कि जब तक भगवान गणेश जी की साधना पूर्ण नहीं होगी, भगवान गणेश जी का ध्यान पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम आगे के चक्रों में कुंडलिनी के अग्र भाग में नहीं पहुंच सकते, ऊपरी भाग में नहीं पहुंच सकते। चूंकि यह मूल है, प्रथम है, इसलिए इसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो सातों चक्रों में प्रथम सोपान जो है मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी हो गए गणेश जी, और गणेश जी की आराधना बिना जीवन में संतुलन नहीं आ सकता है। इसलिए मोक्ष के प्रथम द्वार के जो अधिष्ठाता है वो भगवान गणेश जी है। तो व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग जब प्रशस्त करना हो, उस मार्ग पर चलना है या जीवन चक्र के बंधन से मुक्त होना है, तो उसमें भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी आवश्यक हो जाती है। इसी कारण से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है।
0: यह अत्यंत गूढ़ विषय है। दरअसल इस सृष्टि के मूल में प्रणव तत्व है, जो ध्वनि ऊर्जा के रूप में ओमकार रूप में प्रकट होता है। शब्दाकार ओम का स्वरूप भगवान गणपति के स्वरूप से काफी मिलता है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम भी कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला हिस्सा भगवान गणपति का मस्तक माना जाता है, नीचे का भाग उदर यानी पेट माना जाता है। चंद्रबिंदु मोदक स्वरूप है और मात्रा ही सूंड है। यही वजह है कि गणेश जी को सृष्टि का अनादि देव माना गया है।
1: ओम शब्द का जो स्वरूप भी है वह भगवान गणेश के स्वरूप से मिलता जुलता है, और यह जो ओंकार है, ओम शब्द है, यह ब्रह्मांड का मूल ध्वनि मंत्र है। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश के बड़े पेट में इनकी आकृति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेशन है। इसी कारण से सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारा जो मूलाधार चक्र है वह एक्टिव हो, सक्रिय हो, जिससे कि हम कुंडलिनी जागरण करके अगले चक्र में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर लें। इस कारण से भगवान गणेश की ऊर्जा के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, विवेक के स्रोत हैं।
0: हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपनी गहन साधना और तपस्या के दौरान अनुभूति की कि ओम के जप से मूलाधार चक्र में हलचल शुरू हो जाती है। ओमकार के निरंतर जप से मूलाधार चक्र जागृत होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। इसे आप साधना का प्रथम सोपान मान सकते हैं, यानी मूलाधार चक्र के बिना ऊपर की यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हुए बिना आपका चिंतन शुद्ध या सात्विक नहीं हो सकता, वासना रहित नहीं हो सकता। इसका साफ मतलब है कि गणपति की कृपा के बिना द्विगुणात्मक संसार के सुख दुख, मान सम्मान, राग द्वेष, जन्म मृत्यु जैसे बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है।
1: ओम शब्द ब्रह्मांडी ऊर्जा का ध्वनि मंत्र है। इसको किसी भी मंत्र के आरंभ में लगाने से यह माना जाता है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम सहजता से एक मंत्र के सहारे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में भगवान गणेश के मंत्र के साथ यदि हम ओम शब्द का जप करते हैं या ओंकार का जप करते हैं या ब्रह्मांडी मंत्र का जप करते हैं, तो भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्रोत भगवान गणेश जी हैं, मूलाधार चक्र मूल चक्र के स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, और ब्रह्मांडी ऊर्जा के जो ध्वनि मंत्र है उसका जब जप करेंगे तो दोनों का संतुलन बन जाता है। ऐसे में भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
0: अंतर की यात्रा वाह्य जगत के आडंबरों से बिल्कुल अलग होती है। परम तत्व यानी ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। इस यात्रा का श्री गणेश गणेश जी की आराधना से ही होता है। मूलाधार से शुरू कर और बीच के पांचों चक्र को भेद कर जब हम सहस्रार चक्र यानी ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रह्म परमेश्वर यानी शिव तत्व का साक्षात्कार होता है और भगवान गणपति लौकिक जगत में शिव के पुत्र माने जाते हैं जो शिव की पावन गोद में विराजमान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पारमार्थिक मार्ग के पथिक की यात्रा की शुरुआत गणेश जी की साधना से होती है और जब ये परम लक्ष्य तक पहुंचता है तो वहां भी साध्य के रूप में गणपति ही विद्यमान रहते हैं।
1: इस प्रकार देखा जाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी चक्रों में भगवान गणेश की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ भी किया जाता है, गणेश जी की आराधना माता सरस्वती के साथ भी किया जाता है और गणेश जी की आराधना भगवान शिव के साथ परिवार के रूप में किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सभी चक्रों में कहीं ना कहीं भगवान गणेश का महत्व सबसे ज्यादा दिखता है।
0: गणपति को विघ्नहर्ता माना गया है, इसीलिए माना गया है क्योंकि एक बार मूलाधार चक्र की साधना संपन्न होते ही वे आगे की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो जाते हैं। अपने दिव्य प्रकाश से पारमार्थिक यात्रा की बाधाओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। मन में गणपति का ध्यान करने से मानसिक विकारों की दुर्धर्ष सत्ता तिरोहित होने लगती है और जब मन से विकार तिरोहित होने लगते हैं तो आनंद, उमंग और उत्साह का संचार होने लगता है। संसार के माया मोह में फंसा इंसान भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आनंद की ही तलाश कर रहा है लेकिन सत्पथ का ज्ञान उसे नहीं है। विघ्नहर्ता विनायक अपने ज्ञान प्रकाश से उसे सत्पथ का पता बता देते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट। मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट। 9 तोले के इस मुकुट पर की गई है शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र में अकोला के मूर्तिकार शरद कोकाटे ने दिखाई अनोखी प्रतिभा। आंखों पर पट्टी बांधकर महज 6 मिनट में बनाई निर्विकार बप्पा की मूर्ति। इको फ्रेंडली गणेशोत्सव का संदेश दिया। मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेशोत्सव की भव्य तैयारी। बप्पा को भोग लगाने के लिए बनाए जा रहे खास तरह के मोदक। बाजार में लोगों की पसंद बने उगदीचे और लोटस बिस्कॉफ मोदक। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम देखने को मिली। पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस। करोता गांव के मेले में पूरी से खरीदारी परंपरा। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे विदेशी मेहमान भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: प्लेट तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: शिरडी के साईं दरबार में भक्त की अनोखी भेंट। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। 14 लाख रुपए है 9 तोले के मुकुट की अनुमानित कीमत। कर्नाटक के बेलगावी में चरम पर भव्य गणेशोत्सव की तैयारियां। ढोल नगाड़ों के बीच में अपने अपने पंडालों में भेजी जा रही गणपति की विशाल प्रतिमाएं। वाराणसी में भी बप्पा की मूर्तियों का निर्माण कार्य जोरों पर है। घर से लेकर पंडालों के लिए बनाई जा रही तमाम तरह की प्रतिमाएं। जयपुर में गणेशोत्सव से पहले बप्पा के भोग का नया ट्विस्ट। 11 तरह के मोदक, 14 वैरायटी के लड्डू तैयार। मोदक में आया लोटस बिस्कॉफ का स्वाद। महाराष्ट्र के परभणी में दिखी बैल पोल उत्सव की रौनक। किसानों ने अपने बैलों का किया भव्य श्रृंगार। ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस।
4: लंदन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सम्मान। यूके पार्लियामेंट में मिला अवार्ड। एकनाथ शिंदे ने लंदन में अंबेडकर को नमन किया। कोलकाता में डार्ट्स का बड़ा आयोजन। पहला इंडियन इंटरनेशनल डार्ट्स ओपन 2026 शुरू हुआ। देश विदेश से पहुंचे खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जम्मू कश्मीर के रामबन में यूटी स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई। जम्मू कश्मीर के युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा आयोजन किया गया। कानपुर के शिक्षक उद्देश्य सचान की केबीसी में हुई एंट्री। गरीब बच्चों के लिए चला रहे हैं स्कूल। 400 बच्चों को मुफ्त शिक्षा। बच्चों को किताबें और ड्रेस भी मुफ्त दी गई। गुजरात के बंतारा में नांदनी वापस आएगी महादेवी उर्फ माधुरी हाथी। जल्द ही नांदनी मठ में होगा आगमन।
3: क्रिकेट के मैदान से आई है गुड न्यूज। महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की बेटियों ने किया कमाल, पाकिस्तान को 19-0 से दी करारी शिकस्त, सेमीफाइनल में बनाई है अपनी जगह। भारत अफगानिस्तान पहला T20 आए तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर को ही होगा, DDCA ने टलने की खबरों पर लगाया विराम। अफगानिस्तान T20 सीरीज और एशियन गेम्स से चोट के चलते हर्षित राणा बाहर हुए, यश ठाकुर को टीम इंडिया में मिली जगह। लीड्स में एसेक्स के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप मैच में कुलदीप यादव ने झटके 10 विकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार एक मैच में लिए हैं 10 विकेट। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान सिनेमाघरों में रिलीज, मलयालम ब्लॉकबस्टर ओपम का हिंदी रीमेक है प्रियदर्शन की ये फिल्म। अरशद वारसी की क्राइम ड्रामा फिल्म घमासान Z5 पर रिलीज हुई, कुख्यात डाकू सरदार महाराज और उसे पकड़ने के लिए तैनात STF अधिकारी आदित्य की कहानी है घमासान। Amazon Prime Video पर ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज द रेवोल्यूशनरीज रिलीज हुई, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है चार युवा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की मेगा फिल्म है फ्रेंचाइजी श्रीमद भागवतम भाग एक विष्णु रात का टीजर पोस्टर जारी हुआ, 2027 में रिलीज होगी आकाश सागर चोपड़ा और अमृत सागर चोपड़ा की यह फिल्म। परिणीति चोपड़ा की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज शक ट्रस्ट नो वन का ट्रेलर रिलीज हुआ, 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, रेंसिल डी सिल्वा के निर्देशन में बनी है ये सीरीज। नौ 11 आतंकी हमले की 25वें बरसे पर अनोखी श्रद्धांजलि, न्यूयॉर्क हार्बर में दिखा ट्विन टावर्स का अनोखा नजारा। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में नाजा का प्रीमियर, फिल्मकारों ने रेड कार्पेट पर कदम रखा, युवल इब्राहिम और रेचल जोर रेड कार्पेट पर साथ में नजर आए। चीन के थियानयू टेलीस्कोप ने खींची पहली तस्वीर, एक तस्वीर में दिखे 1 मिलियन से ज्यादा सितारे, नॉर्थ अमेरिका नेबुला भी कैमरा में कैप्चर। स्पेन की प्रतिष्ठित साइकिल रेस वेल्टा में स्टेफान कुंग की जीत हुई, 18वें चरण का टाइम ट्रायल जीता उन्होंने। ब्रिटेन के 4 साल के घोड़े ह्यूगो की लंबाई 6 फीट 6 इंच से ज्यादा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उसे दुनिया का सबसे लंबा जीवित घोड़ा माना है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
3: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली में विदेशी मेहमानों का पहुंचना जारी है, समिट को लेकर भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक होने वाली है। बात क्रिकेट के मैदान से आई हुई गुड न्यूज की कर लेते हैं, महिला एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है, एक तरफा मुकाबले में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर भारत लगातार 10वीं बार फाइनल में पहुंचा है। महाराष्ट्र में अकोला के मूर्तिकार शरद कोकाटे ने अपनी अनोखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, आंखों पर पट्टी बांधकर शरद ने महज 6 मिनट में निर्विकार बप्पा की मूर्ति बनाकर इको फ्रेंडली गणेश उत्सव का संदेश दिया। और छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट अर्पित किया है, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को ये भेंट सौंपी है, 9 तोले के मुकुट पर शानदार कारीगरी की गई है। मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा का भोग लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं खास तरह के मोदक, बाजार में लोगों की पसंद बने उगदीचे और लोटस विस्क ऑफ मोदक।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात इसमें करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जिसका आज से आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में होना है। यह चौथा ऐसा मौका है जब भारत इस मंच की मेजबानी कर रहा है। 11 देशों की सदस्यता वाले इस समूह पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल दिल्ली पहुंचेंगे। इन दोनों ही नेताओं की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें रहेंगी।
1: आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते से दिल्ली को सजाने और सवारने का काम जारी है। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भव्य रोशनी और सजावट की वजह से चमक धमक रही दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं। आपको बता दें, आम जनता, यात्रियों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने 22 सड़कों पर डायवर्जन करने के साथ ही वैकल्पिक रास्तों का रूट प्लान भी तैयार कर लिया है। ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ब्रिक्स का यह 18वां शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। वैसे ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स देशों का संगठन 2009 में बना था।
0: और देखिए, तब इसका नाम आपको बता दें ब्रिक था और ब्राजील, रूस, भारत, चीन इसके सदस्य हुआ करते थे। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया। भारत को मेजबानी का मौका 4 साल के बाद साल 2012 में मिला। तब नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 2016 में गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2021 में भारत को मेजबानी का एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन तब कोविड की वजह से भारत की अध्यक्षता में इस सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन हुआ। अब यह चौथी बार है जब भारत इस महामंच की मेजबानी कर रहा है।
1: तो देखिए, 18
2: दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स समिट के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीसी मौर्या होटल के पास में, जहां पर 4 लेयर की सुरक्षा प्रदान की गई है। आईटीसी मौर्या होटल में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ट्रैफिक को भी पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है। जगह जगह पर जो पुलिस के कर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हर 100 मीटर पर आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर नजर आएंगे। और ये आईटीसी मौर्या होटल है जहां पर आज सुबह तड़के 3 बजे के आसपास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे कि ब्रिक्स के मद्देनजर शेयर्ड स्ट्रेंथ 1 मैसेज के तहत यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये है आईटीसी मौर्या जिसकी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, एनएसजी के कमांडोज, इसी के साथ साथ अलग अलग एजेंसीज के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये सीधी तस्वीर आईटीसी होटल, आईटीसी मौर्या, जहां पर राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति वो रुके हुए हैं। और जहां पर वो रुके उसके बाहर की आपने तस्वीर देखिए, और उसके बाहर के इलाके में भी आप देखिए कितनी भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। चाहे वो आईटीसी मौर्य की बात हो, ताज पैलेस की बात हो, दोनों जगहों पर सुरक्षा के खासा इंतजाम कर लिए गए हैं। ये रास्ता है सरदार पटेल मार्ग का, जो धौलकुआ से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। और इसी जगह पर आईटीसी मौर्य होटल पर और ताज पैलेस होटल पर सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। आईटीसी मौर्य में रूस के राष्ट्रपति रुके हुए हैं, ताज पैलेस में चीन के राष्ट्रपति रुकेंगे। आज कल लगभग 11 बजे के आसपास वो दिल्ली आ रहे हैं। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है ताज पैलेस होटल की। और यहां पर भी आप देख सकते हैं मल्टीपल लेयर बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। ये ताज पैलेस की तस्वीर, सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। जब भी कोई यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचता है तब यहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है। अलग अलग राष्ट्र के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहां पर रुके हुए हैं। अलग अलग देशों से कई बिजनेस लीडर्स आए हैं, कई डेलीगेशन आए हैं, वो ताज पैलेस में रुके हुए हैं। और सीधी तस्वीर आप देखिए, जो भी गाड़ी अंदर जा रही है उसकी पूरी तरह से सुरक्षा चेक किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यह ताज पैलेस है, इंटरनेशनल मीडिया भी यहां पर पहुंचा हुआ है। तो अलग अलग देशों के जो अधिकारी हैं वो अब पहुंच रहे हैं और पूरी दिल्ली में सुरक्षा के खासा इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान, कमांडो, अर्धसैनिक बल के जवान, एनएसजी के कमांडो, इन सभी को यहां पर तैनात कर दिया गया है। ये तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है ताकि ब्रिक्स समिट जो है वो सक्सेसफुल रहे, किस तरह की कोई सुरक्षा की चूक ना हो। इसी के साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों के रास्तों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है ताकि जो पूरा एक घेरा है वो अभेद रहे, और उस घेरे में जब ब्रिक्स समिट हो दिल्ली के अंदर तब वहां पर कोई भी दूसरा अन्य व्यक्ति ना पहुंच सके। मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।
0: तो देखिए, मल्टी लेयर्ड सुरक्षा का घेरा यहां पर तैयार किया गया है और दिल्ली में सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी है, इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एयरपोर्ट से लेकर होटल और भारत मंडपम तक जहां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वहां तक दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अभेद कर दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसा है दिल्ली का ये सुरक्षा चक्र। दिल्ली पुलिस के 25,000 से ज्यादा जवानों की यहां तैनाती की गई है। इनमें अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां दिल्ली में हस्तियों की सुरक्षा में तैनात हैं।
1: आपको बताते हैं वीवीआईपी इलाकों में 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं और इसमें फेस रिकॉग्निशन और गाड़ियों के नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमराज भी शामिल हैं।
0: और देखिए, इसी सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है जहां से अलग अलग इलाकों में लगे कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। विदेशी मेहमान जिन होटल में ठहरेंगे, रुकेंगे, वहां भी सुरक्षा की कई परतें बनाई गई हैं।
1: तो वहीं वीवीआईपी इलाकों को अलग अलग जोन में बांटा गया है और हर जोन की जिम्मेदारी एक डीसीपी को दी गई है।

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और साथ ही आज से 13 सितंबर तक ट्रैफिक में बदलाव किया गया है।
1: और देखिए इसी दौरान 22 रूट पर यातायात भी डायवर्ट कर दिया गया है, जबकि 35 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही में पाबंदी लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से अगर आपको बचना है तो घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्ग और एडवाइजरी की जांच एक बार आपको जरूर करनी होगी।
2: दिल्ली का भारत मंडपम ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस पर बातचीत करने के लिए, ट्रैफिक इंतजामों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडिशनल सीपी डीके गुप्ता सर हैं। सर, आपका, आपके पास G20 का भी एक्सपीरियंस है और इसके बाद अब ब्रिक्स का भी एक्सपीरियंस है। सर, इस बार किस तरीके की तैयारी की गई है और कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि डेलीगेट्स को एक तरफ और दूसरी तरफ जो आम जनता है दोनों को किसी तरीके की परेशानी ना हो?
3: देखिए, हमारा ट्रैफिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल ट्रैफिक अरेंजमेंट प्लान बनाया हुआ है। हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो प्रॉपरली उनका मूवमेंट हो सके, इसके अलावा पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस ना हो, इसके लिए 22,000 पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहां से हमारे पीए सिस्टम के थ्रू हमारे बोर्ड्स लगे हुए हैं जिससे हम पब्लिक को गाइड करेंगे कि जहां पे उनको भी जाना है उसका कौन से अल्टरनेटिव रूट्स ले। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए भी हमने रूट्स बता रखे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली से, अगर आप आ रहे हैं तो कैसे यहां पहुंच सकते हैं। हमारी पब्लिक ट्रैफिक एडवाइजरी थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, FMs के थ्रू, मेट्रो के थ्रू हम लोगों ने डिसमेट की इन्फॉर्मेशन जिससे कि ज्यादातर लोगों को पता चले। और दिल्ली वाली से हमको यही, दिल्ली वासियों से यही हमारा अनुरोध है कि ट्रैफिक एडवाइजरी को हमारे फॉलो करें जिससे कि उनको इनकन्वीनियंस ना हो।
2: सर, एक सवाल और, हमने देखा है कि किस तरीके से आपने ये डिटेल अरेंजमेंट्स की हैं, तो इस बार जो 22 रूट्स हैं, जो 22 रूट्स पर डाइवर्जन है, लोगों में ये एक कंफ्यूजन है कि वो रूट्स परमानेंटली बंद रहेंगे या फिर बस डेलीगेट्स मूवमेंट के टाइम पे बंद रहेंगे?
3: देखिए, जब डेलीगेट्स का मूवमेंट होगा तभी बंद रहेंगे और बाकी रूट्स पे हम क्रॉस ट्रैफिक चलाते रहेंगे, पर जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड व्हीकल्स का या वो मूवमेंट्स रहेगा वो हमारा बंद रहेगा, बाकी आम पब्लिक के लिए और नॉर्मल ट्रैफिक के लिए हमारा क्रॉस ट्रैफिक भी चलता रहेगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा आपने सुना कि एक ये बहुत इम्पोर्टेंट समिट जो है अब ब्रिक्स का यहाँ पे दिल्ली में करीब करीब शुरू ही हो गया है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है, दिल्ली प्रशासन का ये कहना है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकले और नई दिल्ली इलाके की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का ट्वीट जरूर पढ़ लें, उसमें सारे रूट डाइवर्जन है जिससे आपका काफी समय बचेगा। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण सूचना हमें मिली है कि जो ये 22 रूट्स में डाइवर्जन है ये बस टेम्परेरली क्रॉस रहेंगे, यानी कि जब हेड ऑफ स्टेट्स और डेलीगेशन उन रस्तों से निकलेंगे तब कुछ समय के लिए उन सड़कों को बंद किया जाएगा, बाकी समय पर उन सड़कों पर आम आवाजाही चलती रहेगी और थोड़ा ट्रैफिक पहले से भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो अब तैयारियां तो पूरी हैं, एक तरफ डेलीगेट्स आने शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के लोग भी इनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो अब ये देखना होगा, जो पिछले कई महीनों से सिक्योरिटी की, ट्रैफिक की तैयारी चल रही थी, कागजों पे थे, अब वो जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें दिल्ली पुलिस को कितनी सफलता मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगन्नाथ मोहंती के साथ अंशुल सिंह।
1: और देखिए, ब्रिक्स के लिए विदेशी मेहमानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में इन मेहमानों के आने जाने के लिए लग्जरी गाड़ियों की डिमांड तेजी के साथ बढ़ गई है। इस डिमांड को ही पूरा करने के लिए दूसरे शहरों और राज्यों से लग्जरी गाड़ियां दिल्ली लाई जा रही हैं। इसके एक बड़ी वजह गाड़ियों की उपलब्धता के साथ साथ स्पीड का मुद्दा भी है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक कुछ गाड़ियों में लगे स्पीड गवर्नर्स की वजह से उनकी अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रहती है, लिहाजा लंबे रूट और तेज मूवमेंट की जरूरत को देखते हुए बाहर से ऐसी गाड़ियां मंगाई जाती हैं जिनसे ये जरूरत आसानी से पूरी हो सके। देखिए मनीषा लड्डा की ये खास रिपोर्ट।

0: दिल्ली में जब भी कोई बड़ा इंटरनेशनल समिट होता है तो सिर्फ सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था का ही ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि मेहमान नवाजी किस कदर की जाए इसका भी दिल्ली भरपूर तरीके से जो है ध्यान रखती है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वो है लग्जरी गाड़ियों की, कि किस तरीके से वीआईपी मेहमानों को लग्जरी कम्फर्ट जो है वो दिया जाए, इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है। और ऐसे में दिल्ली में इस वक्त जो वीआईपी गाड़ियों जो यहाँ पर लाई जा रही है उसकी शॉर्टेज भी कहीं ना कहीं जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफर्ट होता है, चाहे फिर वो लेग रूम की बात हो, रिलैक्सिंग सीट्स की बात हो, या फिर क्लाइमेट मॉनिटरिंग का जो इसमें कंट्रोल होता है उसकी बात हो, ये सभी चीजों की वजह से इसको ये बाकी गाड़ियों से जो है अलग बनाता है। तो किस तरीके के इसके अंदर आपको फायदे मिलते हैं और किस तरीके की जरूरतों को ये गाड़ियां, ये लग्जरी गाड़ियां जो है पूरी करती है, जो कि इनकी डिमांड हर एक समिट में देखी जाती है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं। आप देख सकते हैं कि आपको मेरे सामने जो है इस वक्त दो लग्जरी गाड़ियां दिख जाएगी, और यहां पर आपको मर्सिडीज से कम गाड़ियां जो है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो है आपकी लग्जरी गाड़ियों में जो है गिनती इनकी की जाती है।
1: ये मर्सिडीज की GLS कार है, इसमें मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाता हूं कि क्लाइंट इसमें बैठना क्यों पसंद करते हैं और ट्रैवल करना क्यों पसंद करते हैं। ये सारे टैबलेट में फीचर्स हैं और कंफर्ट के लिए आप ये टैबलेट को निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको शॉफर को भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपना ड्राइविंग पे फोकस कर सकता है, रोड पे फोकस कर सकता है। क्योंकि जब एक ड्राइवर, एक शॉफर हमारे ड्राइव करते हैं, उनके हाथ में ही पूरे पैसेंजर्स की सेफ्टी होती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपने ये फीचर्स को यूज करके अपनी सेफ्टी को एनहांस कर पाए।
0: ड्राइवर को देख सकते हैं कि किस तरीके से इंप्रेशन गेस्ट पे अच्छा पड़ना चाहिए, उसके लिए जो है यूनिफॉर्म के साथ आपको जो ये गेस्ट है आपको वो दिखेंगे ड्राइवर्स। आप देख सकते हैं कि बूट पॉलिश शूज आपको दिखेंगे, कैप दिखेगी, व्हाइट ग्लव्स दिखेंगे और व्हाइट यूनिफॉर्म दिखने वाली है। तो पूरी तरीके से हमारे मेहमानों का, हमारे डेलीगेट्स का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है, सिर्फ लग्जरी कार तक ही नहीं, हर तरीके का उनको जो कम्फर्ट है वो मुहैया करवाया जा रहा है।
2: तो दिल्ली में हो रहे इस महासम्मेलन के लिए राजधानी की रौनक भी बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली को सजाने और संवारने का काम चल रहा है। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भव्य रोशनी और सजावट की वजह से चमक दमक रही दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
3: वो देखिए, इसी बीच आम जनता, यात्रियों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले तमाम लोगों की सुविधा को मद्देनजर रखा गया है। पुलिस ने 22 सड़कों पर डायवर्जन करने के साथ वैकल्पिक रास्तों का रूट प्लान भी तैयार कर लिया है।

0: देश का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र दिल्ली भारत के समृद्ध इतिहास और आधुनिक प्रगति का एक जीवंत प्रतीक है, जो नई ऊर्जा, उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों के पटल पर नई भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत इस बार 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो 12 और 13 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई सरकारों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सूरत को और बेहतर तरीके से संवारने की कवायद चल रही है। उसे चमकाया और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शहर के ज्यादातर हिस्सों से त्योहारों वाली ऊर्जा, उल्लास और सकारात्मकता का संचार हो रहा है। भारत मंडपम और उसके आसपास जाने वाले सभी मुख्य मार्गों को चमकाने और सजाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं। हर एक मार्ग को रंग बिरंगी LED लाइटों से सजाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट के पोल्स पर तिरंगे यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग की LED लाइट्स या रोप लाइट्स लगाई गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े रंग बिरंगे पोस्टरों के साथ सड़कों को थीमैटिक स्ट्रीट पेंटिंग से सजाया गया है, जिसमें भारत की संस्कृति, लोक परंपराओं, धरोहरों, प्रकृति और विरासत की झलक साफ दिखती है। इसके अलावा मुख्य सड़कों पर ब्रिक्स सदस्य देशों के झंडों को भी लगाया गया है। सड़कों की मरम्मत, नए फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग को चमकाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इस हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के अलावा दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा से लेकर सौंदर्यीकरण तक के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारत मंडपम और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी अब पूरी हो चुकी है और भारत इसकी मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इस वक्त भारत मंडपम पर हूं, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य आयोजन होना है और पूरी दुनिया से आने वाले नेताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में आने वाले डेलीगेट्स के लिए पूरे स्वागत की तैयारी हो चुकी है।
0: CCTV कैमरों के जरिए प्रगति मैदान और पुराने किले के इलाकों पर पैनी नजर है। जिन रास्तों से विदेशी मेहमान गुजरेंगे, उन पर अभी से ही एक एक मूवमेंट पर नजर है। तुगलक रोड थाने के अंदर बने विशेष CCTV कंट्रोल रूम से समिट के मद्देनजर लगभग 500 हाई डिफिनेशन कैमरों के जरिए VVIP रूट्स और आसपास के इलाकों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आने वाले विदेशी मेहमान दिल्ली के 9 होटलों में ठहरेंगे। इन होटलों में भारत मंडपम तक जाने वाले रास्तों के तय रूट पर कार गेट की रिहर्सल की जा रही है, ताकि उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो।
2: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है। तमाम रूट्स पे, डायवर्जन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर VIP पहुंचे।
0: दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ से आम जनता को जाम से बचने के लिए सड़कों के बजाय दिल्ली मेट्रो के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर चांदनी चौक के व्यापारियों में खासा उत्साह है। वे विदेशी मेहमानों के भव्य स्वागत और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने के लिए कई विशेष तैयारियां कर रहे हैं। चांदनी चौक की मशहूर स्पेशल जलेबी और दूसरे पारंपरिक लजीज पकवानों को विदेशी मेहमानों के स्वाद के अनुसार ढालने की कोशिश की जा रही है।
3: यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के लोगों के द्वारा पत्र लिखा गया है और ये मांग की गई है कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो गेस्ट आएंगे, जो अतिथि आएंगे, उनको यहाँ मार्केट में भी आने को कहा जाए, ताकि इस मार्केट का प्रचार वर्ल्ड लेवल पर भी हो सके, यहाँ की चीजों की ख्याति विश्व भर में जा सके।
0: विदेशी मेहमानों से संवाद करने के लिए चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाओं के जरूरी वाक्य और अभिवादन के शब्द को भी रटना शुरू कर दिया गया है।
4: फ्रांस में सबसे ज्यादा सिल्वर ज्वेलरी का शौक है लोगों को, तो फ्रेंच हम उसमें सीखेंगे और उनसे बात करेंगे।
5: हम अपने बच्चों को भाषाएं भी सिखा रहे हैं, जिससे जो है उनसे वार्तालाप करने में तकलीफ ना हो और हमारा व्यापार भी बढ़े।
0: 2009 में अस्तित्व में आए ब्रिक्स देशों के इस समूह में शुरुआत में भारत के अलावा सिर्फ 3 देश, चीन, रूस और ब्राजील शामिल थे। एक साल बाद यानी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के सदस्य के तौर पर शामिल होने के बाद समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। धीरे धीरे ब्रिक्स समूह में सदस्य देशों की संख्या 11 पहुंच गई। रूस में पहली समिट से लेकर अब तक 17 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है और अब दिल्ली में 18वें शिखर सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स का फोकस आर्थिक विकास, आपसी व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर है। दिल्ली से शिवानी शर्मा, हिमांशु मिश्रा के साथ आशुतोष कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पंजाब के अमृतसर में ब्रिक्स 2026 को लेकर अनोखी कलाकृति तैयार की गई है। ये कलाकृति दिखाई है अमृतसर के डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल ने। उन्होंने एक बड़ी एक्रिलिक पेंटिंग बनाई है।
6: आपको बता दें, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई वैश्विक नेताओं के चित्र भी शामिल किए गए हैं। ब्रिक्स समिट से पहले तैयार की गई ये पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और वैश्विक नेताओं की मौजूदगी को कलात्मक अंदाज में पेश कर रही है।
7: बारह और 13 सितंबर को दिल्ली का भारत मंडपम तैयार हो रहा है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। जाहिर है, इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम का मेजबान क्योंकि भारत है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के बीच इस बड़ी सी एक्रिलिक पेंटिंग की भी खूब चर्चा है, जिसे मशहूर पेपर आर्टिस्ट जगजोत रूबल ने तैयार किया। इसके जरिए जगजोत ग्लोबल लीडरशिप का संदेश देने की कोशिश करते नजर आए। पंजाब के अमृतसर में जगजोत ने यह अनोखी पेपर आर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ दूसरे ब्रिक्स लीडर्स को एक फ्रेम में दर्शाया है। 18 दिन की मेहनत के बाद 5 फीट की यह कलाकृति जगजोत रूबल के लिए ब्रिक्स 2026 की मास्टरपीस है। वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने ब्रिक्स थीम वाली पेपर आर्ट के माध्यम से ग्लोबल एकता का जश्न सेलिब्रेट करने का संदेश दिया है।
8: ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
7: बता दें कि जगजोत एक फेमस चित्रकार और पेपर आर्टिस्ट हैं। वो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख राजनेताओं और हस्तियों के शानदार पोर्ट्रेट और विशाल पेंटिंग्स बनाने के लिए काफी मशहूर हैं और उनके नाम भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। फिलहाल तो अमृतसर के इस आर्टिस्ट ने पेपर आर्ट के माध्यम से ग्लोबल डिप्लोमेसी की जो तस्वीर उकेरी है, इसने उनकी कलात्मकता का एक नया आयाम दुनिया को दिखाया है। उनकी ख्वाहिश भी है कि इस शानदार पेंटिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के वेन्यू पर प्रदर्शित किया जाए। यकीनन ब्रिक्स समिट से ठीक पहले तैयार की गई ये पेपर आर्ट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और वैश्विक नेताओं की मौजूदगी का कलात्मक अंदाज बयां करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए गणपति उत्सव के रंग।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों में होगा खुशियों का शुभारंभ। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई है शानदार कारीगरी।
8: महाराष्ट्र में अकोला के मूर्तिकार शरद कोकाटे ने दिखाई अनोखी प्रतिभा, आंखों पर पट्टी बांधकर महज 6 मिनट में बनाई निर्विकार बापा की मूर्ति, इको फ्रेंडली गणेशोत्सव का दिया संदेश।
7: मुंबई से लेकर जयपुर तक गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा को भोग लगाने के लिए बनाए जा रहे खास तरह के मोदक, बाजार में लोगों की पसंद बने उकदीचे और लोटस पिस्कॉफ मोदक।
8: महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैलपोला उत्सव की धूम देखने को मिली, पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभराज का जुलूस, करोदा गांव के मेले में पूरी से खरीदारी की परंपरा।
7: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे विदेशी मेहमान, भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम, आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक।
8: दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ।
7: यूपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म हनुमान अंश, फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, देश ही नहीं दुनिया भर से मिल रहा दर्शकों का प्यार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: और चलिए अब बात करते हैं गणपति उत्सव की। बप्पा के पधारने में अब महज दो दिन बाकी हैं। दो दिन के बाद हर घर हर शहर में बप्पा के रंग नजर आएंगे। हर दिल में बस एक ही नाम होगा, वो नाम है गणपति बप्पा मोरिया। गणेश उत्सव को लेकर देश भर में तैयारी तेज हो गई है।
1: आपको बता दें, बप्पा के पंडाल से लेकर बप्पा के श्रृंगार में भव्यता का रंग चढ़ता जा रहा है। गुजरात के सूरत में गणेश उत्सव को लेकर गणेश मंडलों और आयोजकों में खासा उत्साह है। एक तरफ जहां बप्पा की विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति के भव्य श्रृंगार के लिए खास आभूषण भी तैयार करवाए जा रहे हैं।
0: तो देखिए, सूरत की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के भारी भरकम आकर्षक आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। भक्त अपनी पसंद और प्रतिमा के आकार के मुताबिक इन आभूषणों के विशेष ऑर्डर दे रहे हैं। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक थीम आधारित पूजा पंडाल बनाए गए हैं।
1: तो 14 तारीख से देश में गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसके मद्देनजर बप्पा के स्वागत के लिए न सिर्फ जोरदार तैयारी की गई है बल्कि उनके लिए शानदार और भव्य पूजा पंडाल भी बनाए गए हैं।
0: और देखिए, खासकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक थीम आधारित पूजा पंडाल तैयार किए गए हैं। ऐसा ही एक पंडाल पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के लिए बनाया गया है, जो अभी से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।
2: विघ्नहर्ता के स्वागत में बज उठे हैं ढोल नगाड़े, डमरू और शंख। भक्ति में मग्न होकर झूम रहे हैं भक्त। लोगों में ये उत्साह और ये उमंग गणेशोत्सव को लेकर है, जिसकी शुरुआत दो दिन बाद होने जा रही है। इसलिए शहर शहर उनके स्वागत की जोरदार तैयारी भी की गई है, जिसकी एक तस्वीर पुणे से आई है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के लिए शानदार पूजा पंडाल बनाया गया है। ये पूजा पंडाल वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, इसलिए मंदिर की दरो दीवार पर राधा कृष्ण की लीलाओं को बेहद सुंदरता से उकेरा गया है।
3: 14 सितंबर को इसी पंडाल में पूरे देश भर के और महाराष्ट्र के गणेश भक्त दिखाई देंगे। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट का ये जो मंदिर है आपको दिखाई दे रहा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम नगरी में जो प्रेम मंदिर है उसकी प्रतिकृति है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी भव्य दिव्य प्रतिकृति बनाई गई है। दगड़ूशेठ के जो गणपति हैं, श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति की मूर्ति यहाँ पर बिठाई जाएगी। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पंडाल है। और यहाँ पर जो पिलर है, मतलब ये जो मंदिर है, इसका काम जो है लगभग हो चुका है।
2: भगवान गणेश का ये पूजा पंडाल देखने में जितना सुंदर और आकर्षक है, उतना ही भव्य भी है, क्योंकि इस थीम आधारित पूजा पंडाल की ऊंचाई करीब 135 फीट है, जबकि इसकी लंबाई करीब 90 फीट और चौड़ाई 55 फीट है। आयोजक कहते हैं कि प्रेम मंदिर थीम के जरिए दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की जा रही है।
4: श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट की ओर से भारत के विभिन्न मंदिरों की रिप्लिका ये गणेश उत्सव में सजावट के लिए बनाई जाती है। और इसमें दो भूमिका है, हमारे देश की जो सांस्कृतिक परिचय है वो लोगों तक जा सके, और हमारे नेशनल इंटीग्रिटी जो है, राष्ट्रीयत्व की भावना जो है, देशभक्ति की भावना है, वो इससे बढ़ती है। इसीलिए हम भारत के विभिन्न मंदिरों की प्रतिकृति सजावट के रूप में बनाते हैं। इस साल हमारा जो भारत का प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है वृंदावन, वहाँ का प्रेम मंदिर की प्रतिकृति हमने यहाँ बनाई है। इसके पीछे यही एक कारण है कि आज विश्व में जो युद्ध सदृश परिस्थितियाँ है उसको नजर रखते हुए पूरे दुनिया को गणेश उत्सव के माध्यम से और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रेम का संदेश हम देना चाहते हैं।
2: ये पूजा पंडाल अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। सड़क से गुजरने वाले लोग रुककर इस खूबसूरत पंडाल को निहार रहे हैं। खासकर युवा तो इस पंडाल की खूबसूरती को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।
5: लग रहा है जब आप आएंगे तो अच्छा ही लगेगा। और ये जो नया उन्होंने किया है, जो मतलब कृष्णा का जो डेकोरेशन किया है, बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। जब बाप्पा आएंगे तो और ज्यादा ही खूबसूरत दिखेगा। और नए नए आइडिया लाते हैं, हर बार कुछ अलग करते, तो बेस्ट ही लगता है।
6: बहुत अच्छा लगा,
5: लाइक हमारे जो स्टेट का दूसरे स्टेट का जो सब कुछ है वो यहाँ पे भी दिखाना चाहते हैं सब लोग, तो हाँ बहुत अच्छा लगा।
2: गणेशोत्सव का ये पर्व न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि ये प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। यही वजह है कि पुणे के गणेश मंडलों ने मिलकर कश्मीर में गणेशोत्सव मनाने में मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी पंडितों को भगवान गणेश की मूर्तियां सौंपी गयी। इस पहल के लिए कश्मीर के रहने वाले संदीप कौल ने पुणे के गणेश मंडलों का धन्यवाद अदा किया।
6: अच्छा माहौल है, हमने जीरो से स्टार्ट करा था और आज के डेट पे हमारे साथ 5-8 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जिनको कि जैसे हम कल यहाँ पे पहुँचे तो बहुत फ़ोन आ रहे थे कि आप कब पूछेंगे, कब गणपति बापा हमारे घर आए, कब हमें आशीर्वाद दे और कब हमें उनका विसर्जन करें। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने जीरो से स्टार्ट करके आज हमने 5-8 हज़ार लोग इस पर जोड़े हैं, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा, तो बहुत बहुत अच्छा माहौल है।
2: साल 2022 में श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के एक मंदिर में गणेश स्थापना हुई और फिर गणेश विसर्जन हुआ, जिसका दायरा साल दर साल बढ़ता गया और अब गणेशोत्सव घाटी के 3 अलग अलग जगहों पर आयोजित करने की तैयारी है, जहां पुणे से भेजी जा रही मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही देश भर के बाजार गणेश प्रतिमाओं से सज गए हैं। बाजार में इन दिनों एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाएं बिक रही हैं। ज्यादातर लोग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं खरीदना खूब पसंद करते हैं
1: और ऐसे में मूर्तिकार इको फ्रेंडली मूर्तियां ज्यादातर तैयार कर रहे हैं। ये इको फ्रेंडली मूर्तियां बांस, मिट्टी और पराली के अलावा गाय के गोबर से भी तैयार की जा रही हैं, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे।
2: अलग अलग आकार और डिजाइन की एक से बढ़कर एक खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं, जो एक नजर में ही देखने वालों का मन मोह ले। ऐसी मनोहारी मूर्तियों से देश के बाजार सजे हैं। जामनगर से जयपुर तक और झांसी से लेकर पाली तक बाजारों में गणेशोत्सव की रौनक हर तरफ देखते ही बन रही है। ये मूर्तियां देखने में जितनी सुंदर और आकर्षक हैं, उतनी ही विशेष भी हैं, क्योंकि ये मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं, यानी ऐसी चीजों से बनी हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता नहीं है।
7: बाजार भी सच चुके हैं, तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है गणेश उत्सव की। वो समय है जब हर एक व्यक्ति बाजार में आ रहा है, अपने मन पसंद के गणेश जी चुन रहा है। कुछ लोग अपनी थीम के हिसाब से ऑर्डर्स दे रहे हैं और पूरा मार्केट सजा हुआ है, क्योंकि तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। गणेश उत्सव होगा, कुछ लोग 3 दिन के लिए, कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 5 दिन के लिए, तो कुछ पूरे 11 दिन के लिए अपने घरों में गणेश जी महाराज को विराजित करते हैं। 14 तारीख वो शुभ दिन है जिस दिन सभी के घर में गणेश जी जाएंगे और 11 दिन तक जो पूजा होती है, अर्चना होती है, बहुत ही खास होती है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की मूर्तियां इस समय पे जयपुर के बाजारों में भी नजर आ रही है, जिसमें थीम्स भी बहुत सारी नजर आ रही है। श्रृंगार अलग अलग टाइप का नजर आ रहा है, जिसमें सर्प रूपी गणेश जी भी हैं, जिसमें शिवलिंग के साथ में गणेश जी भी हैं, लाल बागचा राजा की झलक भी यहाँ दिख रही है, तो डबरू बाबा की भी झलक दिख रही है।
2: बीते कुछ वर्षों में लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते गणेशोत्सव के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड भी बढ़ रही है। यही वजह है कि कारीगर डिमांड और ट्रेंड के हिसाब से ही मूर्ति निर्माण का काम महीनों पहले शुरू कर देते हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियों के ऑर्डर को पूरा किया जा सके।
8: 4 दिन पहले मूर्ति देना पड़ रही है। हाँ, महंगाई तो है ही, और जो इस बार जो आगमन का प्रोग्राम चलने लगा तो आदमी 4-5 दिन पहले ही मूर्ति मांगने लगा।
9: 6 महीने पहले से काम शुरू हो जाता है मूर्तियों का, जब ही ग्राहकों को पूरा तैयार करके दे पाते हैं।
10: अच्छा, कहाँ कहाँ की बुकिंग है?
9: बुकिंग तो बाहर की भी है, लोकल की भी है।
2: ज्यादातर कारीगर इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बांस, मिट्टी और पराली से तैयार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाते हैं। ये मूर्तियाँ भी मिट्टी की मूर्तियों की तरह ही देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं, और इनसे भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है।
11: मतलब बहुत ही शुद्ध है, अपने हर घर के काम में भी पहले जब तक गोबर का लिपन नहीं होता तब तक अपन अपने घर को भी शुद्ध नहीं मान सकते, तो मैं गोबर को बहुत ही शुद्ध मानता हूँ, पीओपी और मिट्टी से भी बहुत शुद्ध मानता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप घर पे ले जाओ इसको और घर पे ही विसर्जन करो इसको, और विसर्जन होने के बाद में इसी के पानी को मतलब आप अपने पेड़ पौधों में डाल दो, ये खाद का काम भी करते हैं।
2: घर और पूजा पंडालों में विराजने वाली इन गणेश प्रतिमाओं का लोग तरह तरह के आभूषणों से श्रृंगार भी करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी से बप्पा को सजाते हैं। ऐसे में डायमंड सिटी सूरत में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के आकर्षक और भारी भरकम आभूषण तैयार करवाए गए हैं। इनमें भगवान गणेश की पादुकाएं, कंगन, हाथों के आभूषण, मुकुट समेत विभिन्न प्रकार के आभूषण शामिल हैं। इन आभूषणों की विशेषता ये है कि ये सामान्य आकार के छोटे मोटे आभूषण नहीं है, बल्कि गणेश प्रतिमाओं के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, ताकि गणेश प्रतिमा को उत्सव के दौरान भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सके। जयपुर से रिदम जैन, पाली से भरत भूषण जोशी, झांसी से अजय झा और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको एक ऐसी परंपरा से रूबरू करवाते हैं जो निभाई जाती है गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में। करीब 162 साल पुरानी इस परंपरा का नडियाद में भक्त हर साल पूरी तरह श्रद्धा के साथ निर्वहन करते हैं। दरअसल मंदिर में श्रावणी अमावस्या पर 56 भोग का अन्नकूट अर्पित किया गया और इस दौरान निकली ध्वज यात्रा में हनुमान जी, महाकाली माँ, काली माँ और कथक कलाकारों की वेशभूषा भी भक्तों के बीच खास आकर्षण था।
12: और देखिए हर साल श्रावण माह की 13, 14 और अमावस पर ये लोग अंबाजी मंदिर पैदल आते हैं, फिर वहाँ 3 दिन तक पूजा, गरबा, हवन और अन्नकूट आरती में इसका आयोजन करते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं।

0: माता जी की विशेष श्रद्धा भक्ति में सब लोग ज्यादा जुड़ते हैं और ये परंपरा के विशेष अनुसंधान में हम लोग 162 वर्ष से 56 भोग अंकुट की परंपरा करके आए हैं और अभी भी ये परंपरा हम लोग हमारे परिवार ये आज का जो अंकुट है वो मुखी परिवार और दाजी परिवार नड़िया श्रावणिया संघ तरफ से है और अभी भी हम लोग अंकुट आगे भी धराते रहेंगे, हमारा परिवार भी धराते रहेंगे।
1: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर की मशहूर डल झील, जहां इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। झील की लहरों के बीच में बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों का मजा, और शाम होते ही फ्लोटिंग सिनेमा में जुटते पर्यटक और स्थानीय लोग।
2: तो वहीं कश्मीर में शुरू हुए पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बीच डल झील का ये सिनेमाई अंदाज खासा आकर्षण बटोर रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
3: कश्मीर की वादियाँ, डल झील की लहरें और सामने बड़ा पर्दा। शाम का आसमान जैसे ही रंग बदलता है, डल झील का नजारा भी बदल जाता है। हाउस बोट और शिकारे के बीच सजता है फ्लोटिंग सिनेमा, और पानी पर बैठकर शुरू होता है फिल्मों का सफर। सिनेमा देखने का ये अंदाज श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। यहाँ थिएटर की चार दीवारें नहीं, खुला आसमान है, कुर्सियों की कतारें नहीं, झील की लहरें हैं, और स्क्रीन के पीछे है कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी तरफ खींचा।
4: एक्सपीरियंस हमने किया है यहाँ पे कि हमने चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में देखे कि रोड साइड थिएटर्स वगैरह होते हैं, मगर ये जो डल के अंदर इन्हें थिएटर क्रिएट किया है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कश्मीर में शूट की गई है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखे हमारे।
3: फ्लोटिंग सिनेमा में इस बार बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग ने माहौल को और खास बना दिया। बड़े पर्दे पर पुराने दौर की फिल्में, और सामने वही कश्मीर जो कभी हिंदी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। किसी के लिए ये पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका है, तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल नया अनुभव।
5: हर साल ये फेस्टिवल होता रहे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहें, ताकि जो पुरानी रिवायत थी जम्मू एंड कश्मीर की बॉलीवुड के साथ, वो फिर से एक कनेक्ट हो और फिर से फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के लोग, पूरे मुल्क से इंटरनेशनल लोग यहाँ आए फिल्म शूट करें, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो फिल्म टूरिज्म का पोटेंशियल है, उसमें मदद मिले।
3: दरअसल कश्मीर और भारतीय सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। 60 और 70 के दशक में तो कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी फिल्मों ने कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस तरह पेश किया कि घाटी खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत, कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का हिस्सा बन गई। घाटी के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहुंची थी।
6: बहुत ही यूनिक हुआ है इस बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेसिकली कश्मीर में। इससे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जितनी मूवीज आप देख रहे हैं सब कश्मीर बेस्ड शो कर रहे हैं। अब जैसे ये मूवी जंगली है, मैंने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मां बिंदल कुलदेवी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन। कोलकाता से आए कलाकारों ने देवी मां का किया अनुपम श्रृंगार, विशेष आरती के साथ हुआ हवन पूजन। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समेत को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम, पूजा अर्चना के बाद

0: किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस। करोदा गांव के मेले में पूड़ी से खरीदारी परंपरा। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई हनुमान अंश। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, देश ही नहीं दुनिया भर से मिल रहा है दर्शकों का प्यार। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे विदेशी मेहमान। भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम। आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपए। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: सीकर में भादो अमावस्या पर बिंदल कुलदेवी मंदिर में मेहंदी उत्सव का आयोजन, देशभर से श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। इस खास आयोजन पर बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल, भक्ति भाव से गाए मंगल गीत और हाथों में रचाई मेहंदी। श्रद्धालुओं ने बंगाली ढोल की थाप पर किया धुनूची नृत्य, महिलाओं ने माता रानी को समर्पित सिंदूर, बंगाली परंपरा पर आधारित सिंदूर खेल खेला। कोलकाता से विशेष रूप से मंगवाए गए फूलों के मां बिंदल कुलदेवी की प्रतिमा का किया गया श्रृंगार, अर्पित की गई एक क्विंटल फूलों के गजरे की माला। भादव अमावस्या को लेकर कुलदेवियों को धोक लगाने देशभर से पहुंचे प्रवासी, शहर के आधा दर्जन से अधिक शक्ति मंदिरों में धार्मिक आयोजन। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों से रंगा पूरा देश, पंडालों को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप, तैयार की जा रही है बप्पा की विशाल मूर्ति। कर्नाटक के बेलगामी में चरम पर भव्य गणेशोत्सव की तैयारियां, ढोल नगाड़ों के बीच अपने अपने पंडालों में भेजी जा रहे हैं गणपति की विशाल प्रतिमाएं। अलग अलग आकारों और स्वरूपों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, सड़कों में गणपति बप्पा मोर्य का उद्घोष, भक्तों में उत्साह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तैयार की जा रही है गणपति की कई तरह की प्रतिमाएं, जोरों पर मूर्तियों में रंग भरने और सजाने का काम जारी। वाराणसी में भी बप्पा की मूर्तियों का निर्माण कार्य जोरों पर जारी, घर से लेकर पंडालों के लिए बनाए जा रहे हैं प्रतिमाएं। गणेशोत्सव पर अकोला के पर्यावरण प्रेमी शरद कोकटे ने दिखा अद्भुत हुनर, आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई गणेश प्रतिमा। पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए बनाए गए मिट्टी के बप्पा, 20 साल से चला रहे पर्यावरण संरक्षण की मुहिम। बप्पा आए प्रकृति भी मुस्काए के संदेश के साथ घर पर ही इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति बनाने की अपील, बच्चों को भी आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संस्कार देने की कही बात। पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे ने जल संरक्षण पर भी दिया जोर, गणपति विसर्जन से जल स्रोत बचाने की पहल। घर पर ही बप्पा के विसर्जन करने की ताकीद की, प्रकृति बचाने के साथ गणेशोत्सव मनाना इसका मकसद। जयपुर में गणेशोत्सव से पहले बप्पा के भोग का नया ट्विस्ट, 11 तरह के मोदक, 14 वैरायटी के लड्डू तैयार, मोदक में आया लोटस बिस्कॉफ का स्वाद। पारंपरिक मिठाई को मिला मॉडर्न टच, नटेला व्हाइट चॉकलेट मोदक बना आकर्षण का केंद्र, जेंजी के लिए खास फ्लेवर तैयार, मैंगो सिगार से बदला मोदक का स्वाद। इस बार मिठाई में दिखा नया एक्सपेरिमेंट, मोदक में देसी स्वाद भी बरकरार, मथुरा पेड़ा मावा और मोतीचूर मोदक शामिल। रोज गुलकंद और ठंडाई केसर मोदक का जलवा, कीवी आलमंड और बटरस्कॉच मोदक बने खास, कीवी आलमंड डिलाइट मोदक ने भी खींचा सबका ध्यान। एक बॉक्स में कई स्वादों का सरप्राइज, लोगों को लुभा रहा है काजू कतली मोदक का स्वाद, मोतीचूर से बना बप्पा का खास केक, लड्डू केक को बादाम पिस्ता से सजाया गया। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, मोदक की लगातार बढ़ रही है डिमांड, तरह तरह के मोदक से सजे बाजार। बप्पा के भोग की खास तैयारी, लाडू सम्राट बना खास आकर्षण, 1967 से स्वाद की पहचान बरकरार। लड्डू सम्राट के मोदक मशहूर, प्रसाद बनकर घर घर तक पहुंचते हैं, मोदक की कई खास वैरायटियां तैयार। गणेशोत्सव से पहले मिठाई बाजार हुए गुलजार, उकड़ीचे मोदक की सबसे ज्यादा डिमांड, मोदक की बिक्री में बड़ा उछाल। मोदक खरीदने उमड़ रही है लोगों की भीड़, बप्पा के पसंदीदा भोग पर नजर, परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम। मुंबई में मोदक की मिठास, घर घर बन रहे हैं उकड़ी के मोदक, गणपति बप्पा का है प्रिय भोग। उकड़ी का मोदक बना खास आकर्षण, मुंबई में घरों में उकड़ी के मोदक बनाए जाने की खास परंपरा। चावल के आटे से बनता है उखरीचा मोदक, चावल के आटे में मीठे के मिश्रण से बढ़ता है मोदक का स्वाद। उखरीचा मोदक महाराष्ट्र की पहचान, परंपरा और संस्कृति से है जुड़ा। गणेशोत्सव में मोदक का प्रसाद रिश्तेदारों को भी बांटते हैं। सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम, मोदक बनाने का उत्साह बरकरार। लालबाग और काली चौकी में मोदक की रौनक। शिरडी के साईं दरबार में भक्त की अनोखी भेंट, छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। 9 तोले का है ये सोने का मुकुट, 14 लाख रुपए है अनुमानित कीमत। इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। मनोकामना पूर्ण होने पर सपरिवार मंदिर समिति को भेंट किया गया है मुकुट। 55 वर्षों से लगातार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आता है ये परिवार। महाराष्ट्र के परभाणी में दिखी बैलपोल उत्सव की रौनक, किसानों ने अपने बैलों का किया भव्य श्रृंगार, जताया आभार। पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभराज का जुलूस, रंग बिरंगे रंगों में सजाए बैलों के सींग। बिहार के बोधगया में दिखा अध्यात्म का अनोखा नजारा, विदेशी श्रद्धालुओं ने 4000 दीपों से बनाया धर्म चक्र की खास पूजा। पूर्वजों की शांति के लिए थाईलैंड, ताइवान और जापान से आए विदेशी श्रद्धालुओं ने जलाए दीप, सुख समृद्धि की भी कामना की। विश्व शांति के लिए किए गए विशेष अनुष्ठान, शंकराचार्य मठ में आयोजित किया गया दीप उत्सव। विदेशी श्रद्धालुओं के लिए बौद्ध भिक्षुकों ने की पूजा अर्चना, सनातन मंत्रों का उच्चारण किया। बोधगया में 6 दिन तक होगी विशेष पूजा अर्चना, 7वें दिन होगा हवन। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार, सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आना जरूरी। ब्रिक्स समिट के लिए सजाई गई राजधानी दिल्ली, रंग बिरंगे फूलों और पोस्टर से सजावट, साफ सफाई का विशेष ध्यान। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, दिल्ली की 35 से ज्यादा सड़कों पर असर, वीवीआईपी मूवमेंट के चलते कई जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन। ब्रिक्स समिट से पहले राजधानी दिल्ली रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी, भारत मंडपम, 3 मूर्ति सर्कल, कौटिल्य मार्ग सर्कल हुआ रोशन। आम जनता की सहूलियत के लिए कल होने वाले ब्रिक्स समिट के डिनर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी मूवमेंट के तहत ट्रैफिक जाम रोकने के लिए संसद भवन से बस में आएंगे सभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। लंदन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सम्मान, यूके पार्लियामेंट में मिला अवार्ड, एकनाथ शिंदे ने लंदन में अंबेडकर को नमन किया। कोलकाता में डॉट्स का बड़ा आयोजन, पहला इंडियन इंटरनेशनल डॉट्स ओपन 2026 शुरू, देश विदेश से पहुंचे खिलाड़ियों में देखा जबरदस्त उत्साह। जम्मू कश्मीर के रामबन में यूटी स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता संपन्न, जेएनके के युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा आयोजन। जम्मू और कश्मीर डिवीजन के कुल 59 खिलाड़ियों ने अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 कैटेगरी में लिया भाग, युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना इसका मकसद। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए रामबन के विधायक, विजेता खिलाड़ियों को पहनाए मेडल। कानपुर के शिक्षक उद्देश्य सचान की केबीसी में एंट्री, गरीब बच्चों के लिए चला रहे हैं स्कूल, 400 बच्चों को मुफ्त शिक्षा, बच्चों को किताबें और ड्रेस भी मुफ्त। उद्देश्य सचान बने सभी के लिए मिसाल, अमिताभ बच्चन ने की उद्देश्य की तारीफ, 25 लाख के सवाल तक पहुंचे उद्देश्य, केबीसी में जीते 12.5 लाख रूपये। कानपुर में 400 बच्चों को मुफ्त पढ़ाने वाले उद्देश्य सचान को केबीसी में जाने का मिला मौका, 25 लाख रुपए की रकम जीतकर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने की बात कही। गुजरात के वनतारा में नांदणी वापस आएगी महादेवी उर्फ माधुरी हाथी, जल्द ही नांदणी मठ में होगा आगमन। माधुरी हाथी की वापसी की खबर से कोल्हापुर वासियों में खुशी की लहर। नांदड़ी मठ में माधुरी हाथी को उपलब्ध कराई जाएगी सभी जरूरी सुविधाएं। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ने से गांव खेतों में भरा पानी, लोग नाव पर कर रहे हैं सवारी। बारिश से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर हुआ भूस्खलन, चेरबासा के पास पैदल यात्रा मार्ग बंद। बाराबंकी में बाढ़ के पानी से सरयू का जलस्तर बढ़ा, आसपास के गांवों में आम जनजीवन हुआ प्रभावित। खतरे के निशान पर सरयू नदी, बाढ़ और कटान की दोहरी परेशानी झेल रहे हैं ग्रामीण। दक्षिणी सिक्किम के सांगमो इलाके में एक बड़े भूस्खलन की घटना, आसपास के कई घर हुए प्रभावित। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान सिनेमाघरों में रिलीज, मलयालम ब्लॉकबस्टर ओपम का हिंदी रीमेक है प्रियदर्शन की ये फिल्म। अरशद वारसी की क्राइम ड्रामा फिल्म घमासान Z5 पर रिलीज, कुख्यात डाकू सरदार महाराज और उसे पकड़ने के लिए तैनात एसटीएफ अधिकारी आदित्य की कहानी है घमासान। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज द रिवॉल्यूशनरीज रिलीज, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है चार युवा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की मेगा फिल्म फ्रेंचाइजी श्रीमद भागवतम भाग 1 विष्णुरात का टीजर पोस्टर जारी, 2027 में रिलीज होगी आकाश सागर चोपड़ा और अमृत सागर चोपड़ा की ये फिल्म। परिणीति चोपड़ा की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज शक ट्रस्ट नोवन का ट्रेलर रिलीज, 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। विंसेंट डिसिल्वा के निर्देशन में बनी ये सीरीज। क्रिकेट के मैदान से आई गुड न्यूज, महिला एशिया कप के सेमीफाइनल्स में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। भारत ने लगातार 10वीं बार फाइनल में बनाई जगह, जबकि 7 बार खिताब जीत चुका है भारत। 13 दिसंबर को पाकिस्तान या श्रीलंका से भारत का फाइनल। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर बनाए 149 रन, लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम, 20 ओवर में से 7 विकेट पर महज 109 रन ही बना सके। शेफाली वर्मा ने 64 रन की तूफानी पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत ने 24 रन का दिया अहम योगदान, ऋचा घोष ने 21 और प्रतिका रावल ने 20 रन बनाए। गेंदबाजी में भी भारत का जलवा, दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, नंदिनी शर्मा को मिली 2 सफलता, श्री चरणी और प्रेमा रावत को 1-1 विकेट। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की बेटियों ने किया कमाल, पाकिस्तान को 19-0 से दी करारी शिकस्त। धुआंधार जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल्स में बनाई जगह, भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाए गोल की हैट्रिक। भारत अफगानिस्तान पहला T20 तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर को ही होगा, DDCA ने टलने की खबरों पर लगाया विराम। अफगानिस्तान T20 सीरीज और एशियन गेम्स से हर्षित राणा बाहर, यश ठाकुर को टीम इंडिया में मिली जगह। चोट के चलते हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर की एंट्री, 27 वर्षीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में किया था T20 से डेब्यू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, रिश्तों में होगा खुशियों का शुभारंभ। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए हम नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
7: अगर साथ निभाने वाला सच्चा हो तो दुनिया की सारी धन दौलत फीकी लगने लगती है। संसाधन भले ही सीमित हो लेकिन प्यार का एहसास अनलिमिटेड होता है। तस्वीर देखिए, लाइन में खड़े होकर पति अपना काम पूरा कर रहे हैं, तभी पत्नी की नजर उनके माथे के पसीने पर पड़ती है और हाथ में पकड़े पेपर से ही उन्हें हवा करने लगती है। पत्नी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। लोग कह रहे हैं उम्र के हर पड़ाव पर ऐसा ही जीवन साथी मिले। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन बेंच बॉय के नाम से मशहूर फेंग युक्सियांग इसके मिसाल हैं। महज 2 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चीन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 586 अंक हासिल किए और हुबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अब चिलचिलाती धूप में फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। उनका जज्बा हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। माँ तो माँ ही होती है, काम चाहे कितने भी हो, बच्चों के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। इस वीडियो में भी माँ की ममता का ऐसा ही खूबसूरत अंदाज नजर आया। माँ रोटी बनाने में व्यस्त है, लेकिन इसी बीच अपने लाल को दुलारना भी नहीं भूल रही। कभी प्यार से उसे छूती है तो कभी अपने आंचल के करीब कर लेती है, और बच्चा भी माँ का प्यार पाकर खिलखिला रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो माँ बच्चे के इसी अनमोल रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है। हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता, और जब हाथों में कला हो तो साधारण दीवार भी खूबसूरत कलाकृति में बदल जाती है। चीन की जेंजी पीढ़ी की एक लड़की इन दिनों अपने अनोखे हुनर की वजह से वायरल हो रही है। सीमेंट की मदद से वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी बेहद असली दिखने वाली रिलीफ म्यूरल कलाकृतियां बना रही हैं। अलग अलग डिजाइन और स्टाइल से दीवार पर उभरी हुई नक्काशी करती है। उसका ये अनोखा अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा खेल देखकर शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाए। बच्चों को थैले में डालकर रेस कराई गई, और रेस शुरू होते ही बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। कोई तेजी से आगे बढ़ रहा था तो कोई संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा था, लेकिन तभी एक बच्चा थोड़ी दूर जाते ही गुलाटी खाकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे, फिर प्यार से बच्चे को उठाए। बच्चों की इस मजेदार रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
8: Thank you.

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में माँ बिंदल कुलदेवी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन। कोलकाता से आए कलाकारों ने देवी माँ का किया अनुपम श्रृंगार, विशेष आरती के साथ हवन पूजन। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैलपोला उत्सव की धूम, पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस, करोदा गांव में मेले में पूड़ी से खरीदारी परंपरा। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुए हनुमान अंश, फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, देश ही नहीं दुनिया भर से मिल रहा है दर्शकों का प्यार। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं विदेशी मेहमान, भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम, आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मिलेगा इससे लाभ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की

0: नमस्कार, मैं हूं रिंकी भाभी और लेकर आई हूं आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए। शादी के बंधन में बंधेंगे रक्षित और अपराजिता, मिलेगा कुछ घर वालों का आशीर्वाद।

0: अपने परिवार संग अनुपमा मनाएगी जन्माष्टमी, आएगा ट्विस्ट भी।
1: रुको, एक मिनट, मम्मी।
2: बिल्डर उन सब लोगों का पैसा लेकर फरार हो गया।
0: कबीर करेगा किसी और लड़की को प्रपोज, टूटेगा मायरा का दिल।

मनीषा खटवानी के जन्मदिन पर लगेगा सितारों का मेला, दिखेगा डांस का जलवा भी। और साथ ही करेंगे स्मृति खन्ना से मुलाकात, जो अपने फिट होने का बताएंगी राज सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

संजय और स्वाति दोनों को आज रोमांस करने का मौका मिल ही गया है। ये रोमांस कर तो रहे हैं, लेकिन क्या इसी रोमांस के बीच होगा संजय और वृंदा का आमना सामना?

0: सीसीटीवी के सीरियल तुहिरे दिल में संजय की घर वापसी हो गई है और उसी के चलते जीतू घबराया हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि संजय और वृंदा आमने सामने आए। ऐसे में रसोई में काम कर रही वृंदा के पास जीतू पहुंच जाता है और देखिए कैसे सब्जी लेने के बहाने उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि जीतू और वृंदा वहां से निकलते बीच में आ जाते हैं संजय के दादाजी जो अपनी खुशी संभाले नहीं संभाल पा रहे।
1: अम्मो जी, अरे हटना अम्मो, बेटा फटाफट दो गर्मा गर्म कॉफी बना दे। हाँ फटाफट फटाफट, ओके।
2: बलाय तू ही है मर।
3: अम्मो तुम एक काम करो, तुम बाजार जाओ।
4: मैं तुम्हें फटाफट से पहले
3: नहीं, वो भैया का स्वाद मुझे पता है ना, तो मैं जानता हूँ उनको कैसी पसंद है, मैं बना देता हूँ। तुम जाओ मार्केट। हाँ चिंता मत, जी जी जी बस बस।
5: आई थिंक जीतू ने कुछ तो प्लान किया हुआ है। मैं तो बहुत शिद्दत से चाहती हूँ कि वो दोनों मिल ले, बट शायद जीतू ही अब अर्चन बन रहा है। मुझे नहीं लगता वो मिलने देगा, बट डेस्टिनी।
6: एग्जैक्टली, एक्चुअली प्लानिंग तो बहुत सारी है। आई एम वेरी मच एंग्शियस एज अ कैरेक्टर, क्योंकि मुझे वृंदा को किसी भी हाल में संजय के सामने आने नहीं देना है। सो मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग अलग अलग तरीके से चल रही है। मैं उसको भगा दे रहा हूँ सब्जी हलाने के बहाने से, एंड करेंटली जो हम सीन करने जा रहे हैं उसमें अगेन आई एम ट्राइंग टू प्लॉट इन अ वे कि मैं उसको मार्केट ले जा रहा हूँ ताकि संजू अभी स्वाति के साथ अंदर ना आ जाए। ही इज़ एक्चुअली आउटसाइड, वो कुछ तो करने गए। आई हैव नॉट रेड दैट सीन, सो आई मेक श्योर कि वो वापस उनके सामने ना आ जाए। तो हमारा लंबा सा सीन है सब्जी शलगम वगैरह लाने के लिए, मैं उसको बोल रहा हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। इट्स अ वेरी स्मॉल सीन बट इट्स एन इम्पैक्टफुल सीन, तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे।
0: अब जीतू ने बहाना कर वृंदा को यहाँ से भेज तो दिया है और उसी वक्त अपने दोस्त केशव को कॉल कर उसकी बहन को बुला लिया है ताकि वो वृंदा की जगह उसे यहाँ पर खड़ा कर सके।
6: बेसिकली बिकॉज आई एम द ओनली कैरेक्टर जिसको पता है कि संजू भैया की इसके साथ शादी हो चुकी है, एंड हर एक्चुअल नेम इज़ वृंदा एंड नॉट अम्मू। ये भी मुझे वो पायल वाले सीन से पता चल जाता है जहाँ पे वो मैच कट हो रहा है। सो या आई एम मेकिंग श्योर कि तीनों की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। एक साइड हो गया स्वाति, एक साइड हो गया संजू, एक साइड हो गए हमारे संजू भैया। सो तीनों का इन अ वे देयर इज एन इंटरकनेक्शन एंड आई एम द की पॉइंट टू दैट, जिसको अकेले को ही पता है कि यही वृंदा है, ये अम्मू नहीं है। और आई एम मेकिंग श्योर फ्रॉम ऑल द नुक एंड कॉर्नर्स की संजू के सामने ये ना आ जाए, क्योंकि संजू भी एकदम से घबरा जाएंगे अगर उनको पता चल गया कि ओके वृंदा इज द वन हु स्टेइंग हियर इन द नेम ऑफ अम्मू। सो टू मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट।
0: यहाँ जीतू की कोशिशें रंग ला रही है तो वहाँ संजय भी अपने परिवार के साथ झूमता नाचता अपनी माँ का हाथ थामे घर के अंदर आ रहा है और उसके आने पर क्या संजय की माँ और क्या दादाजी सभी बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन संजय के आते ही शुरू हो जाती है वृंदा की तारीफें, जिसे संजय अम्मू के नाम से जानता है। ऐसे में उससे मिलने की उसकी बेचैनी बढ़ जाती है।
7: होगी अपने फेवरेट घर, रसोई घर में।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने उसे अभी भी बोला कि फर्स्ट क्लास दो कॉफी बना के लाया हमारे। बात है
7: क्या खाना बना, मैं तो फैन ही हो गया
8: हूँ सच में। इस घर की तो अहमियत कोई ना है, ऐसा तो मेरे जाने के बाद क्या
1: करेगा।
5: सो दही हांडी का सेलिब्रेशन हो रहा है जहाँ पे संजू आता है और खुद दही हांडी फोड़ता है। तो अम्मू वही होती है, संजू वही होता है, संजू फोड़ रहा होता है, अम्मू मेरे साथ होती है। तो मैं आगे जाती हूँ जब वो नीचे आता है कि चलना देखो अम्मू से मिलवाती हूँ, और मैं पीछे देखती हूँ अम्मू गायब, शायद जीतू उसको ले जाता है अंदर किसी काम से। तो अब हम अंदर एंटर ही करे हैं, अम्मू किचन में है मेरे हिसाब से। तो अब मुझे लग रहा है इट्स वेरी इजी, संजू यहीं है, अम्मू यहीं है, आप तो मिलवा ही देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सब जीतू का प्लान है अब, क्योंकि उसे सब पता है और वो चाहता है कि तीन जिंदगियां हैं बर्बाद ना हो। तो वो क्या करता है, अम्मू को बाहर भेज के अम्मू जैसी ही कोई उसको लेकर आ जाता है। वो चाहता है कि संजू उसे अम्मू समझे, तो उसे किचन में खड़ा कर देता है। ऐसा कुछ होने वाला है।
0: खैर स्वाति तो अपनी होने वाली सासू माँ को वहाँ से ले जाती है और संजय चल पड़ता है रसोई की ओर अम्मू से मिलने के लिए, हालांकि उसकी मुलाकात असली अम्मू से हो नहीं पाएगी। खैर यही तो कहानी है कि कब और कैसे वृंदा और संजय आमने सामने आएंगे। फिलहाल तो संजय तैयार होकर पहुंच गया है स्वाति के घर अपनी होने वाली सासूमा से मिलने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही नौकरानी आकर जानकारी देती है कि स्वाति की माँ यहां से संजय के घर चली गई है घर वालों से मुलाकात करने के लिए। बस फिर क्या, ऐसे में संजय को मिल जाता है मौका स्वाति पर प्यार बरसाने का। जरा देखिए कैसे स्वाति को अकेला पाकर संजय उस पर फिदा हो रहे हैं। हालांकि स्वाति जाने की कोशिश करती है, लेकिन संजय उसे बार बार रोककर उस पर अपना प्यार जता रहे हैं।

सो बेसिकली संजू इतने टाइम के बाद आता है बॉम्बे से और हमें इतने टाइम के बाद वक्त मिलता है, क्वालिटी ऑफ टाइम. और हम मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आते हैं, घर पे कोई नहीं होता है, मम्मा नहीं होती, पापा नहीं होता है. सो एक होता है ना कि तुम अपने फेवरेट इंसान से, अपने पार्टनर से इतने टाइम के बाद मिलते हो, बट हम यूजुअली फैमिली के बीच में ही रह जाते हैं. सो एक क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फन. तो हाँ, ऐसा

खुद तो असल में स्वाति को अस्पताल से आ जाता है कॉल, जिसके चलते लग जाता है संजय और स्वाति के रोमांस पर ब्रेक, क्योंकि स्वाति को जल्द से जल्द अस्पताल जो जाना है।

0: इंटरप्शन तो होती ही है, मतलब जहाँ रोमांस करने लग जाओ इंटरप्शन तो होती है. तो हॉस्पिटल से फोन आता है कि मैम आपको पता है ना आपको आना है आज हॉस्पिटल, तो एक रिमाइंडर एंड देन वो ब्रेक हो जाता है. तो जरूरी है ना, कब तक रोमांस खींचेंगे
1: भाई. ये तो इनकी प्रेम कहानी है. एक और प्रेम कहानी है जो संजय के घर चल रही है, वो है कविता और गौतम की. असल में गौतम कविता से चोरी छिप कर उसके घर में मिलने आ जाता है. ऐसे में कविता डरी सहमी सी है लेकिन फिर भी उस पर प्यार जता रही है. इसी बीच आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हो जाती है नीरव की एंट्री, वो भी कविता के कमरे के बाहर. ऐसे में कविता पहुंच जाती है नीरव से मिलने और जानकारी लेने कि आखिर नीरव वहां क्या करने आया है.
2: क्या क्या
3: यहाँ क्या कर रहे हो?
2: ये नए कंपनीज की फाइल तैयार की है मैंने, तो सोचा कि जो हमारे एमडी संजय हैं उनसे अप्रूवल लेने के पहले उनके नीचे जो काम आपसे अप्रूवल लेना है.
3: ऑफिस का काम ऑफिस में ही करती हूँ.
2: एक्चुअली वो क्या, मैं पेशेंट एडिटर काम के लिए, तो आपके रूम में कोई बहुत बड़ा चूहा घुस गया है ऐसा कुछ वगैरह, मतलब आपके फेस पे डर दिख रहा है, हवाएं उड़े हुए आपके फेस की.
3: हाँ?
2: मतलब कुछ, you want my help? मैं आपके
3: कुछ... नहीं, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि नीरव की हेल्प लेनी पड़े.
1: फिलहाल तो नीरव को शक हो गया है कि कविता कुछ ना कुछ जरूर कर रही है. अब देखना होगा कि कविता कैसे गौतम को घर वालों की नजरों से छिपाएगी और कैसे चाले चलेगी ताकि संजय उसकी जिंदगी में मुसीबतें आए. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
4: रिया की मौत की खबर ने दुआ को दुखी कर दिया है. ऐसे में विक्रांत और मन्नत उसे गाना गाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या दुआ समझ पाएगी?

0: करोई दुआ।
1: आज के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी।
0: दुआ को मनाने की विक्रांत की एक कोशिश
1: है, खुशी जिंदगी की यही रीत है।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में जैसे ही दुआ को अपने धैर्य बाबा की मौत का पता चला, दुआ का दिल टूट गया और देखिए कैसे उसने अपने आप को कमरे में बदल लिया। इतना ही नहीं, वो तो अपने धैर्य बाबा की तस्वीर लेकर फूट फूट कर रो रही है।
1: जिंदगी की यही रीत है।
0: ऐसे में कमरे में विक्रांत और पूरा परिवार आता है दुआ को मनाने के लिए, और दुआ को देख कर कैसे विक्रांत सुरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी की क्या रीत होती है।

भाई विक्रांत तो कोशिश कर रहा था कि दुआ समझ जाएगी, लेकिन दुआ ने गुस्से में आकर विक्रांत को ही धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, उसी पल दुआ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पहुंच गई अपने पापा को गले लगाने और फूट फूट कर रोने। ऐसे में न सिर्फ विक्रांत अपनी दुआ को संभाल रहा है बल्कि मन्नत भी पहुंच जाती है दुआ को

0: हुआ गुड़िया, आपको पता है जिनसे हम प्यार करते हैं ना, वो बाबा जी के पास जाने के बाद भी हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। जैसे श्रुति नानी, नीकू नानी, है ना? और अगर हम दुखी होते हैं ना तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। हम तो नहीं चाहेंगे ना कि उन्हें तकलीफ हो, है ना? हम तो चाहेंगे कि वो हैप्पी रहे। तो क्यों ना हम बाबा को अच्छी यादों के साथ गुड बाय बोले।
1: ऐसा करने से बाबा हैप्पी हो जाएंगे।
0: हाँ, अगर हम बाबा के लिए एक अच्छी सी मेमोरियल सर्विस रखें और उन्हें बाय बाय बोले अच्छी अच्छी यादों के साथ, अच्छे अच्छे टाइम्स के साथ जो आपने उनके साथ स्पेंड किया है, तो वो हैप्पी हो जाएंगे।
1: ठीक है, तो मैं एक मेमोरियल सर्विस रखनी चाहती हूँ मेरे बाबा और यशिका आंटी के लिए।
0: ओके, ओके।
2: खैर, मन्नत और विक्रांत की बातों से दुआ समझ तो गई है, और तो और यूवी और बंटी वो भी समझदार हैं। तभी तो देखिए कैसे मन्नत के कहने पर तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिस खबर से खुद मन्नत और विक्रांत अनजान हैं, उसी खबर से बच्चे भी अनजान हैं कि धैर्य जिंदा है। और धैर्य का जिंदा होना यानी कहानी में नया ट्विस्ट आना, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प।
3: वेलकम धैर्य, विक्रांत और मन्नत जी की जिंदगी में तुम्हारा फिर से स्वागत है।
4: ये बलून्स लो और इन पे अपने मैसेजेस लिख, और फिर हम इन बलून्स को
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अपने दुआ से एक बार फिर मैंने सच छुपा के बहुत बड़ी गलती की है मन्नत जी, इसकी कीमत आपके पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी।
5: मनीषा खटवानी का बर्थडे आने वाला है, ऐसे में उन्होंने प्री बर्थडे पार्टी रखी है जहाँ पर 80 के दशक का जलवा भी है और डांस का तड़का भी। तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं।
2: मनीषा खटवानी का हैप्पी वाला बर्थडे। सेलिब्रेशन पर लगा डांस का तड़का।
6: इश्क में दिल फना है।
2: मनीषा संग झूमे,

यो तो मुनीषा खटवानी का बर्थडे 18 सितंबर को आता है, लेकिन लगता है इस साल 18 सितंबर को मुनीषा का शेड्यूल बहुत ही बिजी है। तभी तो इन्होंने अपने दोस्तों के लिए रख ली है प्री बर्थडे पार्टी, जहां पर ये खुद काले रंग के कपड़े पहनकर पहुंच गई हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और तो और उनकी बर्थडे पार्टी में लग गया है सितारों का मेला। वही मुनीषा के व्यवहार के चलते उनकी दोस्ती लगभग सभी कलाकारों से है।

तभी तो देखिए कैसे सितारों का मेला लगा हुआ है। ये सब ना सिर्फ मुनीषा को जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचे हैं, बल्कि मुनीषा की बर्थडे पार्टी पर अपने डांस से चार चांद भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ मुनीषा को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां भी दे रहे हैं। देख लीजिए नज़ारे मुनीषा की बर्थडे पार्टी के।

भाई ये तो बर्थडे पार्टी के अंदर के नजारे हैं। अब नजर डालते हैं कि मनीषा खटवानी की बर्थडे पार्टी में एंटरटेनमेंट जगत के कौन कौन से सितारे आए हैं। वैसे बात करें सभी सितारों के लुक्स की तो ज्यादातर सितारों ने 80s के लुक को अपनाया है। भाई इन दिनों 80s का लुक ट्रेंड कर रहा है, तो ऐसे में सभी सितारे पीछे कैसे हटते।

0: देख लीजिए सुधांशु पांडे को, जिन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट पहना है और अपने लुक में 80s का टच दिया है।
1: म्यूजिक बजाओ।
0: इसी के साथ अंगद हसीजा भी कुछ कुछ 80s के लुक में ही नजर आए हैं। बात करें ऐश्वर्या शर्मा की, तो उन्होंने एवरग्रीन एनिमल प्रिंट यानी कि चीता प्रिंट चुना है और देखिए कैसे वो अपना ग्लैमरस लुक बिखेर रही हैं। वैसे ग्लैमरस तो आज उर्वशी ढोलकिया भी लग रही हैं, जिन्होंने ब्लैक कलर का जंप सूट पहना है। इन्हें देखकर भला कौन कहेगा कि ये दो बड़े जवान बच्चों की माँ है। वैसे ब्लैक जंप सूट में तो नजर आई है श्रद्धा आर्या भी, जो लग रही हैं बेहद ही खूबसूरत। इसी के साथ दीपशिका नागपाल भी ब्लैक कलर के जंप सूट में अपनी खूबसूरती बिखेरने पहुंची हैं। भाई बात हो रही है ग्लैमरस अंदाज की, तो भला जूही परमार और रति पांडे कैसे पीछे रहती। जरा देखिए कैसे आज के जमाने में उन्होंने 80s के दौर के कपड़े चुने हैं। भाई वाकई 80s का युग इन दिनों ट्रेंड पर चल रहा है। वैसे इस बर्थडे पार्टी में निहारिका चौकसी भी पहुंची हैं, जिन्होंने सिंपल एंड सोबर ग्रीन कलर की ड्रेस चुनी है और इनके लुक में सादगी नजर आ रही है। बात करेंगे वाबीज डोरापसी की, तो इन्होंने मोनिशा के बर्थडे पर वॉटर ग्रीन कलर का गाउन चुना है। इसी के साथ रिद्धिमा तिवारी भी नजर आ रही है ब्लैक कलर के ड्रेस में। साथ ही नजर आ रही हैं हुनर हाले भी, जिन्होंने पिंक जंप सूट चुना है। अद्रिजा रॉय भी ब्लैक कलर के ड्रेस में अपना काला जादू चला रही हैं। इसी के साथ निशा रावल, तेजी शाह, और कश्मीरा भी पहुंची हैं मुनिशा को बर्थडे की बधाइयां देने के लिए। वैसे इस बर्थडे में शाइनी दोषी भी आई हैं अपने पति के साथ। साथ ही नजर आए हैं राजन शाही भी, जो पहुंचे हैं अपनी बेटी के साथ। भाई इनके अलावा मुनिशा की बर्थडे पार्टी में कई और सितारे भी मौजूद रहे हैं, जिनका स्वागत खुद मुनिशा कर रही हैं, गले लगाकर वो भी बड़े प्यार से। तो देखा आपने मुनिशा की दोस्ती कितनी पक्की है। सास बहू और बेटियां की तरफ से मुनिशा खटवानी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी होती है सीरियल्स की दुनिया, और किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट देखना होगा काफी मजेदार। चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में।
0: स्टारप्लस के सीरियल अनुपमा में जल्द ही जन्माष्टमी का त्यौहार अनुपमा के घर में मनाया जाएगा, जिसके लिए अनुपमा कर रही है तैयारी। और देखिए कैसे वो अपने हाथों से नन्ही परी को कपड़े ट्रायल करवा रही है और जन्माष्टमी की कहानी भी सुना रही है। इतना ही नहीं, जब बच्ची वहाँ से चली जाती है तो अनुपमा की नज़र पड़ जाती है एक बॉक्स पर, जिसमें उसकी यादें हैं। ऐसे में उसे मिल जाता है एक मुकुट, जो अनुज जन्माष्टमी के दिन पहना करता था। बस फिर क्या, वो मुकुट देखकर अनुपमा खो जाती है अनुज की यादों में।

0: उनका मन रखने के लिए ये पहन के कान्हा जी बन जाते थे। आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता अनुज। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर बाद आपसे आके बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी याद ने हीरो एंट्री मार ली। बोलो।
1: अब अनुज भले ही ना हो, लेकिन अनुपमा हर साल जन्माष्टमी के दिन अनुज का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाती है, और इस साल भी वो नाच गाकर जन्माष्टमी का त्योहार में मनाएगी और अनुज का बर्थडे भी। लेकिन इस त्योहार में आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट जो अनुपमा के पैरों के तले जमीन खिसका देगा।
2: रुको, एक मिनट, मम्मी।
3: अहमदाबाद से थोड़ी दूर एक बिल्डर ने गेटेड कम्युनिटी बनाने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और कुछ लोगों से प्लॉट्स के लिए डाउन पेमेंट लिए। उसके बाद बिल्डर उन सब लोगों का पैसा लेकर फरार हो गया। बिल्डर ने मथेला बिल्डर्स के नाम से कंपनी फ्लोट की थी।
4: महादेव एंड सन्स
1: कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में रज्जी पहुंच गई है अपने जेठ आशीष से मिलने के लिए। इतना ही नहीं, रज्जी तो अपने हाथों में मिठाई भी लेकर गई है, जिसे देखकर आशीष हैरान है। इतना ही नहीं, रज्जी तो वो मिठाई आशीष को खिलाती भी है, ये बोलकर कि इस बार आशीष की जीत होने वाली है।
5: इसमें मिठास तो है ही, लेकिन साथ साथ जीत का स्वाद भी है।
6: अम्मा, लेकिन आशीष का काम तो नहीं भर रही है, सुन क्यों रहे? क्या करेंगे अभी?
5: आशु दादा, जीत आपकी हुई, आपके पिता और आपके भाइयों को जेल होने वाली है बहुत लंबे समय के लिए। आपकी बीवी और आपकी सास इतने बड़े लॉयर को लाई है जो हर झूठ को सच की तरह मोड़ के उसी को सच बना देता है। उनका फंसना निश्चित है, उनको कोई नहीं बचा सकता। अब मैं देख क्यों रहा? मुंह मीठा कीजिए ना आशु दादा, कीजिए मुंह मीठा।
1: भाई रज्जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आशीष सही रास्ता चुने, लेकिन दूर खड़ी मोगरा और उसकी माँ ये देख लेती है और देखिए कैसे पहुँच जाती है रज्जी को वहाँ से भगाने के लिए। वो धक्का देकर रज्जी को निकाल ही रही थी कि तभी रज्जी ने दे दिया न सिर्फ मोगरा और उसकी माँ को अल्टीमेटम, बल्कि जाते जाते आशीष से भी गुजारिश की है।

0: अगर अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों की जरा भी कदर है ना आशु दादा, तो कोर्ट आकर सच का साथ जरूर देना। और लगे हाथों इन दोनों के नाटक को भी देख लेना अपनी आंखों से। कोर्ट आइएगा वरना हम जरूर आएंगे आपको मुबारकबाद देने। इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं कहना।
1: ने आपको फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और यही चीज आज हमें एक्ट्रेस स्मृति खन्ना बता रही है, क्योंकि वो अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज और योग को शामिल करती हैं ताकि उनका तन और मन हेल्दी रहे।

0: है स्मृति खन्ना, जो काम के साथ साथ घर भी संभालती है। रियल लाइफ में तो ये कई किरदार निभाती है, लेकिन बात करें रियल लाइफ की तो उसमें ये माँ है, बीवी है और बेटी है, और इन सभी का फर्ज वो बखूबी निभाती है। फिटनेस का ख्याल रखती है, घर और काम को बैलेंस कर चलती है, और आज स्मृति खन्ना संग हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं। भाई ये काफी अच्छी एक्ट्रेस है, तरुण खन्ना की वाइफ है।
1: कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल ले।
0: और आज हम जानेंगे इनके बारे में कई और बातें। क्या है स्मृति का दिनचर्या, करेंगे स्मृति के घर की सैर,
1: थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है,
0: मिलेंगे स्मृति के बेटे और पापा से। तो चलिए सीधा चलते हैं स्मृति से करने खास मुलाकात, और करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। स्मृति अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखती है और एक भी दिन एक्सरसाइज मिस नहीं करती।

0: एक्सरसाइज सेशन की।
1: हेलो एवरीवन, मैं स्मृति खन्ना और आज मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि जब मैं शूटिंग नहीं करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। आप लोग आज मेरी बिल्डिंग में हैं, मतलब विजुअली आप मेरी बिल्डिंग में हैं, और शुरू करें चलें और देखें कि मैं कैसे अपने को मेंटेन रखती हूँ, क्या खाती पीती हूँ, मेरे घर में क्या क्या है, मैंने अपना घर कैसे रखा है। तो आप सभी इन्वाइटेड हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर फिटनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिटनेस है। पैसा गया आप कमा लोगे, है ना, कुछ भी गया आप वापस ले आओगे, लेकिन फिटनेस गई, आपकी हेल्थ गई, तो वो वापस नहीं आती। अगर एक बार आपकी हेल्थ खराब हो गई बुरी तरीके से, तो उसके लिए आधा घंटा निकालना, एक घंटा निकालना, 15 मिनट निकालना, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ये सब हमारे दिमाग में होता है। तो जब कई बार मैं शूट भी कर रही होती हूँ तो मैं जाकर वहीं वॉक कर लेती हूँ या कुछ ना कुछ क्रंचेस कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ और हेल्दी खाती हूँ। तो चले आइए, आइए मैं आपको जिम दिखाती हूँ।

0: तो गाइस मैं तैयार हूँ, मैंने अपने शूज पहन लिए हैं, अपनी पानी की बॉटल रेडी रखी है और सबसे पहले मैं करूँगी वार्म अप, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत बहुत जरूरी होता है, तो इससे इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आफ्टर एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरू करें वार्म अप से।
1: भाई आज स्मृति कार्डियो के साथ साथ मसल एक्सरसाइजेस भी करेंगी और बताएंगी कि कैसे वो इतनी सेहतमंद है। तो एक एक कर देखते हैं इनका ये वर्कआउट सेशन जिसके बारे में स्मृति हमें बता रही है।

तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा गाइस, आपको करना ही पड़ेगा, आपको जिम में आना पड़ेगा। और अगर आप जिम नहीं आ सकते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि घर में कैसे करें, बहाने हज़ार हैं, लेकिन अगर आप करोगे तो आप फर्क पड़ेगा।

मशीन को अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आपकी नी के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपने कैसे एडजस्ट किया है। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो जो वहाँ के ट्रेनर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरे हिसाब से क्या नंबर्स होना चाहिए।

हैमस्ट्रिंग्स भी करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हैमस्ट्रिंग्स मतलब पीछे वाली जो मसल होती है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग चेंज करके इसको अभी 1 पर 6 पे लेंगे. और अपने वेट थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, ये वेट बढ़ गया. और अपने पैरों को मैंने ऐसे फंसाया.

0: थोड़ा सा बाइसेप्स पे काम करेंगे
1: आज मैं सॉरी फुल बॉडी कर रही हूँ, वैसे मैं करती नहीं हूँ फुल बॉडी, मैं टारगेट करती हूँ कि अगर मैंने आज बाइसेप किया तो साथ में बैक करूँगी, बस दो मसल।

स्मृति का तो मोटो ही है, फिट है तो हिट है। ऐसे में जिमिंग सेशन तो पूरा हुआ, अब बारी योगा की, जिसे वो मिस नहीं करती। तो चलिए हम भी स्मृति संग सीधा चलते हैं और देखते हैं कैसा होता है इनका योगा सेशन।

ये है हमारा योगा रूम जहाँ आप मेरे साथ आए हैं। यहाँ पर हम योगा करते हैं, कई बार मेडिटेशन भी करते हैं, कई बार हम लोग ग्रुप क्लास भी करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। बहुत ही साफ सुथरा प्यारा सा है ये। तो जब भी मुझे सिर्फ मेडिटेशन करना होता है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैट वैट सब कुछ अवेलेबल है और आराम से मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ है। अगर आप मेंटली पॉजिटिव हैं तो आपकी लाइफ में यकीन मानिए सब अच्छा अच्छा होगा। और ये आपके हाथ में है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे रखते हैं, टेंशन को पकड़ के रखते हैं कि लेट गो करते हैं। लेट गो करेंगे वो आपकी शक्ति है, ठीक है। तो आइए एक दो आसन मैं आपको दिखाती हूँ करके। ये देखिए यहाँ पे दो मैट्स पड़ी हैं तो मुझे तो एक ही चाहिए। गाइस, क्योंकि मैंने जिम कर लिया तो मेरी बॉडी ऑलरेडी वार्म अप, तो मैं आपको एक दो आसन दिखाती हूँ। एक है धनुरासन जो मुझे बहुत पसंद है, वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक और दिखाती हूँ।

और मैं आपको दिखाती हूँ सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत अच्छा आसन है। इससे क्या होता है, पूरा जो ब्लड होता है वो आपके स्टमक आपके फेस की तरफ उल्टा फ्लो करता है। वैसे हम ग्रेविटी के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड नीचे जाता है, लेकिन सर्वांग आसन करने से क्या होता है, ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड आपके चेहरे पर ग्लो के लिए। तो लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको आप शुरू कीजिए, वॉल के सपोर्ट से कीजिए, और जब आपको महारत हासिल हो जाए तो आप अपने आप कीजिए।

अलोम विलोम करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि थंब से आप अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस को एक्सहेल करेंगे। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं।

जो शव आसन होता है उसको बोलते हैं सब आसनों का राजा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी पूरी बॉडी ग्रेजुअली रिलैक्स हो जाती है। आप अपने पैरों से सोचना शुरू करते हो कि मेरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं, फिर मेरे काफ्स, फिर मेरी थाइस, मेरा स्टमक, अपर बॉडी, हैंड्स, आपका फेस, सब कुछ। और थोड़ी देर 4-5 मिनट आप शवासन में रहिए, फिर देखिए कमाल।

0: जिम हो या फिर हो योगा, स्मृति को उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, उनकी बिल्डिंग में ही ये सब फैसिलिटीज मौजूद है। खैर, एक्सरसाइज सेशन तो पूरा हुआ, अब चलते हैं उस एरिया में जो है स्मृति का फेवरेट।
1: तो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, योगा भी हो चुका है, शवासन भी कर लिया है, बॉडी कूल हो चुकी है। नूपुर हंस रही है पीछे से। और अब मैं आपको ना, नूपुर और आप सभी को, जो मेरी इस बिल्डिंग का सबसे प्यारा एरिया है वो दिखाना चाहती हूँ। मतलब मैं वहाँ कुछ करूँगी नहीं, बस आपको एक मिनट में वहाँ पे दिखा के वापस मैं आपको अपने घर लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। यकीन मानिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है।

0: तो भाई वर्कआउट और सैर सपाटा कर श्रुति पहुंच गई है अपने घर पर और आज वो हमें करवाएंगी अपने होम स्वीट होम की सैर और बताएंगी कैसे उन्होंने और उनके हस्बैंड तरुण ने अपने इस प्यारे से घर को सजाया है, कौन सा है उनका फेवरेट कॉर्नर और मिलवाएंगी अपने परिवार वालों से भी।
1: तो गाइस अब हम बरसात का मजा लेके अब घर पे आ गए हैं जिसका आप सबको भी इंतजार होगा, तो आइए आइए प्लीज। गाइस मैं आप लोगों से ढेर सारी बात करना चाहती हूँ, मुझे भूख भी लगी है, मैं खाना भी चाहती हूँ, पर पहले ना मैं बहुत पसीने से तर बतर हूँ तो मैं चेंज करके आऊँ, मुझे आप एक मिनट दीजिए, बस मैं यूं गई और यूं आई। टन टन, अब मैं हो गई हूँ तैयार आप लोगों के लिए। मैं जिम से आकर कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ घर में, यकीन मानिए आपको पता ही होगा, पैजामे में और टी शर्ट्स में घूमती रहती हूँ, लेकिन क्योंकि आज आप मेरे घर आ रहे हैं तो मैं स्पेशली तैयार हुई हूँ। तो आइए आपको दर्शन कराया जाए अपने घर का, यहाँ से शुरू करें। ये गणपति जी हैं जो मेरे भाई हैं, तो वो आपको घर में हर जगह गणपति जी दिख जाएंगे। ये सब थोड़ी सी एंटीक चीज़ें हैं, ये हमें मुझे और तरुण को ट्रू वर्टिकल्स अवार्ड मिले थे, तरुण खन्ना स्मृति खन्ना। तरुण इस समय हमारे राम में बिजी हैं और सबको वो राम जी की महिमा दिखा रहे हैं शिव जी बन के, तो अच्छा है, मतलब उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। ये हनुमान जी और इधर नंदी जी, देख लीजिए आप, हमारे घर में आपको बहुत ही सात्विक माहौल मिलेगा। ये सेवन हॉर्सेस हैं, ये कहते हैं बहुत शुभ मानते हैं अगर आप अपने घर के अगर आप साउथ में ये लगाते हैं तो सात घोड़े इसको बहुत अच्छा माना जाता है, तो हमने सोचा कि इस दीवार को ऐसे डेकोरेट करें और ये हम दोनों की चॉइस थी, तरुण की और मेरी। ये हमारा टेबल है, ये एक मिरर है और ये बुद्धा जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और इधर आइए मैं आपको ये शिव जी से मिलवाती हूँ, ये बहुत ही रेयर शिव जी हैं, पंचमुखी शिव जी। शिव जी का एक ही मुख होता है बट इसमें आप देख सकते हैं पांच मुख हैं, ये शिव सागर रमानंद सागर जी के जो पोते हैं उन्होंने हमें गिफ्ट किया था, तो ये बड़ा ही प्रेशियस है हमारे लिए।

कि जब से शिव ने ये पेंटिंग दी है तब से तरुण कितनी बार शिव जी बन चुके हैं, ये मैंने अभी ना बात करते करते रियलाइज किया। वाह, तो यहाँ मैं उनको बोलूंगी ये बात,

0: प्लांट्स बहुत पसंद हैं, तो आपको मेरे घर के हर जगह देखोगे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं रखे मिल जाएंगे मुझे। ये भी, ये मुझे गिफ्ट किया था किसी ने। तो ये एक वॉल है बुद्धा जी की, जिसको मैंने कलरफुल ये लाइट से डेकोरेट किया हुआ है। ये मेरे बेटे का रूम है। अच्छा वो है नहीं, आ जाइए आप लोग। तो ये, उसको चेस बहुत पसंद है, तो मैंने इस चेस के थीम पे, लाइफ इज लाइक अ चेस गेम, यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट अ मूव, ये मैंने उसके लिए बनाया। तो इट्स इंस्पिरेशनल, वो अपनी सब चीज़ें लगाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी गणपति बप्पा बैठे हुए हैं, देख लीजिए। तो दिस इज अदम्याज रूम, और यहाँ पे भी जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स उस पर लगा हुआ है।
1: भाई फिलहाल तो तरुण शूटिंग में बिजी है, इसीलिए वो घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो नहीं है तो क्या हुआ, इनकी तस्वीरें तो है। अब बारी बाकी के घर की सैर करने की। तो भाई हमने घर की सैर तो कर ली, अब मिलते हैं स्मृति के प्यारे बेटे और स्मृति के पापा से।
0: आदम मैं आई थिंक अपने पापा के रूम में होगा। ये भी मुझे बहुत, ये मास्क है, जैसे हम एक्टर कहते हैं ना, मास्क पहन लेते हैं जब एक्टिंग करते हैं, तो ये एक वुडन मास्क है। आइए, ये तरुण की वॉल है, यहाँ पे भी आपको अफर्मेशंस दिख जाएंगे बहुत सारे। आई एम हेल्दी वेल्दी स्ट्रांग एंड फुल ऑफ एनर्जी, माई माइंड सेट इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी, आई नर्चर एंड चेरिश माई फैमिली विद लव, माई वर्क इज मीनिंगफुल एंड आई अचीव विद पर्पस। तो ये सब उनको काफी लोग बना कर देते रहते हैं, उनके जो फैंस हैं काफी चीजें, तो ये सब हैं। ये देखिए तरुण ने ये बनवाया था हमारे लिए, तरुण अदम्य एंड स्मृति ये है। और अभी ये ये हमारी हो गई 5-7 साल पहले, ये जब चाणक्य प्ले करते थे, गंजे हैं तरुण, तो ये चाणक्य प्ले करते थे, और ये उनके फैंस बना के उनको बहुत सारी ऐसे देते रहते हैं। तो ये सब बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं, पीछे भी होंगे, और अभी कुछ लगाने हैं, हम पूरी बॉल अभी हमने ये बनाई नहीं है, अदरवाइज ये हमारे राम का है। तो ये दिस इज, तो ये किसी फैन ने उनके सारे वो बनाए थे। तो आपने अदम्य का रूम देख लिया, तरुण और मेरा रूम देख लिया, अब मैं आपको बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलाने जा रही हूँ, जो अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती। और वो हमारे घर के एंकर हैं, उन्होंने पूरे घर को बांध रखा है, जो भी संस्कार, जो भी अच्छी वैल्यूज हम में है, और जो भी कहते हैं ना, इस घर का जो ये सात्विक माहौल है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो है मेरे फादर, जो हमारे साथ में रहते हैं, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड, एंड आफ्टर लूजिंग माई मदर इन 2018, सो मैं अपने पापा को साथ में ले आई थी, और कोरोना के बाद, कोरोना के पहले से ही वो मेरे साथ में हैं, और एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ। आइए आप कौन से मिलाएं, आपको अच्छा लगेगा। आपकी एक बेटी है और बेटा नहीं है ना, एक मैं ही हूँ, हाँ, है ना, तो आपको कभी कमी महसूस हुई कि आपको एक बेटा होना चाहिए था, होती है लोगों को?
2: नहीं, कभी नहीं।
0: जैसे मैं भी बेटा चाहती थी पापा, आप नहीं चाहते थे बेटा हो?
2: नहीं, बेटी से बेटा होता है, देखिए बेटी के बाद बेटा हुआ, डबल फायदा।
0: तो जो मैंने शो किया था पहला, घर की लक्ष्मी बेटियाँ, तो आप मानते हैं इस बात को?
2: उनकी तरह थोड़े कि लड़के के लालच में घर में
0: चार बेटियां हो गई। हाँ,
2: चार बेटियां हो गई, अब बेचा ले आया घर में, गलत बात। ये दादी वादी सम्मान थी हमने। हाँ,
0: तो आप खुश हैं मतलब ना?
2: जी बहुत खुश।
0: और पापा 83 इयर्स के हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट आती है घर में, और वो उनको बहुत कुछ ब्रिज पोज और काफ़ी कुछ हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, वो सब कराती है, क्योंकि मसल रहना बहुत ज़रूरी है। तो ही इज़ शक्तिशाली, प्रोटीन लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, नीचे घूमने जाते हैं। तो आप सब भी जो थोड़े ओल्ड हैं, ओल्ड नहीं मतलब गोल्ड हैं, वो सब एक्सरसाइज कीजिए और अपने को फिट रखिए। ये मत सोचिए कि हमारी तो एज हो गई, अब हमें कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है। बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, बॉडी मूवमेंट के लिए ही बनी है ना पापा
2: जी?
0: हाँ,
2: जब तक मूवमेंट तभी तक जीवन,
0: जब तक मूवमेंट तभी तक जीवन, ठीक है।
1: तो भाई घर की सैर के साथ साथ हम इनके परिवार वालों से भी मिल लिए, अब बारी पेट पूजा की, क्योंकि स्मृति ने वर्कआउट तो कर लिया लेकिन पेट पूजा नहीं की है, इसीलिए वो पहुंच गई हैं अपने किचन में, जहां वो बना रही हैं अपने लिए ये प्रोटीन शेक।
0: डॉक्टर से बात करते हुए प्रोटीन से मुझे याद आया कि मुझे भी तो प्रोटीन खाना है, मुझे है ना, और आपको बताना भी है कि मैं कैसे बनाती हूँ अपना प्रोटीन शेक, जो कि बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही यमी है। तो देखें, आपको अपना किचन भी दिखाती हूँ और प्रोटीन भी बनाती हूँ। ये हमारे किचन का डोर है, जब हम कुछ पार्टी वार्टी करते हैं उसको हम बंद कर देते हैं, और ताकि एसी की हवा इधर उधर ना जाए। आइए, तो हम अपने किचन में पहुंच गए हैं और अब मैं बनाने वाली हूँ अपना प्रोटीन शेक, जिसमें हम डालेंगे ब्लूबेरीज। आप स्ट्रॉबेरी, कोई भी बेरी डाल सकते हो स्वाद के लिए, और चिया सीड्स, आलमंड मिल्क, क्योंकि आलमंड मिल्क अपने आप में प्रोटीन है और लैक्टोज फ्री होता है। और प्रोटीन, फ्री प्रोटीन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मसल, आपने जिम में जो वेयर एंड टेयर हुआ है आपकी मसल्स का, उसको वापस नॉर्मल करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए तो यू नो आउटसोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है प्रोटीन को। प्रोटीन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर आपको लीन बॉडी चाहिए तो प्रोटीन इनटेक पे बहुत ध्यान दीजिए।

0: वैसे हम आपको बता दें कि स्मृति खन्ना को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की सीरियल घर की लक्ष्मी बेटियां से, उसके बाद ये पवित्र रिश्ता सीरियल में नजर आ चुकी है। इसके अलावा वो कई ओटीटी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी है। तो आइए स्मृति से ही जानते हैं कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की और कैसे वो मुंबई आई, क्योंकि स्मृति लखनऊ की रहने वाली है।
1: अब खाना पीना भी हो गया, सबसे मिलवा दिया, घर दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने अपने बारे में बताना चाहती हूँ। आप सभी जानना चाहते होंगे कि एक्टर कैसे बनते हैं। काफ़ी लोग मुझे लिखते भी हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम हमें भी एक्टर बनना है, क्या प्रोसीजर है। तो देखिए, मैं लखनऊ शहर से हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब स्कूलिंग सब लखनऊ से ही हुआ और कॉलेज भी मैंने वहीं से किया। आईटी कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की, एमए में मैंने ज्योग्राफी से एमए किया और वहाँ मैं पढ़ा रही थी। तो एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि लखनऊ में ऑडिशन हो रहा है क्रिएटिव आई का और वहाँ पे उस शो के लिए वो लड़कियाँ ढूंढ रहे हैं, न्यू फेसेस ढूंढ रहे हैं। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ क्यों आएंगे लेने के लिए, बम्बई में लड़कियाँ कम है उनके पास। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे बहुत इंसिस्ट किया एक दीदी थी उन्होंने, तो मैंने दिव्या दी ने, तो मैं गई और मैंने वो दिया विदाउट मेकअप, क्योंकि तब तक मुझे मेकअप का कोई सेंस ही नहीं था। मतलब मेकअप लखनऊ जैसे लोगों के मतलब कहाँ यूज़ करते थे तभी। तो मैंने ऑडिशन दिया और उनको मेरी वो रॉनेस ही पसंद आ गई शायद बॉम्बे में, कि हाँ कितनी रॉ है, बीच बीच में हंस दे रही है। और दे सिलेक्टेड मी एंड आई वॉज शॉक्ड, अरे ये क्या हुआ। और टिकट भी उन्होंने मुझे दिया। तो आप मानो कि मैं काम के साथ बॉम्बे आई। बहुत कम ऐसा होता कि आपको काम मिल गया और आप काम के साथ बॉम्बे आए हो। तो बहुत सपोर्ट रहा सबका, जी टीवी का, धीरज कुमार जी का, और शो का नाम था घर की लक्ष्मी बेटियां। आप सभी जानते हो उस शो को। आज भी जब मेरे घर में कोई काम करने आता है अर्बन क्लैप या कहीं से भी, बोलते मैम आपको देखा हुआ है, आप बेटियां में दुर्गा थे ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरा पहला शो था, मेरे दिल के बहुत करीब है। वो एक समय इंडिया का नंबर वन भी शो था, आपने बहुत बहुत प्यार दिया उसको, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उसके बाद मेरा सफ़र चलता रहा आगे, मैंने और भी काम किए, नेगेटिव रोल्स भी किए, देवी पार्वती भी बनी और काफ़ी एपिसोडिक्स भी किए, अभी वर्टिकल्स भी कर रही हूँ। बीच में ब्रेक लिया क्योंकि मैंने एक बेटे को जन्म दिया, वो भी ज़रूरी था बीच में, एक लड़की की लाइफ में वो भी पड़ाव आता है, तो वो भी था। और छोटी सी फैमिली है हमारी, आप सबसे मिली लिए हूँ एक्सेप्ट तरुण, जो कि हमारे राम में बिजी हैं, तरुण, मैं, अदम्य और मेरे फादर। तो छोटा सा परिवार है हमारा और आप सबका आशीर्वाद है, आप सब इतना प्यार करते हो हम सबको, थैंक यू सो मच।
0: वैसे बातों बातों में स्मृति बताना भूल गई कि एक और कॉर्नर है उनके घर का, जो है उनका फेवरेट कॉर्नर। तो आइए देखते हैं इनका ये फेवरेट कॉर्नर।
1: देखिए, इतनी बात आपसे की पर एक चीज मैं भूल गई। आप मेरे घर का ना एक फेवरेट जगह है मेरे घर में, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, लखनऊ में घर बड़े बड़े होते हैं, जो मेरा लखनऊ का घर है काफी बड़ा, छत है, सब कुछ है, पर बॉम्बे में वो मिलना नामुमकिन है। पर मेरे घर का एक बैल्कनी है मेरे घर में, जो मुझे बहुत पसंद है बॉम्बे में। आप यकीन मानिए, बैल्कनी जिसके पास है वो राजा आदमी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की बैल्कनी। फेवरेट जगह, अगर आप देखो सामने, अगर आप नुपुर जी दिखाओ तो पहाड़ दिख रहे हैं, फिल्म सिटी के पहाड़ हैं गाइस, जहाँ पे हीरो हीरोइन शूट करते हैं। और देखो आप, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे भी प्लांट्स लगा रखे हैं जितने मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी बॉम्बे में आ गए कि बैल्कनीज बड़ी नहीं बनाने देते हैं, तो इतनी नए घरों में ये प्रॉब्लम है। बट जितना भी मैं कर सकती हूँ इसमें ग्रीनरी मैंने किया है। और यहाँ पे भी आपको सात्विक चीजें दिख जाएंगी, बुद्धा जी है यहाँ पे, और सुबह सुबह सूरज यहाँ से निकलते हैं और मैं जल देती हूँ सुबह उठ के। तो बस यही था, थैंक यू सो मच सास बहू और बेटियाँ मेरे घर आने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बेटियाँ नाम तब से जुड़ा जब से हमने बेटियाँ शो किया, क्योंकि वो इतना बड़ा हिट था कि बेटियाँ नाम जोड़ना ही पड़ा एक मतलब प्रोग्राम में, सास बहू और बेटियाँ। तो सास बहू और बेटियाँ मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है। और धन्यवाद आप लोग आए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।
0: तो देखा आपने, कुछ ऐसी है स्मृति खन्ना रियल लाइफ में। उम्मीद है आपने इनके बारे में कई सारी बातें जानी होंगी। वैसे जाते जाते इनका डांसिंग टैलेंट देखना तो बनता है।

0: कि यूं ही स्मृति खन्ना अपने फैंस के दिल में बसी रहे। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: फाइनली रक्षित और अपराजिता आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। इनके एक होने का सपना आखिरकार पूरा हो रहा है, जिसमें घर के कुछ लोग शामिल हैं और कुछ नहीं।

जुड़ गया रक्षित और अपराजिता का गठबंधन। हो रहा है रक्षित अपराजिता का शुभ विवाह। रक्षित और अपराजिता की शादी की रस्में और कस्में। स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब रक्षित और अपराजिता एक होंगे। और इस अनोखी शादी में तो अपराजिता दुल्हन भी बनी है और साथ ही बनी है बराती भी। जरा देखिए कैसे दूल्हे राजा घोड़ी पर सवार है और दुल्हनिया बराती बन अपनी दादी के संग नाच रही है।

0: झूमते नाचते। रक्षित और अपराजिता हाथ थामे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें मिल गया सरप्राइज, जहां पर रक्षित के पापा और अपराजिता के पापा अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ पहुंच गए हैं इनकी शादी में शामिल होने, और ये बात रक्षित और अपराजिता की माँ को पता नहीं है।
1: आप सब यहाँ तो आपकी शादी
2: में, उनकी शादी में तो ऑलरेडी वीवीआईपी है, उनकी माँ है, जहाँ पर माता होती है वहाँ किसी और की जरूरत नहीं, उनको अपनी जिम्मेदारी वहाँ निभाने से। चलो चलो,
3: इट्स ग्रेटिफाइंग कि हम हमारी जो जर्नी थी ये 4-5-6 महीने की, उसमें हमें एक दूसरे का साथ मिला, एंड इट्स ग्रेट दैट रक्षित एंड अप्पू हैव कम टुगेदर इन सच अ वे दैट दे हैव गॉन अगेंस्ट देयर फैमिली, फैमिली के खिलाफ जाकर उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया, जो बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी बलिदान का देवा या देवी नहीं बना, विच इज अमेजिंग, और असली मजा तो अब शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा रक्षित और अपराजिता, उनके चेहरे की खुशी तो दुगनी हो गई है। जरा देखिए कैसे परिवार वाले उन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं, और दोनों खुश होकर मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं, और पहुंचते के साथ ही रक्षित और अपराजिता दोनों ने ही एक दूसरे के गले में जयमाला डाली और फिर हाथ थामे पहुँच गए शादी के मंडप में बैठने के।

शादी के मंत्र शुरू हुए, रस्में भी शुरू हो गई। ऐसे में अपराजिता के पापा ने आकर कन्यादान करना शुरू कर दिया। अपनी बेटी का हाथ रक्षित के हाथ में थमा दिया।

0: मेरे ख्याल से मैंने कोई ट्रेंड नहीं सेट किया. आई थिंक दे वर गोइंग फॉर पेस्टल क्योंकि डे वेडिंग थी और ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है. इट्स लवली.
1: एक्चुअली डार्क पिंक था, धूप है, बेबी पिंक बन गया.
0: उड़ गई, कलर उड़ गया.
1: गलत चॉइस है, हमें शॉर्ट्स में होना चाहिए था. जिस हिसाब से गर्मी है यहाँ पर उस हिसाब से मेरे ख्याल से शेरवानी इज अ बैड आइडिया. पर रीति रिवाज है तो पहनना पड़ा. अगली बार गोवा में करेंगे बर्मुडास में.
0: या कुछ अलग हमने इतनी बार कर लिया ना, अब नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी शुड बी लेस कंजर्वेटिव. दोस्ती
1: हां, पर दोस्ती का जो सफर है वो अब भी बरकरार है. एंड इट्स जस्ट बीन अ रियली रियली नाइस जर्नी एंड इट हैज रियली हेल्प्ड अस इन आवर परफॉर्मेंस टू बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर और हम काफी कुछ बकवास भी कर सकते हैं एक दूसरे के कैरेक्टर को लेकर. एंड वी डोंट रियली माइंड, हम अपने कैरेक्टर को लेकर, अपने आप को लेकर, हम दोनों के बीच में कोई ईगो नहीं है. सो इट इज जस्ट रियली रियली अ प्लेजर वर्किंग विद श्रुति.
0: बहुत मजा आता है.
2: बस सीरियल की कहानी में भी तो रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और यही दोस्ती का रिश्ता शादी के बंधन में बंध रहा है. और जैसे ही बारी आई साथ फेरे लेने की, कस्में खाने की और वादे निभाने की, तो देखिए कैसे रक्षित और अपराजिता दोनों ने ही पंडित के सामने अपनी बात रख दी कि वो अपनी कस्में खुद ही बनाएंगे और अपने वादे भी खुद ही निभाएंगे. ऐसे में दोनों एक एक फेरे ले रहे हैं और अपनी कस्में खा रहे हैं.

0: थोड़े वचन हमने इधर लिए, बाकी वचन हम पर्सनल लेंगे।
1: बाकी बोल वचन थे। लड्डू है, खाना है,
0: खाओ,
1: एंजॉय करो और पछताओ, दोनों। इट्स ऑप्शनल, इट्स योर चॉइस। दैट्स व्हाई ये चीज ना आप किसी को बता नहीं सकते कि शादी करो या ना करो। शादी इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड उसके बाद एक खूबसूरत जर्नी शुरू होती है, पर इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव और हर इंसान की जर्नी अलग होती है। हर इंसान को अपने लाइफ से अलग चीज़ें चाहिए। सो डिपेंड्स आपको लाइफ से क्या चाहिए। किसी को पर्वत चाहिए, किसी को जानवर चाहिए, किसी को फैमिली चाहिए। सो आप जिसके साथ खुश है उसके साथ खुश रहिए और इंजॉय करिए अपने लाइफ। केसरिया तेरा
2: इश्क है पिया। भाई साथ वचन लेकर दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर लिया है और फेरे लेने की खुशी भी एक दूसरे के ऊपर फूल बरसाकर जाहिर करती है।

0: लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसी वक्त वहाँ पर पहुँच गई रक्षित की माँ, जिसे देखकर रक्षित और अपराजिता दोनों ही हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही अपराजिता और रक्षित दोनों माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़े, रक्षित की माँ ने अपने कदम पीछे खींच लिए। यानी शादी के बाद अपराजिता की राहें इतनी आसान नहीं होंगी। सासू माँ के दिल में जगह बनाने के लिए अपराजिता को अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अबीरा की बेटी मायरा का दिल टूट गया है क्योंकि कबीर किसी और से प्यार करता है। अब ये सच है या कोई गलत फहमी, आइए देखते हैं।
0: कबीर के प्रपोजल को देख टूटा मायरा का दिल। पकड़ी गई मायरा की चोरी। रिश्ते में शुरू हुई गलत फहमी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कबीर की मदद करने के इरादे से मायरा कबीर के बुलाने पर गई तो थी, लेकिन वहाँ जाते ही उसे लगा है जोरदार झटका, क्योंकि वहाँ पर उसने देखा कि कबीर ने प्रपोजल की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन वो प्रपोज मायरा को नहीं बल्कि किसी और लड़की को कर रहा है। ये देख मायरा घबरा जाती है और कहीं न कहीं कबीर की नज़र भी उस पर पड़ जाती है, जिसके चलते मायरा उसे छिपने की कोशिश करती है। ऐसे में कबीर आकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है जो छिप रहा है, लेकिन कबीर उसे सब पता है। जरा देखिए कैसे छिपती हुई मायरा की वो न सिर्फ मदद करता है बल्कि उसके चेहरे से बलून भी हटाता है, जिसे वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी।

0: छुपने की दुनिया की सबसे फ्लॉप कोशिश करने के अलावा तुम यहाँ क्या कर रही हो?
1: तुमसे मतलब, तुम जो और प्रपोज करो।
2: मैडम,
3: हाँ तो मतलब कबीर के जो जेस्टर्स थे मायरा के लिए, जैसे उसने अपना क्रेडिट सैक्रिफाइस कर दिया और थोड़े बहुत ही क्यूट क्यूट जो सीन्स थे, तो मायरा को मतलब वैसा प्रॉपर वाला लव नहीं, बट मायरा कबीर को पसंद करने लगी है। एंड जब उसे ये चीज़ रियलाइज हुई तो नेक्स्ट डे वो आके देख रही है कि कबीर यहाँ किसी और लड़की को ही प्रपोज कर रहा है। तो वैसा होता है ना, दिल जुड़े बिना ही टूट गए, वो वाला सीन है मायरा के साथ। दिल जुड़ने से पहले ही उसका थोड़ा सा दिल टूट जाता है, क्योंकि वो देखती है और फुल ऐसा बिल्ड है, बिल्डअप है कि वो ही कबीर ही उस लड़की को प्रपोज कर रहा है एंड ऑल एंड ऑल, तो मायरा का दिल टूट जाता है।
4: भाई मायरा तो गलत फहमी की शिकार होकर वहाँ से चली गई है और कबीर भी ये देख हैरान है, लेकिन कबीर चाहकर भी उसे ये नहीं बता पाया कि ये प्रपोजल शूट कर रहा है किसी और कपल के लिए।
3: रिवील होता है कि वो प्रपोजल शूट कर रहा था, लड़का कोई और ही था जो प्रपोज कर रहा था, ये चीज मायरा को बाद में पता चलती है और फिर वो फिर से खुश हो जाती है।
4: अब सच्चाई जब पता चलेगी तब पता चलेगी। फिलहाल तो मायरा का दिल टूट गया है और वो रोते हुए अपने घर पहुंच गई है, पर उसे ये नहीं पता कि घर में उसकी माँ अभीरा गुस्से से उसका इंतजार कर रही है। तभी तो देखिए, जैसे ही मायरा आई, अभीरा ने उस पर बरसना शुरू कर दिया, क्योंकि अभीरा से वो झूठ बोल कर जो गई थी। ऐसे में मायरा अपनी माँ से माफी मांग रही है, लेकिन अभीरा गुस्सा उतार रही है।
5: अपने करियर की नैया पार नहीं हो रही और आपको दूसरों की मदद करने जाना है।
6: मायरा, आपके एंट्रेंस एग्जाम सर पर है।
1: मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आई एम सो सॉरी।
6: आप कितनी बार सॉरी बोलोगे और कितनी बार सेम गलती करोगे? अपने फायरफ्लाई फेस्टिवल में जाने वाली बात भी हमसे छुपाई, तभी भी आपके कहने पर मैंने पापा से कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज मैं
1: मम्मा प्लीज इस बार भी पापा को कुछ मत बताना।
6: अगर आप में अपने झूठ का अंजाम भुगतने की हिम्मत नहीं है तो आप झूठ क्यों बोलते हो और ऊपर से मुझसे भी बुलवाते हो? हॉरिबल मायरा,
1: प्लीज बस लास्ट टाइम पापा को कुछ मत बताना। मम्मा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा।
6: कैसा कभी नहीं होगा? मेरी तो आखिर समझ में ही नहीं आ रहा है आजकल क्या हो रहा है।
1: सॉरी, अब मैं अच्छे से पढ़ूंगी और एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक करूंगी, काना प्रॉमिस। अपने करियर के लिए बहुत सीरियस हूँ मम्मा।
5: ऐसा लग तो नहीं रहा है।
4: भाई मायरा की इन हरकतों ने कहीं ना कहीं अभीरा को डाउट करने पर मजबूर कर दिया है, जिसके चलते अभीरा अब हर वक्त मायरा पर निगरानी रख रही है। ऐसे में देखना होगा कि कैसे अरमान अभीरा का साथ देगा और उसे समझाएगा बुझाएगा, क्योंकि उसे अपनी मायरू पर पूरा यकीन है। देखना होगा कि ये विश्वास क्या रंग लाएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: हम आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग, जो है थोड़ी छटपटी, थोड़ी मसालेदार। तो चलिए देखते हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
8: क्या हुआ मोहिनी को? सब ठीक है।
4: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए यामी गौतम की आने वाली फिल्म नए नवेली का रॉकिंग टीजर, जहां पर यामी गौतम नजर आएंगी अनोखी डायन के रूप में, और ये डायन डराएगी भी और हंसाएगी भी।
8: सतराम से वर्दस वाली साक्षात डायन।
9: बस डायन, दो डायन, तीन पिशाच और चार भूत तो मैं सुबह नाश्ते में खा जाती हूँ। अ लिटिल रिक्वेस्ट, थिंक बिग।
4: खबरें आ रही थी कि डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की आने वाली फिल्म मीना कुमारी बायोपिक में नजर आएंगे सैफ अली खान और उनकी जोड़ी जमेगी तृप्ति डिमरी से, लेकिन अब ये खबर खुद डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने खारिज कर दी है। अपने सोशल अकाउंट से उन्होंने अपने फैंस को ये जानकारी दी है कि ये दोनों उनकी फिल्म में नहीं है। प्रणाली राठौर से जुड़ी आ रही है रॉकिंग न्यूज। खबरों की माने तो प्रणाली राठौर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग अंदाजों में नजर आएंगी, क्योंकि तीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि अब तक प्रणाली ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है। अब ये प्रोजेक्ट्स टीवी सीरियल होंगे या फिर वेब सीरीज, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देख लीजिए कलर्स के सीरियल आरंभी का ये प्रोमो, जहां पर आरंभी विश्वास और अवंतिका की सच्चाई जानने के बाद देगी अवंतिका को अल्टीमेटम, लगेगा विश्वास को झटका।
2: सानिया, तुम्हारी और विश्वास की बेटी, तुम अपनी बेटी को यूज करके इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो? ये जो आग लगाने जा रही हो, अगर उसकी आंच भी मेरे विहान पर आई ना, तो मैं सब कुछ राख कर दूंगी।
10: तुम्हारा भी को मेरे और अवंतिका के रिश्ते के बारे में सब पता है।
4: कलर्स के सीरियल सहर में जल्द ही माहिद को लगेगा शौक, क्योंकि उसकी सहर होने वाली है हैदर की। देख लीजिए सीरियल का ये प्रोमो।
11: मुफ्ती साहब, हम निकाह करने जा रहे हैं, बस आपसे दुआ की गुजारिश, मिलिए हमारी होने वाली बेगम से। सहर से
12: हैदर भाई, हम दुआ करेंगे, जिसने आपका हाथ थामा है वो आपका हाथ कभी ना छोड़ कर जाए।
2: ये निकाह मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी है माहिर। अम्मी के कत्ल के पीछे खूबी जानी है, ये साबित करने का ये एक आखिरी रास्ता।
13: प्लीज वेलकम अभिषेक कुमार, अनिता हसनंदानी, मनीषा राणे, हिना खान।
4: सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में खास मेहमान बनकर आएंगी हिना खान, मनीषा रानी और अभिषेक कुमार। देख लीजिए इस रियलिटी शो का ये प्रोमो।
14: हाँ हाँ, बिहार से। आप कहाँ से हैं?
15: मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का ही है, लेकिन होम टाउन मेरा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश।
14: आप दिखते तो लंदन से हैं।
16: दिखते तो लंदन से हैं।
14: आपका इतना शार्प जॉ लाइन, मेरे को तब से वही लग रहा था कि ये तो इंडिया का है नहीं, ये तो बाहर का ही माल, मतलब माल, मतलब
13: बाहर का ही माल। मनीषा जी, ये बहुत अच्छा डांसर है और आप भी बहुत अच्छी डांसर है। जब यूपी और बिहार एक साथ मिल जाए तो धमाका होता है।
14: बिल्कुल,
13: वो धमाका हमारे स्टेज पे भी होना चाहिए।

0: भैया गर्दा उड़ा दिए, भैया गर्दा उड़ा दिए। मनीषा कैसा लगा हमारे प्रिंस पांडे के साथ डांस कर?
1: इससे पूछेगा ना, he's the lucky one who's dancing with Manisha Rani.
2: Welcome to the Indian Game Show with Neena Gupta and Arjun Bijlani.
3: इसी के साथ सोनी टीवी के रियलिटी शो द इंडियन गेम शो में नजर आएगी चुंबक की पूरी कास्ट, जिनको मिलेगा सभी प्रतियोगियों के साथ गेम्स का मजेदार डोज।
4: अरे बस करो यार, हमें तीसरा बच्चा चाहिए, इतनी जल्दी नहीं चाहिए। तू कैसे शौक पालता है अभिषेक?
5: अभिषेक की सुहागरात का बेड भी ऐसे ही होना चाहिए।
0: चल मेरे हाथी।
4: भारती तेरे लिए गाना गा रहे हैं।
5: क्यों भाई क्यों?

इसी के साथ द इंडियन गेम शो सेट के बाहर स्पॉट हुई हैं भारती, हर्ष, करण पटेल, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, श्रेया कालरा, अभिषेक कुमार, जन्नत जुबैर और बाकी प्रतियोगी जो तैयारी कर रहे हैं द इंडियन गेम शो के नए एपिसोड की शूटिंग की।

0: कलर्स के सीरियल बरेली के बच्चन का ये प्रोमो देख लीजिए, जहां पर त्योहार के मौके पर संगम देगी कृष्णा को जोरदार झटका डाइवोर्स का।
1: तुम दोनों ये नकली शादी करके ना फंस चुके हो। जब तक तुम इस नकली रिश्ते में बंधे रहोगे, ना तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे और ना वो।
2: कृष्णा, हमें आपसे कुछ बात करनी है।
3: आदेश करिए।
2: हमें डिवोर्स चाहिए।
4: डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए।
0: सीरियल पांड्या स्टोर और सैराब फेम एक्टर रोहित चंदेल को मिल गई है रिहाई। इस बात की जानकारी खुद उनके भाई मोहित चंदेल ने दी है। बता दें कि जुलाई के महीने में रोहित चंदेल को गिरफ्तार किया गया था। देख लीजिए खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का ये प्रोमो, जहां पर गौरव खन्ना और रोहानिका धवन दोनों का डर डर कर बुरा हाल हो रहा है और रोहित उन पर बरस रहे हैं।
5: बीम वायर से सपोर्टेड है, वायर में इलेक्ट्रिक करंट, फ्लैग में भी करंट,
6: करंट है, मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी सर।
7: चल हमारे लिए कर ले, एक बार ऊपर चला जा।
8: गौरव, वी कैन डू इट।
9: शॉक नहीं ले सकते
5: हैं। सीरियसली, आप में से किसी को नहीं करना है तो अभी निकल जाओ, किंडरगार्टन के बच्चे भी कर लेंगे स्टंट।
10: Welcome to this world. I'll always take care of you.
11: उनकी बेटी अपेक्षा 8 साल पहले गायब हो गई थी, तो ये लोग किसी की तलाश में हैं।
12: हम ढूंढ लेंगे उसे।
13: हमारी बेटी चुरा कर अब हमें फोटोज भेज रहा है।
14: शायद ये किडनैपर आप लोगों के अपने सर्कल में से ही कोई हो।
15: अभी के अभी कॉरिडोर 3 और 4 का CCTV फुटेज डिलीट कर।
0: नेटफ्लिक्स पर जल्द ही आने वाली सीरीज शक का प्रीमियर हुआ। जहां पर पहुंच गई हैं परिणीति चोपड़ा, अनूप सोनी, सोनी राजदान, ताहिर राज बसीन, हरलिन सेठी, ध्रुव चौधरी, सुमित व्यास। इसी के साथ वहां पर नजर आई हैं जेनिफर विंगेट भी। सीरीज शक में जेनिफर विंगेट भी एक मुख्य किरदार निभा रही है और इसी सीरीज के साथ वो एक्टिंग जगत में फिर से वापसी करने जा रही है।
16: I had another episode.
17: अपेक्षा, सोनम, आप कौन?
16: तुम अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क समझते हो या नहीं?
18: ताहिले?
16: ले लूंगी।
18: कोई है जो तुम्हें ऐसा महसूस करा रहा है जैसे तुम पागल हो गई हो।
16: ऑलमोस्ट हैड अ बट मेरे हाथ से निकल गई।
18: कौन?
16: अरे किडनैपर।
18: अनीता, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी है।
16: तुझे भी पागल कर रही है तेरी बीवी। ये मेरी अपेक्षा है, मैं जानती हूँ।
19: रिया तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम बीमार हो। यू शुड बी इन अ मेंटल हॉस्पिटल।
16: सबको सब कुछ पता चलने वाला है।

0: उत्सव का माहौल है पापा, त्योहार के रंग चारों तरफ उड़ रहे हैं।
1: स्टार प्लस की सीरियल क्यों की सास भी कभी बहू थी 2 में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि होने वाली है मिहिर की वापसी। देख लीजिए प्रोमो।
0: हार्ट शांति निकेतन से दूर है, लौटा दो पापा, हमारे घर के मुखिया को लौटा दो।

0: एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे लॉर्ड्स में इकलौते इंडियन बैट्समैन है जिसने सेंचुरी मारा।
1: ऐसे लग रहा है इंडिया को वर्ल्ड कप जीता के आया है।
2: सोनी टीवी के शो फैमिली फुल हाउस का प्रोमो देख लीजिए, जहां पर रोहित शर्मा कर रहे हैं होस्ट और पहुंच गई है उनकी इंडियन क्रिकेट टीम।
3: पूरे इंडिया के फेवरेट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई।
1: ये काम सिर्फ रोहित शर्मा कर सकते हैं कि ऑडियंस कहीं भी हो उसे स्टेडियम बना ही देते हैं।

0: और 19 सितंबर टेलीविजन पर मेरा डेब्यू है. वेलकम टू फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा.
1: सन्नियों पर जल्द ही आने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है जाने वफा. देख लीजिए इस सीरियल का टीजर.
2: जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं.
3: आज बहू और बेटियां का मजेदार सफर आज यही खत्म होता है. अब कल फिर होगी आपसे मुलाकात और आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन जगत के सुहाने सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके फेवरेट सीरियल्स, ओटीटी और सितारों से जुड़ी मजेदार न्यूज. तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल. नमस्कार.

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मां बिंदल कुलदेवी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन। कोलकाता से आए कलाकारों ने देवी मां का किया अनुपम श्रृंगार, विशेष आरती के साथ हुआ हवन पूजन। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समेत को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम, पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस, करोदा गांव के मेले में पूरी से खरीदारी परंपरा। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई हनुमान अंश, फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, देश ही नहीं दुनिया भर से मिल रहा है दर्शकों का प्यार। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे विदेशी मेहमान, भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम, आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक।

0: दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपए। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: सीकर में भादो अमावस्या पर बिंदल कुलदेवी मंदिर में मेहंदी उत्सव का आयोजन, देशभर से श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। इस खास आयोजन पर बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल, भक्तिभाव से गाए मंगल गीत और हाथों में रचाई मेहंदी। श्रद्धालुओं ने बंगाली ढोल की थाप पर किया धुनूची नृत्य, महिलाओं ने माता रानी को समर्पित सिंदूर बंगाली परंपरा पर आधारित सिंदूर खेल खेला। कोलकाता से विशेष रूप से मंगवाए गए फूलों से मां बिंदल कुलदेवी की प्रतिमा का किया गया श्रृंगार, अर्पित की गई 1 क्विंटल फूलों की गजरे की माला। भादो अमावस्या को लेकर कुलदेवियों को धोक लगाने देशभर से पहुंचे प्रवासी, शहर के आधा दर्जन से अधिक शक्ति मंदिरों में धार्मिक आयोजन। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों से रंगा पूरा देश, पंडालों को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप, तैयार की जा रही है बप्पा की विशाल मूर्ति। कर्नाटक के बेलगामी में चरम पर भव्य गणेशोत्सव की तैयारियां, ढोल नगाड़ों के बीच अपने अपने पंडालों में भेजी जा रही हैं गणपति की विशाल प्रतिमाएं। अलग अलग आकारों और स्वरूपों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, सड़कों में गणपति बप्पा मौर्य का उद्घोष, भक्तों में उत्साह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तैयार की जा रही है गणपति की कई तरह की प्रतिमाएं, जोरों पर मूर्तियों में रंग भरने और सजाने का काम जारी। वाराणसी में भी बप्पा की मूर्तियों का निर्माण कार्य जोरों पर जारी, घर से लेकर पंडालों के लिए बनाई जा रही हैं प्रतिमाएं। गणेशोत्सव पर अकोला के पर्यावरण प्रेमी शरद कोकटे ने दिखा अद्भुत हुनर, आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई गणेश प्रतिमा। पर्यावरण बचाने का संदेश देते हुए बनाए गए मिट्टी के बप्पा, 20 साल से चला रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की मुहिम। बप्पा आए प्रकृति भी मुस्काए के संदेश के साथ घर पर ही इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति बनाने की अपील, बच्चों को भी आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संस्कार देने की कही बात। पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे ने जल संरक्षण पर भी दिया जोर, गणपति विसर्जन से जल स्रोत बचाने की पहल। घर पर ही बप्पा के विसर्जन करने की ताकीद की, प्रकृति बचाने के साथ गणेशोत्सव मनाना इसका मकसद। जयपुर में गणेशोत्सव से पहले बप्पा के भोग का नया ट्विस्ट, 11 तरह के मोदक, 14 वैरायटी के लड्डू तैयार, मोदक में आया लोटस बिस्कॉफ का स्वाद। पारंपरिक मिठाई को मिला मॉडर्न टच, नटेला व्हाइट चॉकलेट मोदक बना आकर्षण का केंद्र, जेंजी के लिए खास फ्लेवर तैयार, मैंगो सिगार से बदला मोदक का स्वाद। इस बार मिठाई में दिखा नया एक्सपेरिमेंट, मोदक में देसी स्वाद भी बरकरार, मथुरा पेड़ा मावा और मोतीचूर मोदक शामिल। रोज गुलकंद और ठंडाई केसर मोदक का जलवा, कीवी आलमंड और बटरस्कॉच मोदक बने खास, कीवी आलमंड डिलाइट मोदक ने भी खींचा सबका ध्यान। एक बॉक्स में कई स्वादों का सरप्राइज, लोगों को लुभा रहा है काजू कतली मोदक का स्वाद, मोतीचूर से बना बप्पा का खास केक, लड्डू केक को बादाम पिस्ता से सजाया गया। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, मोदक की लगातार बढ़ रही है डिमांड, तरह तरह के मोदक से सजे बाजार। बप्पा के भोग की खास तैयारी, लाडू सम्राट बना खास आकर्षण, 1967 से स्वाद की पहचान बरकरार। लड्डू सम्राट के मोदक मशहूर, प्रसाद बनकर घर घर तक पहुंचते हैं, मोदक की कई खास वैरायटियां तैयार। गणेशोत्सव से पहले मिठाई बाजार हुए गुलजार, उकड़ीचे मोदक की सबसे ज्यादा डिमांड, मोदक की बिक्री में बड़ा उछाल। मोदक खरीदने उमड़ रही है लोगों की भीड़, बप्पा के पसंदीदा भोग पर नजर, परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम। मुंबई में मोदक की मिठास, घर घर बन रहे हैं उकड़ी के मोदक, गणपति बप्पा का है प्रिय भोग। उखड़ी का मोदक बना खास आकर्षण, मुंबई में घरों में उखड़ी के मोदक बनाए जाने की खास परंपरा। चावल के आटे से बनता है उखड़ी का मोदक, चावल के आटे में मीठे के मिश्रण से बढ़ता है मोदक का स्वाद। उखड़ीचा मोदक महाराष्ट्र की पहचान, परंपरा और संस्कृति से है जुड़ा। गणेशोत्सव में मोदक का प्रसाद रिश्तेदारों को भी बांटते हैं। सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम, मोदक बनाने का उत्साह बरकरार। लालबाग और काली चौकी में मोदक की रौनक। शिरडी के साईं दरबार में भक्त की अनोखी भेंट, छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। 9 तोले का है ये सोने का मुकुट, 14 लाख रुपए है अनुमानित कीमत। इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। मनोकामना पूर्ण होने पर सपरिवार मंदिर समिति को भेंट किया गया ये मुकुट। 55 वर्षों से लगातार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आता है ये परिवार। महाराष्ट्र के परभणी में दिखी बैलपोल उत्सव की रौनक, किसानों ने अपने बैलों का किया भव्य श्रृंगार, जताया आभार। पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभराज का जुलूस, रंग बिरंगे रंगों में सजाए बैलों के सींग। बिहार के बोधगया में दिखा अध्यात्म का अनोखा नजारा, विदेशी श्रद्धालुओं ने 4000 दीपों से बनाया धर्म चक्र की खास पूजा। पूर्वजों की शांति के लिए थाईलैंड, ताइवान और जापान से आए विदेशी श्रद्धालुओं ने जलाए दीप, सुख समृद्धि की भी कामना की। विश्व शांति के लिए किए गए विशेष अनुष्ठान, शंकराचार्य मठ में आयोजित किया गया दीप उत्सव। विदेशी श्रद्धालुओं के लिए बौद्ध भिक्षुकों ने की पूजा अर्चना, सनातन मंत्रों का उच्चारण किया। बोधगया में 6 दिन तक होगी विशेष पूजा अर्चना, 7वें दिन होगा हवन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाइयों और बहनों, नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: कौन से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है? ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: राजस्थान के फतेहपुर शिखावटी में माँ बिंदल कुलदेवी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन, कोलकाता से आए कलाकारों ने देवी माँ का किया अनुपम श्रृंगार, विशेष आरती के साथ हवन पूजन। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम, पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस, करोदा गांव में मेले में पूरी से खरीदारी परंपरा। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुए हनुमान अंश, फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, देश ही नहीं दुनिया भर से मिल रहा है दर्शकों का प्यार। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे हैं विदेशी मेहमान, भारत मंडपम में सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम, आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मिलेगा इससे लाभ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। भक्तों का बेड़ा पार करने विघ्नों को हरने आने वाले हैं विघ्नहर्ता। पंचांग की गणना कहती है कि 14 सितंबर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आरंभ हो जाएगा, जिसकी तैयारियां महीनों पहले से ही भक्त आरंभ कर देते हैं। हर तरफ रहेगी गणपति के इस उत्सव की रौनक, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे गणपति के इस दिव्य उत्सव का शुभ लाभ आपको भी मिल सकता है, कैसे करनी है गणपति बप्पा की पूजा की तैयारी और पूजा की विधि विधान से लेकर गणपति की मूर्ति के सही चयन से जुड़ी हर छोटी जानकारी आज आपको इस शो में मिलने वाली है।

अपने भक्तों का करने कल्याण, मंगल मूर्ति पधारेंगे आपके द्वार। गली और मोहल्लों में सज गए हैं पंडाल, चारों तरफ होगा बप्पा मोरिया का गुणगान। आप भी कीजिए गणपति के सत्कार की तैयारी, विघ्नहर्ता की कृपा से दूर होगी जीवन की दुश्वारी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यही वो तिथि है जब हर साल आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए गणपति इस धरा पर पधारते हैं। माना जाता है कि इन 10 दिनों में गणपति भक्तों के साथ रहकर उनके सुख दुख का हिस्सा बनते हैं, उनके सारे दर्द दूर करते हैं।

मान्यता है कि इस दौरान गणपति अपने भक्तों को वरदान देते हैं। वरदान जीवन में ऐश्वर्य और खुशहाली का, वरदान बुद्धि और ज्ञान का, वरदान हर क्षेत्र में तरक्की का। इसीलिए बाप्पा के भक्त उनके स्वागत में जी जान से जुटे होते हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं 10 दिन के गणेश उत्सव की क्या है महिमा।

गणेश महोत्सव का पर्व मुख्यतः भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस पर्व का आरंभ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होता है, समापन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को होता है। लगभग 9 दिन का ये पर्व गणेश नवरात्र कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि इस समय भगवान गणेश धरती पर रहते हैं, जहां वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार ये गणेशोत्सव का पर्व 14 सितंबर से आरंभ हो रहा है। इस महापर्व का समापन 25 सितंबर को होगा।

0: तो आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे कि कैसे 10 दिवसीय महोत्सव की आपको करनी है तैयारी, साथ ही मूर्तियों का कैसे करें चयन। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस बार भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।
1: पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 7:06 पर शुरू होगी और ये तिथि 15 सितंबर को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। और इस तिथि में यानी कि 14 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। और इस दिन घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है वो भी शुभ मुहूर्त में स्थापित की जाएगी।
0: भादो शुक्ल चतुर्थी 14 सितंबर को सुबह 7:06 पर आरंभ हो रही है, जो 15 सितंबर को सुबह 7:44 तक रहेगी। गणपति स्थापना मध्याह्न काल में शुभ मानी जाती है। ज्योतिषी बताते हैं कि सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 तक गणपति की मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त है।
1: गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए मध्याह्न का समय खास मना गया है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 तक। हालांकि अलग अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार पर पूजा के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए आप अपने शहर के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और समय अवश्य देखें।
0: माना जाता है कि गणेशोत्सव आत्म शुद्धि का भी पर्व होता है, जब भक्त अनंत चतुर्दशी तक बाप्पा का विधिवत पूजन करते हैं और उपहार स्वरूप बाप्पा देते हैं बल, बुद्धि, संग, ज्ञान का वरदान।
2: तो भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक, शुभारंभ और सद्बुद्धि के प्रतीक भी हैं। इस गणेश चतुर्थी पर गणपति से केवल धन और सफलता न मांगे बल्कि यह भी मांगे कि हे गणपति महाराज, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें और गलत मार्ग से आप बचाएं। क्योंकि जब बुद्धि सही होती है तो जीवन के अनेक विघ्न अपने आप दूर होने लगते हैं।
0: चारों तरफ गणेशोत्सव का शोर सुनाई देने लगा है। बाजार गणपति की मूर्तियों और सामग्री से पट गए हैं। गांव गांव, शहर शहर सजेंगी झांकियां, गणपति बाप्पा मोरिया के लगेंगे नारे। भक्तों के जीवन से हर विकार हरने जो आ रहे हैं बाप्पा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गणपति को प्रथम पूज्य का स्थान मिला हुआ है। किसी भी आराधना के आरंभ में या अनुष्ठान में भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं होता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार करनी है आपको गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के साथ पूजा उपासना।
2: गणेश चतुर्थी से पहले घर में पूजा स्थान को अच्छी तरह से उसकी सफाई करें। जिस स्थान पर गणेश जी की स्थापना करनी है वहां स्वच्छ चौकी रखें और उसके ऊपर साफ वस्त्र बिछाएं। पूजा के लिए सबसे पहले फल, दूर्वा फल, फूल, नारियल, अक्षत, दीपक, चंदन, मोदक या भी नैवेद्य भोग के रूप में जैसी पूजा की सामग्री तैयार रखें। और एक बहुत जरूरी बात कि गणपति की मूर्ति खरीदते समय, लेते समय संभव हो तो प्राकृतिक मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देना चाहिए।
0: कैसे करें गणपति का पूजन? अगर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है तो नियमित रूप से दोनों वेला उनका विधिवत पूजन करें। दिन भर जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें, अन्यथा सामान्य जीवनचर्या जीकर दोनों वेला उनकी पूजा करें। प्रातःकाल और सायंकाल दीपक जलाकर गणेश जी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल और दूर्वा अर्पित करें, दोनों वेला आरती करें, 11, 21 या 108 लड्डुओं का भोग लगाएं, अपनी इच्छा अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, प्रसाद का वितरण करें और अन्न वस्त्र का दान करें। जितने दिन महोत्सव चल रहा है उतने दिन पूर्ण सात्विकता का पालन करें। अनंत चतुर्दशी के दिन चाहे तो उपवास रखकर विसर्जन में शामिल हो। हम सभी जानते हैं कि गणपति महोत्सव में घर घर में हो जाता है गणपति का वास, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति की अलग अलग मूर्तियों की उपासना क्यों होती है? क्या गणपति की हर मूर्ति में छिपा है मनोकामना पूर्ति का महामंत्र? श्री गणेश की अलग अलग मूर्तियों की महिमा हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हर शुभ कार्य का आरंभ गणपति की उपासना से किया जाता है। भक्तों के सारे दुख सारी विपत्तियों का अंत कर देते हैं विघ्नहर्ता गणेश, तभी तो वो सुख करता और दुख करता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आप गणपति महोत्सव का पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो श्री गणेश की अलग अलग मूर्तियों की महिमा और उनके पूजन के लाभकारी प्रयोग भी समझने आपके लिए बेहद जरूरी है।

अब हो जाएगा सभी कष्टों का अंत। भक्तों पर कृपा बरसाएंगे एक दंत। रंग बिरंगी मूर्तियों से सज चुके हैं बाजार। गणपति की कृपा से महकेगा आपका घर संसार। हर कोई अपने घर में गणपति को लाना चाहता है। कोई छोटे गणपति खरीदता है तो कोई बड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति की मूर्तियों में न सिर्फ भक्तों के लिए संदेश छिपे होते हैं, बल्कि इन अलग अलग मूर्तियों का ज्योतिषीय महत्व भी है। इन भांति भांति रंग बिरंगी मूर्तियों का ज्योतिषीय महत्व हम आपको आगे बताएंगे। बाजार मूर्तियों से गुलजार है। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है।

आरंभ होने वाली है 10 दिवसीय गणपति आराधना का दौर। सुनाई देंगे गणपति बाप्पा मोरिया के नारे। गणपति अपने प्रिय भक्तों के घर मेहमान बनकर जो आने वाले हैं, साथ ही धरा पर बढ़ जाएगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार, क्योंकि श्री गणेश अकेले नहीं आते हैं, उनके संग आती हैं रिद्धि और सिद्धि, और जहां रिद्धि और सिद्धि होंगी वहां होगी समृद्धि।

0: पार्वती नंदन के जन्म की कथा भी कम रोचक नहीं है। चलिए आपको वो पौराणिक कथा भी बताते हैं जब पिता की रची लीला ने माता पार्वती को विचलित कर दिया था। तब उमासुत को गजानन नाम की उपमा मिली।
1: माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण डालकर उसे अपना पुत्र बनाया। माता ने गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं किसी को अंदर प्रवेश न करने दें। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। इससे भगवान शिव और गणेश जी के बीच संघर्ष हुआ। क्रोधित होकर के भगवान शिव ने गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती जी को पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। तब भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। देवताओं ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया। इस प्रकार गणेश जी को नया जीवन मिला। भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है।

0: गणपति के अंग अंग से बरसती है शुभता। माना जाता है कि महादेव की तरह ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं गणपति, इसलिए छोटी सी पूजा से भी उनकी कृपा का प्रसाद पाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं? चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं इस पर ज्योतिष के जानकार।
1: क्या आपको पता है कि गणेश जी की अलग अलग मुद्राओं और स्वरूपों को अलग अलग भावों से जोड़ा जाता है? बैठी हुई गणपति की प्रतिमा दर्शकों घर में सुख शांति और स्थिरता की भावना से स्थापित की जाती है। खड़े हुए गणपति की प्रतिमा सक्रियता, उत्साह और कार्य क्षमता के प्रतीक माने जाते हैं। वक्र तुल्य गणपति दर्शकों बाधाओं को दूर करने वाले स्वरूप के रूप में पूजित है। लंबोदर गणपति समृद्धि और संतोष से जुड़े स्वरूप के रूप में माने जाते हैं। तो याद रखिए गणपति जी का कोई भी स्वरूप श्रद्धा से पूजना ये मुख्य है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि आप जब घर लाएं गौरी नंदन को तो उनकी मूर्ति से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी पहले जान लीजिए। माना जाता है कि श्री गणेश की अलग अलग मूर्तियों के पूजन से अलग अलग लाभ पाए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन सी कामना के लिए किस रंग की मूर्ति को अपने घर लेकर आए। गौर से देखिए। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में ही की जाती है। हल्दी से बनी हुई या हल्दी का लेपन की हुई मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के गणपति को रणमोचन गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी रक्त वर्ण और 10 भुजाधारी गणेश महागणपति कहलाते हैं। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो घर में स्थापित करनी चाहिए।

तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर धूमधाम से करिए भगवान गणेश के गणपति आगमन की तैयारी। लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी हैं, जिन्हें ध्यान में अगर रखें तो गणेश महोत्सव पर आपको मिल सकता है महावरदान। क्या है गणेश महोत्सव की विशेष सावधानियां, यह हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। गणेश महोत्सव पर भगवान गणेश की उपासना के साथ कुछ सावधानियां बरतने भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप बप्पा से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो इन बातों के बारे में जानना जरूरी है। तो किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा, साथ ही गणपति के किन मंत्रों का जाप आपके लिए विशेष शुभकारी होगा, चलिए आपको बताते हैं।

0: माना जाता है कि गणपति की स्थापना वाली तिथि पर शुभ फलकारी है गणपति के मंत्र। मोदक और दूध के अर्पण से कृपा बरसेगी अनंत। प्रथम पूज्य है सिद्धि विनायक, वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, विघ्नहर्ता हैं बाप्पा। श्री गणेश की कृपा हो तो दूर हो जाती है सारी विपत्तियाँ, भरने लगती है भक्तों की खाली झोली, सवरने लगती है जिंदगी। गणेश जी को दूब और मोदक जरूर अर्पित करें। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना शुभ होगा। गणेश जी को पीले फूलों की या फलों की माला अर्पित करें। अगर गणेश जी की स्थापना की है तो अखंड घी का दीपक जलाएं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जो भी भक्त 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाते हैं और अनंत चतुर्दशी को व्रत का पारण करते हैं, उन्हें विशेष रूप से गणपति की सेवा करनी पड़ती है। चलिए आपको बताते हैं कि साधक को किन बातों का रखना है ध्यान, जिससे प्रसन्न होंगे दया निधान।
1: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, मोदक अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सात्विक नैवेद्य अर्पण करें, धूप और दीप जलाएं, गणेश जी की कथा सुने और पढ़ें और अंत में भगवान गणेश जी की आरती करें। यदि 10 दिनों तक गणपति स्थापित कर रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह और शाम दीप जला करके गणेश जी की आराधना पूजा करें और आरती करें।
0: गणपति महोत्सव के दौरान पूजा उपासना से तो गणपति प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन अगर आप श्री गणेश की असीम कृपा चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गौर से देखिए,
1: गणेश उत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि भक्ति और अनुशासन का पर्व भी है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थान को स्वच्छ रखें, गणपति जी को प्रतिदिन भोग लगाएं, घर में सात्विक वातावरण बनाएं, तेज आवाज में संगीत बजाने से बचें और स्थानीय नियमों का पालन करें। विसर्जन के लिए पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था बनाएं। मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित और विसर्जित करें। यदि घर में प्रतिमा स्थापित की है तो विसर्जन की अवधि और विधि अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तय करें।
0: गणेश महोत्सव के दौरान सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिन लोगों ने घर में गणपति की स्थापना की है, उन्हें इन दिनों प्याज, लहसुन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन तैयार करने के बाद पहले भगवान गणेश को भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चलिए जानते हैं और किन सावधानियों का पालन करने की परंपरा है। चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें, काले वस्त्र न पहनें। अगर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो प्रतिमा बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर स्वयं नदी की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत का समापन न करें, नजर नीचे रखकर ही अर्घ्य दें। गणेश जी को कभी भी तुलसी दल न चढ़ाएं, क्रोध न करें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान गणेश की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में दूर्वा और मोदक माने जाते हैं। मोदक उपलब्ध न हो तो लड्डू भी अर्पित किए जा सकते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश को पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। यहाँ एक मान्यता ये भी है कि महिलाएं भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित न करें और केवल फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें, जबकि पुरुष सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। आपने विघ्नहर्ता के पूजन की विधि जान ली, सावधानियां भी जान ली। इसके साथ ही पूरे गणेश महोत्सव में अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्र जाप भी किया जा सकता है। तो कौन से हैं गणेश महोत्सव में पढ़े जाने वाले गणेश जी के अचूक मंत्र?
1: गणेश जी का सबसे सरल और प्रसिद्ध मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। इसके अलावा पूजा के आरंभ में वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस तरह से इसको पाठ के रूप में, जप के रूप में, उच्चारण के रूप में कर सकते हैं। और यदि समय हो तो गणपति अथर्वशीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। नहीं जानकारी है तो किसी पंडित जी से जानकारी ले सकते हैं या उनके द्वारा पाठ करवा सकते हैं।
0: सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए ओम गंग गणपतये नमः। शिक्षा में सफलता के लिए ओम गंग गणपतये वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। स्वास्थ्य और रक्षा के लिए वक्रतुंडाय हुम। तो आप भी कर लीजिए देवा को मनाने की पूर्ण तैयारी, जिससे शंकर सुत पूरी करेंगे आपकी मनोकामना। विधि विधान से 10 दिवसीय महापर्व को मनाएं और गणपति से कामना पूर्ति का वरदान पाएं। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी।

0: ऐसा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देशभर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के विशाल पंडाल, भगवान गजानन के लिए तैयार किए जा रहे स्वादिष्ट मोदक। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मां बिंदल कुलदेवी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन, कोलकाता से आए कलाकारों ने देवी मां का अनुपम श्रृंगार किया, विशेष आरती के साथ हवन पूजन। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बप्पा को अर्पित किया 14 लाख रुपए का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर समिति को किया भेंट, 9 तोले के इस मुकुट पर की गई है शानदार कारीगरी। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम, पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभराज का जुलूस, करौदा गांव के मेले में पूड़ी से खरीदारी परंपरा। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई हनुमानंश फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, देश ही नहीं दुनिया भर से मिल रहा है दर्शकों का प्यार। ब्रिक्स समिट के लिए राजधानी दिल्ली में विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी, सदस्य देशों के साथ व्यापार ऊर्जा

डिफेंस कनेक्टिविटी सहित तमाम मुद्दों पर होगी बात। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ।

गणपति का कैसे करें स्वागत, आज बात इसी को लेकर होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 14 तारीख यानी कि सोमवार से गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर बप्पा के स्वागत के लिए न सिर्फ जोरदार तैयारियां चल रही हैं बल्कि उनके लिए शानदार और भव्य पूजा पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। खासकर मुंबई की अगर हम बात करें और साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक थीम वाले बप्पा के पंडाल सजाए गए हैं जो अभी से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। तो आ रहे हैं मंगलकारी, हो रही है खूब तैयारी। गणपति के 32 स्वरूपों में छिपा जीवन सूत्र, घर आएंगे बप्पा, घर आएंगी खुशियां। गणपति का कैसे करें स्वागत, कौन सी लाएं मूर्ति, इसी पर आज हम हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे।

तो बप्पा आ रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर शहर बप्पा के रंग में रंगने वाला है और गणेश उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं। मुंबई और दूसरी जगहों की बात करें तो बप्पा के पंडाल से लेकर बप्पा के श्रृंगार तक भव्यता के तमाम रंग नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत की बात हो, जहां पर गणेश उत्सव को लेकर गणेश मंडलों और आयोजकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो एक तरफ जहां बप्पा की विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की जा रही, वहीं दूसरी तरफ गणपति के भव्य श्रृंगार के लिए खास आभूषण भी बनवाए जा रहे हैं। सूरत में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के भारी भरकम और आकर्षक आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। भक्त अपनी पसंद और प्रतिमा के आकार के हिसाब से आभूषण के लिए विशेष ऑर्डर भी कर सकते हैं। उधर झांसी की बात करें या जयपुर की बात करें तो गणेश उत्सव की खास तैयारी वहां पर भी देखने को मिल रही है।

0: तो विघ्नहर्ता आ रहे हैं। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर्व है, सोमवार से 10 दिन के उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 7:06 से हो रही है और फिर इस तिथि का समापन 15 सितंबर को सुबह 7:44 पर होगा। गणेश चतुर्थी पर रवि योग का संयोग भी बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर ही हरतालिका तीज भी है और इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। वहीं 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होगा। 1893 से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की परंपरा रही है। गणपति जी को प्रथम पूजनीय देवता भी कहा जाता है। हर मांगलिक कार्य से पहले गणपति की ही पूजा होती है। माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणपति जी हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनका जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यता ये भी है कि मध्यान्ह काल में उनका जन्म हुआ था। उन्हें बुद्धि और ज्ञान का देवता कहा जाता है। बुद्धि विवेक के अश्रिता विघ्न विनाशक हैं विनायक। बप्पा के हर स्वरूप का कोई ना कोई संदेश है। देश भर में गणपति पंडाल सज चुके हैं। मुंबई, सूरत, हर जगह गली गली बप्पा की गूंज अभी से ही सुनाई देने लगी है। हर जगह पर इस उत्सव को लेकर अलग ही रौनक दिखाई दे रही है।
1: भगवान को सबसे पहले तो गणेश पंचरात्र, गणेश पुराण और गणपत्य जो संप्रदाय है उसमें इस प्रकार से वर्णन है कि ये गणेश जी इस 4 युगों में अलग अलग प्रकार से इनके अवतारी हैं, परंतु हर अवतार का मूल अवधारणा इस संसार का कल्याण करना ही है। भगवान के शिव के जितना स्वरूप भगवान शिव का प्रिय है, उनके ये पुत्र जो गणेश रूप में विख्यात हैं, उनका सारा स्वरूप, उनका सिर हो, चाहे उनके नेत्र हो, चाहे उनके कान हो, चाहे सूंड हो और चाहे उनका उदर ही हो, हर स्वरूप का अलग प्रभाव से बताया गया है फल। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का बड़ा मस्तक भगवान की तीव्र बुद्धि और ज्ञान के बारे में बताता है। इसी प्रकार के स्वरूप से हर प्रकार का अंग उनका विशेष फलदायी बताया गया है।
0: तो देखिए, तैयारियां शहर शहर हो रही हैं। हर जगह पर बप्पा के पंडाल सज चुके हैं और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि क्योंकि 14 तारीख को सभी लोग बप्पा को घर लेकर आएंगे, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर अभी से ही बप्पा को लाया जा रहा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त का भी लोग इंतजार करते हैं कि वो शुभ घड़ी कौन सी हो, और हर कोई चाहता है कि उस शुभ मुहूर्त पर ही बप्पा उनके घर पर पधारे। और इसीलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति हो जाती है तो मुहूर्त आगे पीछे भी चला जाता है। इसीलिए लोग किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। अभी से ही बहुत से ऐसे पंडाल भी हैं जहां पर बप्पा का स्वागत हो चुका है। हालांकि विधि विधान से जो पूजा होगी वो 14 तारीख को ही होगी, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्री बुकिंग्स भी कर रखी हैं ताकि उस दिन जब बप्पा को लेने जाएं तो किसी भी तरह की कोई बाधा न आए, समय से बप्पा को घर लेकर आ जाए शुभ मुहूर्त के हिसाब से। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें, मंदिरों की बात करें तो देखिए किस तरीके से मंदिरों में भव्य तैयारियां की गई हैं। तमाम गणेश पंडाल सजाए गए हैं और भक्तों का रेला बस इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब बप्पा आएंगे और वो पहुंचेंगे पंडालों में बप्पा के दर्शन करने के लिए। अपनी अपनी मनोकामना के साथ भक्त पहुंचते हैं और इंतजार हर किसी को इसी घड़ी का रहता है, गणेश चतुर्थी का, जब बप्पा पधारते हैं और हर किसी के संकट हर लेते हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं और बप्पा का स्वागत कैसे किया जाए और इस बार गणेश चतुर्थी किन मायनों में खास है, और साथ ही साथ अगर आप अपनी मनोकामना के हिसाब से बप्पा की मूर्ति ला रहे हैं तो उस मूर्ति की खासियत क्या होनी चाहिए, सवाल है तमाम ऐसे जिसका जवाब आज हम आपको देंगे क्योंकि तैयारी आप भी कर रहे हैं बप्पा को घर लाने की। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ संजय शर्मा जी मौजूद हैं और मेरे साथ नंदिता जी भी जुड़ चुकी हैं। आचार्य राज मिश्रा, पहले सवाल सीधा आपसे यही है, हम लौटेंगे कि किस तरह की मूर्ति मनोकामना पूर्ति के लिए लाई जाती, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी किन मायनों में बहुत खास हो जाती है, ग्रह दशा बताइए इस बार कैसी है।
2: अगर मैं इस बार के गणेश चतुर्थी की खासियत की बात करूं तो सबसे पहले नवजोत जी कह सकता हूं कि बुद्धि को सिद्धि बुद्धि को प्रदान करने वाले भगवान गणेश जी, दोनों पत्नियां उनकी सिद्धि और बुद्धि। जब भी हम बात करते हैं ग्रह के स्वरूप में कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिससे हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है ग्रह बुद्ध। क्योंकि श्री रामचरित मानस के अंतर्गत भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोर और होई प्रसन्न पुरवं सकल मंज मनोरथ मोर। मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाले अगर कोई माने जाते हैं देवता तो भगवान गणेश जी और ग्रह बुद्ध को कहा जाता है। और सौभाग्य की बात देखिए कि जिस दिन गणपति आ रहे हैं उस दिन बुद्ध जो है वो अपने स्वराशि यानी उच्चगत राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। इससे बेहतर बुद्ध की परिस्थिति शायद नहीं कही जा सकती। और ये बहुत रेयर होता है कि जब बुध साल में एक ही बार उच्चस्थ होते हैं और वो इस समय पर हो, ये बहुत रेयर मिलता है। तो ये इस बार के सौभाग्य की बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम सांसारिक सुखों के लिए और जिनको लक्ष्मी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट वीनस और वो भी चंद्रमा के साथ और बृहस्पति से केंद्र में, यानी गज के सही योग का निर्माण करते हुए चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में होंगे और शुक्र के साथ होंगे और वहां पर भी शुक्र स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है। यानी इस बार गणपति बप्पा की आराधना सांसारिक सुख को तो प्रदान करने वाली होगी, साथ में मानसिक प्रसन्नता को देने वाली होगी, पारिवारिक प्रेम को प्रदान करने वाली होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट विषय की अगर मैं बात करता हूं, बृहस्पति का उच्चस्थ होना और जिस दिन गणपति बप्पा को आना है उस दिन चंद्रमा से केंद्र, चंद्रमा से दशम भाव के अंतर्गत गोचर करना और मंगल जो कि प्राकर्म के कारक हैं उनका तीसरी राशि जो प्राकर्म की मिथुन राशि मानी जाती है वहां पर गोचर करना, ये अपने आप में सबसे यूनिक परिस्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट विषय इस बार अगर देखेंगे भगवान गणेश जी जब आएंगे तो दो बार हमें सर्वासिद्धि योग मिलेगा, 16 तारीख को और 21 तारीख को। जब तक गणपति जी की जो 10 दिन का उनका जन्मोत्सव हम मनाएंगे उसमें 16 और 21 तारीख दो दिन सर्वासिद्धि योग, फिर 16 तारीख को साथ में अमृत सिद्धि योग और फिर 14 और 16 तारीख को रवि योग। तो जो श्रीरामचरित मानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी के लिए लिखा कि जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करीवर वदन, जिनके स्मरण से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, करह अनुग्रह सोए बुद्धि राश शुभ गुण सदन, जो बुद्धि की वृद्धि कर देते हैं उन मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़े गिर बर गहन, जासु कृपा सो दयालु द्रवो सकल कलिमल दहन, जिनके स्मरण से कलिकाल के सारे दुख मिट जाते हैं, उन गणेश के आराधना पर इस बार का जो योग है वो अपने आप में सबसे सुंदर है। और मैं पुनः धन्यवाद करूं आपका और जीएनटी का कि आपके माध्यम से पूरे विश्व को पूरी दुनिया को शुभ मुहूर्त और वास्तविकता में पूजन कार्य कैसे करना चाहिए जानकारी।
0: अच्छा जल्दी जल्दी से एक लाइन में शुभ मुहूर्त क्या है जब स्थापना होगी?
2: अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात कर लेता हूं तो सुबह, क्योंकि सोमवार के दिन स्थापना हो रही है, सोमवार 7:30 से 9 राहु काल का समय होगा, एक बहुत सुंदर मुहूर्त है जब तुला लग्न विद्यमान होगा और इस समय क्योंकि तुला लग्न के अंतर्गत स्वयं चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह होंगे, 9 बजे से लेकर के 10:36 का जो समय होगा मॉर्निंग का, वो समय मेरे दृष्टि से एक बहुत अनुकूल समय है। और वैसे तो मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, गणेश जी की जब भी आप स्थापना कर लेते हैं गणेश जी विघ्नों को दूर करते करके अपने आप उस समय को शुभ बना देते हैं।
0: ठीक है, चलिए अब वाना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए तैयारियां हर घर चल रही हैं, हर कोई बप्पा को लाना चाहता है, लेकिन हमें प्रोटोकॉल का बहुत ख्याल रखना होगा। भाई देखिए रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बप्पा पधार रहे हैं, प्रथम पूज्य हम इनको कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं किसी चीज की कमी ना रह जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी टू द पॉइंट, कौन कौन से ऐसे विशेष पॉइंट्स हैं जिनका हमें बहुत खास ख्याल रखना है जब हम बप्पा को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं?
3: बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है नवजोत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
0: बिल्कुल सुन पा रही हूँ वाना जी, आपको अपनी बात रखिए
3: जी। तो जब भी हम बप्पा की जो है जब भी हम आराधना करते हैं तो कुछ खास चीजों का हमको ध्यान रखना है। जब भी हम बप्पा को लेके आएंगे, जितने दिन हमारे घर में स्थापना है उसमें जो है हम कोई भी नॉनवेज या अल्कोहल का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए जब आप बप्पा को लाते हैं तो आप जो है इको फ्रेंडली बप्पा अगर लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे जो है आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी जो है आप उस चीज को जो है रोक पाएंगे। बप्पा को जब आप लाते हैं तो आपको एक चौकी जो है साथ में आपको जरूर लानी है, उनके लिए जो है आप मोदक जो है वो आप जरूर बनाएं अपने हाथों से, और जो बप्पा का अभिषेक होता है यानी कि स्नान होता है वो आप पंचामृत से कर सकते हैं या फिर आप जो है गंगा जल से भी कर सकते हैं। बप्पा के लिए एक साइड जो है आपको दो सुपारी रखनी है, एक रिद्धि जी के लिए और एक सिद्धि जी के लिए, तो वो जो है दो सुपारी भी होनी चाहिए। प्लस आप जो है कलश स्थापना जो है वो भी करेंगे तो कलश स्थापना के लिए आपको कलश चाहिए और जो है अक्षत चाहिए और जो है उसमें आप अशोक या आम के पांच पत्ते जो है वो भी आप रख सकते हैं। और जो है बप्पा से जो है जब आप पहले अपने पूरे घर की जो है सफाई करके उसकी जो जब आप स्थापना करेंगे और इसमें जो है आप जो है गणेश जी की आरती भी करेंगे, वहां पर आप दिया जलाएंगे, मौसमी फल जो है मौसमी फल जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी जो है आप सीजनल फ्रूट्स जो है इस टाइम पर रख सकते हैं, मोदक रखें या फिर पीले जो है आप बेसन के लड्डू रख सकते हैं, नॉर्मल लड्डू रख सकते हैं या फिर कोई भी पीली मिठाई जो है वो भी आप रख सकते हैं। ये मोदक जो है आप अपने घर में जो है वो भी आप अपने घर में जो है अपनी एनर्जी से बना सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम अपनी एनर्जी से बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्योर और सात्विक होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, प्लस ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपते नमः का जो है वो भी आप जाप कर सकते हैं, गणेश ऋण मोचक स्रोत जो है वो कर सकते हैं, गणेश रक्षा स्रोत कर सकते हैं। आपके कुंडली में अगर बुध और केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो भी जो है आप जरूर गणपति की आराधना करें। आपके बच्चों का ध्यान अगर पढ़ाई में नहीं लगता है तो भी आप गणपति जी की आराधना बच्चों को भी करवाएं। और मैं एक रिक्वेस्ट जीएनटी के माध्यम से आप सबसे करना चाहूंगी कि जब भी आप स्थापना करते हैं तो उस टाइम पर जैसे हमारे घर में हमारा कोई गेस्ट आता है हम कैसे वेलकम करते हैं, सो मेक श्योर आपके बच्चे और आपके आपकी लाइफ पार्टनर हस्बैंड भी जो है इस पूजा में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो प्रोस्पेरिटी है उसका वो मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट टाइम्स हो जाती है। तो मेक श्योर आप अपने घर में हर मेंबर को जो है अपने घर में शामिल करें, और जितने दिन बप्पा घर में रहते हैं उनको तीनों टाइम जो है आप भोग जरूर लगाएं, आप आरती जरूर करें, रात को जो रूम में जहां पर आपने बप्पा की स्थापना की है वहां पर आप लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी आप ऑफ ना करें।
0: बिल्कुल।
3: इसके अलावा आप जैसे ये आपकी अपनी इंटेंट है कि आप डेढ़ दिन के लिए रखना चाहते हैं, तीन दिन के लिए रखना चाहते हैं, और या फिर फाइव डेज के लिए, सेवन डेज के लिए, या फिर आप पूरा प्रॉपर जो है इलेवन डेज के लिए करना चाहते हैं, और अगर आपने इको फ्रेंडली बप्पा रखे हैं तो उसको जो है विसर्जन आप अपने घर में भी जो है आप उसमें कर सकते हैं,
0: वो भी कर सकते हैं। इस पर आगे बात करेंगे। एक बार नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नंदिता जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, देखिए किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल रहता है बप्पा को ला रहे हैं ये तो हमने वान्या जी से समझ लिया, अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगी क्योंकि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, बप्पा कहाँ विराजमान होने चाहिए, सून किधर राइट या लेफ्ट साइड होनी चाहिए, बप्पा के हाथ में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पर मैं चाहूंगी कि जरा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो गुड न्यूज टुडे के माध्यम से इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। नंदिता जी आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे। चलिए अगर संजय शर्मा मेरा प्रश्न आपने सुन लिया है तो यही प्रश्न आपसे है सर।
4: जी बहुत सुंदर, और मैं एक मंत्र के साथ प्रारंभ करूंगा और सभी को अनंत चतुर्दशी की और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और जीवन में गणपति महाराज जो है रिद्धि सिद्धि के कारक हैं, और कहा जाता है कि प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज, क्योंकि गणपति को जो है पहला निमंत्रण दिया जाता है, कोई भी शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, तो प्रथम पूज्य हैं। तो एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमाम विघ्नेश्वराय पाद पंकजम, क्योंकि विघ्न हरता है। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि इनके हाथों में क्या है, मोदक है। आप समझें कि गणेश जी जो है सब कुछ देने वाले हैं, दीर्घ मस्तिष्क है इसलिए ज्ञान के दाता हैं, सूंड लंबी है, और कहा जाता है कि आप जब सूंघते हैं कोई भी चीज तो सूंघ कर ही जान लेते हैं, उनकी जो शक्ति है बहुत ज्यादा है। और उनकी सूंड के बारे में आपने पूछा, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो है गणेश जी के हमेशा राइट हैंड पे होती है, तो इसलिए सूंड का जो मुख है वो राइट पे हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और श्वेत गणपति की पूजा के कहा जाता है, श्वेतार्क जो गणपति है, आप देखिए नेचुरल जो उत्पन्न होते हैं प्रकृति से, श्वेतार्क गणपति होते हैं, उनकी पूजा अगर करते हैं, या आप मार्बल का बना हुआ गणपति या मिट्टी का बना हुआ गणपति, और मिट्टी से ही सारी चीजें बनी है, प्रकृति नेचर सब मिट्टी से बना है, मिट्टी के गणपति को जो है कम से कम जो है आप 2 फीट की ऊंचाई पर जो है, और एक वस्त्र, अच्छा सा नया वस्त्र लेकर के और स्थापित करें, और उनके पास में जल रखें, मोदक रखें, लड्डू रखें, और उनकी उपासना करें सुबह और शाम, नित्य नियम से जो है दोनों टाइम जो है उनकी आरती करें, और घर को जो है बंद कर करके सूना करके ना जाएं। गणपति अगर आपने घर में विराजमान किए हैं तो 9 दिन जो है, कहा जाता है 10 दिन है, पर 9 दिन अनंत चतुर्दशी तक जो है आप उनकी पूजा करें, 1 दिन का रखें, 5 दिन का रखें, 7 दिन 9 दिन का गणपति आप स्थापित करें और उनका ध्यान मगन रहे। कहा जाता है गणपति जो है सब कुछ देने वाले हैं, रिद्धि और सिद्धि के दाता तो है ही, कि उनका जो परिवार है संपूर्णता को देने वाला है, और उनकी पूजा जब आप करते हैं तो कहा जाता है जो 32 नाम है उसमें आप देखें कि जो सबसे पहला नाम आता है वो बाल गणपति का आता है, फिर तरुण गणपति का आता है, फिर वीर गणपति का आता है, फिर शक्ति गणपति का आता है। तो ये जो नाम है गणपति के वो हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य सब कुछ होना चाहिए, और कहते हैं कि जिस प्रकार से गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, हमारे जीवन में जो है सब कुछ जो है हमें अन्न जल सब कुछ देने वाले गणपति हैं, और इसमें जो है गणेश जी की पूजा, गणेश पंच महारत्नम का पाठ जरूर कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, या फिर प्राणम शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम, इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
4: और आज के दिन जब भी चतुर्दशी का चौथ का जब दिन होता है, चौथ माता का, उस दिन जो है कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा भी नहीं देखना चाहिए। तो ये जो दिन है, और आज के अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे जीवन में शुभता देने वाला है, और गणपति बाबा आ चुके हैं और हमारे जीवन में शुभता ही शुभता करते जाएंगे।
0: नंदिता जी मेरी आवाज, संजय जी लौटूंगी, नंदिता जी मेरी आवाज आप तक आ रही है?
5: मुझे तो आ रही है, आई होप आपको भी आ रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जो सवाल आपसे किया था संजय जी ने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरह के गणपति को घर पर लाना चाहिए?
5: सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को गणेश प्राकृति उत्सव की अनंत शुभकामनाएं, और गणपति तो वैसे भी अनंत देव माने जाते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, पहले तो किस धातु से या किस चीज से गणपति को बनाए, तो इस समय मिट्टी से बनाया जाता है स्पेशली, और लाल मिट्टी अगर हो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसको शाडू मिट्टी भी बोला जाता है। इस मिट्टी से आप गणपति को बनाएं, और इसमें मैं छोटे छोटे से उपाय अगर बता रही हूँ कि आपको घर पे बहुत ज्यादा अपनी सुख समृद्धि चाहिए, सारे विघ्न हटाने, तो आप दुर्वा घास होती है ना, उसको छोटा छोटा काट के उसको मिट्टी में मिला करके अगर आप गणपति बनाते हैं बहुत उत्तम होता है। दूसरा, आप आटा और हल्दी को मिला के उसमें थोड़ा चंदन मिला के भी गणपति बनाए, वो भी बहुत शुभ होता है, उस तरह से भी गणपति बनाते हैं। कई सारे लोग जौ भी बनाते हैं, एक प्लांट सीड का भी आजकल चलन है कि मिट्टी के अंदर प्लांट की सीड, कोई भी पौधे की सीड को आप डाल करके फिर गणपति बनाए, ताकि जब आप उनका विसर्जन करें तो आप ही के घर से पौधे के स्वरूप में वापस जागृत हो जाए। अब गणपति की मनोकामना पूर्ति तो दाई सूट वाली नहीं, बाई सूट, बाई तरफ जो उनकी बाई हाथ की तरफ जो सूट जाती है उस चंद्रमा का प्रतीक होती है, वो शांति और सुख सौहार्द का प्रतीक होती है, और गृहस्थ आश्रम में उस तरह के गणपति की पूजन करना बहुत अच्छा होता है। गणपति के हाथ में मोदक हो और साथ में मूषक हो तो ये जो मूर्ति होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, या तो श्वेत रंग में या फिर लाल रंग में गणपति आप रखें, अपने घर से स्थापित करें। अगर श्वेतार्थ जड़ होती है, एक श्वेतार्थ गणपति को आप स्थापित कर लेते हैं बहुत ही शुभ होता है। अगर वो भी नहीं पॉसिबल, आप जैसे क्ले से बनी हुई मिट्टी के अपने गणपति स्थापित किए, आप उनको लाल वस्त्र धारण करा सकते हैं। और दूसरी चीज जो होती है, उनके हाथ में मोदक अवश्य रखिए, क्योंकि मोदक रखने से गणपति प्रसन्न बहुत होते हैं, और उनकी जो विधिवत पूजा अर्चना की जाती है अथर्वशीर्ष स्रोत का इस समय पाठ करें। आप जब उनको भोग लगाते हैं, आप आसपास के लोगों को भी बुलाते भोग लगाएं, या गरीबों को भी साथ में उस प्रसाद को अगर आप वितरित करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आती है। ये 10 दिन का प्राकृतिक उत्सव है, ये जो कि पश्चिमी प्रांत और दक्षिण प्रांत में ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां ज्यादा मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणपति अपने भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए 10 दिन में गए थे। वैसे तो 1 दिन के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा इतनी जल्दी कैसे जाओगे, अभी तो रुको, हम तो आप भगत करेंगे आपकी, तो इसलिए वो 10 दिन रुके, उसके बाद वापस कैलाश जाते हैं। तो इस ये कथा भी है, दूसरी कथा ये भी है, महाभारत की कथा है। इस कथा में ये था कि जब वेद व्यास जी ने उनको कथा में लिखाना शुरू करा जो आप महाभारत लिखे तो आप सही मिलेंगे नहीं, आप एक सुर में लिखते जाएंगे। ऐसा जब हुआ तो उस प्रोसेस में जो थे गणपति एक ही स्थान पर बैठे रहे और जब तक खत्म हुई तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई, धूल निकलने लगी, तो वेद व्यास जी ने फिर उनको विधिवत वहीं पे तालाब जैसा नदी जो थी उसमें भी ले जाकर के स्नान कराया, डुबाया और फिर उसके बाद शुद्ध कर जब हो गए शांत हुए उनकी अग्नि वो शांत हुई। इसीलिए चतुर्दशी तिथि के दिन जिस दिन महाभारत या महाकाव्य खत्म हुआ था उस दिन को एक सिंबॉलिक मान करके ये विसर्जन किया जाता है किसी भी कल के अंदर गणपति का।
0: बिल्कुल, अब राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए हर जगह पर अलग अलग तरह से अलग अलग मनोकामना के लिए बप्पा विराजमान होते हैं, चाहे हम पंडालों की बात करें या घर की भी बात करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बुद्धि चाहिए या कहें कि एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धन संपत्ति चाहिए, कुछ ऐसे सुख शांति के लिए, कुछ अच्छी सेहत के लिए। तो इन तमाम चीजों का अगर देखें तो किस तरह के बप्पा को घर पर लेकर आया जाए, किस मनोकामना के लिए?
2: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये सत्य कहा जाता है, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूंगा कि भगवान गणेश जी यदि आपके हृदय में और आपके जीवन में आए तो आपके जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित कर देते हैं, वो किसी भी स्वरूप में आते हैं। लेकिन क्योंकि ये श्वेत कल्प है, जिस कल्प में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, गणेश आदि गणेश हैं, अलग अलग कल्प के अंतर्गत उनका अलग अलग उस पर अवतार होता है, लेकिन जिस कल्प की आज हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं वो श्वेत कल्प है। इसीलिए जब संकल्प इत्यादि घर में बोला जाता है तो बोला जाता है श्री श्वेत बारह कल्पे, तो ये श्वेत कल्प के अंतर्गत यदि आपको अपने सभी कामनाओं को पूर्ण करना है तो जो हरिद्र स्वरूप के गणपति हैं, जो पीले स्वरूप है, जिनका पूरा जिनका स्पष्ट बनाया ही पीले तरीके से गया है, ऐसे गणपति को लाने से आपके घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं, आपके घर में प्रेम होता है, आपके घर में प्रसन्नता होती है। लेकिन यदि स्पेशली विवाह नहीं हो रहा हो, घर के अंदर वैवाहिक परिस्थिति में दिक्कत चल रही हो, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत हरे रंग के जो गणपति का स्वरूप है या उनको बनाया इस प्रकार हरे रंग के स्वरूप के अंतर्गत बनाया गया है, उनको लाने से विवाह या विवाह से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो स्वतः दूर हो जाती है और घर में प्रसन्नता और प्रेम इत्यादि भी होता है। अगर मान लिया जाता है कि घर के अंतर्गत जो रोग है वो दूर नहीं हो रहा होता है, रोग से बार बार आप परेशान हो रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु गणेश जी मेरे घर के अंदर आए और मेरे घर में रोग दूर हो जाए या आलस्य दूर हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो रक्त वर्ण गणपति हैं, जो करीब लाल रंग के गणपति हैं जिनमें अधिकतम लाल रंग का प्रयोग किया गया है, ऐसे गणपति को लेकर के आने से आपके घर के अंतर्गत का रोग है वो दूर हो जाता है और घर में ऊर्जा इत्यादि की वृद्धि होती है। अगर मान लिया जाता है कि आप आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सत्य गणपति आएंगे तो अपने आप सब दूर हो जाएगा, प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं, तो मैं अलग अलग चीज के लिए क्यों लेकर के आऊं, मैं सिर्फ गणेश जी से मोक्ष की प्राप्ति या उनकी भक्ति मुझे जीवन के अंदर वो चाहिए, तो फिर जो धूम्र गणपति हैं, जिनको धूम्र केतु भी कहा जाता है, जो धुएं के रंग के जो ग्रे कलर के गणपति हैं, उनको लेकर के आने से निश्चित रूप से आपकी ये परिस्थितियां दूर होती हैं। अब मान लिया जाता है कि ठीक है, गणपति को कौन से, मान लिया जाए कि गणपति उस स्वरूप के नहीं मिल पाते हैं, तो जो मैंने बताया इस स्वरूप के वस्त्र से गणपति जी को पूरी तरीके से तैयार कर दीजिए। इस स्वरूप का जो वस्त्र है, जो मैंने कलर बताया है, इस कलर के आप वस्त्र यदि उनको धारण कराते हैं वो फायदेमंद है। गणपति जी को यदि मोर पंख लगा हुआ मुकुट, यदि आप चाहते हैं कि गणेश जी के साथ शिव जी की भक्ति प्राप्त हो, तो मोर पंख लगा हुआ मुकुट भगवान गणेश जी को अर्पण करें, इससे गणेश जी के साथ शिव कृपा भी आपको जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त हो।
0: यही से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बप्पा पधार रहे हैं लेकिन बप्पा को घर किस तरीके से लाया जाए, वो कौन सी चीजें हैं, चाहे वो आपकी मनोकामना पूर्ति की बात हो या फिर किस तरीके से बप्पा को घर पर लाना है, क्या है इसका पूरा प्रोटोकॉल, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक, तुरंत

0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आ रहे हैं गणपति, आ रहे हैं बप्पा, तो स्वागत कैसे किया जाए। वैसे इस बार तो लोग कह रहे हैं कि भाई बप्पा आ रहे हैं तो स्वैग से स्वागत होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नियम कायदे होते हैं और वो नियम कायदे क्या हैं, ये सब आज हम अपने खास मेहमानों से जान रहे हैं। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आपको हम बता चुके हैं और इसी के साथ साथ बप्पा के हर रूप की भी व्याख्या आगे करेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरह की बप्पा को घर लाए, ये भी तमाम खास मेहमानों से जान रहे हैं। अब 32 स्वरूपों की बात जब वान्या जी होती है आपके पास आऊंगी तो वो कौन कौन से स्वरूप है जरा ये भी बताते चलिए हमारे दर्शकों के लिए।
1: जी, अगर हम बप्पा की बात करते हैं तो बेसिकली जो गणपति बप्पा के स्वरूप हैं वो टोटल 32 स्वरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसमें से 8 जो होते हैं जो उनकी मेन कॉस्मिक वर्जन्स हैं वो आपकी टोटल 8 स्वरूप हैं, जिसका सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो शास्त्रों में किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो वक्र तुंड जो उनका रूप है, जिसमें उनकी जो सूंड है वो धूमावर सूंड है, और उनकी सूंड हमें लाइफ में एक मैसेज देती है क्योंकि उनकी सूंड में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि लाइफ की हर सिचुएशन में जो है हमें फ्लेक्सिबल रहना है और हमें बहुत ही ज्यादा एडेप्टिव रहना है जैसी हमें स्थिति मिले, जैसे वो कहावत है जिस विधि राखे राम। फिर अगला जो उनका स्वरूप है वो इनका है गजानन स्वरूप, ये है हाथी का मुख। गज जो होता है वो हमेशा हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो है जोड़ता है, और गज में इसका एक और मीनिंग भी होता है कि लोभ पर विजय, कि हमें लाइफ में बहुत ज्यादा लोभी या लस्ट के पीछे जो है हमें नहीं भागना है अगर हमें अपनी लाइफ में पीस और विजडम चाहिए। फिर है इनका शिव पार्वती का एक इनका जो स्वरूप होता है, क्योंकि शिव पार्वती इनके माता पिता के रूप में जाने जाते हैं और इनके पुत्र के रूप में वो प्रकट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है हमें लाइफ में कि पेरेंट्स से बढ़कर हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, चाहे हम जितने भी तीर्थ कर लें, लेकिन असली तीर्थ जो है वो हमारे माँ बाप के चरणों में ही है। फिर अगला स्वरूप इनका आता है लंबोदर स्वरूप, जिसमें इनका पेट जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है। इसका ये मतलब है कि हमें लाइफ में हर सिचुएशंस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमें उनको एक्सेप्ट करना है। और लंबा पेट इसका ये मतलब भी है कि हमें लाइफ में बहुत ज्यादा पेशेंस जो है वो अपनी लाइफ में मेंटेन करके चलना है, और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें अपने अंदर ही डाइजेस्ट करनी है। अगर किसी ने हमें कुछ कम्युनिकेशन दिया है तो नॉट नेसेसरी कि अगर किसी ने हमें कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बताया, सो वी हैव टू कीप दैट लाइक कम्युनिकेशन विद आवरसेल्व्स ओनली। अगला रूप है इनका विकट, जिसका कोई मीन्स शेप नहीं है, बहुत विकार रूप है, और काम वर्णा वाले इनको जो है काम वर्णा पर विजय, मीन्स लस्ट जो होता है हमारी लाइफ में, जो हमारे डिजायर्स होते हैं उस पर जो है हमें लाइफ में विजय पानी है। फिर है आपका महोदर, महोदर भी अगेन आपका बड़ा पेट है और ये हमें कहता है कि मोह से हमारे जीवन में हमारी लाइफ में मुक्ति। फिर है एक दंत, एक दंत कहता है कि अहम का हमें अपने जीवन में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्ञान और अज्ञानता को ये हमारी लाइफ से दूर करता है क्योंकि वो बुद्धि के कारक हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा विजडम देता है और विजडम के साथ साथ ये हमें क्लैरिटी भी देता है। फिर है हमारा विघ्नराज, विघ्नराज होता है बाधाओं के राजा, जो भी आप नेम, जैसे कि नेम की भी एनर्जी है विघ्नराज, तो जो भी हमारे जीवन में जो भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको जो है ये हमारी लाइफ में क्लियर करता है। फिर है धूमावरण, जो आप इनका जो लास्ट कॉस्मिक वर्जन है, ये इनका जो कलर भी जो होता है जो धूम्र की तरह होता है, सिंह पर सवार होता है, और ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हमें बनाता है, और इसका मीनिंग होता है अज्ञानता से मुक्ति, हमारी लाइफ में अहंकार से मुक्ति। तो हर वर्जन जो है अपने आप में एक मैसेज देता है और मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें ये बताता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमें विजडम चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें क्लियर कंसाइज क्रिस्प कम्युनिकेशन चाहिए, तो हमें अपने लोभ को त्यागना होगा, हमें अपने मोह को त्यागना होगा, हमें अपने जीवन में अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने ईगो को त्यागना होगा, अपने अंदर हमें बहुत ज्यादा पेशेंस लाना पड़ेगा, और हमें अपने अंदर बहुत ज्यादा रेजिलियंस जो है अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। और एक और चीज, क्योंकि जैसे उनके कान बहुत बड़े हैं तो हमें एक गुड लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंह छोटा है मतलब हम कम बोलेंगे, जितना हम लाइफ में कम बोलेंगे हमारे वर्ड्स की जितनी वैल्यू होगी हमारी वेटेज उतनी बढ़ेगी, और जब हम अच्छे गुड लिसनर्स होते हैं तो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि हम दूसरों के वर्जन को भी सुनते हैं और दूसरे के वर्जन को भी हम समझते हैं।
0: बिल्कुल, संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी, जरा ये भी हमें बताते चलिए, क्योंकि बप्पा को घर पे ला रहे हैं तो पूजा विधान क्या रहेगा, किस तरीके से पूजा करें, सामग्री क्या रहेगी पूजा की, ये भी एक बार बताते चलिए।
2: जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले गणपति को ला करके और सबसे पहले स्नान कराएं, दूध से, दही से, शहद से और गंगा जल से स्नान कराएं, और स्नान कराने के पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके गणपति की मूर्ति को जो भी लेकर के आए उसको साफ करके और जो है वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण कराने के पश्चात एक माला जो है जरूर पहना दें उनको, और आसन दें, और आसन के ऊपर जो है एक कटोरी में मोदक रख दें, लड्डू रख दें, और थोड़ा सा अगर हो सके तो मोदक के साथ दूर्वा अर्थात घास का जो है प्रयोग करें, और उसको थोड़ा मंडप को अच्छा सा सजा लें, और गणेश जी के आगे जो है थोड़ा सा जल भी जो है भर करके रख दें, और उसमें आपको फल मिठाई ये सब रखना चाहिए, और अगर हो सके तो दीपक, घी का दीपक जो है अवश्य जला दें, और आराधना करें उनकी, और उनके ऊपर जो है सुपारी और आपका पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब का जो है बेड़ा बना करके अर्पित करें, और उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और अभी जिस तरीके से जो है 32 नामों की चर्चा करी, उसमें मैं दो चीजें और जोड़ूंगा। एक सिंह गणपति, सिंह गणपति है पावर के प्रति, क्योंकि गणपति वैसे हाथी का स्वरूप है, गज का स्वरूप है, पर पावर में जो है सबसे ज्यादा है, और आप देखें कि उनका जो स्वरूप है आपके जीवन में हमेशा जो है समृद्धि को देने वाला है, रिद्धि को देने वाला है, ज्ञान को देने वाला है, तो उस स्वरूप की पूजा करें, और आरती जो है सुबह शाम अवश्य करें, और गणेश जी के जो मंत्र हैं, गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम महा। इसके अलावा जो गणेश पंच महारत्नम का पाठ जो थोड़ा दीर्घ स्वर में करें, मुदाकरात मोदिकम सदा विमुक्ति साधिकम कलाधरावसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुना सुनासिकम नमामितम विनायकम। इन मंत्रों का करें, या फिर गजानन वाला मंत्र करके, और ओम गण गणपति नमः। गणपति का अर्थ होता है जो गणों के पति हैं, कहते हैं कि जो शिव जी के जितने गण हैं, गणेश भी कहते हैं, गण जमा ईश गणेश कहा जाता है, और गणपति जो है गणों के जो रक्षा करता है, ईश्वर के आराध्य हैं, और सबसे प्रथम पूज्य हैं वो गणपति हैं, और वो गणपतियों के पति गणपति कहलाते हैं, और वो सबकी रक्षा करने वाले। और
0: नंदिता जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही, देखिए प्रथम पूज्य हम उनको कहते हैं, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर करनी हो तो कहा जाता है, स्वतः ही मुंह से निकल जाता है कि श्री गणेश करते हैं, तो अब तो बप्पा खुद आ रहे हैं। ये भी चाहूंगी जरा दर्शकों के लिए समझाते चलिए कि बप्पा को कितने दिन के लिए, क्योंकि वैसे तो मैक्सिमम 10 डेज का ड्यूरेशन होता है, 10 दिन के लिए बप्पा को रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वक्त की कमी या फिर परिस्थितियों के हिसाब से कम समय के लिए रखते हैं, तो उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो भी बताइए जरा।
3: जी, बहुत सुंदर प्रश्न, क्योंकि गणपति जब स्थापित होते हैं वैसे भी विघ्न हटता है, और उनके साथ साथ श्री की पुष्टि और रिद्धि, जो उनकी 5 पत्नियां थी, उन सभी की स्थापना भी की जाती है सुपारी के स्वरूप में। एक कलश जरूर स्थापित करिएगा जिसमें नारियल अंदर जल डाल के आमक पत्र डालकर के मौली कलश के गले में मारते, और सभी वरुणादि देवी देवताओं का आह्वान करके नारियल रखें, जटाएं उसकी ऊपर की तरफ रहें तो ज्यादा रहेगा, नारियल का मुख आपकी तरफ रहे तो और ज्यादा सुंदर है, तो ये जरूर आप स्थापित करें। जल का या फिर निर्जला भी रख सकते हैं, कई लोग एक टाइम का करते हैं, प्रदोष काल में पूजन बहुत अच्छा रहता है, या तो आफ्टरनून के टाइम पे या प्रदोष काल में। और जो आपने जिस तरह से बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो गणपति की जब हम स्थापना करते हैं तो गणपति की स्थापना में आप जो घी का दिया है वो साउथ ईस्ट वाली साइड में डालें, आप जल जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में रखें। गणपति की स्थापना खुद नॉर्थ ईस्ट साइड में करते हैं, विघ्नहर्ता माने जाते हैं, किसी भी चीज का श्री गणेश करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सुंदर कथा है कि जब उनका सिर काट दिया था गुस्से में आते महादेव ने, और वापस उसने उनका हाथी का सिर लगाया गया था, तब माता पार्वती दुर्गा स्वरूप में बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी, और तब महादेव ने उनको शांत करने के लिए वरदान दिया कि देखिए प्रथम पूजनीय अगर कोई होंगे तो ये आपके पुत्र होंगे और गणपति होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे, उसी के बाद ही किसी भी चीज का की शुरुआत होगी और अगर नहीं ऐसा पूजित होंगे तो फिर कोई भी चीज का श्री गणेश यानी कि ऐसा चीज नहीं हो पाएगी। विघ्नहर्ता भी माने जाते हैं, अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है बिंदी कारक गणपति भी आप आराधना कर सकते हैं, आपको अगर कर्जों से मुक्ति चाहिए तो ऋण मोचन गणपति जिनकी चार भुजाएं होती है और उनको लाल वस्त्र में रख करके अगर आप पूजित करते हैं तो आप देखिए आपके घर में जो भी टैक्स हैं कर्जे हैं उन सबसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप कला से संबंधित हैं मीडिया से संबंधित हैं तो नृत्य गणपति की जिसमें थोड़ा सा नृत्य अवस्था में उनकी अगर मूर्ति आपको मिल जाती है उसकी पूजन करें तो वो भी बहुत सुंदर होता है, अच्छे रिजल्ट लेकर के आता है। ध्यान योग आदि में अगर आपको करना है तो योग गणपति की आप पूजा करिए, मोक्ष कारक है तो यहाँ पे योग गणपति की। समस्त संकटों से अगर आपको दूर होना है तो संकटहर्ता गणपति की आप पूजन अर्चना करें तो उससे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो आपके हट जाते हैं। तो ओवरऑल जो है गणपति की आराधना होती है नियम होता है उसका, अब विसर्जन का नियम जो होता है वो होता है कि ऑड नंबर में यानी कि डेढ़ दिन में आप विसर्जन कर सकते हैं, तीन दिन में कर सकते हैं, पांचवें दिन कर सकते हैं, सातवें दिन कर सकते हैं, नवे दिन या फिर दसवें दिन जो फाइनल अल्टीमेट डे होता है। तो आपकी जो श्रद्धा जैसे आपने स्थापित करा उसके बाद आप डेढ़ दिन में नहीं यानी कि एक दिन पूरी पूजन करा दूसरे दिन आफ्टरनून की पूजा के पश्चात आप उनका विसर्जन कर सकते हैं या फिर तीसरे दिन, इस तरह से ऑड नंबर में पूजन करके विसर्जित किया जाता है।
0: बिल्कुल राजमिश्रा जी आपके पास आऊंगी, दो सवाल हैं सर आपसे। एक तो यही बताइएगा कि जब हम बप्पा के स्वरूप को देखते हैं किस स्वरूप में बप्पा को घर लाना है, आप सबने बताया कि अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप क्या चाहते हैं उस हिसाब से आप बप्पा को घर ला सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ओवरऑल स्वरूप की बात करें तो वो क्या दिखाता है, क्या संदेश हम यहाँ से ले सकते हैं, बप्पा के संदेश क्या है?
4: देखिए अगर मैं भगवान गणेश जी की, सबसे पहले तो वान्या जी का, खैर मैं वो सब चीजें सुन रहा था और वान्या जी ने बड़ा सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया,
0: उसी को आगे बढ़ाइए।
4: यस, मैं अगर उस स्वरूप की भगवान गणेश जी की बात करता हूँ ना तो सबसे पहले भगवान गणेश जी कौन है, मंगल करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरित मानस लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा वर्णा नाम और प्रसंगा नाम रसा नाम छंद शामपि मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको, आपके जीवन में लोगों के आपके कारण मंगल हो अमंगल ना हो, सबसे पहला जो भगवान गणेश जी का संदेश है मंगला नाम चकर तारो, यानी दूसरे के जीवन में आपके प्रयास से खुशियां आनी चाहिए। अगर आपके प्रयास आपके किसी भी एक्ट से किसी भी बिहेवियर से दूसरे के जीवन में अगर अप्रसन्नता होती है दुख होता है इट मींस कि आप भगवान गणेश जी आपकी आराधना स्वीकार नहीं करते हैं, ये उनका सबसे पहला संदेश है। अगर मैं उनके स्वरूप की बात करूंगा आप सोचिएगा भगवान गणेश जी के हम सबसे पहले पेट की ही बात करते हैं, लोग जनरली पेट की चर्चा करते हैं भगवान गणेश जी का पेट बड़ा है भगवान गणेश जी का पेट बड़ा है, अरे पेट ही इस दुनिया में बड़ा होना चाहिए लेकिन पेट किस प्रकार से बड़ा होना चाहिए, भगवान गणेश जी का जो बड़ा पेट है उसका तात्पर्य क्या है, आपके अंदर चीजों को बर्दाश्त करने की हजम करने की क्षमता होनी चाहिए जो आपके जीवन में आप बातों को पचा पाए, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। कोई शब्द कहा जाता है ना किसको कुछ पचता नहीं है, तो भगवान गणेश जी का संदेश है कि दुनिया को सुनिए उसको डाइजेस्ट कीजिए और फिर क्या लोगों को बोलना है वो बड़ी सूर प्रकट करती है कि जिससे लोगों को प्रसन्नता पहुंचे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं नवजोत जी जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के बड़े काम सबको सुनने की शक्ति रखने की का उत्तरदायित्व देते हैं कि सबको सुनने की शक्ति रखिए, हमेशा बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, समाज क्या कह रहा है कौन सी बात आपको ग्रहण करनी है कौन सी नहीं ग्रहण करनी है सबको सुनना सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर देखा जाए तो भगवान गणेश जी के द्वारा हम सबको सुनने को मिलता है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर जगह पर भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा किया जाता है लेकिन कहीं पर भी भगवान गणेश जी के द्वारा अहंकार पूर्ण कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जहां भी उनके स्वरूप को आप देखेंगे जहां पर उनकी स्तुति को देखेंगे, वेद ने कहा सुमुखस्य कदंतस्य कपिलो गज कर्ण कहा लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायका, लेकिन उनकी स्तुति देवताओं ने की, कभी गणेश जी ने अपने आप को इस प्रकार प्रेजेंट नहीं किया कि मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं गणाध्यक्ष हूं तो मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लोगों ने वो रिस्पेक्ट प्रदान कर दिया, उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया, ना तो प्रसन्नता किसी पद को पा करके और ना अगर उन्होंने युद्ध किया या भगवान शंकर ने उस परिस्थिति बस उनके सर को धड़ से अलग किया तो ना ही किसी के प्रति द्वेष की भावना। आज के जेनजी को गणेश जी से बहुत सीखने की आवश्यकता है कि अगर आपको आईफोन ना मिले तो आप माता पिता से बात नहीं करते हैं, और जो गणपति बप्पा आ रहे हैं उनका सर भी धड़ से अलग हो गया तो उनके अंदर दोष नहीं, द्वेष नहीं कहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संदेश तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बप्पा पधार रहे हैं तो बहुत जरूरी है इन तमाम खास बातों का ख्याल रखना जो आज हमारे खास मेहमानों ने बताई हैं, और इसी तरीके से बप्पा का स्वागत करना। वैसे आपको बता दें कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे होता है, तो ये इंडिया का फेस्टिवल शुरू हो गया और गुड न्यूज टुडे का फेस्टिवल भी शुरू हो गया, तो गणेश उत्सव के तमाम रंग आपको सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर दिखते भी रहेंगे और हम आपको बताते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आप यहाँ से।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं, किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है, ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही देश भर के बाजारों में गणेश प्रतिमाएं सज चुकी हैं और बाजार में इन दिनों एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाएं मिल रही हैं। ज्यादातर लोग इको फ्रेंडली गणेश ही प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे में मूर्तिकार इको फ्रेंडली मूर्तियां ज्यादा तैयार कर रहे हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियां बांस, मिट्टी या फिर पराली के अलावा गाय के गोबर से भी तैयार की जा रही, ताकि पर्यावरण को कोई भी नुकसान न पहुंचे।
2: अलग अलग आकार और डिजाइन की एक से बढ़कर एक खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं, जो एक नजर में ही देखने वालों का मन मोह ले। ऐसी मनोहारी मूर्तियों से देश के बाजार सजे हैं। जामनगर से जयपुर तक और झांसी से लेकर पाली तक बाजारों में गणेशोत्सव की रौनक हर तरफ देखते ही बन रही है। ये मूर्तियां देखने में जितनी सुंदर और आकर्षक हैं, उतनी ही विशेष भी हैं, क्योंकि ये मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं, यानी ऐसी चीजों से बनी हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता नहीं है।
3: बाजार भी सज चुके हैं, तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है गणेश उत्सव की। वो समय है जब हर एक व्यक्ति बाजार में आ रहा है, अपने मन पसंद के गणेश जी चुन रहा है। कुछ लोग अपनी थीम के हिसाब से ऑर्डर्स दे रहे हैं और पूरा मार्केट सजा हुआ है, क्योंकि तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। गणेश उत्सव होगा, कुछ लोग 3 दिन के लिए, कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 5 दिन के लिए, तो कुछ पूरे 11 दिन के लिए अपने घरों में गणेश जी महाराज को विराजित करते हैं। 14 तारीख वो शुभ दिन है जिस दिन सभी के घर में गणेश जी जाएंगे, और 11 दिन तक जो पूजा होती है, अर्चना होती है, बहुत ही खास होती है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की मूर्तियां इस समय पे जयपुर के बाजारों में भी नजर आ रही है, जिसमें थीम्स भी बहुत सारी नजर आ रही है। श्रृंगार अलग अलग टाइप का नजर आ रहा है, जिसमें सर्प रूपी गणेश जी भी है, जिसमें शिवलिंग के साथ में गणेश जी भी है, लाल बागचा राजा की झलक भी यहाँ दिख रही है, तो डबरू बाबा की भी झलक दिख रही है।
2: बीते कुछ वर्षों में लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते गणेशोत्सव के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड भी बढ़ रही है। यही वजह है कि कारीगर डिमांड और ट्रेंड के हिसाब से ही मूर्ति निर्माण का काम महीनों पहले शुरू कर देते हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियों के ऑर्डर को पूरा किया जा सके।
4: 4 दिन पहले मूर्ति देना पड़ रही है। हाँ, महंगाई तो है ही, और जो इस बार जो आगमन का प्रोग्राम चलने लगा, तो आदमी 4-5 दिन पहले ही मूर्ति मांगने लगा।
5: 6 महीने पहले से काम शुरू हो जाता है मूर्तियों का, जब ही ग्राहकों को पूरा तैयार करके दे पाते हैं।
6: अच्छा, कहाँ कहाँ की बुकिंग है?
5: बुकिंग तो बाहर की भी है, लोकल की भी है।
2: ज्यादातर कारीगर इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बांस, मिट्टी और पराली से तैयार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाते हैं। ये मूर्तियाँ भी मिट्टी की मूर्तियों की तरह ही देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं, और इनसे भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है।
7: मतलब बहुत ही शुद्ध है, अपने हर घर के काम में भी पहले जब तक गोबर का लिपन नहीं होता, तब तक अपन अपने घर को भी शुद्ध नहीं मान सकते। तो मैं गोबर को बहुत ही शुद्ध मानता हूँ, पीओपी और मिट्टी से भी बहुत शुद्ध मानता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप घर पे ले जाओ इसको और घर पे ही विसर्जन करो इसको, और विसर्जन होने के बाद में इसी के पानी को मतलब आप अपने पेड़ पौधों में डाल दो, ये खाद का काम भी करते हैं।
2: घर और पूजा पंडालों में विराजने वाली इन गणेश प्रतिमाओं का लोग तरह तरह के आभूषणों से श्रृंगार भी करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी से पापा को सजाते हैं। ऐसे में डायमंड सिटी सूरत में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के आकर्षक और भारी भरकम आभूषण तैयार करवाए गए हैं। इनमें भगवान गणेश की पादुकाएं, कंगन, हाथों के आभूषण, मुकुट समेत विभिन्न प्रकार के आभूषण शामिल हैं। इन आभूषणों की विशेषता ये है कि ये सामान्य आकार के छोटे मोटे आभूषण नहीं है, बल्कि गणेश प्रतिमाओं के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, ताकि गणेश प्रतिमा को उत्सव के दौरान भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सके। जयपुर से रिदम जैन, पाली से भरत भूषण जोशी, झांसी से अजय झा और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: कौन से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है? ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: देखिए इंडिया का फेस्टिव मूड ऑन हो चुका है, बप्पा के स्वागत की तैयारियां हर तरफ हैं और आज चाय पर चर्चा में हम आपको दिखाएंगे रंग पूरे देश में किस तरीके से बप्पा के आगमन को लेकर तस्वीरें आ रही हैं, धूमधाम से लोग तैयारियां कर रहे हैं और आपके चहेते चैनल यानी कि गुड न्यूज टुडे में भी बप्पा पधार रहे हैं, तो बप्पा का स्वागत हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं ये आपको आगे दिखाएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए बुलेटिन में हम बात करेंगे तरह तरह के गणपति पंडालों की भी। बप्पा के स्वागत के लिए शहर शहर अलग अलग थीम पर शानदार और भव्य पूजा पंडाल भी बनाए गए हैं, उसकी झलक भी आपको हम दिखाएंगे।
2: नमस्कार, मैं हर्ष गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात उज्जैन के खड़े हनुमान जी की भी होगी, जहां नए मंदिर में खड़े हनुमान की प्रतिमा को शिफ्ट करने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि नए मंदिर में प्रतिमा की स्थापना होने पर उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। इस पर अपडेट आपको देंगे, लेकिन पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां जारी, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के पंडाल, भगवान गजानन के लिए तैयार किए जा रहे स्वादिष्ट मोदक। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मां बिंदल कुल देवी मंदिर में विशेष आयोजन, कोलकाता से आए कलाकारों ने देवी मां का किया अनुपम श्रृंगार। छत्तीसगढ़ के भक्त ने साईं बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए कीमत का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर को सौंपा 9 तोले का कारीगरी वाला मुकुट। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक बैलपोला उत्सव की धूम, किसानों ने पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई फिल्म हनुमान अंश, फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, फिल्म को दुनिया भर से मिल रहा दर्शकों का प्यार। ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंच रहे मेहमान, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का किया स्वागत, कुछ देर बाद एक ही कार में सवार होकर प्रदर्शनी देखने पहुंचे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2000, अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगा लाभ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुननी।

0: तो जैसा कि आपने देखा कि गुड न्यूज टुडे में भी पधारने वाले हैं बप्पा, तो सबसे पहले शगुप्ता जयकारे हो जाए।
1: हाँ, गणपति बप्पा
0: मोरया,
1: मंगल मूर्ति
0: मोरया। तो ये उत्साह जो है ना, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो एक्चुअली पूरे देश में अभी देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई है, किस तरह से मुंबई में या फिर महाराष्ट्र के दूसरे जगहों में गणपति बप्पा पधारने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में भी तैयारी है और विशेष करके गुड न्यूज टुडे में भी। लड़कियों बताइए क्या कुछ मेहनत कर रहे हैं?
1: इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, इतने ज्यादा एक्साइटिंग प्री प्रेपरेशन जो है ना, वो हमने कर ली है।
2: हमारे तो ऑफ कैंसिल कर दी सबने, आएंगे। और देखिए एक्साइटमेंट इसी को कहते हैं, जितने एक्साइटेड आम भक्त है उतने एक्साइटेड हम भक्त भी हैं।
1: बिल्कुल, ये देखिए हमारी तस्वीरें आप इधर भी देख सकते हैं। हम चुनाव करने के लिए पहुंच चुके हैं गणपति जी का, लेकिन फाइनल पिक्चर जो है ये तो अभी ट्रेलर है ना, फाइनल पिक्चर।
0: लोगों को बताइए शगुफ्ता नवजोत कि हम कितने कंफ्यूज हो गए।
2: बताओ यार, यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी, देखो भाई जब जिम्मेदारी

0: लड़कियों को दे दी जाए ना तो भाई एक तो पहली बात चीज सबसे बेस्ट आती, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे पप्पा हमारे यहाँ पधारेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम भी बस एक ही जगह गए, हमने भी अलग अलग जगहों पर जाके देखे हैं पप्पा, लेकिन वो सरप्राइज एलिमेंट के लिए आपको मंडे तक का इंतजार करना होगा।
1: बिल्कुल, और ये कितना कलरफुल फ्रेम लग रहा है।
2: और मैं तो सही बताऊं कि शगुफ्ता तो बीच में ये हो गई थी कि इनको मिले चलते
1: भाई, मैंने गोद में उठा लिए, मैंने इनको बोला आपने इतना कंफ्यूज कर दिया, अब इनको फाइनल कर दो बस, यही उठाकर लेकर जाएंगे और यही हमारे बप्पा हैं। लेकिन देखिए, आपको जो सस्पेंस से पर्दा उठेगा ना, वो उठेगा फाइनली मंडे को सुबह। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, स्थापना की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मुहूर्त कब है वो भी आपको बताएंगे।
2: बिल्कुल, क्योंकि देखिए सोमवार को यानी कि 14 तारीख को पूरे देश भर में गणेश उत्सव की तैयारी जो चल रही थी उसका फिनाले उसी दिन है, और तैयारियों को अंतिम रूप भी आपको, जैसा कि हमने बताया कि देश भर से जो तस्वीरें आ रही है, अंतिम रूप दे दिया गया है। अब बस बप्पा के आने की देरी है।
1: बिल्कुल, देखिए जीएनटी बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाला, जीएनटी सबसे आगे चल रहा है और हमारी टीम निकली और हमारी टीम ने अपने बप्पा को चुन लिया है।
0: तो भाई दिल्ली का मौसम है, हल्की हल्की बारिश और गणपति बप्पा
3: मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
0: तो जैसा हमने आपसे वादा किया था भाई, हमारी टोली तैयार है, हम लोग जा रहे हैं बप्पा की पसंद करने के लिए।
2: बिल्कुल, और इन सब ने स्टूडियो में पहले ही बात कर लिया था कि हमें कैसे गणपति चाहिए, तो जीएनटी चूंकि पिछले बार से गणपति यहाँ बिठा रहा है, तो इस बार भी हमारी पूरी कोशिश है कि सबके प्यारे गणपति बेहद खूबसूरत, अपने अच्छे कैसे होंगे जीएनटी के इस बार के गणपति, हमारे साथ चलिए और जानिए।
0: बिल्कुल, एक बार जरा हम दीपाली से पूछ रहे, दीपाली किस तरह के चाहिए आप कल मिस की?
4: मुझे तो ऐसे चाहिए जो मुझे लगे कि मुझे देख रहे हैं।
0: हमने कल कही थी ना कि हम भगवान का चुनाव नहीं करेंगे, भगवान गणपति जो है खुद चुनकर हमारे पास आएंगे।
4: और जो सबसे बड़ी बात आप मिस कर रही हैं, कल का मौसम जो था वो बेहद गर्म था, बहुत गर्म था। हम लोग ये सोच के परेशान थे कि आज जब हम पापा का चुनाव करने जाएंगे तो बहुत गर्मी होगी, लेकिन आप मौसम देखिए।
0: और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब भाई इंद्रदेव खुद मेहरबान होना तो इसका मतलब काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बिना देर किए लेट्स गो,
2: चलिए
0: आइए
2: एक बार फिर से जयकारा हो जाए।
0: बिल्कुल,
3: मंगल मूर्ति मोरिया।
0: तो हम लोग आ पहुंचे हैं मयूर विहार, जहां पर हम मूर्ति सिलेक्ट करेंगे। हम अपने बाकी साथियों का भी इंतजार कर रहे हैं, वैसे मौसम बहुत ही सुहावना है।
2: हमारी टीम जो है पहुंच गई है यहां पर, बारिश हो रही है ऊपर झमाझम, लेकिन कहते हैं वही जो हमने कहा था कि भाई सनातन में मानते ही है कि कुछ भी शुभ कार्य करो तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और बारिश होगी, तो
4: पप्पा चाहते हैं वो होता ही है।
1: और देखिए, हम जब मुंबई में थे, मुंबई में कोई भी कार्य जब शुरू होता है ना, ऐसा धार्मिक कार्य, उससे पहले कहते हैं कि भगवान की सहमति हो गई है, तो भगवान ने अपनी सहमति दे दी है, हम तैयार हैं, भीगते हुए नाचते गाते हुए लेके आएंगे गणपति बप्पा।
0: चलिए
3: मंगल मूर्ति,
0: आइए देखते हैं आज कौन से पप्पा हमें पसंद करते हैं।
3: गणपति पप्पा मोरिया,
0: मंगल मूर्ति
3: मोरिया,
0: अरे वाह
3: मोरिया।
0: अरे तो हम आ गए हैं गणपति जी का चुनाव करने के लिए। आई थिंक बहुत सुंदर मूर्तियां हैं, एक से बढ़कर एक ऑप्शंस हैं। अब कंफ्यूजन होने वाली है, मैं बता रही हूँ आप सबको।
5: देखो मैं दीपिका सॉरी गीतिका और शगुफ्ता पे रिलाई करके चल रही हूँ। उसका कारण ये है कि यही दोनों पिछली बार लाए थे, इस बार हम इनको असिस्ट कर रहे हैं।
2: Exactly.
5: तो भाई शुरुआत आप ही लोग करिए, गीतिका आइए। तो हम दो से ज्यादा मतलब 3 फीट वाला देखते हैं,
6: 3 फीट वाला
5: वो देखो।
1: अच्छा, एक और चीज जो गणपति बप्पा के बारे में कही जाती है कि उनका एक तो श्रृंगार देखिए, उनकी सूंड जो है गीतिका वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और वो बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, ध्यान मुद्रा में, कि हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जीएनटी को दे रहे हैं, जीएनटी को आशीर्वाद दे रहे हैं।
5: सारी चीजों का ख्याल हमको रखना है, लेकिन मैं हाइट के बारे में थोड़ा सा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब हमने लिए थे थोड़े से हमारे फ्रेम के हिसाब से छुटकू से लग रहे थे, हालांकि हमें जेंजी पे जाना, थोड़ा सा हाइट बड़ी ले लेते हैं इस बार।
1: इस बार हमने डिसाइड किया है कि 2.5 से 3 फीट की हाइट के गणपति बप्पा का हम चुनाव करेंगे। तो एक बार कैमरा पे दिखा देते हैं।
0: दीपाली कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है?
4: मुझे तो सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं, मतलब मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है किसी भी गणपति से, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है,
6: तो मैं तो इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन से वाले गणपति का सिलेक्शन होने वाला है. सारे ही गणपति बहुत शुभ होते हैं, बट मेरे हिसाब से सिंदूरी रंग बहुत ज्यादा शुभ माना जाता
7: है. ज्यादा डिमांड इसी की हो रही थी
1: ना, कलरफुल होने चाहिए. वैसे जो भी मूर्ति आप देखेंगे ना, श्वेता, नवजोत, गीतिका, दीपाली, सब में आपको सारे कलर्स मिलेंगे. ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स कवर किए गए हैं. आई थिंक जिस पर नजर जाके टिकट है ना,
7: एक ये देखो, क्योंकि हमने कल वो कमल पे बैठे हुए बप्पा देखे थे ना, वो देखो. अब कलर और बाकी सारी चीजें आप डिसाइड कीजिए. अच्छा, ये हाइट थोड़ी कम है.
2: और देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे तो हमने बाल गणपति की बात की, तो ये देखिए बाल गणपति है, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं. हाइट कितनी होगी लगभग, क्या लगता है
8: हाइट कितनी होगी इनकी? हाइट,
2: इनकी हाइट कितनी होगी? दो ढाई फीट. तो यानी कि वैसे अगर हम ढूंढ रहे हैं तो इस हाइट की ढूंढ रहे हैं तो हम कितने.
7: एक बार श्वेता आप ये भी देखिए आपके पीछे, ये भी देखिए. हालांकि बाकी आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, आई थिंक ये हाइट के हिसाब से मैं देख रही थी.
2: हाइट के हिसाब से देखिए,
7: सिंदूरी रंग के हैं ये.
1: अगर हम और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सके, आई थिंक हमारे पास अगर चॉइस है तो हम विल गो फॉर.
7: हम थोड़ा सा उधर भी है,
1: आई थिंक ढाई से तीन फीट के हैं ये, देखिए सामने बिल्कुल.
7: अच्छा, पहले डिसाइड कर लो बाल गणेश लेना है कि कौन से, ये डिसाइड कर लो.
1: अच्छा, अब जो सारे इतने सुंदर है, मन कर रहा है ये भी तो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं. ये पता क्या है, ये हो गए हैं सारे के सारे लालची, ठीक है, क्योंकि भगवान को देखकर इतने सुंदर है, लालच आ रहा है हमें.
7: ये कैसे लग रहा है?
1: ओह, ये लाल बादशाह राजा.
2: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी मूर्ति. और इसकी हाइट कितनी होगी लगभग?
7: ये मुझे लग रहा है ये अच्छा लग रहा है. ये कितने का देंगे आप? अच्छा, ये बुक्ड है, तो ऐसा आपने और नहीं बनाया हुआ?
2: अच्छा, इस तरह के नहीं बन सकते क्या? ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे
7: हैं. हाँ, मेरे को भी अच्छे लग रहे हैं.
2: ये और एक बन सकते हैं, हम मंडे ले जाएंगे.
1: बात कर रहे थे बाल गणेशा की, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ सारे बाल गणेशा हैं. कितने खूबसूरत, छोटे बड़े हर साइज के आपको गणपति दिख जाएंगे. आपको कौन से वाले पसंद आ रहे हैं इसमें से?
7: इतना कंफ्यूज कर रही है ना लड़कियाँ. वैसे तो सारे लेने का मन है, बाल गणेशा पे ही मेरी नजरें सबसे पहले टिकी थी, लेकिन वही बात की हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है.
2: ये गणपति आप देख सकते हैं, देखिए आजकल जो है ये जैसे पगड़ी बनाते हैं गीतिका, तो उसमें ये देखिए फ्लावर्स जो लगाया है छोटा छोटा, और आप भी बड़े एक्सपेरिमेंट ड्रेस के साथ करती है, तो ये गणपति भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं. तो इनके देखिए फ्लावर लगाया है, इनके भी इस तरह से फ्लावर लगा हुआ है. ज्वेलरी देख सकते हैं अलग अलग तरह की यहाँ पर.
1: शगुफ्ता, ये महाराष्ट्र वाला स्टाइल नहीं है, देख रही हूँ पगड़ी का फेटे वाला, बिल्कुल जो महाराष्ट्र में गणपति को पहनाया जाता है.
7: मुझे दगड़ू शेड गणपति बप्पा ध्यान में आ रहे हैं. ये पगड़ियाँ देखिए,
1: सारे गणपति कितनी सुंदर सुंदर पगड़ियाँ और फेटे बांधे हुए हैं, प्लस उनमें कलगी भी लगाई हुई है.
7: कलगी भी है और हरा रंग मुझे लगता है वो गो ग्लोबल गो ग्रीन वाला संदेश भी दे रहे हैं गणपति बप्पा.
2: बिल्कुल, और इस बार क्या है, हर बार गुड न्यूज स्टूडियो जो है इसके फेवर में रहता है कि भाई हम लोग इको फ्रेंडली ही गणपति रखें, तो इसी मकसद से हम आए भी हैं. तो दो तीन मार्केट देख चुके हैं और जो बेस्ट है वो हम लेकर के जाएंगे.
1: वही तो सरप्राइज है ना श्वेता की, सरप्राइज है मंडे को कौन से गणपति सबके सामने होंगे.
3: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया.
2: जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं शगुफ्ता, इतने सारे गणपति, हर साइज के गणपति है, लेकिन हाँ हमारे साथ वही है, बहुत सारी चीजें, तीन फीट के हमें चाहिए गणपति. फिर हमें किसी ने, गीतिका ने या फिर आपने कहा कि हमें तो ये पगड़ी वाले चाहिए
7: और हमें इको फ्रेंडली भी चाहिए.
1: अच्छा श्वेता, सबकी डिमांड अलग अलग है, किसी को पगड़ी चाहिए, किसी को श्रृंगार बहुत सुंदर चाहिए. हमारे जेएनटी के गणपति सबसे डिफरेंट दिखने चाहिए, किस किस की डिमांड पूरी करें हम.
2: बिल्कुल, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि गुड न्यूज टुडे के जेएनटी के जो गणपति है वो बिल्कुल अलग हो और बहुत ही प्यारे हो, इसलिए हमें टाइम भी लग रहा है. कोशिश
1: लग रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी नजरें ना टिक जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान ने हमारी परीक्षा ली है, अब हम आपकी परीक्षा लेंगे मंडे तक, है ना. बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ.
0: मतलब सस्पेंस आपने पूरा बरकरार रखा है ना।
1: काम कीजिए, रिमोट को साइड पे रखिए और मंडे तक ना अपना रिमोट बस जीएनटी पे टिका कर रखिए, क्योंकि जो मेरे हाथ में थे वो फाइनल नहीं है, ये भी मैं इनको बता दूं।
0: ये अभी भी सस्पेंस है, लोका नहीं सोचना सीखा भी यही आ रहे हैं।
1: नहीं, वो थोड़ा सा बना के रखते है ना, क्योंकि वेट ऐसे
2: अभी वो तैयार
1: हो रहे हैं, क्योंकि उनमें फाइनल टचेस अभी होंगे।
0: ओके,
1: है ना। तो चलिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब कर्नाटक की तस्वीर भी दिखा देते हैं। बेलगावी जिले में गणेशोत्सव की तैयारियां तो चल रही है। 14 सितंबर से यह त्यौहार शुरू होने जा रहा है। कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ पर 500 से ज्यादा गणेश मंडल हैं, इसीलिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ ट्रैफिक जैम और भारी भीड़भाड़ से बचने के लिए बड़ी मूर्तियों को समय से पहले ही लाया गया है।
0: और बेलगावी में भव्य शोभा यात्राओं के साथ ही गणेश मूर्तियों का स्वागत करने की पुरानी परंपरा है। मंडल इस पर लाखों रुपए खर्च भी करते हैं। सभी मूर्तियों को एक ही दिन एक ही रास्ते से लाने पर भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, और इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने गणेश मूर्तियों को कुछ दिन पहले ही लाने की अनुमति दी है। कई मंडल पहले ही ऊंची मूर्तियां अपने अपने पंडालों में ला चुके हैं। इस साल बेलगावी पुलिस ने मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई 18 फीट तय की है।

0: चलिए बढ़ते हैं आगे और आप बात बाबा नीब करोली के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश की, जो जिसने बॉक्स ऑफिस पर विजय रथ जारी रखा हुआ है। फिल्म ने 35वें दिन भी करोड़ों की कमाई कर अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा है और इसी सफलता के बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंची है, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया।
1: जी देखिए, अनुप्रिया नागर आगे भी संत महापुरुषों के जीवन और उनके संदेश को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी में है। उनकी कोशिश यही है कि संतों और सनातन संस्कृति को संदेश को सिनेमा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए।
2: जिस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर महज 10 लाख रुपए की कमाई से हुई, आज वही फिल्म करोड़ों की कमाई कर रही है। बात हो रही है फिल्म हनुमान अंश की। नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेश से प्रेरित इस फिल्म ने 35 दिन बाद ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इस फिल्म ने रिलीज के 35वें दिन करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 163 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 193 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी छोटे बजट से शुरू हुआ ये सफर अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी की कहानी बन चुका है।
3: मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, टीम का कोई सदस्य भी क्रेडिट नहीं ले सकता, सिर्फ महाराज जी को क्रेडिट जाता है क्योंकि इनकी आशीर्वाद हमारे साथ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो ऑडियंस है, जो डिवोटीज है, जो ये फिल्म देख रहा है थिएटर में जाकर, बहुत बहुत बार देख, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख रहा है, फैमिली के साथ देख रहा है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो एक महीना 30 दिन से ज्यादा हमारी फिल्म चल रही है थिएटर में। इनफैक्ट पहले हफ्ते के एंड में ही बता दिया गया था हमें कि फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई थी इंडस्ट्री में, लेकिन महाराज जी की ही कृपा है, उनकी आशीर्वाद है कि अभी हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, लोगों तक पहुंची। इनफैक्ट अभी ग्लोबल रिलीज भी हो रही है हमारी फिल्म पूरे दुनिया भर में।
2: फिल्म की इस कामयाबी के बीच प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंची। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद लिया। फिल्म की सफलता और संतों का आशीर्वाद अनुप्रिया नागर के लिए ये पल बेहद खास रहा।
3: उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी भी घबराहट हो तो बस महादेव का स्मरण करो, बजरंगबली का स्मरण करो।
2: अनुप्रिया नागर ने हनुमान अंश की सफलता का श्रेय भगवान और संतों की कृपा को दिया। इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि यदि स्वामी कैलाशानंद महाराज की अनुमति मिली तो वो भविष्य में उनके जीवन चरित्र पर भी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगी।
3: मुझे दिखाई दी कि स्टीव जॉब्स जो है वो महाराज जी से प्रभावित हुए थे, और जब मैं वापस आई इंडिया कुछ काम के सिलसिले, तो मुझे लगता है महाराज जी ने ही मुझे हनुमान अंश की टीम से मिलाया। और तब शूटिंग हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बस थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी तब। और तब मुझे कहा गया था कि देखो ये फिल्म इस पड़ाव तक तो पहुंच गई है, लेकिन फंड्स की जरूरत है। तो तब पता नहीं, ये अगेन मैं कहती हूँ ये मेरा थॉट नहीं है, ये महाराज जी का ही थॉट है कि उन्होंने कहा कि बेटा जो भी तुमने कमाई की है तुम ये सब इसमें डाल दो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी सबको कि ये फिल्म तीन महिलाओं ने बनाई है, तीन महिलाओं ने ये प्रोड्यूस किया है, तो मेरा तो सिर्फ 1/3 कंट्रीब्यूशन था इसमें।
4: अच्छा, आज स्वामी जी से भी मुलाकात हुई, स्वामी जी के ऊपर भी आपने फिल्म बनाने की बात की।
3: मैं चाहूंगी, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और उनकी जो टीचिंग्स है, जो उनकी तपस्या है, वो मैं पूरे विश्व तक ले जाऊं। पर जब वो चाहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो वही मार्गदर्शन देंगे।
5: उनसे कहा कि गुरुजी मैं आपके ऊपर बनाना चाहती हूँ, पर मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी हमें अपनी साधना करने दो और अभी हमारे ऊपर कोई पिक्चर ना बनाओ। अभी तो आप उन बुजुर्गों के ऊपर पिक्चर बनाओ जो देश के बड़े महात्मा थे, जो बड़े महात्मा है, जो बुजुर्ग साधु हैं, उनके ऊपर बनाओ। हमारे ऊपर आप तब बनाना जब हमारी इच्छा होगी और हमें जब भगवान शिव की या भगवती की जब प्रेरणा होगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मेरे ऊपर तुम बनाना।
2: हनुमान अंश के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। यूके में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के दौरान अनुप्रिया नागर एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के जीवन पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स के जीवन के कठिन दौर में बाबा नीम करोली का गहरा प्रभाव रहा था। इसी प्रेरणा ने उन्हें भारत के महान संतों और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प दिया, जिसके बाद हनुमान अंश की नींव रखी गयी। अनुप्रिया का लक्ष्य आने वाले समय में भी ऐसे ही महान संत महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक फिल्में बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और हनुमान अंश के बाद बात कर लेते हैं हनुमान की। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगने वाला है और उसके लिए लगातार ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। और उसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई, आप लोगों ने भी देखी होगी कि हनुमान जी के मंदिर को वहां से शिफ्ट करना था, मूर्ति को करना था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी तस्से मस वो मूर्ति नहीं हुई।
6: मैंने देखा और मुझे ना ये चीजें देख के यकीन सा नहीं आता, मतलब मुझे नहीं पता कि लोग ना साइंटिफिक तरीके से देखने लग जाते हैं इन चीजों को, क्या रीजन हो सकता है, जमीन के नीचे कुछ गड़ा हो सकता है या क्या है, बट आई थिंक कुछ ना कुछ मिरेकल तो है अगर आप बिलीव करते हैं इसमें तो।
0: देखिए वहीं पे फिर आस्था वाली बात आ जाती है, विश्वास की बात आ जाती है। अगर आस्था और विश्वास है तो ऐसी जब खबरें सामने आती है तो आपकी आस्था और प्रगाढ़ होती है, फिर उसमें आप सवाल नहीं ढूंढते बहुत सारे।
1: बिल्कुल वही आस्था की बात है कि आप किस नजर से उसको देखते हैं।
0: बिल्कुल, तो सवाल सिर्फ चूंकि मंदिर की जगह बदलने का नहीं, उस प्रतिमा के स्वरूप और दिशा का भी है। मौजूदा मंदिर के में दक्षिण मुखी खड़े हनुमान जी नई जगह विराजेंगे तो उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। इसी को लेकर श्रद्धालु मंदिर को कहीं और शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं।
2: महाकाल की नगरी उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर की चर्चा देश भर में हो रही है। पिछले कुछ दिनों से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार या शनिवार ही नहीं, सामान्य दिनों में भी यहां सुबह से शाम तक लोग दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर को शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं।
7: हम हर हाल में सरकार के साथ हैं, हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारे उज्जैन के निर्माण में, आने वाले कुंभ के निर्माण में, व्यवस्थाओं में कोई भी गलती हो या कोई भी भूल चूक हो, कोई भी कमी रह जाए, हम वो दोष अपने ऊपर बिल्कुल नहीं चाहते, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन पूरे शहर में निर्माण का कार्य चल रहा है, चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। एक मंदिर ऐसा हमारे सामने आया जहां पे इस कलयुग के जीवंत भगवान ने हमें ये बताया है कि वो यहां से नहीं जाना चाहते। चार प्रयासों में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, इससे ज्यादा क्या स्पष्टीकरण हमको चाहिए, तो हम अब पांचवा प्रयास ना करें।
2: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए उज्जैन में कई सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इसी के तहत कंठाल से छतरी चौक तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी रास्ते में खड़े हनुमान जी का मंदिर आता है। प्रशासन की योजना मंदिर को कहीं और शिफ्ट करने की है, लेकिन नई जगह को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। मौजूदा स्थान पर हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं, जबकि टंकी चौक पर जिस नए मंदिर का ढांचा तैयार किया जा रहा है, वहां प्रतिमा की स्थापना होने पर उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा।
8: ये वो स्थान है जो चिन्हित किया है प्रशासन ने, और यहां पे अगर आप देखें तो ढांचा बनना भी तैयार कर दिया था प्रशासन ने, फूल भी लगा दिए थे। प्रतिमा जन्माष्टमी पर खड़े हनुमान की जब हटती वहां से तो उसे सीधे यहीं लाया जाता, यहीं पर स्थापित किया जाता, लेकिन इससे पहले विवाद खड़ा हो गया प्रतिमा हटाने को लेकर के, और तब से लेकर अब तक खड़े हनुमान की प्रतिमा जहां थी वहीं स्थापित है और ये जगह अभी भी जस की तस पड़ी हुई है। अब आपको महत्व बता देते हैं, दरअसल विवाद सिर्फ प्रतिमा हटाने को लेकर के नहीं हो रहा है, इस जगह के चयन को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल खड़े हनुमान की जो प्रतिमा है छतरी चौक पर, वो दक्षिण मुखी है, यानी प्रतिमा का जो मुंह है हनुमान भगवान की वो दक्षिण दिशा की ओर है, लेकिन यहाँ पे जो तैयारी है, यहाँ पे जो चबूतरा बनाया गया है, यहाँ पे अगर स्थापित होगी मूर्ति तो प्रतिमा का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, यानी प्रतिमा उत्तर मुखी हो जाएगी। दक्षिण मुखी प्रतिमा होने के नाते तो उसका महत्व बढ़ जाता है, लेकिन अगर प्रतिमा उत्तर मुखी हो जाएगी तो जो खड़े हनुमान की प्रतिमा का मूल स्वरूप है वो बदल जाएगा, और ऐसे में जो धर्म के जानकार है, जो मंदिर के पुजारी हैं, वो इस दिशा का भी विरोध कर रहे हैं।
2: स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को जन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, मंदिर से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, ऐसे में अगर भगवान के स्थान या स्वरूप को लेकर कोई बदलाव होता है तो लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
9: जो चारों युग में जिनके प्रताप से उजारा हुआ है उसको अंधकार में धकेलने की कोशिश अभी तक प्रशासन की नाकाम हो चुकी है, सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, तो अब हम अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि आप बाबा को पुनः यहीं पर रहने दें और कहीं नहीं ले जाएं। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था का सवाल है उसका आदर करें।
2: खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी के मुताबिक बजरंग बली की प्रतिमा इसीलिए टस से मस नहीं हो सकती क्योंकि मंदिर की बनावट के साथ इसे इंटरलॉक किया गया है।
8: नीचे कितनी गहरी है, प्रतिमा के नीचे का हिस्सा कितना गहरा है, किस बात का कोई अंदाजा लगा है अभी तक?
10: अभी उन्होंने सिर्फ 5 फीट खोदा है दोनों साइड से, राइट हैंड साइड से और पीछे से 5-5 फीट खोदा है। 5-5 फीट खोदने के बाद वो जब उन्होंने देखा कि दोनों साइड से जो पुराने टाइम के जो एरन होते थे वो इस तरह से लगाए गए हैं कि लॉकिंग जैसा लगता है कि अगर किसी एक एरन को भी हटाया तो मूर्ति जो है उसका जो है वो बेसिकली बैलेंस उसका बिगड़ सकता है, क्योंकि ये पुराने जमाने की लॉकिंग पद्धति थी।
2: मंदिर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हैं। इसी बीच मंदिर के पास अचानक कुछ लंगूर भी पहुंच गए जिन्हें देख लोग हैरान हैं।
8: उज्जैन के जिस खड़े हनुमान मंदिर को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, वहां अचानक से दोपहर को कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से लोगों के मन में हनुमान भगवान के प्रति आस्था और बढ़ा दी है। उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के पास में अचानक से वानरों का एक झुंड आ गया है और ये इसने आसपास की जो तमाम इमारतें हैं जिन्हें सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया था वहां पे इस वक्त डेरा डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं जो काले लंगूर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल ठीक उसी खड़े हनुमान मंदिर के सामने की तस्वीर है जहां इस वक्त जो इमारतें चौड़ीकरण के लिए तोड़ी गई थी उस पे आकर के तमाम वानर यहां बैठ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, हैरानी इसलिए हो रही है कि ये कोई वन क्षेत्र नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यह उज्जैन शहर के बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई वन क्षेत्र नहीं है, ना ही कोई चिड़ियाघर है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से वानर या लंगूर यहाँ आ पाए। लेकिन सामने आप तस्वीरों में देखिए भगवान हनुमान का वो मंदिर जो इस वक्त सुर्खियों में है और उसके ठीक सामने की इमारतों में ये वानर जो हैं ये आकर के बैठे हैं, बड़ी संख्या में आकर के बैठे हैं और लोग इसे कहीं ना कहीं जोड़ करके देख रहे हैं कि क्या ये भगवान हनुमान का चमत्कार तो नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं, उनका ऐसा मानना है।
2: मंदिर के पास लंगूरों की मौजूदगी श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हनुमान जी की प्रतिमा फिलहाल टेंट में विराजमान है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस के जवान तैनात हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रतिमा हटाने से जुड़ी खबरों को प्रशासन ने भ्रामक बताया। प्रशासन का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह की मशीन या बल का इस्तेमाल कर प्रतिमा को हटाने का प्रयास नहीं किया गया। उज्जैन से रवीश पाल सिंह के साथ संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
11: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 18,000 की ऊंचाई पर बीआरओ के वीरों का दमखम।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां जारी। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के पंडाल, भगवान गजानन के लिए तैयार किए जा रहे स्वादिष्ट मोदक। छत्तीसगढ़ के भक्त ने साईं बाबा को अर्पित किया 14 लाख रुपए कीमत का स्वर्ण मुकुट, मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर को सौंपा 9 तोले का कारीगरी वाला मुकुट। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में मां बिंदल कुल देवी मंदिर में विशेष आयोजन, कोलकाता से आए कलाकारों ने देवी मां का किया अनुपम श्रृंगार। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम, किसानों ने पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई फिल्म हनुमान अंश, फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, फिल्म को दुनिया भर से मिल रहा दर्शकों का प्यार। ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंच रहे मेहमान, पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का किया स्वागत, कुछ देर बाद एक ही कार में सवार होकर प्रदर्शनी देखने पहुंचे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2000, अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगा फायदा। अब आपको लेकर चलते हैं लद्दाख और आपको मिलवाते हैं उन रियल हीरोज के साथ, देश की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए खुद बंदूकें तो नहीं उठाते लेकिन देश के उन सैनिकों की राह आसान बनाते हैं जो एलएसी जैसे दुर्गम सीमा पर 2400 घंटे देश की निगहबानी करते हैं।
3: जी हाँ, बात हो रही है बीआरओ की, उन मजदूरों की जो लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल हालात में सड़क बनाने का काम करते हैं। देखिए हमारे सहयोगी मीर फरीद की खारदुंगला ये रिपोर्ट।
4: करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, सांसों में घुलती ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़, ये तस्वीरें लद्दाख में खारदुंगला टॉप के नजदीक के इलाके की हैं। ये वो जगह है जहां आमतौर पर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां मौजूद ये लोग सड़क बनाने का बेहद चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं और हौसले की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार काम में जुटे ये वो गुमनाम चेहरे हैं जो खुद भले ही हथियार उठाने वाले सैनिक नहीं हैं, लेकिन देश की सेना के जवानों की राह आसान बनाने वाले ये असली हीरो हैं। इनकी मेहनत देश की सबसे ऊंची सरहदों तक पहुंच सहज बना रही है।
5: अब ये जो वर्क फोर्स आप देख रहे हैं, इस ऑल्टीट्यूड पे 50% ऑक्सीजन पे ये लोग ये ढलाई और इतने मेहनत का जो काम करते हैं, ज्यादातर ये वर्क फोर्स जो है झारखंड से है और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो भी खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट्स है वहां पे तैनात रहते हैं। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, पूरा दिन तो काम है लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई यानी कि कोई लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया तो अचानक इनको जो है डिप्लॉय होना पड़ता है।
4: ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस सरहद तक पहुंचने वाली लाइफलाइन है जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना के जवान देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने का अभियान शुरू किया। तब से यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं, आवाजाही सुगम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको अंजाम देने में जुटे हैं ऐसे सैकड़ों मजदूर जो मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहाँ पर अपने काम में रम चुके हैं।
6: हम काम कर रहे हैं 2022। हाँ।
5: तो ये बताइए, जब पहले आए तो दिक्कत कितनी हुई, क्योंकि यहाँ सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
6: वो थोड़ा बहुत होता है फर्स्ट वर्ष में, इसके बाद आदत हो जाता है।
5: आदत हो जाता है। तो दिन में जब आप ये काम करते हैं, ये पूरे रास्ते में आपके लोग जो है फैले हुए हैं, कितना मुश्किल है काम?
6: ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मतलब इधर उधर है, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा ही काम होता है, ज्यादा काम नहीं होता है।
5: कितने सालों से यहाँ है?
6: तीन महीने से आगे।
7: अच्छा, तीन महीने से। तो क्या ज्यादा दिक्कत परेशानियां इस जगह पे होती हैं? क्या क्या आपको रोज जो है जूझना पड़ता है?
6: दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीजन का ही दिक्कत है, बाकी
7: ऑक्सीजन का दिक्कत है। तो कितना मेहनत का काम।
4: हकीकत तो यही है कि अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर ये लोग देश के सबसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें 6 महीने में एक बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये लोग बिना थके बिना रुके अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ चुनौती सिर्फ वज्र के समान कठोर पहाड़ नहीं है बल्कि मौसम का मिजाज भी है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
5: जैसे ही अक्टूबर आएगा तो यहाँ बर्फ होगी, ठंड जो है माइनस में चले जाएगा 15-20 तक, और फिर इन हाइट्स पे सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये असली लोग हैं जो कि पूरे साल यहाँ काम करते हैं, और जो बॉर्डर रोड्स आज हम देख रहे हैं जिस शक्ल में, कितने अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं, पूरा LAC LOC तक कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तो यही लोग हैं जो इन दुर्गम हाइट्स पे इन मुश्किल इलाकों में काम करते हैं, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनके पीछे के जो आप कहेंगे असली अनसंग हीरोज यही मजदूर हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
4: इन इलाकों में कभी बर्फीला तूफान आता है तो कभी लैंडस्लाइड होता है और कभी अचानक सैलाब भी आ जाता है, लेकिन इनका काम रुकता नहीं है। जहां मशीनें भी लड़खड़ा जाती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से पत्थरों को तोड़कर रास्ते तैयार करते हैं ताकि इन दुर्गम इलाकों में सरहदों की हिफाजत करने में जुटे सेना के जवानों तक रसद और जरूरी साजो सामान पहुंचाया जा सके। हर मुश्किल के बावजूद इनका काम जारी रहता है क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। लद्दाख के खारदुंगला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और अब बात ब्रिक्स सम्मेलन की, जिसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। ये चौथा मौका है जबकि भारत इस मंच की मेजबानी कर रहा है। 11 देशों की सदस्यता वाले इस समूह पर पूरी दुनिया की नजर है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली में कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य मुद्दों पर बड़ा मंथन होने वाला है। जाहिर है मौका बड़ा है, लिहाजा भारत ने इस महाआयोजन की महातैयारी की है।
1: और देखिए, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जहां मेहमानों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं, और फिर भारत मंडपम जहां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही मेहमान नवाजी के लिए दिल्ली भी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। मेहमानों के कंफर्ट के लिए अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों के इंतजाम किए गए हैं। अतिथि देवो भव भारत की पुरानी परंपरा रही है, इसी परंपरा को निभाने के लिए भारत एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार है।
9: भारत की मेजबानी में हो रही 18वीं ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए मंच सज चुका है। भारत मंडपम में रौनक भी है, तैयारियां भी हैं, और उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही यहां पर वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो एक बड़े शिखर सम्मेलन के लिए की जा, भारत के अतिथि देवो भव के इस भाव के साथ में यहां पर तैयारियां हैं। और आप सामने जो इमारत देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहां पर भारत की अगुवाई में जो 2026 की 18वीं ब्रिक्स शिखर बैठक हो रही है। नटराज की मूर्ति उसके साथ लगा हुआ यहां पर ब्रिक्स का उद्घोषणा, और साथ ही ये वो जगह है जहां पर मुख्य समारोह होगा। साथ ही यहां पर इन संगीत की लहरों पर नाचती, इन पानी की लहरों, इस फव्वारे की लहरों के साथ साथ वहां पर आपको ब्रिक्स के झंडे नजर आ रहे हैं जो तमाम ब्रिक्स देशों की इस ताकत को दिखाते हैं जो यहां नजर आ रही है। क्योंकि ब्रिक्स वो समूह है जिसे दुनिया के अंदर बड़ी संभावना माना जाता है, जहां पर करीब दुनिया की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व है, दुनिया की 40% GDP का प्रतिनिधित्व है, करीब करीब 30% के करीब जो दुनिया का ट्रेड है वो इस आबादी के जरिए होता है, यानी इन ब्रिक्स देशों के जरिए होता है, जिसके 11 सदस्य हैं जिसमें भारत उसका फाउंडिंग मेंबर है, यानी उसका संस्थापक देश है। और मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर ब्रिक्स बिजनेस फोरम भी हो रहा है, यानी ब्रिक्स को जिसे एक आर्थिक समूह माना जाता है उसकी बिजनेस काउंसिल की जो बैठक है, बिजनेस फोरम की जो बैठक है, क्योंकि साल भर प्रक्रियाएं चलती हैं जिसके अंदर जो बिजनेसमैन हैं और वो भी इसका हिस्सा होते हैं, बिजनेस काउंसिल्स में हैं ब्रिक्स की, उसकी बैठकें होती हैं, और व्यापार कारोबार को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, लेन देन के जो वैकल्पिक साधन है वो कैसे तैयार किए जा सकते हैं, उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, तो उसकी भी बैठक यहाँ पर चल रही है और भारत की अगुवाई के अंदर हो रही है जो ब्रिक्स की बैठक है, इसे आप निश्चित रूप से दुनिया में हुई अब तक की सबसे बड़ी ब्रिक्स की बैठक कह सकते हैं, क्योंकि करीब 400 बैठकों के सिलसिले से जो पूरी कतार थी वो इस ब्रिक्स शिखर बैठक तक पहुंची है। करीब 50 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार किया गया है, ब्रिक्स का साझा घोषणा पत्र, ब्रिक्स का साझा बयान जारी हो सके इसके लिए भारत की अगुवाई में कोशिश हो रही है। साथ ही ब्रिक्स जो कि अपनी उम्र का करीब 20 साल पूरा कर चुका है, उसका आगे का भविष्य कैसा हो, उसका रोड मैप किस तरीके से तैयार किया जाए, इसकी भी व्यापक तैयारियां इस भारत मंडपम में है, जिसे न केवल सजाया गया है, संवारा गया है और जहां पर बड़े पैमाने पर इस समय तैयारियां हो रही हैं इस एक आयोजन को लेकर। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली।
10: राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और उसको लेकर पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के नेहरू पार्क में है, जहां पर फूल पत्तियों का इस्तेमाल करके ब्रिक्स का जो लोगो है उसको सजाया जा रहा है। आप ये देखिए कैसे एक फ्लावर बोर्ड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और अलग अलग तरह के जो फूल है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। NDMC के जो वाइस चेयरपर्सन है कुलजीत चहल, वो भी यहाँ पर पहुंचे और आप देख सकते हैं वो खुद अपने हाथों से ब्रिक्स का जो लोगो है उसको सजा रहे हैं। गेंदे का फूल का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है और इसकी सजावट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कुलजीत जी से बात कर लेते हो, समझ लेते हैं कि किस तरह की तैयारी इस वक्त जो है वो यहाँ पर की गई है NDMC के द्वारा, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है भारत मंडपम में और जो अतिथि आ रहे हैं उनके स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कुलजीत जी, मैं देख पा रहा हूँ आप खुद एक सजावट के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, ब्रिक्स के लोगों को लगभग एक फ्लावर बोर्ड तैयार हो गया है, किस तरह की तैयारी NDMC ने की है?
11: देखिए, अतिथि देव भाव के भाव से विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली, माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने G20 समिट की अध्यक्षता करने का मौका मिला, देश को AI समिट का और आज ब्रिक्स समिट में NDMC को तैयारी करने का जो एक सौभाग्य हम सबको मिलता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों को साथ लेते हुए फ्लावर बोर्ड हमारे एक आइकॉनिक रहता है। आप देखिएगा ब्रिक्स समिट का पूरा नेडो ब्रिक्स इंडिया इस तरह करते हैं, हमारे हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं बिल्कुल लगे रहते हैं और एक ही संकल्प के साथ लगते हैं कि शहर सुंदर लगे, रंग हमेशा सुंदरता ऐड करते हैं। इसके साथ साथ जब फ्लावर बोर्ड्स हैं, फ्लावर फाउंटेन्स हैं और हमने लगभग 15,000 से अधिक पोटेड प्लांट्स भी अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं,
10: तो कलरफुल बोर्ड्स के साथ दिल्ली इस वक्त सजाई जा रही है। आप देखिए कैसे ब्रिक्स का लोगो लगभग सज कर तैयार है और जो नीचे ब्रिक्स लिखा रहता है वहां पर अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों की जो पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल करके ब्रिक्स के लोगों को भी सजाया जा रहा है। आप देखिए हरे रंग में V है और बैंगनी रंग में R और गेंदे के फूल से I को सजाया गया है, गुलाब के फूल की पत्तियों से C को और गेंदे के फूल जो पीले रंग का है उससे S को, तो रंग एकदम रंगों का इस्तेमाल करके अलग अलग कलर की जो पत्तियां उनका इस्तेमाल करके ब्रिक्स के लोगों को इस वक्त NDMC के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत चहल खुद सजाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरे से हो गए लोकेंद्र पांडे के साथ, मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।
1: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर की मशहूर डल झील, जहां इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। झील के लहरों के बीच में बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों का मजा और शाम होते ही फ्लोटिंग सिनेमा में जुटते पर्यटक और स्थानीय लोग।
3: कश्मीर में शुरू हुए पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बीच डल झील का ये सिनेमाई अंदाज खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और किसी के लिए पुरानी यादों को फिर से जी लेने का मौका है तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल अनोखा और नया अनुभव।
12: कश्मीर की वादियां, डल झील की लहरें और सामने बड़ा पर्दा, शाम का आसमान जैसे ही रंग बदलता है डल झील का नजारा भी बदल जाता है। हाउस बोट और शिकारे के बीच सजता है फ्लोटिंग सिनेमा और पानी पर बैठकर शुरू होता है फिल्मों का सफर। सिनेमा देखने का ये अंदाज श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। यहाँ थिएटर की चार दीवारें नहीं, खुला आसमान है, कुर्सियों की कतारें नहीं, झील की लहरें हैं और स्क्रीन के पीछे है कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी तरफ खींचा।
13: एक्सपीरियंस हमने किया है यहाँ पे कि हमने चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में देखे कि रोड साइड थिएटर्स वगैरह होते हैं, मगर ये जो डल के अंदर इन्हें थिएटर क्रिएट किया है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कश्मीर में शूट की गई है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखे। हमारे
12: फ्लोटिंग सिनेमा में इस बार बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग ने माहौल को और खास बना दिया। बड़े पर्दे पर पुराने दौर की फिल्में और सामने वही कश्मीर जो कभी हिंदी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। किसी के लिए ये पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका है, तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल नया अनुभव।
14: हर साल ये फेस्टिवल होता रहे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहें, ताकि जो पुरानी रिवायत थी जम्मू एंड कश्मीर की बॉलीवुड के साथ, वो फिर से एक कनेक्ट हो और फिर से फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के लोग, पूरे मुल्क से इंटरनेशनल लोग यहाँ आएँ, फिल्म शूट करें, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो फिल्म टूरिज्म का पोटेंशियल है, उसमें मदद मिले।
12: दरअसल कश्मीर और भारतीय सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। 60 और 70 के दशक में तो कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी फिल्मों ने कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस तरह पेश किया कि घाटी खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत, कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का हिस्सा बन गई। घाटी के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहुंची थी।
15: बहुत ही यूनिक हुआ है इस बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेसिकली कश्मीर में। इससे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जितनी मूवीज आप देख रहे हैं सब कश्मीर बेस्ड शो कर रहे हैं। अब जैसे ये मूवी जंगली है, मैंने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, ये पूरी मूवी ही कश्मीर में शूट हुई थी।
16: फ्लोटिंग सिनेमा मेरे सामने ही चल रहा है, तो ये जंगली पिक्चर यहीं शूट हुई है। बहुत मैं बचपन में छोटा था जो ये पिक्चर आई थी, तो इसको देखकर मुझे बचपन की यादें ताजा हो गई। और मैं और भी भाइयों से, पर्यटकों से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आएं, और जो ये यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है, इसकी वजह से भी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
12: शाम ढलती है, डल झील पर रोशनी जगमगाती है और बड़े पर्दे पर चलती है फिल्म। कश्मीर की जिस खूबसूरती ने कभी बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाया था, आज वही खूबसूरती खुद एक बार फिर सिनेमा का हिस्सा बन रही है। डल झील का ये फ्लोटिंग सिनेमा सिर्फ एक नया आकर्षण नहीं, बल्कि कश्मीर और सिनेमा के पुराने रिश्ते की एक नई तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: ओडिशा एसटीएफ और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने बालासोर जिले में बचाए गए 5 ओरंगुटान के मामले में जांच तेज कर दी। आपको बता दें कि इस मामले में एक थार की तलाश की जा रही है। अधिकारियों को आशंका है कि राज्य में इन जीवों की मौजूदगी के पीछे किसी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह का हाथ हो सकता है। बचाए गए ओरंगुटान को नंदनकानन जू में रखा गया है और इनकी खातिरदारी की जा रही है। एक्सपर्ट 24 घंटे इन पर निगरानी रख रहे हैं।
1: चलिए समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और कहां तक पहुंची है इन ओरंगुटान के असली घर की खोज। ओडिशा के बालासोर के जंगलों से 5 दुर्लभ ओरंगुटान मिलने से हर कोई हैरान है। अब एसटीएफ इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है कि ये ओरंगुटान भारत तक कैसे पहुंचे, इन्हें कौन लेकर आया, इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी पड़ताल की जा रही है।
3: मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ की टीम बुधवार को बालासोर पहुंची। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियां इस बात को भी खंगाल रही हैं कि कहीं पूरा मामला वन्यजीव तस्करी से तो नहीं जुड़ा हुआ।
8: जांच का एक अहम हिस्सा सीसीटीवी फुटेज भी है। रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट की फुटेज खंगाली जा रही है।
1: और देखिए, सिर्फ सड़क और रेल मार्ग ही नहीं, पानी के रास्ते की भी जांच की जा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि क्या ओरंगुटान को किसी जल मार्ग से यहां लाया गया था।
3: इस जांच में कई एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिन कोस्ट गार्ड के साथ साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी एसटीएफ और वन्य विभाग के का सहयोग कर रहा है।
8: फिलहाल आपको बता दें, 5 ओरंगुटान को नंदनकानन में रखा गया है। करीब 1 महीने तक डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की निगरानी में उनकी सेहत और व्यवहार पर नजर रखी जाएगी।
1: और देखिए, इसी निगरानी के दौरान उनके खान पान का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। ओरंगुटान को केला, सेब, दूसरे फल और ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं।
3: इनमें सबसे छोटा ओरंगुटान अभी ठोस खाना नहीं खा पा रहा है और इसीलिए उसे करीब हर 2 घंटे में लिक्विड फूड दिया जा रहा है। वहीं जांच में एक काले रंग की थार भी शक के दायरे में आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक थार को ओरंगुटान मिलने से पहले इलाके में देखा गया था।
8: अब एसटीएफ वैज्ञानिक तरीके से पता करने में लगे हैं कि ये ओरंगुटान मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं।
1: चले रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे असम में कैसे हाथी के गले से निकाला गया टायर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: असम के गोलाघाट में एक जंगली हाथी का वीडियो सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। गोलाघाट के मोरुंगी इलाके में घूम रहे एक हाथी के गले में एक बड़ा सा ट्रैक्टर का टायर फंस गया। भारी भरकम टायर की वजह से हाथी काफी परेशान नजर आ रहा था। जैसे ही हाथी का ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में हाथी को गले में टायर फंसे हुए जंगल और आसपास के इलाके में घूमते देखा गया। इस वीडियो ने वन्य जीवों की सुरक्षा और जंगलों में फेंके जाने वाले कचरे को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए।
2: वीडियो सामने आने के बाद असम वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई,
7: और देखिए इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हाथी की निगरानी शुरू कर दी, जिसके कई घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को इस भारी भरकम टायर से आजादी मिल गई। वन विभाग की फ्रंटलाइन टीम ने बेहद सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि हाथी को बचाने के साथ साथ रेस्क्यू टीम की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती थी। हाथी को पहले ट्रैंक्विलाइज किया गया, उसके बाद सावधानी से उसके गले में फंसे टायर को हटाया गया। कई घंटे की कोशिश के बाद टीम टायर निकालने में कामयाब हुई।
8: असम के नुमालीगढ़ से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। एक जंगली हाथी के गले में एक टायर फंसा हुआ देखा गया। ये हाथी नुमालीगढ़ के बकियाल इलाके में एक चाय के बगान में देखा गया। गले में फंसा टायर काफी कस चुका था, जिसकी वजह से हाथी की जान को गंभीर खतरा था। स्थानीय लोगों ने हाथी की तस्वीर खींचकर इस घटना की जानकारी सामने रखी। आशंका जताई गई कि खाने की तलाश में इलाके से गुजरते वक्त हाथी का सर टायर के बीच फंस गया होगा। इसके बाद टायर उसके गले में अटक गया। गले में फंसा टायर हाथी के लिए कई तरह से खतरनाक हो सकता था। टायर फंसा रहने पर गर्दन में गंभीर चोट भी हो सकती थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई की गई।
2: ब्रेक के लिए रुकेंगे, चाय पर चर्चा जारी है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अब जरा सोचिए कि अगर किसी दिन इंसानों की जगह रोबोट सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने लगे तो कैसा लगेगा। पोलैंड में कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर करीब 30 रोबोट प्रदर्शन करते नजर आए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोबोट्स किसी तकनीकी समस्या को लेकर नहीं बल्कि इंसानों की नौकरियां बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: और देखिए पोलैंड में रोबोट सीधे डिजिटल अफेयर्स मंत्रालय के बाहर पहुंच गए और एआई के लिए सख्त नियम बनाने की मांग करने लगे। प्रदर्शन का आयोजन एक सामाजिक संगठन ने किया था। संगठन एआई और रोबोटाइजेशन के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर बहस चाहता है, खासकर इस बात पर कि आखिर इसका असर इंसानों की नौकरियों पर कितना पड़ेगा। यानी जिस एआई और रोबोट को लेकर इंसानों के मन में नौकरी जाने का डर है, आज वही रोबोट इंसानों की नौकरियां बचाने के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: कौन से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है? ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां जारी, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के पंडाल, भगवान गजानन के लिए तैयार किए जा रहे स्वादिष्ट मोदक।

0: छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई फिल्म हनुमान अंश। फिल्म के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, फिल्म को दुनिया भर से मिल रहा दर्शकों का प्यार। समिट के लिए दिल्ली पहुंच रहे मेहमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया स्वागत। कुछ देर बाद एक ही कार में सवार होकर प्रदर्शनी देखने पहुंचे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

तो आ रहे हैं, पधार रहे हैं जीएनटी के बप्पा, आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता, साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंग की। अब से दो दिन बाद गणेशोत्सव का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर गजानन की आस्था के रंग दिखने लगे हैं। शहर शहर गणपति पंडालों की सजावट अंतिम दौर में है। विशेष रूप से मुंबई में तो हजारों पंडाल बन रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास पंडाल ऐसे हैं जिनका इंतजार भक्त पूरे साल किया करते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है लाल बादशाह राजा का। लाल बादशाह राजा की महिमा निराली है। ये देश का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है जो मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान पिछले 9 दशकों से सजता आ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। हर बार पंडाल की थीम अलग होती है। बप्पा का स्वरूप भी खास होता है, जिसे देखने के लिए भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज वो खास दिन है जब लाल बादशाह राजा का स्वरूप सामने आने वाला है। अब से कुछ ही देर में लाल बादशाह राजा की पहली झलक भक्तों को नजर आएगी।

पुढच्या वर्षी लव करया, यानी अगले बरस तू जल्दी आ। भक्तों से यही वादा था, सो आ गए बापा अपना वादा निभाने। अपनी पूरी भव्यता और विराट स्वरूप के साथ नवसाचा गणपति के रूप में, नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूरी करने वाले गणपति, लेकिन दुनिया इन्हें राजा के नाम से जानती है, लाल बाग चा राजा। अब बस इंतजार है तो लाल बाग चा राजा की पहली झलक का। लाल बाग चा राजा की महिमा वाकई निराली है। सिद्धि विनायक का ये स्वरूप और उनका ये पंडाल भक्तों को हमेशा से भाता रहा है। तभी तो गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ लाल बाग चा राजा के दरबार में ही जुटती है। चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा का दरबार सज चुका है, उत्सव की हर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस लाल बाग चा राजा के नए स्वरूप के अनावरण का। गणेश उत्सव के दौरान यूं तो पूरी मुंबई में गणपति के कई पंडाल सजते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो लाल बाग चा राजा की। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर मन्नतों के गणेश यानी लाल बाग चा राजा के स्वरूप पर होती है। हर बार लाल बाग चा राजा का रंग रूप अनोखा होता है। लाल बाग चा राजा की

0: प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया बेहद खास और पारंपरिक होती है। ये मूर्ति किसी सांचे में नहीं बल्कि हाथों से गढ़ी जाती है और इसे बनाने में कई महीने लग जाते हैं। 1935 से इस भव्य प्रतिमा को मुंबई का प्रसिद्ध कांबली परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनाता आ रहा है। गणेशोत्सव के महीनों पहले वर्कशॉप में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। मुख्य मूर्ति को आकार देने के लिए POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी और बांस के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विशाल काय मूर्ति को मजबूत आधार मिले। सबसे पहले मूर्ति को स्थिरता देने के लिए लकड़ी और लोहे का ढांचा तैयार किया जाता है। कामली परिवार के मूर्तिकार हाथों से मिट्टी और POP का लेप लगाकर बाप्पा के अंगों, चेहरे और मुकुट को तराशते हैं। आखिर में बाप्पा की आंखें बनाई जाती हैं, जो इस मूर्ति का सबसे आकर्षक हिस्सा होती हैं। इसके बाद पूरी प्रतिमा को सुंदर रंगों से रंगा जाता है और विशेष आभूषणों से सजाया जाता है। दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर साल लालबाग चाराजा की प्रतिमा का चेहरा, मुकुट और पूरे शरीर की बनावट लगभग समान रखी जाती है। हाँ, लेकिन प्रतिमा को नया स्वरूप देने के लिए उसकी मुद्राएं और श्रृंगार एक अलग थीम पर किया जाता है। पिछले साल यानी 2025 में लालबाग चाराजा का स्वरूप कुछ ऐसा नजर आया था। ये प्रतिमा लगभग 14 से 15 फीट की भव्य ऊंचाई वाली थी, जिसे राजसी अंदाज में विराजित किया गया था। बाप्पा ने गहरे गुलाबी रंग की मखमली धोती और तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध शिवारी नामम से सजा अंग वस्त्र धारण किया था। गणपति के सिर पर सोने का भव्य मुकुट लगाया गया था। बाप्पा के एक हाथ में चक्र और दूसरे में शंख सुशोभित था। पंडाल को एक सुनहरे शाही महल जैसा लुक दिया गया था। पंडाल में स्वर्ण स्तंभ लगाए गए थे, जिनके दोनों ओर हाथियों और उनके वाहन मूषक की सुंदर मूर्तियां रखी गई थी। अब की बार भी लालबाग चाराजा गणेश मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया भर के श्रद्धालु लालबाग चाराजा का स्वरूप निहारने की प्रतीक्षा में है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मुंबई से इतनी बेहतरीन रिपोर्ट देखने के बाद सीधा मुंबई लिए चलते हैं आपको। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र इस वक्त मौजूद हैं लालबागचा राजा के दरबार के बाहर और मुख दर्शन अब से थोड़ी ही देर में होने वाला है। क्या वहां पर तैयारियां चल रही हैं धर्मेंद्र, बताइए। धर्मेंद्र, आपको आवाज आ रही है?
2: बिल्कुल, मैं बता दूं इस समय लालबाग के राजा के दरबार में मैं इस समय मौजूद हूं और आखिरकार
1: जी बोलिए बोलिए।
2: देखिए यहां पे बहुत ज्यादा साउंड चल रहा है, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और समझने की कि आखिर आपका सवाल इस समय क्या है। मैं आपको बताऊं कि इस समय लालबाग के राजा के दरबार में इस समय मौजूद हूं और अब बस कुछ ही देर में बप्पा का ये जो दरबार है इसे खोला जाएगा और जो फर्स्ट लुक है, फर्स्ट लुक जो है वो अभी नजर आने वाला है। लगभग 7 से 7:15 बजे का समय दिया गया है और उसके बाद ही ये जो पर्दा है इसे हटाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आप देखें किस तरीके से लालबाग के राजा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, जो भी सेवादार हैं, वो इस समय सभी यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। साथ ही साथ मीडिया भी एक बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और जैसा कि आपको बताएं लालबाग के राजा इस समय मुंबई, देश दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हर कोई यहाँ पर आकर के उनका दर्शन करना चाहता है। यही वजह है कि आज VIP और VVIP भी फर्स्ट लुक में शामिल होने वाले हैं और एक बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस की तरफ से पहले ही सुरक्षा लगा दी गई है। इस बार दरबार के कई जगहों पर AI कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि किसी भी तरह के हलचल, किसी तरह की भी कोई चीज यहाँ देखने को नहीं मिलने वाली। इसके अलावा दूसरे भी अन्य CCTV कैमरे लगाए गए हैं। BMC के तमाम जो पदाधिकारी है वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस बार जो थीम नजर आ रही है लालबाग के राजा की जो जानकारी है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रामेश्वर की थीम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप खुद ही पर्दे की तरफ देखें, लालबाग के राजा का ये जो पर्दा लगाया गया है बकायदा इस पर्दे पर शिवलिंग बनाई गई है, दोनों तरफ नंदी भी है और ऊपर त्रिशूल के साथ डमरू भी लगाया गया है। यानी इस पर्दे को देखने के बाद से ही ये पता चलता है कि जैसे ही ये पर्दा हटेगा और गणपति बप्पा यानी कि लालबाग के राजा दर्शन देंगे तुरंत ही उनका जो अवतार होगा जो थीम होगी वो पता चल जाएगा। लेकिन जानकारी के हिसाब से इस बार रामेश्वर की भूमिका निभाते हुए लालबाग के राजा को यहाँ पर दिखाने जाने वाला है। देखिये साउंड सिस्टम यहाँ शुरू हो चुके हैं और भजन आरती गणपति बप्पा की गणेश जी की यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हर कोई धीरे धीरे अब लीन हो रहा है श्री गणेश की भक्ति में। वाकई में इस समय यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद उनका मुख्य दर्शन होता है और अगर आप 8 से 10 घंटा लगातार लाइन में खड़े हैं तब जाके पप्पा के पैर छूने का मौका मिलेगा। कितने सुंदर तरीके से लालबाग के राजा को सजाया गया है, अभी यही वाला देखिए, ये जो झूमर आप देख रहे हैं अलग अलग कलरों में दिखाई दे रहा है और अभी भी काम शुरू है, मात्र 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन में ये जो थोड़ी बहुत चीजें जैसे दीवारें पतरा टेंट दिख रहे हैं ये सभी पर्दे से तोप दिए जाएंगे, हर जगह कूलर और एसी लगा दिए जाएंगे और उसके बाद में ये जो सामने का रास्ता है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजा दिया जाएगा, वीआईपी गेट का मुंह मोड़ दिया जाएगा और जो मुख्य दर्शन है उसके लिए तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ जो पैर छू करके दर्शन करने वाली कतार है वहाँ पे भी सभी जो टेंट है, चूंकि बारिश भी है तो वो सारी चीजें बनाई जाएगी। खास बात यह है कि कल रात से ही जो दर्शन करने वाले गणेश भक्त हैं वो कतारों में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ होड़ मची होगी, सबसे पहले लालबाग के राजा का दर्शन आखिर करेगा कौन। आपको बता दें कि इस बार 93 यानी कि 93 साल लालबाग का राजा मना रहा है और वाकई में बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये जो आखिरी सोमवार गया है यही श्रावण बीता है और चूंकि श्रावण पर मुंबई और महाराष्ट्र बहुत ही अच्छे तरीके से लीन थे, शायद यही वजह है कि श्रावण शिव शंकर शंकर भगवान से संबद्ध ही इस बार लालबाग के राजा की थीम बनाई जा रही है। बस कुछ देर का इंतजार और है, उसके बाद ये पर्दा हट जाएगा। फिलहाल आसपास के निवासी भी यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा आपसे बात करते हैं। दादा थोड़ा सा इस तरफ मुड़िए, मेरे पीछे हैं, थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। आप ये बताइए आप यही रहती हैं?
3: जी जी, मैं मुंबई का हूँ, मैं लालबाग वासी हूँ और लालबाग का राजा जब भी आने वाले रहते हैं तो जैसे हमारे घर के सदस्य आ रहे हैं ऐसे 10 दिन का माहौल रहता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे छोटा बच्चा भी है, वो भी लालबाग के राजा के लिए उत्सुक है, वो भी कितनी भीड़ हो कुछ भी हो पर राजा के दर्शन पहले चाहिए रहते हैं।
2: लेकिन आप तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही होंगी, क्योंकि बाकी लोगों को 14 तारीख से दर्शन मिलेगा वो भी घंटों कतार में रहने के बाद, लेकिन आप तो सीधे मुख्य दर्शन, कितनी एक्साइटेड है?
3: जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो यहाँ पे जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, अफकोर्स लालबाग की राजा की मान्यता है तो वो हिसाब से भीड़ तो रहती है, लेकिन बहुत सारे भाविक जो है सिर्फ मुंबई नहीं महाराष्ट्र नहीं तो सब जगह से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से भी यहाँ पे भाविक आते रहते हैं। गणपति बप्पा,
2: गणपति बप्पा,
4: गोरिया,
2: आपको भी देखना है गणपति बप्पा। कितनी देर हो गई यहाँ पर आकर आपको?
4: 5।
2: अच्छा, तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, गणेश उत्सव और स्पेशली लालबाग के राजा, क्या कहेंगे, क्या एक्सपीरियंस जुड़ी है, क्या खास कहानी है, क्या याद करती है?
5: लालबाग के राजा को हम लोग हर साल आते हैं, कहानियाँ तो बहुत सारी है बट हम लोग बहुत मतलब पूरे साल राह देख रहे होते हैं कि इस साल हमें गणपति के दर्शन हो जाए और ये जो फर्स्ट लुक होता है इसके लिए हम लोग पूरे साल राह देख रहे होते हैं।
2: अच्छा, इस पर रामेश्वर की थीम नजर आ रही है यानी कि शंकर भगवान इर्द गिर्द होंगे अपने सुपुत्र श्री गणेश जी के लिए, तो मजा आएगा देखने में।
5: हाँ, इसीलिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है, इस बार की थीम भी अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और जो थीम है उस हिसाब से सब कुछ किया गया है तो बहुत एक्साइटेड है 10 दिन लालबाग के राजा की सेवा में देने के लिए।
2: ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आकर पप्पा से जो मांग ले लालबाग के राजा से पापा सुन लेते हैं, तुरंत ही मान लेते हैं वो बात।
5: वो बात तो सच है, इसलिए उसे नौसाचा राजा कहा जाता है कि यहाँ पे आके हम लोग जो भी इच्छा मनोकामना है राजा को मांगते हैं वो सब पूरी हो जाती है।
2: गणपति बप्पा
5: मोरिया,
2: मंगल।
5: मोहरिया।
2: तो देखिए इस तरीके से एक्साइटनेस दिखी जा रही है, वहाँ पे भी थोड़ी सी तस्वीरें मैं चाहूंगा, वीडियो जल्दी सचिन सावंत बताएं थोड़ा इस तरफ आकर के कि कैसे लोग जुटे हुए हैं और भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिर से एक तरफ हम कहेंगे कि उसी तरफ कैमरा मोड़ा जाए जहाँ पर सभी की नजरें टिकी हुई है, बस कुछ देर का समय और है और उसके बाद में ये जो पर्दा है ये हटेगा और लालबाग के राजा का यहाँ से दर्शन करना जो शुरू हो जाएगा। बस लोग यहाँ पर लोग देखेंगे और बड़े खुशी खुशी आनंदमय होकर के अपने घर की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर से एक बार आप देखें किस तरीके के आसपास के निवासी, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ गए। देखिए कुछ लोग हमसे बात करना चाहते हैं और बड़ी संख्या में जुटे हैं, उनसे भी सीधा बात कराने की कोशिश करते हैं। बच्चे जुट गए हैं और चलिए आपसे शुरू करते हैं। गणपति बप्पा
4: मोरिया,
2: अंगल मुट्टी
4: मोरिया,
2: गणपति बप्पा
4: मोरिया।
2: अच्छा, क्या कहेंगी, लालबाग के राजा का जो पर्दा है कुछ देर में हटने वाला है, कितनी एक्साइटेड हो, क्या बोलेंगे?
5: बहुत बहुत, हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग हर साल देखने आते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है।
2: क्या काम करते हैं?
5: हम लोग तो जॉब करते हैं आईटी में।
2: लेकिन मुझे लगता है 9-10 दिन की छुट्टी ले लेंगे इस बार।
5: ले लेंगे पक्का।
4: ले लिए।
5: यस।
2: लालबाग के राजा का आईटी कार्ड भी आपको मिल गया, राइट? आसपास ही रहते हैं
5: यार, बाजू में ही रहते हैं हम लोग, बस पड़ता।
2: जितनी भी जगह है ये भर जाएगी, चलने की जगह नहीं होने वाली है, इतना ज्यादा
5: घर से बाहर नहीं निकल सकते।
2: लालबाग के राजा जब भी आते हैं कितनी एक्साइटनेस होती है और कैसे आप इस जीवन को जीते हो, लालबाग के राजा को लेकर क्या कहोगे?
5: आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरा पहला साल है, जस्ट मैरिड ओवर हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड।
2: अच्छा, आपके भी घर में वो उकड़ी का जो मोदक बन गया?
5: बनते हैं एवरी सिंगल टाइम।
2: अच्छा, तो मतलब वही प्रसाद में भी खाएंगे और रिश्तेदारों को भी वही बात?
5: यस यस यस, बहुत मजा आता है गणपति आने के बाद, पूरा ऐसे एक फैमिली बन जाते हैं हम लोग लालबाग वाले, बहुत अच्छा लगता है गणपति आने का।
2: अच्छा, अभी मुझे लगता है 24 घंटे का भंडारा भी होता है ना?
1: धर्मेंद्र, मेरी अगर आवाज आप तक आ रही है, धर्मेंद्र मेरा सवाल आपसे ये है कि बप्पा की पोशाक के बारे में, बप्पा के रूप और स्वरूप के बारे में भी बहुत सारी बातें होती आई हैं कि इस बार उन्होंने इस कलर की पोशाक पहनी होगी, उनका स्वरूप ऐसा होगा, श्रृंगार उनका ऐसा होगा, इसके बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे?
2: बिल्कुल, मैं पूछने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लोग ने बताया, आप यहीं पे रहते हैं, हमेशा ही बप्पा को देखते हैं, पूरे दिन में बप्पा को कई बार श्रृंगार किया जाता है, नई नई उन्हें धोती पहनाई जाती है। सबसे ज्यादा सुंदर कौन से कलर में लगते हैं, चलो आपसे सुन।
5: लाल, क्योंकि लालबाग सा राजा।
2: अच्छा, आपका भी लाल कलर?
3: जी बिल्कुल लाल, बप्पा हर रंग में अच्छे दिखते हैं।
2: हर रंग में अच्छे,
3: ऑफ कोर्स।
2: लेकिन आपको कौन सा कलर?
5: रेड येलो सब। वैसे कहा जाए तो पापा हमेशा,
2: खास बात है, वाकई में दिन में तकरीबन 3 बार पापा का श्रृंगार किया जाता है और इस बार तो 10 दिन है साइज के हिसाब से। और कैसे रूप में इस बार देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि पापा इस बार कैसे रूप में आएंगे, क्योंकि पिछली बार शायद तिरुपति बालाजी।
5: इस बार तो ऐसे डेकोरेशन लग रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू शंकर महादेव, शंकर जी आज हमारा मेन गेट भी उनके रिलेटेड है, तो वैसे ही हम लोग देखना चाहेंगे।
2: अच्छा, मेरे को लगता है रामेश्वर है, आपको क्या लगता है?
5: रामेश्वर हम ही
2: है। केदारनाथ
5: रामेश्वर
2: है कन्फर्म है?
5: Yes, yes, it's
2: पहले मतलब आप लोग यही रहने वाले हैं और रिवील कर
3: सवाल पूछा कौन से रंग में बापा का श्रृंगार, जैसे आपने कहा 3 बार होता है, पर एक चीज है जो सालों साल नहीं बदली है, वो है बापा की कान वाली। अगर आपने ध्यान दिया हो, नोटिस किया, तो हर ज्वेलरी दागिना जो है वो चेंज होता है, जैसे बापा को दान चढ़ाया जाता है वो हिसाब से चेंज भी होते हैं, पर ये जो श्रृंगार है कान वाली वो कभी भी चेंज नहीं हुई आज तक।
2: और मुझे लगता है उनकी आंखें भी नहीं चेंज होती ना, आंखें ऐसा लगती है हम ही देख रहे हैं।
3: बिल्कुल, कहीं से भी देखो ऐसे लग रहा है बस बापा सिर्फ हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: अच्छा, देखिए मुझे बहुत इंतजार है कि जैसे ही बप्पा हमारी तरफ प्रकट हो जाए, सबसे पहले मैं उनकी आंखों में आंखें गड़ा लूं, देख लूं भाई इस बार क्या है। आप भी मेरी तरह सोच रही हैं?
5: यस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बापा की, बापा को देखने के लिए आंखें साल भर तरस गई है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि कब पर्दा खुले और हमें बापा के दर्शन हो जाए।
2: अभी क्या कहेंगी बापा की आंखों को लेकर?
5: इमोशनल हो जाते हैं हम आंखों को देख के, अंगा और काटा।
2: अच्छा, रियलिटी लगती है, मुझे तो लगता है कि सच में
5: सच में ओरिजिनल ही दिखती है और हम लोग तो ऐसे देखते ही रहते हैं सिर्फ।
1: देखिए अपनी अपनी भावना है तमाम श्रद्धालुओं की, गणपति बप्पा के प्रति अब से थोड़ी देर बाद मुख दर्शन होने वाला है। धर्मेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। गणपति के सभी पंडालों में लाल बादशाह राजा की ख्याति देश दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग एक सदी से लाल बादशाह राजा हर साल गणेश उत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं। इस साल लाल बादशाह राजा पंडाल के 92 साल पूरे हो रहे हैं। बता दें कि लाल बादशाह राजा के पंडाल की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद अनोखी है।

लालबाग चा राजा की प्रसिद्धि मुंबई ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में है। हर साल गणेश उत्सव के मौके पर दूर दूर से भक्त यहाँ गौरी नंदन के दर्शन करने आते हैं। गणेश उत्सव के दसों दिन लालबाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। गणपति के दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आम से लेकर खास लोग तक कतारों में खड़े नजर आते हैं। नेता हूँ, अभिनेता हूँ या फिर बिजनेसमैन, देश के वीआईपी सर्किट के बड़े बड़े नाम लालबाग चा राजा के दरबार में हाथ जोड़कर हाजिरी लगाते हैं। बापा के इस दरबार में सभी समान हैं, सभी आम हैं। अगर कोई खास है तो केवल गणपति बापा। आम और खास मिलाकर हर साल यहाँ भक्तों की तादाद 1 करोड़ को पार कर जाती है। न केवल भक्त बल्कि लालबाग चा राजा के दरबार में हर साल चढ़ावे का भी नया रिकॉर्ड बनता है। खुशियों से झोली भरने वाले बापा के दरबार में आकर भक्त भी अपने हाथ खोल देते हैं। इसी वजह से हर साल बापा को नकद, सोना और चांदी मिलाकर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। दरअसल लालबाग के राजा से करोड़ों दिलों की आस्था जुड़ी है। लगभग 1 सदी से लालबाग के राजा सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में बसे भक्तों के लिए श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक रहे हैं। मुंबई में लालबाग चा राजा की कहानी की शुरुआत साल 1932 में हुई। दरअसल 40 के दशक में भी लालबाग क्षेत्र मुंबई का एक प्रमुख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाका माना जाता था। 1932 में मुंबई के लालबाग इलाके में मौजूद एक कपड़ा मिल को बंद कर दिया गया था। इसके बाद यहां के निवासियों की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। मिल बंद होने से स्थानीय व्यापारी और मछुआरे संकट में आ गए। इलाके के लोग चाहते थे कि उनके व्यापार को फिर से स्थापित किया जाए जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। इसी बीच लालबाग बाजार के व्यापारी और मछुआरा समाज ने एक सामूहिक पूजा के आयोजन की योजना बनाई और गणपति की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया। चौतीस में लालबाग के राजा गणपति की स्थापना की गई और गणपति जी से प्रार्थना की गई कि वे स्थानीय व्यापार को फिर से स्थापित करने में मदद करें। कहा जाता है कि गणपति बाप्पा ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और इसके बाद से यहां का व्यापार धीरे धीरे उन्नति करने लगा। उसी कारण से इन गणपति को लालबाग के राजा के नाम से प्रसिद्धि मिली। साल 1934 से मुंबई के लालबाग इलाके में लालबाग चा राजा का दरबार यूं ही सजता चला आ रहा है। हर साल पंडाल में मूर्ति की ऊंचाई लगभग 18 से 30 फीट के बीच होती है। मूर्ति को हर साल नई शैली में बनाया जाता है। मूर्ति का स्वरूप शाही होता है जिसमें गणपति बाप्पा को एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है। मूर्ति स्थापना से विसर्जन तक का खर्च करोड़ों रुपए होता है। मूर्ति निर्माण, पंडाल, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर विसर्जन तक हर प्रथा, प्रक्रिया और परंपरा बेहद भव्यता से निभाई जाती है।

इस बार भी लालबागचा राजा के दरबार में श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां की गई हैं। लालबागचा राजा के दरबार में उत्सव के 10 दिन जितने खास होते हैं, उतना ही खास होता है विसर्जन का समय। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन की शोभा यात्रा बेहद भव्य होती है और इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। विसर्जन का अद्भुत दृश्य देखने के लिए मुंबई के लोग पूरी रात सड़कों पर जुटे रहते हैं। जहां जहां से बप्पा गुजरते हैं, भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। इस दौरान भक्त गणपति बप्पा से अगले साल जल्दी वापस आने की प्रार्थना करते हैं। अगाध आस्था और अगले बरस तू जल्दी आ की मीठी मनुहार के बीच लाल बागचा राजा को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सागर के अंतस में विसर्जित कर दिया जाता है। इस उम्मीद के साथ कि बापा विघ्नों को साथ ले जाएंगे और अगले बरस तक के लिए जगत को शुभता और सर्व मंगल का आशीर्वाद दे जाएंगे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

तो चलिए आप भी एक बार मेरे साथ बोलिए, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो ऐसी खास पेशकश के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि सोमवार से पधार रहे हैं जीएनटी के बप्पा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी है। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: कौन से ग्रह शुगर यानी मधुमेह की बीमारी देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो जाती है? ज्योतिष में क्या है डायबिटीज से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां जारी, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के पंडाल, भगवान गजानन के लिए तैयार किए जा रहे स्वादिष्ट मोदक। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां, कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक बैलपोला उत्सव की धूम, किसानों ने पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई फिल्म हनुमान अंश, फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, फिल्म को दुनिया भर से मिल रहा दर्शकों का प्यार। ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंच रहे मेहमान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का किया स्वागत, कुछ देर बाद एक ही कार में सवार होकर प्रदर्शनी देखने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: नागपुर में धूमधाम से मारबत बढ़ गया उत्सव मनाया गया, 145 साल पुरानी इस परंपरा को देखने सड़कों पर उमड़े लोग। पोला त्योहार के दूसरे दिन काली और पीली मारबत का जुलूस निकाला गया, पूजा के बाद दोनों मारबत को शहर में घुमाया गया, अंत में दहन किया गया। मारबत के साथ बढ़ गया नाम के छोटे छोटे पुतले भी निकाले गए, इन पुतलों को समाज में फैली बुराइयों का प्रतीक माना जाता है और बाद में जलाया जाता है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के दौर में विरोध के तौर पर इस परंपरा की शुरुआत हुई थी, साल 1881 से शुरू हुआ मारबत बढ़ गया जुलूस आज भी नागपुर में उसी उत्साह के साथ निकाला जाता है। मारबत बढ़ गया उत्सव देश में अपनी तरह की अनोखी परंपरा जो अब नागपुर की खास पहचान बन गई है। सीकर में भादो अमावस्या पर बिंदल कुल देवी मंदिर में मेहंदी उत्सव का आयोजन, देश भर से आए श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। इस खास आयोजन के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, भक्ति भाव से गाए मंगल गीत और हाथों में रचाई मेहंदी। श्रद्धालुओं ने बंगाली ढोल की थाप पर किया धुनुची नृत्य, महिलाओं ने माता रानी को समर्पित सिंदूर बंगाली परंपरा पर आधारित सिंदूर खेला खेला। कोलकाता से विशेष रूप से मंगवाए गए फूलों को मां बिंदल कुल देवी की प्रतिमा का उनका श्रृंगार हुआ, अर्पित की गई 1 क्विंटल फूलों की गजरे की माला। भादव अमावस्या को लेकर कुल देवियों को थोक लगाने के लिए देश भर से पहुंचे प्रवासी। शहर के आधा दर्जन से ज्यादा शक्ति मंदिरों में धार्मिक आयोजन। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों में रंगा पूरा देश। पंडालों को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। तैयार की जा रही बप्पा की विशाल मूर्ति। कर्नाटक के बेलगामी में चरम पर भव्य गणेशोत्सव की तैयारियां। ढोल नगाड़ों के बीच में अपने अपने पंडालों में भेजी जा रही गणपति की विशाल प्रतिमाएं। अलग अलग आकारों स्वरूपों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। सड़कों में गणपति बप्पा मौर्य का उद्घोष। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तैयार की जा रही गणपति की कई तरह की प्रतिमाएं। जोरों पर मूर्तियों में रंग भरने और सजाने का काम। वाराणसी में बप्पा की मूर्तियों का निर्माण कार्य जोरों पर जारी। घर से लेकर पंडालों के लिए बनाई जा रही प्रतिमाएं। गणेशोत्सव पर कोला के पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे ने दिखाया अद्भुत हुनर। आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई गणेश की प्रतिमा। पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए बनाए मिट्टी के बप्पा। 20 साल से चल रहे पर्यावरण संरक्षण की मुहिम। बप्पा आए प्रकृति भी मुस्कुराए के संदेश के साथ घर पर ही इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति बनाने की अपील। बच्चों को भी आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संस्कार दिया जा रहा। पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे ने जल संरक्षण पर दिया जोर। गणपति विसर्जन से जल स्रोत बचाने की पहल। घर पर ही बप्पा के विसर्जन करवाने की ताकीद की। प्रकृति बचाने के साथ गणेशोत्सव मनाना इसका मकसद। जयपुर में गणेशोत्सव से पहले बप्पा के भोग का नया ट्विस्ट। 11 तरह के मोदक, 14 वैरायटी के लड्डू तैयार। मोदक में आया लोटस बिस्कॉफ का स्वाद भी। पारंपरिक मिठाई को मिला मॉडर्न टच। न्यूटेला व्हाइट चॉकलेट मोदक बना आकर्षण। जेन जी के लिए खास फ्लेवर तैयार।

0: इस बार मिठाई में दिखा एक नया एक्सपेरिमेंट, मोदक में देसी स्वाद भी बरकरार, मथुरा पेड़ा, मावा और मोतीचूर मोदक शामिल। रोज गुलकंद, ठंडाई केसर मोदक का जलवा भी, कीवी एलमंड और बटरस्कॉच मोदक बने खास, कीवी एलमंड डिलाइट मोदक ने खींचा सबका ध्यान। एक बॉक्स में कई स्वादों का सरप्राइज, लोगों को लुभा रहा काजू कतली, मोदक का स्वाद, मोतीचूर से बना बप्पा का खास केक। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, मोदक की लगातार बढ़ती जा रही डिमांड, तरह तरह के मोदक से सज गए बाजार। बप्पा के भोग की खास तैयारी, लाड़ू सम्राट बना आकर्षण का केंद्र, 1967 से स्वाद की पहचान बरकरार। लाडू सम्राट के मोदक मशहूर प्रसाद बनकर घर घर तक पहुंचते हैं, मोदक की कई खास वैरायटी भी मिलती हैं। गणेशोत्सव से पहले मिठाई बाजार गुलजार हैं, उकडीचे मोदक की सबसे ज्यादा यहां पर डिमांड है। मोदक खरीदने उमड़ रही लोगों की भीड़, बप्पा के पसंदीदा भोग पर नजर, परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम। मुंबई में मोदक की मिठास घर घर बन रहे उकड़ी के मोदक, गणपति बप्पा का प्रिय भोग। उकड़ी का मोदक बना खास आकर्षण, मुंबई में घरों में उकड़ी के मोदक बनाए जाने की खास परंपरा। चावल के आटे से बनता है उकड़ी मोदक, चावल के आटे में मीठे के मिश्रण से बढ़ता है मोदक का स्वाद। उकड़ी का मोदक महाराष्ट्र की पहचान है, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है, गणेशोत्सव में मोदक का प्रसाद रिश्तेदारों को बांटते हैं। सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम है, मोदक बनाने का उत्साह बरकरार है, लालबाग और काली चौकी में मोदक की रौनक। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में अंतिम चरण में गणेश चतुर्थी की तैयारियां, भव्य रूप से सजाया जा रहा है इस मंदिर को। 13 सितंबर की रात से श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर, 14 सितंबर की सुबह ध्वज पूजन के साथ होगी गणेशोत्सव की शुरुआत। पहले दिन भगवान को लगाया जाएगा 1.25 लाख मोदकों का महाभोग, उत्सव के 10 दिनों में प्रतिदिन होगा बप्पा का विशेष श्रृंगार। धर्मनगरी चित्रकूट में भाद्रपद माह की अमावस्या में श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी, भगवान कामतानाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। कुशपटनी अमावस्या के रूप में जानी जाती है यह अमावस्या, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है। कोलकाता के साई भक्त सत्यम खन्ना ने शिरडी साई मंदिर में चांदी की 3 थालियां चढ़ाई, 1-1 किलो की इन थालियों की कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा। साई मंदिर में चढ़ाई गई चांदी की 3 थालियों का इस्तेमाल अब आरती और पूजा में किया जाएगा, साई भक्त परिवार ने बाबा के चरणों में भेंट की। सत्यम खन्ना ने 3 थालियां अपने दिवंगत माता पिता और ससुर की याद में अर्पित की, साईं भक्त ने कहा बाबा की कृपा से जीवन में बहुत कुछ मिला है। सत्यम की पत्नी वंदना ने आरती के दौरान बाबा के सामने चांदी की थाली देखी, इसके बाद उन्होंने तीनों दिवंगत परिजनों की याद में 3 थालियां चढ़ाने का फैसला किया। साईं भक्तों को बाबा पर अपार विश्वास है, भक्तों के अनुसार बाबा जानते हैं मन की बात, बिना मांगे ही सब देते हैं। शिरडी के साईं दरबार में भक्त की अनोखी भेंट, छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। 9 तोले का है ये सोने का मुकुट, 14 लाख रुपए अनुमानित कीमत, इस मुकुट पर की गई शानदार कारीगरी। मनोकामना पूरी होने पर सपरिवार मंदिर समिति को भेंट किया ये मुकुट। 55 सालों से लगातार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आता है ये परिवार। महाराष्ट्र के परभणी में दिखी बैल पोल उत्सव की रौनक। किसानों ने अपने बैलों का भव्य श्रृंगार किया, जताया आभार। पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभराज का जुलूस। रंग बिरंगे रंगों में सजाए बैलों के सींग। ब्रिक्स समिट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने गिफ्ट की तमिल साहित्य की तिरुकुरल। रूसी भाषा में किया गया इसका अनुवाद। तमिल संगम साहित्य का सबसे पुराना साहित्य है तिरुकुरल। मशहूर रूसी दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय भी इससे प्रेरित थे। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में अहम है ये पहल। शांति अहिंसा का संदेश देती है ये किताब। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी को भी प्रेरित कर चुकी है ये किताब। पीएम मोदी भी मन की बात में कर चुके हैं इसका जिक्र। दुनिया ने एक बार फिर से देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की गहरी दोस्ती की तस्वीर। दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर हुए रवाना। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार। सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आना जारी। ब्रिक्स समिट के लिए सजाई गई राजधानी दिल्ली। रंग बिरंगे फूलों और पोस्टर से सजावट। साफ सफाई का विशेष ध्यान। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली की 35,000 सड़कों पर असर। वीवीआईपी मोमेंट के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन। ब्रिक्स समिट से पहले राजधानी दिल्ली रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया। भारत मंडपम, तीन मूर्ति सर्कल, कौटिल्य मार्ग सर्कल हुआ रोशन। आम जनता की सहूलियत के लिए कल होने वाले ब्रिक्स समिट के डिनर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। वीआईपी मोमेंट के चलते ट्रैफिक जाम रोकने के लिए संसद भवन से बस में आएंगे सभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। ब्रिक्स समिट के कारण ट्रैफिक पाबंदियों के बीच में परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली मेट्रो का बड़ा ऐलान। 13 सितंबर को सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपए। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। यूपी में 75 जिलों के गांव-गांव तक डेयरी मॉडल पहुंचाकर महिलाओं की आय बढ़ाने की तैयारी में योगी सरकार। दुग्ध उत्पादन से जुड़ी लगभग 4 लाख महिला सदस्य। यूपी के सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़क को लेकर की बैठक। पर्वों से पहले यूपी के 681 प्रमुख मार्ग होंगे गड्ढा मुक्त। यूपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री हुई हनुमान अंश। फिल्म देखने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। देश ही नहीं दुनिया भर से मिल रहा प्यार। यूपी के मेरठ में सरकार दे रही मॉडर्न कृषि को बढ़ावा। आधुनिक यंत्र और सब्सिडी योजनाओं से किसानों को मिल रहा फायदा। महंगी मशीनें अब हुई किसानों के बजट में। सरकारी सब्सिडी का फायदा लेकर किसान पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक खेती भी कर रहे। इन योजनाओं के तहत अब ऋण लेना हुआ आसान। सरल हुई बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया। समृद्ध किसान कर रहे जरूरतमंदों की मदद, इससे उनकी आय में हो रहा इजाफा। आधुनिक खेती का मॉडल बन रहा ये इलाका देशभर के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत। लंदन में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का सम्मान। यूके पार्लियामेंट में मिला उनको अवार्ड। एकनाथ शिंदे ने लंदन में अम्बेडकर को किया नमन। कोलकाता में डार्ट्स का बड़ा आयोजन, पहला इंडियन इंटरनेशनल डार्ट्स ओपन 2026 शुरू। देश विदेश से पहुंचे खिलाड़ियों में एक्साइटमेंट। जम्मू कश्मीर के रामबन में यूटी स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई। जेएनके के युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा आयोजन। जम्मू और कश्मीर डिवीजन के कुल 59 खिलाड़ियों ने अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 कैटेगरी में हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए रामबन के विधायक। विजेता खिलाड़ियों को पहनाए मेडल्स। कानपुर के शिक्षक उद्देश्य सचान की केबीसी में एंट्री। गरीब बच्चों के लिए चला रहे स्कूल, 400 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे। उद्देश्य सचान बने सभी के लिए मिसाल, अमिताभ बच्चन ने की उद्देश्य की तारीफ। कानपुर में 400 बच्चों को मुफ्त पढ़ाने वाले उद्देश्य सचान को केबीसी में जाने का मौका मिला। 25 लाख रुपए की रकम जीतकर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने की बात की। गुजरात के वन तारा से नांदणी वापस आएगी महादेवी उर्फ माधुरी हाथी, जल्द ही नांदणी मठ में होगा आगमन। माधुरी हाथी की वापसी की खबर से खुशी की लहर दौड़ी, नांदणी मठ में माधुरी हाथी को उपलब्ध कराई जाएगी सभी सुविधाएं। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा नदी में जल से बढ़ने से गांवों खेतों में पानी भर गया, लोग नाव पकड़ रहे सवारी। बारिश से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर हुआ भूस्खलन, चिरबासा के पास पैदल यात्रा मार्ग बंद हुआ। बाराबंकी में बाढ़ के पानी से सरयू का जलस्तर बढ़ गया, आसपास के गांवों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। खतरे के निशान पर सरयू नदी, बाढ़ और कटान की दोहरी परेशानी झेल रहे ग्रामीण। दक्षिणी सिक्किम के सांगू इलाके में एक बड़े भूस्खलन की घटना, आसपास के कई घर प्रभावित हुए। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान सिनेमाघरों में रिलीज हुई, मलयालम ब्लॉकबस्टर ओपम का हिंदी रीमेक है। अरशद वारसी की क्राइम ड्रामा फिल्म घमासान Z5 पर स्ट्रीम, कुख्यात डाकू सरदार महाराज और उसे पकड़ने के लिए तैनात एसटीएफ अधिकारी आदित्य की कहानी पर बेस्ड। Amazon प्राइम वीडियो पर ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज द रेवोल्यूशनरीज रिलीज, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की मेगा फिल्म फ्रेंचाइजी श्रीमद भागवत गीता भाग 1 विष्णु रात का टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है, 2027 में रिलीज होगी। परिणीति चोपड़ा की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज चक ट्रस्ट नो वन का ट्रेलर रिलीज हो गया है, 24 सितंबर को स्ट्रीम होगी। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की बेटियों ने किया कमाल, पाकिस्तान को 19-0 से देख करारी मात। धुआंधार जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह, भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई। भारत अफगानिस्तान पहला T20 आए तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर को होगा, DDCA ने टलने की खबरों पर लगाया विराम। अफगानिस्तान T20 सीरीज और एशियन गेम से हर्षित राणा बाहर, यश ठाकुर को टीम इंडिया में मिली जगह। चोट के चलते हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर की एंट्री हुई, 27 वर्ष तेज गेंदबाज ने हाल ही में किया था T20 आई डेब्यू। शंघाई में बाज जैसा उड़ने वाला रोबोट दिखाया गया, इसमें असली पंख लगाए गए। इस रोबोट का वजन है 600 ग्राम से थोड़ा ज्यादा, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ सकता है। 80 पंखों की वजह से इसकी आवाज काफी कम है, ये ड्रोन से ज्यादा चुपचाप उड़ सकता है। ये रोबोट पक्षियों के झुंड में आसानी से घुल सकता है, इससे दूर से निगरानी करने में मदद मिलती है। ये खास रोबोट शंघाई के टेक्नोलॉजी फोरम में पेश किया गया, वैज्ञानिकों ने इसे पक्षियों की उड़ान से प्रेरित होकर बताया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
0: और देखिए गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही देशभर में बाजार गणेश प्रतिमाओं से सज गए हैं। बाजार में इन दिनों एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाएं बिक रही हैं। ज्यादातर लोग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में मूर्तिकार इको फ्रेंडली मूर्तियां ज्यादातर तैयार कर रहे हैं। ये इको फ्रेंडली मूर्तियां बांस, मिट्टी और पराली के अलावा गाय के गोबर से तैयार की जाती हैं, ताकि पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो।
6: अलग अलग आकार और डिजाइन की एक से बढ़कर एक खूबसूरत गणेश प्रतिमाएं जो एक नजर में ही देखने वालों का मन मोह ले। ऐसी मनोहारी मूर्तियों से देश के बाजार सजे हैं। जामनगर से जयपुर तक और झांसी से लेकर पाली तक बाजारों में गणेशोत्सव की रौनक हर तरफ देखते ही बन रही है। ये मूर्तियां देखने में जितनी सुंदर और आकर्षक हैं, उतनी ही विशेष भी हैं, क्योंकि ये मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं, यानी ऐसी चीजों से बनी हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता नहीं है।
7: बाजार भी सज चुके हैं, तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है गणेश उत्सव की। वो समय है जब हर एक व्यक्ति बाजार में आ रहा है, अपने मन पसंद के गणेश जी चुन रहा है। कुछ लोग अपनी थीम के हिसाब से ऑर्डर्स दे रहे हैं और पूरा मार्केट सजा हुआ है, क्योंकि तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। गणेश उत्सव होगा, कुछ लोग 3 दिन के लिए, कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 5 दिन के लिए, तो कुछ पूरे 11 दिन के लिए अपने घरों में गणेश जी महाराज को विराजित करते हैं। 14 तारीख वो शुभ दिन है जिस दिन सभी के घर में गणेश जी जाएंगे, और 11 दिन तक जो पूजा होती है, अर्चना होती है, बहुत ही खास होती है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की मूर्तियां इस समय पे जयपुर के बाजारों में भी नजर आ रही है, जिसमें थीम्स भी बहुत सारी नजर आ रही है। श्रृंगार अलग अलग टाइप का नजर आ रहा है, जिसमें सर्प रूपी गणेश जी भी हैं, जिसमें शिवलिंग के साथ में गणेश जी भी हैं, लाल बागचा राजा की झलक भी यहाँ दिख रही है, तो डबरू बाबा की भी झलक दिख रही है।
6: बीते कुछ वर्षों में लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते गणेशोत्सव के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड भी बढ़ रही है। यही वजह है कि कारीगर डिमांड और ट्रेंड के हिसाब से ही मूर्ति निर्माण का काम महीनों पहले शुरू कर देते हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियों के ऑर्डर को पूरा किया जा सके।
8: 4 दिन पहले मूर्ति देना पड़ रही है। हाँ, महंगाई तो है ही, और जो इस बार जो आगमन का प्रोग्राम चलने लगा तो आदमी 4-5 दिन पहले ही मूर्ति मांगने लगा।
9: 6 महीने पहले से काम शुरू हो जाता है मूर्तियों का, जब ही ग्राहकों को पूरा तैयार करके दे पाते हैं।
10: अच्छा, कहाँ कहाँ की बुकिंग है?
9: बुकिंग तो बाहर की भी है, लोकल की भी है।
6: ज्यादातर कारीगर इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बांस, मिट्टी और पराली से तैयार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाते हैं। ये मूर्तियाँ भी मिट्टी की मूर्तियों की तरह ही देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं, और इनसे भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है।
11: मतलब बहुत ही शुद्ध है, अपने हर घर के काम में भी पहले जब तक गोबर का लिपन नहीं होता तब तक अपन अपने घर को भी शुद्ध नहीं मान सकते, तो मैं गोबर को बहुत ही शुद्ध मानता हूँ, पीओपी और मिट्टी से भी बहुत शुद्ध मानता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप घर पे ले जाओ इसको और घर पे ही विसर्जन करो इसको, और विसर्जन होने के बाद में इसी के पानी को मतलब आप अपने पेड़ पौधों में डाल दो, ये खाद का काम भी करते हैं।
6: घर और पूजा पंडालों में विराजने वाली इन गणेश प्रतिमाओं का लोग तरह तरह के आभूषणों से श्रृंगार भी करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी से बप्पा को सजाते हैं। ऐसे में डायमंड सिटी सूरत में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के आकर्षक और भारी भरकम आभूषण तैयार करवाए गए हैं। इनमें भगवान गणेश की पादुकाएं, कंगन, हाथों के आभूषण, मुकुट समेत विभिन्न प्रकार के आभूषण शामिल हैं। इन आभूषणों की विशेषता ये है कि ये सामान्य आकार के छोटे मोटे आभूषण नहीं है, बल्कि गणेश प्रतिमाओं के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, ताकि गणेश प्रतिमा को उत्सव के दौरान भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सके। जयपुर से रिदम जैन, पाली से भरत भूषण जोशी, झांसी से अजय झा और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: बिहार में हाईवे में लग रहे टांके, मुंबई गोवा हाईवे की एमसिल से हुई मरम्मत, बाढ़ के बाद नेपाल में इस्लाम अपना रहे लोग, कलयुग का श्रवण कुमार पर खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

बिहार में हाईवे में लग रहे टांके। मुंबई गोवा हाईवे की एमसिल से हुई मरम्मत। बाढ़ के बाद नेपाल में इस्लाम अपना रहे लोग। कलयुग का श्रवण कुमार। खबरों की पूरी और पक्की पड़ता देखिए नवजोत रंधावा के साथ।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: खत्म होने वाला है बापा का इंतजार, दो दिन बाद देश भर में पधारेंगे भगवान गणपति, तैयारियां जारी। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे बापा के पंडाल। ऐतिहासिक मारबत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग, 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साई बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां, कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां।

0: फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, फिल्म को दुनिया भर से मिल रहा दर्शकों का प्यार। ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंच रहे मेहमान, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का किया स्वागत, कुछ देर बाद एक ही कार में सवार होकर प्रदर्शनी देखने पहुंचे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, बप्पा जल्द पधारने वाले हैं, जिसके लिए देश भर में तैयारी तेज हो गई है। पंडाल से लेकर बप्पा के भोग तक भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। लाल बाग के राजा के पंडाल में भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है, लाल बाग के राजा की पहली झलक। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई में भी गणेशोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये सीधी तस्वीरें लाल बाग के राजा की आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप गुड न्यूज टुडे पर पहली तस्वीर देख रहे हैं। आपको बता दें जो लंबे समय से इंतजार था बप्पा को देखने का, तो वो पर्दा हट चुका है। सीधे मुंबई से आपको हम ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले जो सबसे शुभ तस्वीर आज की है वो आपको हम दिखा दें। देखिए, बप्पा का इंतजार पूरा देश कर रहा है, विघ्नहर्ता का इंतजार कर रहा है, और खास करके जब आप जानते हैं कि गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का मतलब ही है लाल बागचा राजा। और लाल बाग के राजा, ये देखिए लाल बाग के राजा का जो उनकी उनका रौनक है, उनकी भव्यता है पंडाल की, वो देखते ही बन रही है। तो पहली झलक लाल बाग के राजा की सीधी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर हम मुंबई से दिखा रहे हैं। आप देखिए कितने भव्य लग रहे हैं गणपति यहां पर। लाल रंग की धोती इन्होंने पहनी हुई है और साथ ही जिस तरह से पूरी ज्वेलरी जो उनको पहनाई जाती है, और हर बार आपको बता दें करोड़ों में जो इनका इनका पूरा आभूषण होता है, चाहे वो हाथ में जो वो पहनते हैं बाजूबंद पहनते हैं या फिर उनके गले में जो माला पहनाई जाती है, जो मुकुट उन्होंने धारण किया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो इन्होंने मुकुट खास करके धारण किया हुआ है, चक्र एक हाथ में है, तो ये जो मुकुट भी है ये भी सोने का बना होता है और इसमें करोड़ों रुपए, आपको बताएं कि करोड़ों रुपए का खर्च होता है। और हालांकि चूंकि आप जानते हैं कि अच्छा खासा इसमें खर्च होता है, तो इंश्योरेंस भी इसका कराया जाता है पूजा पंडाल की तरफ से, गणेश पंडाल की तरफ से इन पूरे आभूषणों का इंश्योरेंस भी होता है, क्योंकि करोड़ों के गहने गणपति को यहां पर पहनाए जाते हैं और तब ये भव्यता और दिव्यता लाल बाग के राजा की दिखाई देती है। तो सीधी तस्वीरें, पहली तस्वीरें आपको हम मुंबई से दिखा रहे हैं। लाल बाग के राजा के चेहरे से वो जो पर्दा था वो अब हट चुका है और ये देखिए कितने दिव्य लग रहे हैं। अब जल्द ही, क्योंकि 14 तारीख यानी कि मंडे को, सोमवार के दिन यहां पर सोमवार से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, लेकिन पंडाल में विराज चुके हैं लाल बाग के राजा। किस तरह की भव्यता है पंडाल की उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर बार की तरह, हालांकि यहां पर कई गणेश पंडाल हैं, कई मूर्ति यहां पर लगाई जाती है, लेकिन उसमें से मुंबई में हालांकि कई जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणेश पंडाल लगाए जाते हैं, लेकिन लाल बागचा राजा इसकी अलग ही भव्यता है, इसकी अलग ही दिव्यता है। और शायद ही कोई सेलिब्रिटी होगा या शायद ही आम हो या खास कोई भी हो, इस पंडाल में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर कोई चाहता है लाल बाग के राजा जो है उनका दर्शन हो जाए, इसीलिए भारी भीड़ भी यहां पर होती है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो इतनी खूबसूरत तस्वीर लाल बागचा राजा, पहली तस्वीर, पहली झलक गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जरा इस भव्यता और दिव्यता के बारे में बताएं। धर्मेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए हुजूम लोगों का आज से ही, क्योंकि ये जहां पर गणेश पंडाल ये बनाया गया है, लाल बागचा राजा की प्रतिमा जहां पर स्थापित की गई है, आज जैसे ही प्रतिमा स्थापित की गई और जैसे ही उनके चेहरे से पर्दा हटा

0: बताया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उनके एक दर्शन कर लेने को किस तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो आम जनमानस वहां का है मुंबई का, वो किस तरह से उत्साहित है। लगातार यहाँ पर ढोल मंजीरे बजने शुरू हो गए हैं, लोग जो है हाथ उठाकर यहाँ पर भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तस्वीरें बेहद सुखद है, दिल को सुकून देने वाली है और वाकई विघ्नहर्ता गणेश जब पधारते हैं तो न सिर्फ मुंबई, न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि विघ्नहर्ता तो हर किसी के लिए हैं। इसीलिए इनसे यही एक कामना की जाती है कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हर विघ्नों को हरे, किसी भी तरह के विघ्न किसी भी परिवार पर ना आए, पूरे देश का कल्याण हो और लालबाग के राजा जो कि अब अपने पंडाल में सज चुके हैं उनकी भव्यता, ये लाइटिंग खास करके यहाँ देखिए मल्टीपल लाइट्स लगाए गए हैं खास करके, और ये जो पूरा पंडाल है जिस थीम पर इसे सजाया गया है इसकी भव्यता और दिव्यता इस रोशनी में एक अलग ही नजर आ रही है। धर्मेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र बताइए इस भव्यता के बारे में, इस दिव्यता के बारे में, लालबाग के राजा का दर्शन आप सीधे करा रहे हैं हमें।
1: बिल्कुल, आपको ये बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही लालबाग के राजा का जो पर्दा है उसे हटाया गया है और फाइनली फर्स्ट लुक जो है उसे रिवील किया गया है। यहाँ मौजूद हजारों तमाम श्रद्धालु इस समय लालबाग के राजा का सीधे दर्शन दे रहे हैं और जैसा कि गुड न्यूज टुडे ने पहले ही ये एक कंफर्म और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इस बार कहीं ना कहीं लालबाग के राजा की जो थीम है वो रामेश्वर से जोड़ी जाएगी और बिल्कुल वही देखने मिल रहा है। देखिए कितने ज्यादा सुंदर इस समय लालबाग के राजा तो लग ही रहे हैं, लेकिन लालबाग के राजा का ये जो मंदिर परिसर है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। बकायदा यहाँ पर त्रिशूल लगा है, डमरू लगाया गया है और डायमंड से इस पूरे वातावरण को सजाया गया है। साथ ही साथ बप्पा की जो दरबार का भीतर का जो तस्वीर है वो सिल्वर और गोल्डन रूप में है। आपको बता दें कि लगभग तमाम एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है इस समय लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। 14 तारीख से सुबह 5 बजे ही बप्पा का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं साथ ही साथ इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं, मुंबई पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर साथ ही साथ बीएमसी के बहुत से ऐसे आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में लीन रहते हैं वो सारे इस समय यहाँ मौजूद हैं और लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। बेहद ज्यादा इस समय सुंदर लालबाग के राजा नजर आ रहे हैं और हमेशा की तरह वही आंखें, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे वो सभी को देख रही हैं और कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी से ये कहना चाह रही हैं बप्पा की आंखें कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखरने के लिए हम आ गए और वाकई में इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। 14 तारीख से यानी कि 2 दिन बाद ही बप्पा का दरबार खुल जाएगा और कल रात से ही बप्पा के लिए लोग कतारों में खड़े हो जाएंगे।
0: पहली झलक गुड न्यूज टुडे ने दिखा दी है लालबाग के राजा की। धर्मेंद्र बने रहे हमारे साथ, फिर से आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें बप्पा के पधारने में अब बस चुकी 2 ही दिन बाकी है, 2 दिन बाद हर घर हर शहर में बप्पा के रंग में रंगा पूरा शहर नजर आने वाला है। तो हर दिल से एक पुकार निकलेगी, गणपति बप्पा मोरिया। और बप्पा के प्रति भक्तों का प्रेम कितना है उसका अंदाजा बप्पा के स्वागत में शामिल हो रहे भक्तों के हुजूम से लगाया जा सकता है। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है और वो है खत्म हो रहा है बप्पा के भक्तों का इंतजार। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार मुंबई से और हमें जानकारी दे रहे हैं। वाकई इंतजार तो धर्मेंद्र देखिए खत्म हो गया है क्योंकि सबसे पहले मुंबई की अगर हम बात करें, हालांकि धर्मेंद्र ये बताइए कि लालबागचा राजा से पहले और भी दूसरे गणेश पंडाल में कुछ गणपति जो है वो बिठा दिए गए हैं।
1: बिल्कुल, देखिए आपको बताया कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका में लगभग 5,500 से ज़्यादा ऐसे मंडल हैं जो रजिस्टर कराते हैं और जो बड़ी प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और ज़्यादातर सभी जो बड़ी प्रतिमाएं स्थापित करते हैं डेकोरेशन के मद्देनज़र चलचित्र थीम की वजह से पहले ही बप्पा को लाके स्थापित कर देते हैं और उसके बाद डेकोरेशन पर काम चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम टॉप 10 गणेश पंडालों की बात करें, शुरुआत लालबाग के राजा से होती है तो पहला फर्स्ट लुक लालबाग के राजा ने अपना रिवील किया है दो ही दिन बचे हैं और जिस तरीके से जो जानकारी है वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार ये दो दिन ऐसा है जहां पर अंधेरी का राजा, गणेश गल्ली के राजा, चिंसपोकली के राजा, चिंतामणि के राजा, परेल के राजा, परेल के महाराजा, साकीनाका का राजा, ऐसे तमाम इनवाइट हमारे पास पहुंच चुके हैं जो अपना फर्स्ट लुक कल और परसों के बीच ओपन करेंगे और उसके बाद 14 तारीख से सभी के लिए दरबार खुल जाएगा। लेकिन सबसे खास जरूरी बात यह है कि लालबाग के राजा का ये जो तैयारी देखने बन रही थी क्योंकि जैसे ही इनका
0: अद्भुत है, अद्भुत है और हर बार की तरह जो है ये दृश्य आंखों को भी सुकून दे रहा है और मन को भी सुकून दे रहा है। बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर बाप्पा के मंदिरों से लेकर गणेश मंडलों तक खास तैयारियां की जा रही है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर तक बाप्पा के दरबार को भव्य और दिव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है करोड़ों के आभूषणों से बप्पा का श्रृंगार। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी 10 दिवसीय गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां अपने आखिरी चरण पर है। यहां भगवान गणेश का करोड़ों रुपए के बेशकीमती आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा और इस बार श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित किए गए हीरे जड़ित नेत्र भी बप्पा के श्रृंगार का हिस्सा होंगे। यानी कि गणेश चतुर्थी पर बप्पा का दरबार सजेगा भव्यता के साथ, श्रद्धा के साथ और आस्था के उस उमंग के साथ जिसमें भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए पूरी तरह डूबे हुए नजर आएंगे। मंदिर समिति के मुताबिक पहले दिन भगवान को 1,25,000 मोदकों का महाभोग लगाया जाएगा। उत्सव के 10 दिनों में प्रतिदिन विशेष श्रृंगार और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होंगे। हर शाम आरती के दौरान 11,000 लड्डुओं का भोग लगाए जाने की भी तैयारी है। दरअसल इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर की दान पेटियों की ताजा गणना में इस बार रिकॉर्ड 1,81,12,050 रुपए का दान मिला है और गणेश उत्सव में यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। और बोधगया में थाईलैंड, ताइवान और जापान से आए विदेशी श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति और सुख समृद्धि और विश्व शांति के लिए पूजा की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने 4,000 दीपों को प्रज्वलित करके धर्म चक्र बनाया और फिर उसकी विशेष पूजा अर्चना की। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, विदेशी श्रद्धालुओं की बोधगया में धर्म चक्र पूजा। जी हाँ, बोधगया में स्थित शंकराचार्य मठ के परिसर में थाईलैंड, ताइवान और जापान से आए विदेशी श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के दौरान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 4,000 दीपों को प्रज्वलित कर एक धर्म चक्र बनाकर विशेष पूजा की। इस दौरान वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ध्यान और प्रार्थना का चक्र चलता रहा और पूजा में शामिल बौद्ध भिक्षु भी सनातन धर्म के अनुसार मंत्रों का एक साथ उच्चारण करते रहे। बोधगया की धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में धार्मिक परंपराओं के बीच आस्था, सम्मान, सांस्कृतिक समन्वय और दो धर्मों का अनूठा संगम देखने को मिला। मठ में सनातन धर्म के अनुसार 6 दिनों तक सभी विदेशी श्रद्धालु पूजा करते हैं और 7वें दिन सभी विदेशी श्रद्धालु ब्राह्मणों के साथ हवन कराते हैं। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स ने बद्रीनाथ धाम से माउंट माना एक्सपेडिशन 2026 की शुरुआत की। इसके लिए गढ़वाल राइफल्स की तरफ से 7,240 मीटर ऊंची माउंट माना चोटी पर अभियान के लिए 31 सदस्य सैन्य दल को रवाना किया गया। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज है और वो है माउंट माना की चोटी फतह करने निकली सेना। जी हाँ, अभियान शुरू करने से पहले जवानों ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। सेना के लिए यह अभियान पर्वतारोहण के साथ साथ ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।
2: भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माउंट माना चोटी को फतह करने के लिए अपना विशेष पर्वतारोहण अभियान शुरू किया है। माउंट माना की ऊंचाई करीब 7,240 मीटर है और इसे हिमालय की ऊंची और कठिन चढ़ाई वाली चोटियों में से एक गिना जाता है। इस साहसिक और चुनौतीपूर्ण अभियान के लिए भारतीय सेना के 31 जांबाज सैन्य कर्मियों का एक दल रवाना किया गया है। इस अभियान को शुरू करने से पहले जवानों ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद बद्रीनाथ से माणा क्षेत्र के लिए अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बद्रीनाथ धाम से माउंट माना अभियान का औपचारिक शुभारंभ ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने किया।
3: ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि पर्वतारोहण को और बढ़ावा दिया जा सके। आपको ऑलरेडी पता है कि गढ़वाल राइफल में जो ड्रुप्स हैं वो पूरे 100% गढ़वाल के ही हैं और माउंटेनिंग करना हमें नेचुरली हमें आता है।
2: माउंट माना चोटी अपने दुर्गम रास्तों, गहरी खाइयों और बर्फीले तूफानों के कारण पर्वतारोहियों के लिए तकनीकी रूप से बेहद कठिन रास्ता माना जाता है। सेना के लिए यह अभियान पर्वतारोहण के साथ साथ ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता को मजबूत करने के लिहाज से बहुत अहम है। इस प्रकार के ऊंचे पर्वतारोहण अभियानों का उद्देश्य कठिन और तेजी से बदलते मौसम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक मजबूती, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना है।
3: माउंटेनिंग की जो कला है इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान भी काफी किया जाता है, काफी ये जरूरी होता है। तो इस कला को बरकरार रखने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए गढ़वाल राइफल ने फैसला लिया कि हर साल एक पीक की जाएगी। पिछले साल हमने माउंट मुकुट किया था और इस साल ये माउंट माना किया जा रहा है।
2: गढ़वाल राइफल्स की पर्वतारोहण के क्षेत्र में लंबे समय से मजबूत परंपरा रही है, लिहाजा इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गढ़वाल राइफल्स ने हर साल एक चोटी पर पर्वतारोहण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पिछले साल माउंट बकुट पर अभियान चलाया गया था और इस साल माउंट माना को चुना गया है।
0: दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट की तैयारियां पूरी हो गई है और विदेशी मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। ऐसे में पंजाब के अमृतसर में ब्रिक्स 2026 के नेताओं के लिए अनोखी कलाकृति तैयार की गई है और ये कलाकारी दिखाई है अमृतसर के डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल ने। ऐसे में हमारे आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है कैनवस पर उतरी ब्रिक्स नेताओं की तस्वीर। जी हां, रूबल ने एक बड़ी एक्रिलिक पेंटिंग बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रिक्स के नेताओं की तस्वीर शामिल है। ये पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और वैश्विक नेताओं की मौजूदगी को कलात्मक अंदाज में पेश कर रही है।
4: बारह और 13 सितंबर को दिल्ली का भारत मंडपम तैयार हो रहा है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। जाहिर है इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम का मेजबान क्योंकि भारत है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के बीच इस बड़ी सी एक्रिलिक पेंटिंग की भी खूब चर्चा है जिसे मशहूर पेपर आर्टिस्ट जगजोत रूबल ने तैयार किया। इसके जरिए जगजोत ग्लोबल लीडरशिप का संदेश देने की कोशिश करते नजर आए। पंजाब के अमृतसर में जगजोत ने यह अनोखी पेपर आर्ट बनाई जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ दूसरे ब्रिक्स लीडर्स को एक फ्रेम में दर्शाया है। 18 दिन की मेहनत के बाद 5 फीट की यह कलाकृति जगजोत रूबल के लिए ब्रिक्स 2026 की मास्टरपीस है। वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने ब्रिक्स थीम वाली पेपर आर्ट के माध्यम से ग्लोबल एकता का जश्न सेलिब्रेट करने का संदेश दिया है।
5: सर, पेंटिंग वाला जड़ा मैसेज आ एक फ्रेम दे विच सारे प्रेसिडेंट जिस तरह के मैं टाइटल देता ग्लोबल लीडरशिप मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म ते सारे देश दे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ रहे ने ते इंडिया वास्ते बड़ी वड्डी गल है। इंडिया होस्ट करन जा रहा वा ते एक मैसेज देता यूनिटी दा मैसेज देता कि सारे एक जगह ते आ रहे ने ते जड़ी इनारी डील होनी आ ओदे विच जरूर जड़ी देश दे विच लड़ाईयां लगदियां पईयां वा ओदे ते भी जरूर मुद्दा उठाना चाहिदा।
4: बता दें कि जगजोत एक फेमस चित्रकार और पेपर आर्टिस्ट हैं। वो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख राजनेताओं और हस्तियों के शानदार पोर्ट्रेट और विशाल पेंटिंग्स बनाने के लिए काफी मशहूर हैं और उनके नाम भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। फिलहाल तो अमृतसर के इस आर्टिस्ट ने पेपर आर्ट के माध्यम से ग्लोबल डिप्लोमेसी की जो तस्वीर उकेरी है इसने उनकी कलात्मकता का एक नया आयाम दुनिया को दिखाया है। उनकी ख्वाहिश भी है कि इस शानदार पेंटिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के वेन्यू पर प्रदर्शित किया जाए। यकीनन ब्रिक्स समिट से ठीक पहले तैयार की गई ये पेपर आर्ट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और वैश्विक नेताओं की मौजूदगी का कलात्मक अंदाज बयां करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: श्रीनगर की मशहूर डल झील पर इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। झील की लहरों के बीच बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में दिखाई जा रही हैं और वहां मौजूद सैलानी इसका मजा ले रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, डल झील में तैरते सिनेमा का अनोखा अंदाज। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर में आयोजित हुए पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बीच डल झील का ये सिनेमाई अंदाज पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय रहा।
2: कश्मीर की वादियाँ, डल झील की लहरें और सामने बड़ा पर्दा। शाम का आसमान जैसे ही रंग बदलता है, डल झील का नजारा भी बदल जाता है। हाउस बोट और शिकारे के बीच सजता है फ्लोटिंग सिनेमा और पानी पर बैठकर शुरू होता है फिल्मों का सफर। सिनेमा देखने का ये अंदाज श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। यहाँ थिएटर की चार दीवारें नहीं, खुला आसमान है, कुर्सियों की कतारें नहीं, झील की लहरें हैं और स्क्रीन के पीछे है कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी तरफ खींचा।
6: एक्सपीरियंस हमने किया है यहाँ पे कि हमने चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में देखे कि रोड साइड थिएटर्स वगैरह होते हैं, मगर ये जो डल के अंदर इन्हें थिएटर क्रिएट किया है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कश्मीर में शूट की गई है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखे। हमारे
2: फ्लोटिंग सिनेमा में इस बार बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग ने माहौल को और खास बना दिया। बड़े पर्दे पर पुराने दौर की फिल्में और सामने वही कश्मीर जो कभी हिंदी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। किसी के लिए ये पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका है तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल नया अनुभव।
7: हर साल ये फेस्टिवल होता रहे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहे ताकि जो पुरानी रिवायत थी जम्मू एंड कश्मीर की बॉलीवुड के साथ वो फिर से एक कनेक्ट हो और फिर से फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड के लोग, पूरे मुल्क से इंटरनेशनल लोग यहाँ आए फिल्म शूट करें, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो फिल्म टूरिज्म का पोटेंशियल है, उसमें मदद मिले।
2: दरअसल कश्मीर और भारतीय सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। 60 और 70 के दशक में तो कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी फिल्मों ने कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस तरह पेश किया कि घाटी खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत, कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का हिस्सा बन गई। घाटी के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहुंची थी।
8: बहुत ही यूनिक हुआ है इस बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेसिकली कश्मीर में। इससे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जितनी मूवीज आप देख रहे हैं सब कश्मीर बेस्ड शो कर रहे हैं। अब जैसे ये मूवी जंगली है, मैंने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, ये पूरी मूवी ही कश्मीर में शूट हुई थी।
9: फ्लोटिंग सिनेमा मेरे सामने ही चल रहा है तो ये जंगली पिक्चर यहीं शूट हुई है। बहुत मैं बचपन में छोटा था जो ये पिक्चर आई थी, तो इसको देखकर मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई और मैं और भी भाइयों से, पर्यटकों से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आएं और जो ये यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है इसकी वजह से भी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
2: शाम ढलती है, डल झील पर रोशनी जगमगाती है और बड़े पर्दे पर चलती है फिल्म। कश्मीर की जिस खूबसूरती ने कभी बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाया था, आज वही खूबसूरती खुद एक बार फिर सिनेमा का हिस्सा बन रही है। डल झील का ये फ्लोटिंग सिनेमा सिर्फ एक नया आकर्षण नहीं बल्कि कश्मीर और सिनेमा के पुराने रिश्ते की एक नई तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
11: बिहार में हाईवे में लग रहे टांके, मुंबई गोवा हाईवे की एमसील से हुई मरम्मत, बाढ़ के बाद नेपाल में इस्लाम अपना रहे लोग, कलयुग का श्रवण कुमार पर खबरों। की पूरी और पक्की पड़ता देखिए नवजोत रंधावा के साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: गुड न्यूज टुडे पर कीजिए मुंबई के लालबाग चौराहा के पहले दर्शन। बेहद भव्य रूप में दिख रहे हैं लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होने वाला है बप्पा का इंतजार। 2 दिन बाद देश भर में पधारेंगे भगवान गणपति, तैयारियां जारी। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के पंडाल। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर। बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग। 145 साल पुरानी परंपरा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर खबर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा के बीच एक धुंध पैदा कर देती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हर खबर की पड़ताल होती है और हर खबर को परत दर परत खंगालने के बाद ही हम आप तक लाते हैं उस खबर का सच। तो आज ऐसी ही 2 खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए 2 वायरल वीडियोस की, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि बिहार में एक हाईवे की सड़क को टांके लगाकर ठीक किया जा रहा है। वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर बनी दीवारों को एमसील से रिपेयर किया गया। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसे नेपाल का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाढ़ के दौरान कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दोनों वीडियो के जरिए काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में मजदूरों को सड़क में छेद करके स्टील की रॉड अंदर डालते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि वीडियो पटना बक्सर का है। दूसरा वीडियो मुंबई गोवा हाईवे का है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इस सड़क को ठीक करने के लिए एमसील का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए पत्थरों को चिपकाया गया। लेकिन सच्चाई क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
3: इन दो वीडियोस को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। इसके जरिए काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरारों को स्थायी रूप से ठीक करने के बजाय केवल पैचवर्क यानी मरम्मत करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य ने आम लोगों के बीच बहस को जन्म दे दिया। चिंता का कारण यह है कि करोड़ों की लागत से बनी नई सड़क और हाईवे पर बनी दीवारों में इतनी जल्दी दरारें कैसे आई। लोग गुणवत्ता और इस्तेमाल की गई सामान की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दोनों वीडियो को लेकर मीम्स बन रहे हैं। लोग तंज कस रहे हैं, सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहे हैं। सड़क अधूरी और कटी हुई दिखाई दे रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है। एक एक्सयूजर ने वीडियो को आरा बक्सर नेशनल हाईवे का बताते हुए यह दावा किया कि NH 922 का हाल देखिए। पटना बक्सर 4 लेन में लगाने पड़ रहे हैं टाके। अभी कुछ ही दिन पहले यह चमचमाती सड़क बनकर तैयार हुई थी और अभी से इसका दम निकलने लगा है। रोड जगह जगह से टूट रही है। देख कर साफ लग रहा है कि सरकार और ठेकेदार मिलकर सड़क की मरम्मत नहीं बल्कि उसका पंचर साट रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से बनी नई सड़क का यह हाल वाकई चिंताजनक है। वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि यह विकास है या सिर्फ खाना पूर्ति। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस वीडियो के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। RJD ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया और लिखा, विक्रमशिला सेतु के रफू के बाद में बिहार सरकार की सड़क पर टाका टेक्नोलॉजी। अब दूसरे वीडियो को देखिए। इसे शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई गोवा हाईवे पर बने ओवरब्रिज की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इन दोनों वीडियो के जरिए सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहा है। सड़क अधूरी और कटी हुई नजर आती है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है, मानो सड़क नहीं कोई कपड़ा हो जिसे रफू किया जा रहा हो। वहीं दूसरे वीडियो में मजदूरों को किसी हाईवे के साइड के पत्थर को चिपकाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को मुंबई गोवा हाईवे का बताया जा रहा है और दोनों वीडियोस लगातार वायरल किए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों वीडियोस को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और इसको लेकर जो दावा है हमने उसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दोनों वीडियोस को बारी बारी से खंगाला। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। इस दौरान हमें ये नजर आया कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क का एक हिस्सा खराब है जिसे बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें रफू जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। ड्रिल करके जहां जहां दरारें देखने को मिल रही हैं उसे भरा जा रहा है। हालांकि इस दौरान ये कहीं भी नजर नहीं आता कि सरिये को अंदर फिट किया जा रहा है। वीडियो देखने से साफ इशारा मिल रहा है कि ये पूरा वीडियो नहीं है, एक खास हिस्से को काटकर वायरल किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दूसरे वीडियो की भी जांच की जिसमें हाईवे के साइड पर पत्थरों को एक खास पॉइंट पर रखा गया है, ये हर जगह पर नहीं किया गया, दरार वाले हिस्से में ही इसे चिपकाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पुलों पर स्ट्रक्चरल मूवमेंट की जानकारी हासिल करने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां पर कोई बड़ी दरारें होती और एमसील से चिपकाया जाता तो फिर यहां पर गाड़ियों के आने जाने का मूवमेंट बंद कर दिया जाता, क्योंकि गाड़ियों के दबाव में यह अस्थायी तरीका काम नहीं करेगा। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि सड़क की सतह के दरारों को मजबूत करने की ये मानक इंजीनियरिंग तकनीक है या फिर काम चलाऊ काम किया जा रहा है। दूसरा सवाल यह कि अगर दोनों वीडियोस को लेकर दावा सही है तो फिर अब तक ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना।
3: वायरल हो रहे दोनों वीडियो का सच झूठ क्या है, ये जानने के लिए हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। सबसे पहले हमने पहले वीडियो की जांच की, वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सोशल मीडिया साइट्स पर इस साल जून महीने में छपी इसके बारे में कई खबरें मिली। यह इसके बारे में यही जानकारी मिली कि वायरल हो रहा वीडियो पटना बक्सर NH 922 का ही है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जानकारी दी गई थी। 22 जून को प्रकाशित इस रिपोर्ट में बिहार के पटना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हवाले से ये बताया गया था कि भोजपुर जिले के बिहिया में NH 922 हाईवे के कुछ हिस्सों को काटते और भरते हुए वायरल हो रहे वीडियो के बारे में गलत जानकारी दी गई है। वीडियो में दिख रहा कार्य किसी निर्माण की खामी का नहीं बल्कि नियमित और सुनियोजित रखरखाव का हिस्सा है। कॉन्क्रीट की सड़क में छोटे मोटे जोड़ों और दरारों को ठीक करने के लिए स्टिचिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी। वायरल वीडियो मरम्मत के बीच के चरण का है जिससे सड़क का हिस्सा अधूरा और कटा हुआ दिखाई दिया। काम पूरा होने के बाद सतह को मानक स्तर पर ठीक कर दिया जाता है।
4: स्टिचिंग जैसे जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट जो हाईवे में बनाते हैं ना, सीमेंट रोड बनाते हैं, तो उसमें जो स्लैब होता है उसमें जो है जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है वो कंटिन्यूअस ना होकर स्लैब फॉर्मेशन में होता है। उसमें स्लैब बनती है 3.5 मीटर बाय 4 मीटर, तो जब उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो उनको स्टिचिंग मेथड से, अगर हमारे क्रैक से बहुत ज्यादा वाइड नहीं है जैसे 3 mm है 5 mm तक क्रैक्स हैं, तो उनको स्टिचिंग करके ठीक किया सकता है। तो स्टिचिंग प्रॉपर कैसे करते हैं कि थोड़ा सा स्मॉल डाया का रिइंफोर्समेंट है और उसको डायगनली जो है उसमें इंसर्ट करते हैं क्रैक्स पोर्शन में, तो ये स्टिचिंग मेथड से भी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट को ठीक करने की एक विधि है।
3: दरअसल स्टिचिंग प्रक्रिया कॉन्क्रीट सड़कों और उनके ज्वाइंट से दरारों की मरम्मत और मजबूती बढ़ाने की एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें कंक्रीट स्लैब की टूटी हुई किनारों या दरारों को आपस में बांधकर जोड़ा जाता है ताकि सड़क अधिक समय तक टिक सके। यहां से साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे दूसरे वीडियो की पड़ताल में जुटी। इस वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि मुंबई गोवा हाईवे की कंक्रीट की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। हमने इसकी सत्यता जानने के लिए पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हम एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर पहुंचे। वीडियो में लोकेशन को भी टैग किया गया था। इसके अनुसार ये वीडियो मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का है। सर्च के दौरान हमें एक और इंस्टाग्राम यूजर पर वायरल हो रहे वीडियो जैसा ही वीडियो मिला। यहाँ पर भी यही जानकारी दी गई थी कि मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का वीडियो है और एमसील से दरारों को जोड़ा जा रहा है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि यशराज शेल के नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये वीडियो सबसे पहले पोस्ट किया था। NHAI ने इस वीडियो पर रिप्लाई भी किया था। NHAI यह साफ करना चाहता है कि VUP के पास जमीन के धंसने और जोड़ों के अलग होने की जो समस्या देखी गई, वह मानसून में बहुत ज्यादा बारिश के बाद हुई। VUP को मार्च 2026 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था और मानसून शुरू होने से पहले जमीन धंसने या किसी खराबी का कोई संकेत नहीं मिला था। वीडियो में डेक स्लैब की जो स्टिचिंग दिख रही है, वे प्रभावित PQC पैनल को सील करने और मजबूत करने के लिए तकनीकी रूप से मंजूर वैज्ञानिक तरीके का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जोड़ों के अलग होने की समस्या को ठीक करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, आरी वॉल पैनल पर मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की हलचल या खिसकने की लगातार जांच और रिकॉर्डिंग की जा सके। इन मॉनिटरिंग डिवाइस को लगाने का मतलब यह नहीं है कि सुधार के उपाय नाकाफी है। जमीन धंसने की घटना के बाद सुरक्षा के जरूरी इंतजामों के साथ ट्रैफिक को तुरंत सर्विस रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया। अभी प्रभावित हिस्से पर ट्रैफिक की इजाजत नहीं है जब तक जरूरी सुधार का काम पूरा नहीं हो जाता और पूरी तकनीकी जांच से यह पक्का नहीं हो जाता कि यह सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए सुरक्षित है, तब तक यह जगह ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी।
4: तो चिपकाने जैसा तो कुछ नहीं होता है बिटुमिनस रोड में। क्रैक सीलिंग जरूर होता है। क्रैक्स की जो विड्थ होती है ना, वो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, तो जो स्मॉल क्रैक्स हैं उनको तो हम क्रैक सीलिंग से फिलअप कर सकते हैं। उसमें बिटुमिनस मिक्स केवल, अगर बहुत स्मॉल क्रैक्स हैं तो उनको केवल बिटुमिन मटेरियल से फिलअप कर देते हैं। थोड़ा सा वाइट क्रैक्स हैं उनको हम बिटुमिनस और स्लरी मिक्स करके उससे फिलअप कर देते हैं।
3: सर्च के दौरान हमें एक एक्स यूजर का पोस्ट भी मिला जिसमें उन्होंने मुंबई गोवा हाईवे वाले वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे का मखौल उड़ाते हुए यह कहा कि टेल टेल क्रैक गैज के जरिए मरम्मत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन वायरल करने वालों को इस तकनीक के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर टेल टेल क्रैक गैज तकनीक है क्या। दरअसल टेल टेल क्रैक गैज एक ऐसा सटीक और सरल उपकरण है जिसका उपयोग दीवारों, नींवों और दूसरे संरचनाओं में आई दरारों के चौड़ा होने, बंद होने या खिसकने की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ में नेपाल में बहुत ज्यादा तबाही मची और इसी बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इस दौरान नेपाल में कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
5: हर बीतते दिन के साथ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी नेपाल की बाढ़ से जोड़कर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसी कड़ी में अब ये वीडियो वायरल हुआ है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। वीडियो में एक जगह कुछ लोग एक उंगली को उठाकर कुछ पढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि एक शख्स माइक पर कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में जानमाल का काफी नुकसान हुआ था और इस बाढ़ में अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग इसमें लापता हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ा हुआ वीडियो है, क्योंकि खड़े लोगों के सामने एक मौलाना जैसा शख्स नजर आता है। मौलाना कुछ मंत्र जैसे पढ़ रहा है जिसे ये लोग दोहरा भी रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस धर्मांतरण का ही है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि नेपाल आपदा के दौरान 41 लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपनाते तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जरूर बड़ी खबर होती, मीडिया आउटलेट्स में इसके बारे में कोई जानकारी होती, लेकिन ऐसा कहीं कुछ मिला नहीं। पूरे वीडियो में अरबी में मंत्र सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल, पहला सवाल यानी ये था कि अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें कोई भी नेपाली बोलता क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल कि नेपाल में आपदा के बीच 41 लोगों ने अगर इस्लाम धर्म अपनाया है तो इसके बारे में कहीं पर भी कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई। इस रिपोर्ट में सच्चाई जानिए।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। हमने इसके बारे में लगातार खोजबीन की, लेकिन इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें अप्रैल 2024 में एक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया वीडियो मिला। ये वीडियो वायरल वीडियो जैसा ही था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो का नेपाल में आई हालिया आपदा से कोई संबंध नहीं है। आगे की खोजबीन में हमें कुछ तस्वीरें मिली जिनमें हमें वही लोकेशन और कार्यक्रम मिला जैसा वायरल वीडियो में नजर आ रहा था। कैप्शन में उस स्थान की पहचान बदियाह स्थित अल दावा एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसके बाद गूगल मैप्स पर खोज करने पर हमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित मस्जिद गजवा अल मुतैरी मिली। गूगल मैप्स पर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें वायरल वीडियो से मेल खाती थीं, जिससे ये पुष्टि हो गई कि फुटेज सऊदी अरब के रियाद का था न कि नेपाल का। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले सबूतों से ये स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल में आई बाढ़ से 2 साल पहले का है और सऊदी अरब के रियाद का है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर। राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार
7: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
9: अगर आप एक दिन के लिए टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे?
11: प्रिंसिपल बनूंगी। मैं को होमवर्क दूंगा। मैं स्कूल नहीं आऊंगा। मैं सबको डांस कराऊंगा।
12: नन्हे बच्चे क्या सोच रहे हैं ये समझना मुश्किल होता है। ऐसे में जब एक स्कूल में उनसे पूछा गया कि एक दिन के लिए टीचर बने तो क्या करोगे, जवाब में बच्चों ने खूब बतकही की। उनके जवाब पूरे सोशल मीडिया की जान बने हैं और हंसा रहे हैं। कोई प्रिंसिपल बनने की बात करता है तो कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आने की बात करता है। कोई बच्चा टीचर बनने के बाद स्टूडेंट्स को आइसक्रीम खिलाने की बात करता है। बच्चों का ये मासूम जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कद छोटा हो सकता है लेकिन हिम्मत और दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। अब इस छोटी सी बच्ची को ही देख लीजिए। बाइक पर बैठने के लिए बच्ची ने ऐसा तरीका निकाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। बाइक पर सीधे चढ़ने की बजाय बच्ची पीछे की तरफ से पैर रखकर सीट पर बैठ जाती है। उसका ये तरीका देखकर लोग उसकी समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्ची का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कलयुग के श्रवण कुमार ने अपनी असहाय माँ की अंतिम या बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए जो किया, उसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दी। चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ अपनी बुजुर्ग माँ को भगवान बांके बिहारी के दर्शन कराने के लिए एक छोटे ने अनोखा और संघर्षपूर्ण रास्ता चुना। वो अपनी माँ को एक लोहे के तसले में बैठाकर और उसे अपने सिर पर रखकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। पैरों में छाले और रास्ते की ढेरों कठिनाइयों के बावजूद बेटे के कदमों की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आई। उसकी ये जिद केवल अपनी माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखने की थी। जब ये छोटा बेटा अपनी माँ को सिर पर उठाए मंदिर परिसर में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के साथ साथ इस बेटे की हिम्मत को सलाम कर रहा था। इस बेहद प्यारे वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। एक हैंड पपेट ने न सिर्फ मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों का दिन बना दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर तरफ मुस्कान बिखेर दी है। बातचीत के अंदाज से इसने सफर को मजेदार बना दिया।
13: हाय हाय। बहुत ही प्यारा नाम है।
14: थैंक यू।
13: कैसा लगा मैं? हां? कैसा लगा?
14: बहुत
13: अच्छा लगा।
14: बहुत क्यूट
13: है। मेरे को तो शर्म आ गई। आप किधर जा रहे हो?
14: मैं ई कॉमर्स से।
13: मैं भी आ जाऊँ?
14: आ जाओ।
13: पक्का? आपके बैग के अंदर घुस जाऊँ?
14: हाँ आ जाओ।
13: ए?
14: हाँ,
13: मेरे को आने नहीं देखा।
14: क्यों क्यों नहीं आने दोगे?
13: ऐसा ही है। इसको
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
7: लालबागचा राजा की पहली झलक, बप्पा का लाडका लंबोदर अवतार, आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संस्कार।
5: दुर्गम खारदुंगला के असली हीरो। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: लाल बागचा राजा की पहली झलक, बप्पा का लाडका लंबोदर अवतार, आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संस्कार। दुर्गम खारदुंगला के असली हीरो। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं अच्युत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पंडाल लाल बाग चौराजा की पहली झलक देखिए गुड न्यूज टुडे पर। बप्पा के प्रिय भोग के स्वाद में कई ट्विस्ट आ चुके हैं। ज्ञान आनंद और सिद्धि का प्रतीक भी है मोदक, जानिए मोदक की कहानी। और 18,000 फीट पर बीआरओ के गुमनाम नायक मौजूद रहते हैं, जहां कुदरत भी लेती है उनके कामों का फीडबैक। डिटेल्स देंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: गुड न्यूज टुडे पर कीजिए मुंबई के लालबाग के राजा के पहले दर्शन। बेहद भव्य रूप में दिख रहे लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होने वाला है बप्पा का इंतजार, 2 दिन बाद देश भर में पधारेंगे भगवान गणपति। तैयारियां जारी, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के पंडाल। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां। कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक बैल पोला उत्सव की धूम। किसानों ने पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ निकाला वृषभ राज का जुलूस। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई फिल्म हनुमान अंश। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, फिल्म को दुनिया भर से मिल रहा दर्शकों का प्यार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है।

0: सबसे पहले बात लालबाग के राजा की, जो मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय पंडाल में विराजमान होते हैं। कुछ देर पहले ही लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक सामने आया है और उनकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। हर साल गणेशोत्सव से ठीक पहले विनायक के भक्तों को लालबाग का राजा की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार रहता है। लालबाग के राजा को भक्तों की मुरादें या कहें कि इच्छाएं पूरी करने वाला भगवान कहा जाता है। ऐसी अटूट मान्यता है कि सच्चे मन से उनके दर पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी की जाती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम इस गणेश पंडाल की स्थापना साल 1934 में हुई थी। मुंबई के परेल इलाके में कोली समुदाय के लोगों और व्यापारियों ने लालबाग के राजा को पहली बार स्थापित किया था। इस साल लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल अपने स्थापना के 93 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिससे इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान यहां रोजाना 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपने बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अपनी मन्नतों के लिए घंटों तक लंबी कतारों में इंतजार करने में उन्हें कोई समस्या नहीं आती। आम नागरिकों के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां अपने परिवार के साथ बप्पा के दरबार में शीश नवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर दोबारा आने का संकल्प भी।
1: वक्रतुंड महाकाय।
2: कुछ देर पहले ही लालबाग के राजा का जो पर्दा है उसे हटाया गया है और फाइनली फर्स्ट लुक जो है उसे रिवील किया गया है। यहाँ मौजूद हजारों तमाम श्रद्धालु इस समय लालबाग के राजा का सीधे दर्शन दे रहे हैं और जैसा कि गुड न्यूज टुडे ने पहले ही ये एक कंफर्म और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इस बार कहीं ना कहीं लालबाग के राजा की जो थीम है वो रामेश्वर से जोड़ी जाएगी और बिल्कुल वही देखने मिल रहा है। देखिए कितने ज्यादा सुंदर इस समय लालबाग के राजा तो लग ही रहे हैं, लेकिन लालबाग के राजा का ये जो मंदिर परिसर है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। बकायदा यहाँ पर त्रिशूल लगाया है, चंदन लगाया गया है और डायमंड से इस पूरे वातावरण को सजाया गया। साथ ही साथ बप्पा की जो दरबार का भीतर का जो तस्वीर है वो सिल्वर और गोल्डन रूप में है। आपको बता दें कि लगभग तमाम एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है इस समय लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। 14 तारीख से सुबह 5 बजे ही बप्पा का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, साथ ही साथ इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं, मुंबई पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर, साथ ही साथ बीएमसी के बहुत से ऐसे आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में लीन रहते हैं, वो सारे इस समय यहाँ मौजूद हैं और लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल कुछ इसी तरह की रौनक अब देश भर में भी देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। जहां आपने लालबाग का राजा की पहली झलक देखी, वहीं अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बस इंतजार है बप्पा के पधारने का। गणपति प्रतिमा के आगमन के साथ सजावट का काम लगातार चल रहा है। कहीं भगवान गणेश के लिए आभूषण तैयार हो रहे हैं तो कहीं आकर्षक मूर्तियां बन रही हैं। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी उत्सव की तैयारी अंतिम दौर में है।

0: बाप्पा जल्द ही पधारने जा रहे हैं। भव्य तैयारी लगभग पूरी होने की ओर है। कहीं मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, साथ ही धूमधाम के साथ बाप्पा का आगमन भी जारी है। कहीं विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनके प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। ये तस्वीरें मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में शामिल रंगारी पदक चाल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की है, जहां बाप्पा का आगमन हो चुका है और अब तेजी के साथ यहां साज सज्जा का काम हो रहा है।
1: यहाँ के भी गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। देखिए बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। फिलहाल ढाके गए हैं क्योंकि अभी प्रिपरेशन चालू है, मंडल का काम चालू।

0: है जो डेकोरेशन है उसे करने का काम चालू है और धूल मिट्टी बप्पा पर ना लगे इसलिए अभी उन्हें तोपा गया है। लेकिन तस्वीरों में देखें जो आर्टिस्ट हैं कलाकार हैं वो लगातार इस दरबार को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं और जो जानकारी है उसके हिसाब से फिर से एक पारंपरिक वेशभूषा के साथ यहाँ का चलचित्र यहाँ का डेकोरेशन बनाया जाने वाला है। बप्पा कि जो हाइट है जानकारी के मुताबिक नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ 22 फीट है जिसमें 3 फीट की ट्रॉली भी है।
1: लंबे समय से ये मंडल महाराष्ट्र और देश की परंपरा को गणेश भक्तों तक पहुंचाते आ रहे हैं। इस वर्ष इस मंडल ने अपनी थीम जेजुरी का खंडोबा मंदिर रखा है। पुणे जिले के जेजुरी में स्थित मंदिर में विराजमान भगवान खंडोबा भगवान शिव का उग्र योद्धा रूप माने जाते हैं।
2: जेजुरी का खंडोबा ये महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है और यहाँ हम लोग ने जो खंडोबा भगवान है वो युद्ध के लिए वो राक्षस के साथ युद्ध कर रहा है और उसी टाइम वो युद्ध होने के बाद वहाँ पे मानाई जो देवी है उनके साथ वो मिलने को जाता है, विराजमान होता है वहाँ पे। ऐसा हम लोग ये शॉर्ट डिटेल है उसमें। अभी 3 दिन बचा है हमारा, यहाँ पे सब तैयारियाँ चालू है, एकदम फाइनल लगभग चालू है कार्यक्रम में।
1: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर जगह जगह वर्कशॉप का आयोजन भी होता है। ये तस्वीरें ठाणे की हैं, जहां आयोजित वर्कशॉप में करीब 6,500 बच्चों ने मिट्टी की गणपति की मूर्ति बनाई जिसे गिनीज बुक में भी जगह मिली है। महाराष्ट्र के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी भव्य रूप से गणेशोत्सव की तैयारी चल रही है। कर्नाटक के बेलगावी में भी भगवान गणेश की विशाल और अद्भुत प्रतिमाओं के आगमन का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान उड़ते हुए गणेश जी यानी फ्लाइंग गणेशा के थीम पर आधारित मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहे। भगवान गणेश के साथ ही दूसरी प्रतिमाएं भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती रही। भक्तों की भीड़ और पूरे विधि विधान के साथ यहां धूमधाम के साथ गणपति का आगमन हो चुका है। ट्रैफिक जाम और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यहां उत्सव से 4 दिन पहले से गणपति का आगमन शुरू हो गया। गुजरात में भी गणपति स्थापना को लेकर मूर्तियों के रंग रोगन और सजावट का काम तेजी से चल रहा है। जामनगर के बाजारों में भगवान गणेश के अलग अलग आकार स्वरूप और आकर्षक डिजाइन वाली प्रतिमाएं दिख रही हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग को लेकर मूर्तिकारों ने यहां मिट्टी के आकर्षक मूर्तियां तैयार की हैं, जिन्हें फाइनल टच देने का काम चल रहा है। वहीं सूरत में गणेशोत्सव के लिए बाप्पा की प्रतिमाओं के लिए चांदी के आकर्षक और भारी भरकम आभूषण तैयार किए गए हैं। प्रतिमा को विशेष रूप से सजाने के लिए गणेश मंडलों और भक्तों की ओर से अपनी पसंद के अनुसार चांदी के आभूषण बनवाए जा रहे हैं। इनमें भगवान गणेश की पादुकाएं, कंगन, हाथों के आभूषण, मुकुट सहित दूसरे आभूषण भी शामिल हैं। इन आभूषणों को विशेष ऑर्डर देकर तैयार करवाया गया है।
3: हमने यहाँ के जो सरकार के गणपति जी जो है उनके लिए हमने हाथ बनाया था चांदी का, जो एक भगवान आशीर्वाद मुद्रा में है वो ऐसा हमारे पास में हाथ बनवाया गया था। और साथ साथ में विधेश्वराय जो मंडल है गणपति जी मंडल का, वहाँ से हमें पूरा भगवान जी का पूरा श्रृंगार का ऑर्डर मिला था, जिसमें भगवान जी के आभूषण हर एक आभूषण हमें बनाने थे, जिसमें माथे का मुकुट से लेके हार से लेके हाथ के कड़े से लेके पैर के चरण से लेके और उसके साथ साथ में सूंड कान वो सब कुछ हमको बनाना था। बहुत अच्छी तरह से हमने ये बनाया और भगवान जी को ये धारण करने के लिए भेजा हुआ है।
1: यूपी हो या राजस्थान, हर जगह बाप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान के पाली में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक परिवार ने गोबर से आकर्षक मूर्तियां तैयार की हैं। ये परिवार पिछले 8 महीने से इस पुण्य काम में लगा हुआ है और अब मूर्तियों की सजावट की जा रही है।
4: इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप घर पे ले जाओ इसको और घर पे ही विसर्जन करो इसको, और विसर्जन होने के बाद में इसी के पानी को मतलब आप अपने पेड़ पौधों में डाल दो, ये खाद का काम भी करते हैं। तो पीओपी अगर कहीं ना कहीं आप विसर्जन करोगे कहीं भी नदी नालों में या कहीं पे भी, तो वो मतलब जीव जंतु को भी नुकसान और पानी को भी दूषित करती है, मतलब पीओपी वाली पूर्ति, और उनके अंदर जो कलर्स होते हैं वो भी केमिकल वाले कलर्स होते हैं। और हमारे ये सारे ऑर्गेनिक बोले तो वाटर बेस्ड कलर है, इस कलर से किसी को, जीव जंतु को, किसी को भी नुकसान नहीं है।
1: गणेश चतुर्थी पर लोग घरों से लेकर पंडालों तक में गणपति की स्थापना करते हैं, साथ ही साथ गणेश मंदिरों में भी गणेशोत्सव की भव्य तैयारी चलती है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उत्सव के लिए मंदिर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है।
5: जो ये पर्व होता है इसमें 10 दिन के लिए गणेश जी विराजित होते हैं, जो इस बार तिथियों के ऊपर नीचे होने के कारण इस बार 12 दिवसीय की बनाई जाएगी। ये बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है और गणेश जी अपने खजराना गणेश जी मंदिर में रोज विशेष श्रृंगार, फूल बंगला और स्वर्ण आभूषणों से और मंदिर में बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेके और गणेश जी की पूरा ध्यान रखा जाता है और लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करते हैं और मनोकामना जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होती है।
1: खजराना गणेश को लेकर भक्तों में अगाध आस्था है। यहाँ बाकी दिन भी भक्तों का तांता लगा रहता है और गणेशोत्सव के दौरान तो यहाँ लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने पहुँचते हैं।
6: मुझे यहाँ आते आते लगभग 20-22 साल हो गए हैं और यहाँ आने से मुझे लगता है कि जीवन की हर बाधाएं हट जाती है और मैं तो बहुत विश्वास रखती हूँ गणेश जी पे।
7: हमको बड़ी आस्था है और हम गणपति जी के 10 दिन जो है स्थापना भी करते हैं। गणेश जी के ऊपर हमको बहुत ज्यादा विश्वास है और ईश्वर हमारा बहुत अच्छा करता है।
1: इस मंदिर की मान्यताओं को लेकर गणेशोत्सव में भक्तों की यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। 14 सितंबर को ध्वज पूजन के साथ यहां गणेशोत्सव का शुभारंभ होगा और पहले दिन भगवान को 1.25 लाख मोदकों का महाभोग लगाया जाएगा।
8: लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु आते हैं और जालियों पर यहां बंधन बांधते हैं, अपने हाथों में भी कलावा बांधते हैं और मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने 14 सितंबर से धूमधाम से मनाया जाएगा और मंदिर रात को ही 13 सितंबर की रात्रि से ही पूरे दिन मंदिर खुला रहेगा। उस दिन हरतालिका तीज है और रात को भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा और इस बार भगवान को विशेष रूप से हीरे जड़ित नेत्र भी अर्पण किए जाएंगे, जो एक श्रद्धालु द्वारा यहां पर भेंट किए गए हैं। भगवान को 7 करोड़ रुपए के स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण मुकुट धारण कराए जाएंगे। रोजाना अलग अलग तरह से आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा।
1: गणेशोत्सव के दौरान यहां आने वाली भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी दुरुस्त व्यवस्थाएं की जा रही ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। गणेश चतुर्थी की तिथि अब काफी पास आ चुकी है और उस दिन से पूरे देश में भक्ति की एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, ठाणे से नीलेश पाटिल, जामनगर से दर्शन ठक्कर, सूरत से संजय सिंह राठौड़, पाली से भारत भूषण जोशी और इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गणेशोत्सव के लिए भगवान गणेश का प्रिय भोग यानी कि मोदक भी तैयार है। जी हाँ, मोदक का संसार सज चुका है। मुंबई से लेकर जयपुर तक खास तरह के मोदक और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी की तिथि से लेकर गणपति स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए।

तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 14 तारीख को बप्पा पधारने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से पूरे देश में बप्पा के स्वागत की तैयारी हो रही है। कहीं पंडाल सज रहे हैं, कहीं मोदक बन रहे हैं, कहीं मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चाहे वो बड़े बड़े पंडाल हो या फिर घर, हर कोई बप्पा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और चाहता है कि बप्पा जल्दी से जल्दी पधारे, और इसीलिए कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई कोताही कोई नहीं बरत रहा, और इसीलिए कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में है। ये तस्वीरें आप देखिए।

0: विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता। किसी भी मंगल कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है और उस गणेश जी का जन्मोत्सव आ रहा है, जिसे देश भर में गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब बप्पा के घर से लेकर पंडाल तक में विराजने का समय बहुत नजदीक आ चुका है और गणेशोत्सव की तैयारियां पूर्ण होने की ओर बढ़ रही हैं। भगवान गणेश को मोदक का भोग सबसे प्रिय माना जाता है। मोदक को ज्ञान, आनंद और सिद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता के अनुसार गणेश जी को मोदक अर्पण करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए एक से बढ़कर एक मोदक का संसार भी जगह जगह सजा हुआ है। मुंबई के करी रोड में ये लाडू सम्राट नाम की मोदक की मशहूर और पुरानी दुकान है। यहाँ कई तरह के आकर्षक मोदक मिल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला उकडीचे मोदक भी है।
1: श्री गणेश जी को जो पसंद है मोदक, उनसे ही संबंधित तमाम तरह तरह के स्वादिष्ट ट्रेंडिंग डिमांडिंग मोदक यहाँ बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, और मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तस्वीरें देखें, ये पूरा का पूरा शॉप जो है वो मोदकों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के मोदक, छोटे बड़े मध्यम, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये बड़ा सा मोदक थोड़ा सा देखें, जो कि इस शॉप की शान भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा मोदक मांगा जा रहा है यहाँ पर आकर, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या है?
2: सबसे ज़्यादा ट्रेंड में तो मावे के मोदक से है, उसके अलावा काजू के मोदक जो है, ड्राई फ्रूट मोदक वगैरह। सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट के नहीं बनाते हम, चॉकलेट मावा, चॉकलेट ड्राई फ्रूट काजू में, चॉकलेट के फ्लेवर में, उसके अलावा अंजीर, स्ट्रॉबेरी, बिस्कॉफ, ये सब थोड़े बहुत फ्लेवर्स हम बनाते हैं। बट हमारा क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिशनल ब्रांड है तो हम ट्रेडिशनल मोदक ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कंदी मावे में मोदक हो गया, या फिर खोबरा मावा का मोदक हो गया, आंबा मावा का मोदक।
1: फेमस मोदक है ना, जो मराठियों के घर में हमेशा ही बनाया जाता है, जो चावल का बनता है, वाइट वाइट, क्या नाम?
2: उकड़ी मोदक, वो भी हमारा स्पेशलिटी है। हम वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं उकड़ी के मोदक।
0: मुंबई के अलावा जयपुर में भी बप्पा के कई फ्लेवर्स में मोदक तैयार किए गए हैं। यही नहीं, लड्डू भी गणेश जी की पसंदीदा मिठाई मानी जाती है, तो यहाँ उसकी भी कई वैरायटी मौजूद है।
3: गणेश चतुर्थी की जब हम बात करते हैं तब मोदक जो कि उनके सबसे प्रिय, उनकी बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ साधारण मोदक नहीं, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स यहाँ नजर आ रहे हैं और एक केक भी नजर आ रहा है।
4: वो हमारे विघ्नहर्ता है, हर काम सबसे पहले उनसे ही शुरू होता है अपने हिंदू संस्कृति में, तो बस उनको तो राजी रखना बहुत जरूरी है। उनका फेवरेट है मोदक, जिसको एक पॉजिटिविटी की पोटली भी बोला जाता है, खजाने की पोटली बोला जाता है। तो हमने इस बार 12 तरह के फ्लेवर्स यहाँ पे मोदक के लॉन्च करे हैं, साथ ही में उनके सेकेंड फेवरेट लड्डू, उसमें हमने 16 फ्लेवर्स लॉन्च करे हैं जो कि आपके सामने, जिसमें हर एज ग्रुप को, हर टेस्ट को ध्यान में रखते हुए फ्लेवर्स को क्यूरेट करा गया है। आप देखेंगे तो इसमें काजू कतली के फ्लेवर्स ड्राई फ्रूट से रिलेटेड हो गए, कुछ जेंजी रिलेटेड हो गए, जैसे लोटस बिस्कॉफ हो गया, कैरमल हो गया, न्यूटेला हो गया, कुछ थोड़ा सा फंकी फ्लेवर्स हो गए, ठंडाई केसर, रोज गुलकंद, और बाकी हमारा जो बेसिक लड्डू वाला फ्लेवर होता है मोतीचूर कानपुरी, वो हमने क्यूरेट किया है, पेड़े के फ्लेवर्स में किए हैं।
3: उनके जो बॉक्सेस हैं उसमें अलग अलग वैरायटीज हैं, वो दिखाई दे रही है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिसको जो फ्लेवर पसंद है पूरे परिवार में वो फ्लेवर अपने लिए सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे थाल भी एक ऐसी रखी है जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स एक साथ रखे गए हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पैकेजिंग पे इनके काम किया गया है। मोदक की बात करें तो मोदक सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी ये मोदक मिल रहा है। तो पैकेजिंग आपकी हर बार हम देखते हैं, गणेश जी इस बार पैकेजिंग में नजर आ रहे हैं, दो अलग अलग खूबसूरत पैकेजिंग है, मोदक नजर आ रही है।
0: इस वर्ष 14 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू होने जा रहा है, इसी दिन विघ्नहर्ता विराजेंगे। भगवान गणेश का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को माना जाता है, उस हिसाब से चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 7:06 से शुरू होने जा रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर को 7:44 पर होगा। इसलिए गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी।
5: गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव रूप में मनाई जाती है और इस दिन घरों के साथ साथ सार्वजनिक पंडालों में भी विधि विधान से गणपति की स्थापना की जाती है। हालांकि चतुर्थी तिथि अगले दिन सुबह तक रहेगी, लेकिन स्थापना और मुख्य पूजा के लिए 14 सितंबर का दिन ही महत्वपूर्ण रहेगा। गणपति स्थापना के लिए इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण और विशेष समय मध्यम काल का रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के प्राकट्य को मध्यम काल से जोड़ा गया है, इसलिए इसी काल में गणपति की स्थापना और पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए घर में गणपति स्थापित करने वाले श्रद्धालुओं को अपने स्थानीय पंचांग में दिए गए मध्यम गणेश पूजा मुहूर्त के अनुसार ही स्थापना करनी चाहिए। इसी समय संकल्प लेकर विधि विधान से गणपति की पूजा करना शुभ माना जाता है।
0: भगवान गणेश का प्राकट्य मध्याह्न काल में ही हुआ था और उसी समय गणपति स्थापना करना बेहतर बताया जा रहा है। 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त है। गणेश चतुर्थी पर इस वर्ष सोमवार का विशेष संयोग माना जा रहा है, जो कि भगवान शिव का प्रिय दिन है और इसी दिन से गणेश उत्सव शुरू होने जा रहा है।
5: इस वर्ष गणेश चतुर्थी की बात करें तो एक विशेष संयोग इसे और भी खास बना रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है। पंचांग परंपरा में रवि योग को शुभ माना गया है और ऐसी मान्यता है कि इस योग में किए गए पूजा पाठ, मंत्र जाप और अन्य शुभ कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इसलिए इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर एक तरफ चतुर्थी तिथि और भगवान गणेश के प्राकट्य से जुड़ा मध्यम काल का महत्वपूर्ण समय और वहीं दूसरी तरफ रवि योग का संयोग इस दिन की शुभता को और भी बढ़ा रहा है।
0: पूरा देश अब गणेश उत्सव के रंग में रंगता जा रहा है। इन सब के बीच अब आपको मिलवाते हैं महाराष्ट्र के अकोला के पर्यावरण प्रेमी शरद कोकाटे से, जो लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक करते हैं।
6: ये रुमाल हम उनके आंखों पर अभी पूरी तरीके से बांध देते हैं ताकि उनको कोई कुछ ना दिखाई दे, बावजूद इसके वो जो है वो देखिए अभी मैंने ये पूरी तरीके से बांध ली है और उनके आंखें पूरी तरीके से बंद हुए हैं। अब शरद भैया मुझे ये बोलिए कि अब शुरुआत करते हैं।
7: हाँ, ये जैसे इसको शुरुआत करने के लिए हमने पहले जो एक सर्कल लिया था, यहाँ पर एक सर्कल मिट्टी पड़ी है तो ये यहाँ से थोड़ी मिट्टी लेनी है उसका बेस तैयार करने के लिए।
0: इसके बाद शरद कोकाटे के हाथ चलते गए और वो प्रतिमा को आकार देने में जुटे रहे। देखते ही देखते एक सुंदर सी गणेश की मूर्ति बनाकर इन्होंने तैयार कर दी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, जयपुर से रिदम जैन और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज की, मधुमेह की, यानी शुगर की बीमारी की। डायबिटीज के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, डायबिटीज का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है और डायबिटीज से बचने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 7:46 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:55 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, चंद्रमा और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि किसी आदमी को डायबिटीज होती कब है, शुगर होती कब है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। शरीर में एक विशेष रसायन होता है, उसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल होती है और तब आपके डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों जल तत्व के और रसायन के कारण होते हैं। बृहस्पति पाचन तंत्र का स्वामी होता है। चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति इन तीनों में से एक भी ज्यादा कमजोर हुआ या एक भी ज्यादा खराब हुआ तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। जब कुंडली में बृहस्पति बेहद कमजोर हो, अस्त हो या शत्रु राशि में हो तो डायबिटीज की संभावना बनती है। जब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बहुत खराब हो तो तनाव के कारण टेंशन की वजह से डायबिटीज हो जाती है। एक ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र डायबिटीज का कारक है और शुक्र की वजह से डायबिटीज होने की संभावना सबसे प्रबल होती है। डायबिटीज पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर की बाधा दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो कुंडली देख करके शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, इनके हालात को देखकर आप ये जान सकते हैं कि डायबिटीज होने की संभावना है। बाकी कौन से लक्षण से जान सकते हैं कि डायबिटीज हो सकती है? अगर हथेलियों का रंग कालेपन की तरफ हो, हथेलियां थोड़ी ब्लैकिश हो तो डायबिटीज होने की संभावना रहती है। अगर शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के जड़ में, जो शुक्र का पर्वत है, अगर शुक्र के पर्वत पर रेखाओं का जाल बना हुआ है तो भी डायबिटीज की संभावना रहती है। अगर चंद्रमा के पर्वत पर छोटी उंगली के थोड़े नीचे वाले हिस्से पर अगर छोटी छोटी लकीरें हों तो तनाव बहुत ज्यादा होता है और तनाव की वजह से डायबिटीज हो जाती है। अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता हो, जहां सनलाइट की कमी हो, तो ऐसे हालात में भी आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपके घर में अनुपयोगी सामानों का ढेर लगा रहता हो, कूड़ा कबाड़, पुराने जूते चप्पल, अगर ये आप अपने घर में ठूंस ठूंस कर रखे रहते हो तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। डायबिटीज की संभावना को कम करने के और बचने के उपाय क्या हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में डायबिटीज होने के योग हैं और आप उससे बचना चाहते हैं, उसके होने की संभावना को कम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और कम से कम एक मिनट आधा मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहिए। ऐसे घर में रहने का प्रयास करिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, या कम से कम खिड़की बनवाकर मिरर लगाकर आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिएगा। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। दोपहर के समय में दही खाना आपके लिए अच्छा होगा। अगर डायबिटीज की संभावना है तो सफेद रंग का ओपल जरूर पहनिए और हीरा धारण करने से बचाव करिए। हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करने से भी डायबिटीज को कंट्रोल करना आसान होगा। और जहां तक योग आसन की बात है, धनुरासन और पश्चिमोत्तान आसन का अगर आप अभ्यास करें तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी, प्रेशर कम होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में इस समय कोई जोखिम कोई रिस्क मत लीजिएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर व्यापार में धन का आगमन ना हो पा रहा हो, धन ना आ पा रहा हो, तो रोज शाम को अपने व्यापार के स्थान पर लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें
3: विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है।
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक

0: बिहार के भागलपुर में इस महिला अधिकारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये अधिकारी शाहकुंड ब्लॉक में सर्किल ऑफिसर हैं। ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, गंदे पानी में खड़े होकर उनसे बातचीत की, समस्याएं सुनी और जरूरी राहत सामग्री बांटी।
1: टायर के ऊपर गाड़ी पानी आ चुका है, उस दिन आपका आधा टायर तक पानी था।
0: इन सीओ मैडम का नाम है हर्षा कोमल, जिसे अब शाहकुंड प्रखंड के लोग प्यार से ट्रैक्टर वाली मैडम के नाम से पुकारने लगे हैं। असल में गंगा के उफान से भागलपुर जिले के 86 से ज्यादा पंचायतों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन उस आपदा के बीच भी जिस समर्पण भाव से वो अपने प्रखंड के प्रभावित पंचायतों में राहत बांटने पहुंच रही हैं, वो लोगों का दिल छू रहा है। दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला से आई हैं, जहां पहली बार लड़कियों ने डे नाइट मैच खेला। बारामूला के विपिन रावत क्रिकेट स्टेडियम में चिनार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ था, जिसमें कश्मीर के अलग अलग जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में पहुंची अनंतनाग और शोपिया की टीम। मैच शुरू होने से पहले राष्ट्रगान की धुन बजी, फ्लड लाइट्स के नीचे पहली बार लड़कियों ने क्रिकेट खेला। इसे देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, उनके परिवारों और कश्मीर के लोगों के लिए भी ये एक नया अनुभव था। घाटी में इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों के मुताबिक यहां लड़कियों को भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिल रहे हैं और वो अपनी प्रतिभा का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। देश 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस गर्व के पल को कलाकार अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने भी सैंड एनिमेशन के जरिए भारत पहुंचे ब्रिक्स नेताओं का स्वागत किया है। इसमें पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के चित्र उकेरे गए हैं। इस एनिमेशन में दिल्ली के भारत मंडपम को भी दर्शाया गया है, यहीं शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। मानस के मुताबिक उन्हें इस रंगीन और अनूठी कलाकृति को बनाने में करीब 8 घंटे का समय लगा है। एक दौर था जब गांवों में सिर्फ पैसों से ही नहीं, अनाज या दूसरी चीजें देकर भी कुछ खास सामान खरीदा जा सकता था। अब वो दौर नहीं रहा, लेकिन उस संस्कृति को आज भी संजोए हुए है छत्तीसगढ़ का कोरदा गांव, जहां खरीदारी के लिए भारतीय रुपया नहीं बल्कि पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही नकदी का काम करते हैं। असल में यहां भादो माह की अमावस्या को पोला त्योहार मनाया जाता है और इस मौके पर लगता है ये अनूठा मेला। यहाँ सामानों की खरीदारी के लिए लोग पूड़ी, ठेठरी, खुरमी, भजिया, चौसेला और आयरसा जैसे देसी पकवान देकर कागज और मिट्टी से बने सामान खरीदते हैं और यही अनूठी परंपरा इस मेले को खास बनाती है। बैलपोला त्योहार की धूम महाराष्ट्र के नागपुर में भी दिखी। त्योहार के दूसरे दिन यहाँ भव्य मारवत जुलूस निकाला गया। मारवत जुलूस की ये परंपरा आजादी की लड़ाई के इतिहास से जुड़ती है। कहानी है कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ भोसले राज परिवार की एक महिला अंग्रेजों से मिली हुई थी और उन्हें जरूरी सूचनाएं पहुंचाती थी। आजादी के दीवानों को ये बात नागवार गुजरी और विरोध के तौर पर पहली बार उसका पुतला बनाकर शहर भर में घुमाया और फिर उसका दहन किया। इस पुतले को ही मारवत कहा गया और तब से आज तक ये परंपरा कायम है। करीब 145 साल पुरानी इस परंपरा के तहत मारवत जुलूस में काले और पीले दो पुतलों का जुलूस निकलता है। इसके अलावा छोटे छोटे पुतले भी राक्षस के रूप में निकाले जाते हैं, जिसे बड़ग्या कहा जाता है।

लिखी जो कि चर्चा में बनी हुई है। लेकिन अब बात हम करते हैं गणेश उत्सव की। बप्पा के आगमन में अब बस दो दिन बाकी है, लिहाजा गणेश उत्सव की तैयारी पूरे देश में जोर शोर से चल रही है और बप्पा की प्रतिमाएं बड़े धूमधाम से पंडालों में पहुंचने भी लगी है। देश भर से बप्पा के स्वागत और अभिनंदन की तस्वीरें सामने आ रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस जगह और शहर में बप्पा के स्वागत की शोभा यात्रा निकल रही है, वहां बप्पा के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है।

0: विघ्नहर्ता के स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डमरू और शंख ध्वनि से उनका आह्वान किया जा रहा है और गणपति भक्त भक्ति रस में मग्न होकर झूम रहे हैं। गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह और उमंग है। दो दिन बाद गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, इसीलिए शहर शहर उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। हर शहर और हर कस्बे में गणपति बाप्पा मोरिया का जयकारा गूंज रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और देश भर के शहर से लेकर गली मोहल्लों तक गणपति उत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। कहीं बाप्पा की विशाल प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हैं, तो कहीं पंडालों को अलग अलग थीम पर सजाया जा रहा है और कहीं रोशनी की सजावट से जगमगाहट है, जिसकी एक तस्वीर मुंबई से आई है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में रंगारी पदक चाल में बाप्पा का आगमन हो चुका है और इसकी थीम पर आर्टिस्ट अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाप्पा की प्रतिमा की ऊंचाई करीब 19 फीट है। वहीं इस बार इसकी थीम जेजुरी का खंडोबा पर आधारित है, जिसमें युद्ध की बहादुरी की कहानी है।
1: रंगारी बदक चौल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के दरबार में इस समय मैं मौजूद हूं और यहां के भी गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, फिलहाल ढाके गए हैं क्योंकि अभी प्रिपरेशन चालू है, मंडल का काम चालू है, जो डेकोरेशन है उसे करने का काम चालू है और धूल मिट्टी बप्पा पर ना लगे इसलिए अभी उन्हें तोपा गया है। लेकिन तस्वीरों में देखें जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो लगातार इस दरबार को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं और जो जानकारी है उसके हिसाब से फिर से एक पारंपरिक वेशभूषा के साथ यहाँ का चलचित्र, यहाँ का डेकोरेशन बनाया जाने वाला है। बप्पा कि जो हाइट है जानकारी के मुताबिक नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ 22 फीट है, जिसमें 3 फीट की ट्रॉली भी है।
2: मैं ये साल हमारे मंडल का 87वां साल है और ये साल हम 87 साल में जेजुरी का खंडोबा, ये महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है और यहाँ हम लोग ने जो खंडोबा भगवान है वो युद्ध के लिए, वो राक्षस के साथ युद्ध कर रहा है और उसी टाइम वो युद्ध होने के बाद वहाँ पे मानई जो देवी है उनके साथ वो मिलने को जाता है, विराजमान होता है वहाँ पे, ऐसा हम लोग ये शॉर्ट डिटेल है उसमें।
3: हमारी ये पौराणिक कथा है जो किसी को अभी तक याद नहीं है, मतलब कोई पूछे कि कौरव पांडव किस तरह से हार गए थे द्यूत क्रीड़ा में, वो हमने यहाँ पे दिखाया, द्रौपदी वस्त्रहरण दिखाया, मयसभा दिखाई है, हमने राम जी का अभिषेक दिखाया हुआ है। ये साल हम लोग खंडोबा जो महाराष्ट्र का कुलदैवत है उसको हम लोग यहाँ पे साकार रहे, तो हमारा ऐसा सब तरीके से हर साल नया चलते रहता है।
0: भगवान गणपति की ये सुंदर प्रतिमाएं राजस्थान के पाली में बनाई जा रही हैं। पाली में एक परिवार गोबर के गणपति की मूर्तियां बनाने के काम 8 महीने पहले ही शुरू कर देता है। इसकी वजह है कि सर्दी होने की वजह से मूर्तियों में क्रैक नहीं पड़ता। इन प्रतिमाओं को इको फ्रेंडली रंग से आकर्षक बनाया गया और अलग अलग तरह के गणपति के बैठने के सिंहासन और तकिए माला धारण कर इन्हें आकर्षक बनाया गया।
4: इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप घर पे ले जाओ इसको और घर पे ही विसर्जन करो इसको, और विसर्जन होने के बाद में इसी के पानी को मतलब आप अपने पेड़ पौधों में डाल दो, ये खाद का काम भी करते हैं। तो पीओपी अगर कहीं ना कहीं आप विसर्जन करोगे कहीं भी नदी नालों में या कहीं पे भी, तो वो मतलब जीव जंतु को भी नुकसान और पानी को भी दूषित करती है, मतलब पीओपी वाली पूर्ति, और उनके अंदर जो कलर्स होते हैं वो भी केमिकल वाले कलर्स होते हैं और हमारे ये सारे ऑर्गेनिक बोले तो वाटर बेस्ड कलर है, इस कलर से किसी को, जीव जंतु को किसी को भी नुकसान नहीं।
0: जहाँ एक तरफ गणपति बाप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं उनके लिए सोने चांदी के आभूषण भी तैयार किए जा रहे हैं। सूरत के वेसु इलाके में गणेशोत्सव को लेकर ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ गणेशोत्सव के आयोजकों और भक्तों की ओर से भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के आभूषण तैयार करवाने के ऑर्डर दिए गए हैं और इस शोरूम में तैयार किए गए चांदी के नाभूषण

0: आभूषणों को भी देखा जा सकता है। इन आभूषणों की खासियत ये है कि गणेश प्रतिमाओं के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखकर इन्हें विशेष तौर पर तैयार किया गया है। कई आभूषण वजन में भारी और आकार में बड़े हैं। भगवान गणेश के लिए चांदी की पादुकाएं, कंगन, हाथों के आभूषण और मुकुट बनवाने का चलन भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गणेश उत्सव के दौरान इन्हीं आभूषणों से भगवान गणेश की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाएगा।
1: ये टाइम पे लोगों ने हमें ऑर्डर दिया था, जिसमें हमने यहाँ के जो सरकार के गणपति जी जो है उनके लिए हमने हाथ बनाया था चांदी का, जो एक भगवान आशीर्वाद मुद्रा में है, वो ऐसा हमारे पास में हाथ बनवाया गया था। और साथ साथ में विधेश्वराय जो मंडल है गणपति जी मंडल का, वहां से हमें पूरा भगवान जी का पूरा श्रृंगार का ऑर्डर मिला था, जिसमें भगवान जी के आभूषण हर एक आभूषण हमें बनाने थे, जिसमें माथे का मुकुट से लेके हार से लेके हाथ के कड़े से लेके पैर के चरण से लेके और उसके साथ साथ सूंड कान वो सब कुछ हमको बनाना था। बहुत अच्छी तरह से हमने ये बनाया।
0: मध्य प्रदेश में इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। 13 सितंबर यानी रविवार को हरितालिका तीज की रात से ही मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। वहीं 14 सितंबर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव में भगवान गणेश का सुंदर आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा।
2: गणेश चतुर्थी का जो ये पर्व होता है, इसमें 10 दिन के लिए गणेश जी विराजित होते हैं, जो इस बार तिथियों के ऊपर नीचे होने के कारण इस बार 12 दिवसीय की बनाई जाएगी। तो बप्पा का खूब आशीर्वाद सब पर बना रहे हुई और गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करें और सब पर आशीर्वाद बनाए रखें।
3: किस तरीके से मनाया जाता है
2: ये? बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और गणेश जी अपने खजराना गणेश जी मंदिर में रोज विशेष श्रृंगार, फूल बंगला और स्वर्ण आभूषणों से और मंदिर में बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेके और गणेश जी की पूरा ध्यान रखा जाता है और लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करते हैं और मनोकामना जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होती है।
0: बताया जा रहा है कि पहले दिन भगवान गणेश को 1.25 लाख मोदकों का महाभोग लगाया जाएगा और हर शाम आरती के दौरान 11,000 लड्डुओं का भोग लगाए जाने की भी तैयारी है।
4: लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और जालियों पर यहाँ बंधन बांधते हैं, अपने हाथों में भी कलावा बांधते हैं और मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। गणेश महोत्सव इस बार 14 सितंबर से धूमधाम से मनाया जाएगा और मंदिर रात को ही 13 सितंबर की रात्रि से ही पूरे दिन मंदिर खुला रहेगा। उस दिन हरतालिका तीज है और रात को भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा और इस बार भगवान को विशेष रूप से हीरे जड़ित नेत्र भी अर्पण किए जाएंगे, जो श्रद्धालु द्वारा यहां पर भेंट किए गए हैं। भगवान को 7 करोड़ रुपए के स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण मुकुट धारण कराए जाएंगे। रोजाना अलग अलग तरह से आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा।
0: खजराना गणेश मंदिर में सिर्फ गणेशोत्सव के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे साल श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिलती है। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त यहाँ भगवान गणेश के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना लेकर पहुँचते हैं।
5: मैं यहाँ आते आते लगभग 20-22 साल हो गए हैं और यहाँ आने से मुझे लगता है कि जीवन की हर बाधाएं हट जाती है और मैं तो बहुत विश्वास रखती हूँ गणेश जी पे। मैं जब भी मेरे जीवन में कोई भी संकट आता है या कोई खुशी आती है तो मैं यहीं आती हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है।
0: बाप्पा के भक्तों का इंतजार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि 2 दिन बाद पंडालों, मंदिरों और घरों में बाप्पा अलग अलग स्वरूपों में विराजमान होंगे। राजस्थान के पाली से भारत भूषण जोशी, इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
6: फिल्म हनुमान अंश छत्तीसगढ़ में हुई टैक्स फ्री, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार।
0: दिल्ली के भारत मंडपम में आज पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ ये सफर आज 21 देशों का बड़ा परिवार बन चुका है। पीएम मोदी ने आंकड़ों में ब्रिक्स की अहमियत समझाई। उन्होंने कहा कि आज ब्रिक्स के देश दुनिया के 40% GDP और 25% से ज्यादा ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी इस मंच पर अपने विचार रखे और भारत का समर्थन किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सप्लाई चेन के रिस्क कम करने के लिए नेशनल करेंसी में ट्रेड करने की वकालत की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लोगों के लिए यादगार बन गया, खासकर नई पीढ़ी के लिए जिन्होंने कश्मीर के उस सुनहरे दौर को नहीं देखा जब बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में कश्मीर में फिल्माई जाती थीं। इस फेस्टिवल में श्रीनगर की मशहूर डल झील को फ्लोटिंग सिनेमा थिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया और पानी के बीचों बीच बड़े स्क्रीन पर बॉलीवुड की वो फिल्में दिखाई गईं जिन्हें कश्मीर में फिल्माया गया था। इनमें जंगली, कभी कभी और शमी कपूर, शर्मिला टैगोर की कश्मीर की कली फिल्में रही। नीम करौली बाबा पर बनी चर्चित फिल्म हनुमान अंश को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। इससे पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ विशेष तौर पर थिएटर जाकर फिल्म देखी, जिसके बाद उन्होंने इसे टैक्स फ्री करने का आधिकारिक ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का असर टिकट की कीमतों पर पड़ेगा। राज्य में फिल्म के टिकट सस्ते होंगे। देश में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिख रहा है। आज दोपहर में दिल्ली में झमाझम बारिश हुई। राजधानी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली। इस बारिश ने उमस से लोगों को राहत दी है। हालांकि मौसम विभाग ने कल यानी 12 सितंबर को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में भाद्रवी महामेला से पहले कई परंपराएं निभाई जाती हैं। नाडियाड के भक्त 3 दिन तक अंबाजी मंदिर में नवचंडी यज्ञ, 56 भोग, अन्नकूट और गरबा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी सिलसिले में अंबाजी मंदिर के चाचा चौक में दहेगाम से आए मंडल के भाइयों ने 4 अलग अलग 501 दीपक की आरती की, जिसमें और लोग भी शामिल हुए। अलग अलग हुई इन आरतियों में 2 शेषनाग की आरती और 1 मोर के रेप्लिका के साथ आरती की गई। भक्तों ने यहां गरबा भी खेला। भाद्रवी महामेला 20 से 26 सितंबर तक आयोजित होगा।
6: और अब बात विघ्नहर्ता के प्रिय भोग मोदक की। गणपति बप्पा को मोदक बेहद प्रिय है। कभी नारियल, गुड़ और शुद्ध घी से तैयार होने वाला पारंपरिक मोदक बप्पा के भोग की पहचान हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ गणेश के प्रिय भोग मोदक का रंग रूप ही नहीं बल्कि उसका स्वाद भी बदल रहा है। यानी कि अब मोदक के नए नए फ्लेवर परोसे जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
0: यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वापनोति, यानी जो भक्त गणेश जी को 1000 मोदक का भोग लगाता है, गणेश जी उसे मनचाहा फल प्रदान करते हैं। यानी मोदक के प्रति गणेश जी का ये प्रेम यूं ही नहीं है। गणेश जी को शास्त्रों और पुराणों में मंगलकारी माना गया है। मोदक गणेश जी के इसी व्यक्तित्व को दर्शाता है। मोदक का अर्थ होता है आनंद देने वाला। गणेश जी मोदक खाकर आनंदित होते हैं और भक्तों को आनंदित भी करते हैं। यही वजह है कि गणेशोत्सव के मौके पर उनकी प्रतिमाओं के साथ ही तरह तरह के मोदक भी तैयार किए जा रहे हैं। देश भर में गणेशोत्सव की धूम के साथ साथ उनकी पसंदीदा मिठाई मोदक बाजार की रंगत बढ़ा रही है। मुंबई के कड़ी रोड में लाडू सम्राट नाम से मशहूर ये मोदक की दुकान है। देखिए इस दुकान में अलग अलग तरह के मोदक बनकर तैयार हैं, जो बेहद ट्रेंडिंग और डिमांडिंग है। इन मोदक को खरीदने के लिए यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है।
7: एक बहुत ही ज्यादा सालों पुराना मिठाई का स्वादिष्ट ऐसा दुकान है जो लाडू सम्राट के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि श्री गणेश जी को जो पसंद है मोदक, उनसे ही संबंधित तमाम तरह तरह के स्वादिष्ट ट्रेंडिंग डिमांडिंग मोदक यहाँ बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। और मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तस्वीरें देखें। ये पूरा का पूरा शॉप जो है वो मोदकों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के मोदक, छोटे बड़े मध्यम, और सबसे ज्यादा खूबसूरत ये बड़ा सा मोदक थोड़ा सा देखें, जो कि इस शॉप की शान भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। साथ ही साथ ये भी प्रतीक कर रहा है कि भाई अब फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है मुंबई महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव 14 तारीख से हर कोई मनाने वाला है। थोड़ा सा देखें, तमाम अलग अलग तरीके के मोदक यहाँ पर सजाए गए हैं और रखे भी गए हैं, और एक तमाम संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपने मन का जो मोदक है वो लेते हैं। यहाँ देखिए सजाया गया है इस तरफ भी बहुत ही सुंदर तरीके से। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, किस मोदक की सबसे ज्यादा डिमांड है। गणेश जी को मोदक बहुत ज्यादा पसंद है और यही वजह कि आप भी जो है प्रसाद के रूप में सबको दे रहे हैं। आपको क्या पता है गणेश जी और मोदक का, आपस का प्रेम कुछ अगर पता हो तो?
8: पता है, मतलब उनका सबसे फेवरेट है। हमारे आरती, बचपन से आरती गाई जा रहे हैं कि उनको कितना पसंद है उसका, एंड इस वजह से और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम वो प्रसाद बनाते हैं। बीट, उखड़ी मोदक, मावा मोदक, कड़क बूंदी मोदक, सब तरीके के मोदक बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
7: अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा मोदक मांगा जा रहा है यहाँ पर आकर, सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या है?
8: सबसे ज्यादा ट्रेंड में तो मावे के मोदक से है, उसके अलावा काजू के मोदक जो है, ड्राई फ्रूट मोदक वगैरह।
0: लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले उकडीचे मोदक की भारी डिमांड है, जो महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाता है।
7: मराठियों के घर में हमेशा ही बनाया जाता है, जो चावल का बनता है, व्हाइट व्हाइट, क्या नाम?
8: उकड़ी मोदक, वो भी हमारा स्पेशलिटी है। हम वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं उकड़ी के मोदक। सो गणपति के जो फर्स्ट डे गणपति जब भी विराजमान होते हैं, तभी सबसे ज़्यादा उनका उस आइटम का भोग लगता है। सो पहले दिन ही हमारा रात को 2 बजे से लेके वो पूरा फर्स्ट डे हम उकड़ी मोदक ही बनाते बैठते हैं।
7: चलिए थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि कौन कौन सा मोदक है यहाँ पर है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद कलर का मोदक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितने ज़्यादा बप्पा खूबसूरत लगते हैं, उतने ही ज़्यादा देखिए मोदक भी कितने शानदार प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा है, थोड़ा सा बताएं?
8: ये वाला खोबरे का, ये खोबरा मावा है, ये रेगुलर मावा मोदक है।
7: खोबरे मावे के अंदर ये पूरा खोबरे है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है,
8: खोबरा और मावा रहता है। यस।
7: और ये पीला वाला,
8: ये मावा का है, ये अपना रेगुलर मावे का है, एंड देन ये केसर वाले मावे का है।
7: अच्छा,
8: केसर का। और ये कंदी मावा है, ये हमारा स्पेशल, हम सातारा से, सो हमारे सातारा एरिया का सबसे स्पेशल मावा है।
0: मुंबई में गणपति का पसंदीदा मोदक दुकानों में तो मिल ही रहा है, इसके अलावा लोग घरों में भी बड़े ही भक्तिभाव से मोदक बना रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग उकड़ी का मोदक गणेशोत्सव में प्रसाद के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई के लालबाग स्थित काला चौक के इलाके में, जहाँ हर एक घर में उकड़ी का मोदक बनाया जा रहा है।
7: खास बात यह है कि बप्पा को जो सबसे ज्यादा प्रिय मिठाई है, उसका नाम है मोदक। और मोदक में भी महाराष्ट्र और मुंबई की जो संस्कृति दिखाती है, वो दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, ऐसे ही एक बड़े ही सुंदर से घर में यहाँ पर हम मौजूद हैं, और सामने मराठी मानस यानी कि मराठी संस्कृति दर्शाती एक ऐसी लीडिंग है, जो इस समय मोदक का निर्माण कर रही है, और स्पेशली जो मराठियों को बहुत पसंद है, साथ ही साथ इसका वाकई में टेस्ट बहुत ज़्यादा गजब का होता है। और यहाँ पर जितने भी घर होते हैं, सभी लोग अपने घरों में मोदक इस तरह का बनाते हैं, जिन्हें प्रसाद के रूप में बप्पा को भी चढ़ाया जाता है, साथ ही साथ दूसरे भी जो त्यौहार हैं उसमें भी चढ़ाया जाता है, रिश्तेदारों को भी दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ, यहाँ पर बना करके बाहर भी चीज़ें भेजी जाती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बकायदा आप मोदक पे लगे हुए हैं। सबसे पहले बताइए कि इस मोदक का नाम क्या है?
9: ये उकड़ी के मोदक है। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ,
7: नॉर्मली मराठी और जो मानुस हैं यहाँ पर और गणेश उत्सव में उकड़ी के मोदक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और आसान है घर में बनाना?
9: मतलब आसान तो मतलब इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल ही है।
7: अच्छा, तो कितनी देर से बना रहे हो, कितने मोदक अभी तक आपने बना लिए?
9: दो घंटे से मैं तो लगी हुई हूँ यहाँ पे इसमें। अच्छा, मोदक बनने में। और मैंने अभी 20-21 बनाए हैं।
0: महाराष्ट्र में मोदक बनाने की ये परंपरा सालों से चलती आ रही है। न केवल गणेशोत्सव बल्कि महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले त्योहारों में उकड़ी का मोदक का बड़ा महत्व है।
7: ये है उकड़ी का मोदक। अच्छा, ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उकड़ी से क्या कहते हैं, उकड़ी का मतलब क्या है?
9: मतलब वो चावल का आटा रहता है, ये जो ये व्हाइट कलर का है, चावल का आटा है, और उसके अंदर मतलब ये गुड़ और खोबरा जो नारियल रहता वो पीसा हुआ रहता है, उसमें मिक्स करके गुड़ और नारियल वो मिक्स करके
7: वगैरह भी,
9: और ये काजू बादाम और ऊपर से केसर भी डालते हैं।
7: अच्छा, मतलब ये पूरा मीठा मिश्रण
9: हो जाता है।
0: मुंबई ही नहीं, जयपुर में भी गणपति के प्रिय मोदक को तैयार किया जा रहा है। यहाँ एक ही रेंज में इतने अलग अलग फ्लेवर हैं कि मोदक की हर वैरायटी अलग स्वाद दे रही है। यानी एक ही बॉक्स में देसी स्वाद से लेकर नई पीढ़ी के फेवरेट फ्लेवर तक हर तरह का विकल्प मौजूद है।
10: अभी मैं मौजूद हूँ जयपुर में, जहाँ जयपुर की ये बहुत ही खूबसूरत मोदकों की रेंज हमें नजर आ रही है, जहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स में ये मोदक है। क्योंकि भगवान गणेश के गणेश चतुर्थी की जब हम बात करते हैं, तब मोदक जो कि उनके सबसे प्रिय है, उनकी बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ साधारण मोदक नहीं, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स यहाँ नजर आ रहे हैं, और एक केक भी नजर आ रहा है। 11 फ्लेवर में ये मोदक है और करीब 16 फ्लेवर्स में लड्डू यहाँ पे मौजूद हैं, तो बहुत बड़ी वैरायटी है। हम जानेंगे इन सब फ्लेवर्स और ये जो लड्डू की इनोवेशन है उनके पीछे के इनोवेटर से, कि कैसे ये जो रेंज है ये लेके आई है, कैसे ये फ्लेवर्स इन्फ्यूज किए गए हैं। अंजलि जी, आप मुझे बताइए कि आप हर त्योहार पे कुछ नया लेके आती है, क्या थॉट था और कौन से फ्लेवर्स हैं?
11: के जैसे हम जानते हैं गणेश चतुर्थी बिल्कुल पास में है और वो हमारे विघ्न हरता है, हर काम सबसे पहले उनसे ही शुरू होता है अपने हिंदू संस्कृति में, तो बस उनको तो राजी रखना बहुत जरूरी है। उनका फेवरेट है मोदक, जिसको एक पॉजिटिविटी की पोटली भी बोला जाता है, खजाने की पोटली बोला जाता है। तो हमने इस बार 12 तरह के फ्लेवर्स यहाँ पे मोदक के लॉन्च करें, साथ ही में उनके सेकेंड फेवरेट लड्डू, उसमें हमने 16 फ्लेवर्स लॉन्च करें जो कि आपके सामने, जिसमें हर एज ग्रुप को हर टेस्ट को ध्यान में रखते हुए फ्लेवर्स को क्यूरेट करा गया है। आप देखेंगे तो इसमें काजू कतली के फ्लेवर्स ड्राई फ्रूट से रिलेटेड हो गए, कुछ जेंजी रिलेटेड हो गए, जैसे लोटस बिस्कॉफ हो गया, कैरमल हो गया, न्यूटेला हो गया, कुछ थोड़ा सा फंकी फ्लेवर्स हो गए, ठंडाई केसर, रोज गुलकंद, और बाकी हमारा जो बेसिक लड्डू वाला फ्लेवर होता है मोतीचूर कानपुरी, वो हमने क्यूरेट किया है, पेड़े के फ्लेवर्स में किए हैं। तो इस तरह की आपको तरह तरह की रेंज देखने को मिलेगी जो हर एज ग्रुप और हर टेस्ट वाले पर्सन को सुटेबल हो।
12: इन फ्लेवर्स की खास बात है कि ये पारंपरिक मिठाइयों को नई पीढ़ी के स्वाद से जोड़ते हैं, यानी इस गणेश चतुर्थी में परंपरा वही है, बस स्वाद में थोड़ा सा नया ट्विस्ट है।
11: फिर से हम बोलूंगी त्योहार हमेशा एक ये कोशिश करता है कि हर त्योहार पे क्या नया ला सके। जैसे कि आपने बताया हमारे कुछ एक फिक्स ऑडियंस हो गए हैं जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, साथ ही साथ हम सोचते हैं कि कैसे जेंजीज अटैच रह सके हमारी वैल्यूज से, प्लस हम कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशंस को नहीं भूलना चाहते, उनको साथ में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते क्योंकि उन्हीं से सारी शुरुआत है। तो उसके ध्यान रखते हुए कुछ फ्लेवर्स हमने क्यूरेट करे हैं लड्डू में भी, जैसे बेसन मोतीचूर, बीकानेरी, बनारसी दूध लड्डू, बेसन लड्डू, मूंग लड्डू, तो वो सारी रेंज है।
12: बापा को पूरे गणेशोत्सव के दौरान हर दिन मोदक का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेशोत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खिंचे चले आते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
6: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार 11 सितंबर को सेंसेक्स 121 अंक लुढ़ाकर 74,782 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 80 अंक फिसला, ये गिरकर 23,398 पर आ गया। राष्ट्रीय राजधानी में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 2700 रूपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,55,900 रूपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 10,000 रूपए नीचे आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,34,600 रूपए पर आ गई है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 5 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 57 पैसे हो गई।
6: क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पहली बार रियलिटी शो में आएंगे नजर। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: क्रिकेट की पिच पर अपनी बेबाक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले वीरेंद्र सहवाग अब रियलिटी शो की दुनिया में उतरने जा रहे हैं। सहवाग राइज एंड फॉल सीजन 2 के होस्ट बनकर अपना स्ट्रीमिंग डेब्यू करेंगे। मेकर्स ने नए सीजन की पहली झलक दिखाई है, जिसमें सहवाग का नया अंदाज नजर आ रहा है। पावर, पैसा और बदलते गठबंधनों के इस गेम में सहवाग अपनी बेबाक एनर्जी लेकर आएंगे। शो में 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स होंगे जो रूलर्स और वर्कर्स के दो ग्रुप में बटेंगे। अब देखना होगा कि सहवाग इस पावर गेम को कैसे होस्ट करते हैं। फिल्म हनुमान अंश की कामयाबी में सिनेपोलिस की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी भी अहम साबित हुई है। महज 300 स्क्रीन से शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 90 लाख रुपए कमाए, लेकिन दर्शकों की तारीफ और बढ़ती डिमांड के साथ फिल्म की पहुंच लगातार बढ़ती गई। धीरे धीरे शोज बढ़ाए गए और जिन मार्केट्स में डिमांड दिखी वहां फिल्म को दोबारा ज्यादा स्क्रीन मिली। देखते देखते फिल्म 2500 से ज्यादा स्क्रीन तक पहुंच गई। धीमी शुरुआत के बावजूद शोज जारी रखने का फैसला गेम चेंजर साबित हुआ और अब हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ताकत बनकर उभरी है। एक्टर विनीत कुमार सिंह के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर है। एक्टर अब अक्षय कुमार के साथ साइंस फिक्शन एलियन सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर फिल्म समुक में नजर आएंगे। सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बन रहे इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि कनिष्क वर्मा इसका निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म में विनीत एक अहम भूमिका निभाएंगे और कहानी में अक्षय कुमार के साथ उनका महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। छावा, जाट, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव और निशांची जैसे फिल्मों में काम कर चुके विनीत के लिए समुक उनके करियर का एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा चुकी है। फिल्म ने पहले हफ्ते में शानदार कमाई करते हुए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इसी के साथ ये 2026 में पहले हफ्ते की कमाई के मामले में हिंदी फिल्मों में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इससे आगे धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 है। खास बात यह है कि फिल्म को किसी बड़े ए लिस्ट स्टार के नाम पर मिलने वाली ओपनिंग का फायदा नहीं मिला, फिर भी दर्शकों ने इसे जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया। अब दूसरे वीकेंड में हैवान और हनुमान अंश से मुकाबला फिल्म के लिए बड़ी चुनौती होगी। डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की फिल्म घमासान आपको हिंदी पट्टी की इस दुनिया में ले जाती है, जहां गैंगस्टर, नेता, जातिगत समीकरण, पुलिस और सत्ता का खेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अरशद वारसी यहां खतरनाक गैंगस्टर महाराज के किरदार में हैं, जबकि प्रतीक गांधी पुलिस अधिकारी आदित्य की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म हिंसा के पीछे छिपी सामाजिक और राजनीतिक वजहों को दिखाने की कोशिश करती है। जंगल, गांव और धूल भरे इलाके कहानी को खुरदरा और जमीन से जुड़ा एहसास देते हैं। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें कहने को बहुत कुछ है, मगर कई मुद्दों को गहराई से सामने आने का पूरा मौका नहीं मिल पाता।
6: न्यूज़पत में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: जयंती पर कीजिए मुंबई के लालबाग के राजा के पहले दर्शन, भव्य रूप में विराजे बाप्पा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होने वाला है बापा का इंतजार, 2 दिन बाद देश भर में पधारेंगे भगवान गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बापा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारबत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग। 145 साल पुरानी है परंपरा। न्यूज़पत में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: कभी देखी है आपने 6 टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर इसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और इसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। स्केट्स पर इस लड़के का कमाल देखिए, ऐसा बैलेंस कि देखने वालों की नजरें थम जाए। लड़की सिर्फ खड़े होकर स्केटिंग नहीं कर रही बल्कि कभी बैठकर, कभी शरीर को एक तरफ झुकाकर, तो कभी हवा में छलांग लगाकर अपना शानदार टैलेंट दिखा रही है। हर मूवमेंट में उसका बैलेंस और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हैं। लड़की का यह अनोखा स्केटिंग अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक बेजुबान जानवर की समझदारी का ये वीडियो आपका दिल जीत लेगा। देखिए कैसे ये डॉग पानी के बहाव के सामने खड़ा है और अपनी सूझबूझ से पानी को रास्ता दे रहा है। डॉग लगातार कोशिश करके पानी के रास्ते को मोड़ रहा है। उसके इस अंदाज को देखकर लगता है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी समझ और संवेदनशीलता होती है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस समझदार डॉग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन छोटे छोटे रॉक स्टार का अंदाज देखिए। नन्हे सिंगर ने हाथ में डंडे को ही माइक बना लिया है, तो उस्ताद के हाथ में है खिलौने वाला गिटार। दोनों मिलकर ऐसे जुगलबंदी कर रहे हैं कि देखने वाले भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएं। कभी गाते हैं तो कभी नाचते हुए अपने सुरों का जलवा दिखाते हैं। दोनों बच्चों की मासूमियत और उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। इन नन्हे कलाकारों का ये क्यूट अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

0: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कोनफुंग गांव से सामने आया ये नन्हा स्टार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है, उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल्स दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मासूमियत इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उज्जैन में चर्चा का केंद्र बने खड़े हनुमान जी की प्रतिमा की। मध्य प्रदेश में होने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में विकास और सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसी के तहत सती गेट के पास प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर का भवन हटा दिया गया है। हालांकि मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा को तमाम कोशिशों के बाद भी प्रशासन नहीं हटा पाया। हनुमान जी की प्रतिमा के अपनी जगह से ना हटने को लेकर लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और इसे इसी जगह पर रहने देने की मांग कर रहे हैं। उज्जैन के इस मंदिर की चर्चा अब देश भर में फैल गई है और कई राज्यों से भक्त खड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। फिलहाल भक्तों की आस्था को देखते हुए प्रतिमा को कैनेपी और टेंट लगाकर सुरक्षित रखा गया है। उज्जैन में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने श्रद्धालुओं से बात की और उनकी राय जानी।
2: यही सुनकर आए थे कि हनुमान जी के जो मंदिर को पूरा तोड़ा जा रहा है, बट वो पूरी कोशिश करने के बाद उनकी मूर्ति तोड़ नहीं पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं यहाँ से।
3: आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जो बस चल रहा है उसको बाद ही आप लोग
2: जी आप लोग हम नहीं हम महाकाल के दर्शन करने आए थे तो हम यहाँ पर भी आए हैं।
3: मतलब पहले ही प्लान में नहीं था, सुनने के बाद फिर आप लोग
2: जी
4: तराना से तराना के पास खारपा
3: हर बार आते
4: हैं,
3: अभी
4: सुन करके
3: आए हो?
4: नहीं, जैसे कि दर्शन तो बहुत बार किए पर ऐसा चमत्कार पहली बार देख रहे हैं, तो इसलिए मिलने के लिए।
3: लोकल ही आप?
2: नहीं नहीं लोकल नहीं हूँ।
3: बाहर
2: से आए, सिर्फ घूमने आए हैं, बस यहाँ से ही निकल रहे थे, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतनी लाइन होगी।
3: आपने इस मंदिर के बारे में कहीं कुछ सुना या पढ़ा?
2: हाँ, न्यूज में पढ़ा पापा ने, तो उन्होंने बोला कि चलते हैं
3: जी। आप बताए कहाँ से आए आप?
5: हम महाराष्ट्र से आए हैं।
3: क्या देखा,
5: यही सुना कि तोड़ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको यहीं रहना चाहिए।
6: पिछले कई दिनों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हनुमान जी हिलने का नाम नहीं ले रहे। अब पास में ही यहाँ पे हमारा होटल है, तो हमने कहा सबसे पहले हम यहाँ पे यात्रा हनुमान जी के दर्शन से करेंगे।
3: और दिल्ली में आप क्या करते हैं सर?
6: मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ।
3: और आप यहाँ जब आए हैं तो आपने क्या सुना अभी तक सोशल मीडिया में, क्या देखा
6: सोशल मीडिया में?
3: आपको लगा कि यहाँ भी जाना चाहिए?
6: यही देखा कि चारों तरफ में बहुत कुछ तोड़ दिया, हनुमान जी को भी स्थानांतरित करने की कोशिश हो रही है, बट हनुमान जी की इच्छा नहीं है हिलने की, तो हमने कहा अब ये चमत्कार तो देखना चाहिए।
3: मैम आप बताएं आपने क्या सुना और क्या आप यहाँ दर्शन करने पहुंचे और आप कहाँ से हैं?
2: हम लोग भी दिल्ली से ही साथ में ही हम लोग आए हैं, तो यही देखा हमने रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे इतना सब कुछ आ रहा है, तो हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं हम लोग स्पेशली।
3: मैम लेकिन जी आप काफी एजुकेटेड फैमिली से लग रहे, तो आपको लग रहा है कि जो बातें सोशल मीडिया पे आ रही है वो सच है, ऐसा कुछ लग रहा है?
6: एक तो वही देखने आ रहे हैं, और बचपन से हमने इतने कहानियां सुने हैं कि यहाँ से हनुमान जी नहीं हिलने चाहे, यहाँ से शिव जी नहीं हिलना चाहे, पहली बार हमारे जीवन काल में ये देखने आ रहा है कि सच में कैसा दिखता है ऐसा।
3: तो क्या लग रहा है आपको, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए मंदिर यहाँ पे?
6: ये इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, धर्म एक तरफ है, व्यवस्था एक तरफ है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, जरूरी है, पर जब तक चमत्कार दे रहे हैं बाबा तब तक हम देखेंगे।
7: मैं तो पहले उनका दर्शन करने आई थी भोले बाबा का, और इनका इनके बारे में जब सुनी बजरंग बली के बारे में, तो इतना उत्साहित हो गई मैं इनसे मिलने के लिए कि कल रात को ही मैं चाह रही थी उनसे मतलब मिलूं, उनकी दर्शन करूं, लेकिन उनका मर्जी था आज मिलूं, इसलिए मैं आज आई, इनका दर्शन की, और मैं बजरंग बली के परम भक्त हूँ। जय श्री राम।
8: पहले मैंने कभी बहुत विदेशी रूट से मैं गया आया हूँ, पर उज्जैन में कभी नहीं आया, पर दो तीन दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे जो देखे कि हनुमान जी को रस्सी से जैसे भी पोकलेन सब जो फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं इनकी अधिम शक्ति है जो हम लोग को अधिक पहले से हम लोग को विश्वास रखते हैं। हम लोग बजरंग दल का कार्यकर्ता, हम लोग हर मंगलवार शनिवार को अपने गाँव में हनुमान मंदिर में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाते हैं, और हम लोग को बहुत प्रति मानते हैं। वही चीज़ देख के मैं यही सुन के मैं आया हूँ आज पहली बार यहाँ।
1: और अब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। गणेश उत्सव से ठीक पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में फैली गंदगी को लेकर सख्ती दिखाई है। मुंबई में चारों तरफ कचरे और गंदगी की स्थिति को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरा शहर कचरे और गंदगी से भरा नजर आ रहा है और बीएमसी की व्यवस्था ठप नजर आ रही है। कोर्ट ने चेताया है कि अगर वार्ड अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि कचरे की समस्या को नजरअंदाज करके मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय शहर कैसे कहा जा सकता है। कोर्ट ने बीएमसी को आखिरी मौका देते हुए सभी वार्डों में सड़कों की सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों की सूची और सफाई अभियान की एसओपी पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी सड़क पर कचरा या फिर गंदगी मिलती है और उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार पाए जाते हैं तो ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों पर झूठे आश्वासन देने और जमीनी स्तर पर काम नहीं करने पर भारी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद से लोगों में जागरूकता बढ़ाने का सुझाव भी दिया। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई के लिए सिंगापुर के सख्त नियमों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सिंगापुर में दोषी व्यक्ति पर $2,000 या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही पब्लिक प्लेस की सफाई करने का आदेश भी दिया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर नाखुशी जताई थी कि लोग भारत में तो कहीं भी कचरा फेंकते हैं लेकिन विदेश में नियमों का पालन करते हुए सिर्फ तय जगहों पर ही कचरा फेंकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरा माहौल चाहता है तो समाज के प्रति उसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। और अब आपको मिलवाते हैं उन रियल हीरो से जो कि देश की रक्षा के लिए खुद बंदूकें तो नहीं उठाते हैं लेकिन देश के उन सैनिकों की राह आसान बनाते हैं जो एलएसी जैसी दुर्गम सीमा पर 24 घंटे देश की निगहबानी कर रहे हैं। बात हो रही है बीआरओ के उन मजदूरों की जो कि लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल हालात में सड़क बनाने के काम में मुस्तैदी से जुटे हैं।
0: करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, सांसों में घुलती ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़। ये तस्वीरें लद्दाख में खारदुंगला टॉप के नजदीक के इलाके की हैं। ये वो जगह है जहां आमतौर पर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां मौजूद ये लोग सड़क बनाने का बेहद चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं और हौसले की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार काम में जुटे ये वो गुमनाम चेहरे हैं जो खुद भले ही हथियार उठाने वाले सैनिक नहीं हैं, लेकिन देश की सेना के जवानों की राह आसान बनाने वाले ये असली हीरो हैं। इनकी मेहनत देश की सबसे ऊंची सरहदों तक पहुंच सहज बना रही है।
9: अब ये जो वर्क फोर्स आप देख रहे हैं इस ऑल्टीट्यूड पे 50% ऑक्सीजन पे ये लोग ये ढलाई और इतने मेहनत का जो काम करते हैं, ज्यादातर ये वर्क फोर्स जो है झारखंड से है और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो भी खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट्स है वहां पे तैनात रहते हैं। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, पूरा दिन तो काम है लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई यानी कि कोई लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया तो अचानक इनको जो है डिप्लॉय होना पड़ता है।
0: ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस सरहद तक पहुंचने वाली लाइफलाइन है जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना के जवान देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने का अभियान शुरू किया। तब से यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं। आवाजाही सुगम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको अंजाम देने में जुटे हैं ऐसे सैकड़ों मजदूर जो मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहाँ पर अपने काम में रम चुके हैं।
10: हम काम कर रहे हैं 2022।
9: तो ये बताइए जब पहले आए तो दिक्कत कितनी हुई क्योंकि यहाँ सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
10: वो थोड़ा बहुत होता है फर्स्ट वर्ष में, इसके बाद आदत हो जाता है।
9: आदत हो जाता है। तो दिन में जब आप ये काम करते हैं ये पूरे रास्ते में आपके लोग जो है फैले हुए हैं, कितना मुश्किल है काम?
10: ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मतलब इधर उधर है, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा ही काम होता है, जब ज्यादा काम नहीं होता है।
9: कितने सालों से यहाँ है?
10: 3 महीने से आगे।
9: अच्छा, 3 महीने से। तो क्या ज्यादा दिक्कत परेशानियाँ इस जगह पे होती हैं? क्या क्या आपको रोज जो है जूझना पड़ता है?
10: दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीजन का ही दिक्कत है, बाकी
9: ऑक्सीजन का दिक्कत है। वो कितना मेहनत का काम।
0: हकीकत तो यही है कि अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर ये लोग देश के सबसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें 6 महीने में एक बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये लोग बिना थके बिना रुके अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ चुनौती सिर्फ वज्र के समान कठोर पहाड़ नहीं है बल्कि मौसम का मिजाज भी है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
9: जैसे ही अक्टूबर आएगा तो यहाँ बर्फ होगी, ठंड जो है माइनस में चले जाएगा 15-20 तक, और फिर इन हाइट्स पे सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये असली लोग हैं जो कि पूरे साल यहाँ काम करते हैं। और जो बॉर्डर रोड्स आज हम देख रहे हैं, जिस शक्ल में कितने अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं, पूरा LAC LOC तक कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तो यही लोग हैं जो इन दुर्गम हाइट्स पे इन मुश्किल इलाकों में काम करते हैं, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनके पीछे के जो आप कहेंगे असली अनसंग हीरोज यही मजदूर हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
0: इन इलाकों में कभी बर्फीला तूफान आता है तो कभी लैंडस्लाइड होता है और कभी अचानक सैलाब भी आ जाता है, लेकिन इनका काम रुकता नहीं है। जहां मशीनें भी लड़खड़ा जाती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से पत्थरों को तोड़कर रास्ते तैयार करते हैं ताकि इन दुर्गम इलाकों में सरहदों की हिफाजत करने में जुटे सेना के जवानों तक रसद और जरूरी साजो सामान पहुंचाया जा सके। हर मुश्किल के बावजूद इनका काम जारी रहता है, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। लद्दाख के खारदुंगला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: एशिया कप में तीसरी बार खिताब जीतने से बस एक कदम दूर भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
2: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मुक्की में आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। फाइनल 13 सितंबर को होगा, इसमें भारतीय टीम दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगी। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और साउथ कोरिया के बीच है। भारत इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है और अब उसके पास लगातार तीसरी बार खिताब जीतने का मौका है। भारतीय क्यू स्पोर्ट्स दिग्गज गीत सेठी 65 साल की उम्र में बिलियर्ड्स में वापसी करने जा रहे हैं। वे अगले महीने 19 से 22 अक्टूबर तक इंग्लैंड के ग्रेट वायरली में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खेलेंगे। ये 6 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनकी वापसी होगी। अहमदाबाद में रहने वाले गीत सेठी ने 1974 में पहली बार क्यू थामा था। वे 2018 की चैंपियनशिप के नॉकआउट स्टेज तक भी पहुंचे थे। दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब जीतने के बाद ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन और उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी के शानदार बॉन्डिंग का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ईशान ने 15 साल के वैभव को फ्यूचर कैप्टन बताते हुए उनके नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। ईशान ने मजाक के अंदाज में ये भी कहा कि पूरे टूर्नामेंट में DRS का सारा क्रेडिट ये लड़का ले गया।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: कीजिए मुंबई के लालबाग चौराहा के पहले दर्शन, भव्य रूप में विराजे बप्पा के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होने वाला है बप्पा का इंतजार, 2 दिन बाद देश भर में पधारेंगे भगवान गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग, 145 साल पुरानी परंपरा।

0: शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां। कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम भेंट की 1-1 किलो की चांदी की थाली। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होने का मौका। ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना है मकसद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
0: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं लालबाग चार राजा की, जिनकी पहली झलक सामने आ गई है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले हमेशा की तरह गणपति के पंडाल का पर्दा उठा और लालबाग चार राजा की भव्य प्रतिमा सामने आई। इस साल मुंबई के इस मशहूर पंडाल को रामेश्वर की थीम पर सजाया गया है। गोल्डन और सिल्वर लुक वाले इस पंडाल से आज आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराएंगे, साथ ही मन्नतों के राजा कहे जाने वाले गणपति और उनके पंडाल की कहानी भी बताएंगे।

0: गुड न्यूज टुडे ने पहले ही ये एक कंफर्म और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इस बार कहीं ना कहीं लालबाग के राजा की जो थीम है वो रामेश्वर से जोड़ी जाएगी और बिल्कुल वही देखने मिल रहा है। देखिए कितने ज्यादा सुंदर इस समय लालबाग के राजा तो लग ही रहे हैं, लेकिन लालबाग के राजा का ये जो मंदिर परिसर है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। बकायदा यहाँ पर त्रिशूल लगा है, डमरू लगाया गया है और डायमंड से इस पूरे वातावरण को सजाया गया। साथ ही साथ बप्पा की जो दरबार का भीतर का जो तस्वीर है वो सिल्वर और गोल्डन रूप में है। आपको बता दें कि लगभग तमाम एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है इस समय लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। 14 तारीख से सुबह 5 बजे ही बप्पा का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं साथ ही साथ इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं, मुंबई पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर साथ ही साथ बीएमसी के बहुत से ऐसे आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में लीन रहते हैं वो सारे इस समय यहाँ मौजूद हैं और लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। बेहद ज्यादा इस समय सुंदर लालबाग के राजा नजर आ रहे हैं और हमेशा की तरह वही आंखें, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे वो सभी को देख रही हैं और कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी से ये कहना चाह रही पप्पा की आंखें कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखरने के लिए हम आ गए और वाकई में इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। 14 तारीख से यानी कि 2 दिन बाद ही बप्पा का दरबार खुल जाएगा और कल रात से ही बप्पा के लिए लोग कतारों में खड़े हो जाएंगे जो उनके पैर छूना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय लालबाग के राजा के दरबार में इस समय मौजूद हूं और अब लालबाग के राजा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, जो भी सेवादार हैं वो इस समय सभी यहां पर मौजूद हो गए हैं। साथ ही साथ मीडिया भी एक बड़ी संख्या में यहां मौजूद है और जैसा कि आपको बताएं लालबाग के राजा इस समय मुंबई देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई यहां पर आकर के उनका दर्शन करना चाहता है।
1: लालबाग का राजा जब भी आने वाले रहते हैं तो जैसे हमारे घर के सदस्य आ रहे हैं ऐसे 10 दिन का माहौल रहता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे छोटा बच्चा भी है, वो भी लालबाग के राजा के लिए उत्सुक है। वो भी कितनी भीड़ हो कुछ भी हो पर राजा के दर्शन पहले चाहिए रहते हैं।
0: लेकिन आप तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही होंगी क्योंकि बाकी लोगों को 14 तारीख से दर्शन मिलेगा वो भी घंटों कतार में रहने के बाद, लेकिन आप तो सीधे मुख्य दर्शन, कितनी एक्साइटेड है?
1: जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो यहाँ पे जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, अफकोर्स लालबाग की राजा की मान्यता है तो वो हिसाब से भीड़ तो रहती है, लेकिन बहुत सारे भाविक जो है सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं तो सब जगह से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से भी यहाँ पे भाविक आते रहते हैं। गणपति बप्पा।
2: लालबाग के राजा को हम लोग दर साल आते हैं, हर साल आते हैं। कहानियां तो बहुत सारी है बट हम लोग बहुत मतलब पूरे साल राह देख रहे होते हैं कि इस साल हमें गणपति के दर्शन हो जाए और ये जो फर्स्ट लुक होता है इसके लिए हम लोग पूरे साल राह देख रहे होते हैं।
0: अच्छा, इस पर रामेश्वर की थीम नजर आ रही है यानी कि शंकर भगवान इर्द गिर्द होंगे अपने सुपुत्र श्री गणेश जी के लिए, तो मजा आएगा देखने में।
2: हाँ, इसीलिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। इस बार की थीम भी अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और जो थीम है उस हिसाब से सब कुछ किया गया है, तो बहुत एक्साइटेड है 10 दिन लालबाग के राजा की सेवा में देने के लिए।
0: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। क्या कहेंगी लालबाग के राजा का जो पर्दा है कुछ देर में हटने वाला है, कितनी एक्साइटेड हो, क्या बोलेंगे?
2: बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग हर साल देखने आते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है।
0: क्या काम करते हैं?
2: हम लोग तो जॉब करते हैं आईटी में।
0: लेकिन मुझे लगता है 9-10 दिन की छुट्टी ले लेंगे इस बार।
2: ले लेंगे पक्का,
3: ले ली है।
0: लालबाग के राजा का आईडी कार्ड भी आपको मिल गया, राइट? लालबाग के राजा का आईडी कार्ड, आस पास ही रहते हैं
2: यार, बाजू में ही रहते हैं हम लोग, बस पड़ता।
0: जितनी भी जगह है ये भर जाएगी, चलने की जगह नहीं होने वाली है, इतना ज्यादा
2: घर से बाहर नहीं निकल सकते।
0: आप क्या कहेंगे लालबाग के राजा जब भी आते हैं कितनी एक्साइटनेस होती है और कैसे आप इस जीवन को जीते हो, लालबाग के राजा को लेकर क्या कहोगे?
4: आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरा पहला साल है, जस्ट मैरिड ओवर हियर।
5: गणपति के सभी पंडालों में लालबाग चौराजा की ख्याति देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है।

लगभग एक सदी से लालबागचा राजा हर साल गणेशोत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं और इस साल लालबागचा राजा पंडाल के 92 साल पूरे हो रहे हैं। बता दें कि लालबागचा राजा के पंडाल की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद अनोखी है।

0: पुढच्या वर्षी लव करेया, यानी अगले बरस तू जल्दी आ। भक्तों से यही वादा था, सो आ गए बाप्पा अपना वादा निभाने। अपनी पूरी भव्यता और विराट स्वरूप के साथ नवसाचा गणपति के रूप में, नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूरी करने वाले गणपति, लेकिन दुनिया इन्हें राजा के नाम से जानती है, लाल बाग चा राजा। अब बस इंतजार है तो लाल बाग चा राजा की पहली झलक का। लाल बाग चा राजा की महिमा वाकई निराली है। सिद्धि विनायक का ये स्वरूप और उनका ये पंडाल भक्तों को हमेशा से भाता रहा है। तभी तो गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ लाल बाग चा राजा के दरबार में ही जुटती है। चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा का दरबार सज चुका है, उत्सव की हर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस लाल बाग चा राजा के नए स्वरूप के अनावरण का। गणेश उत्सव के दौरान यूं तो पूरी मुंबई में गणपति के कई पंडाल सजते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो लाल बाग चा राजा की। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर मन्नतों के गणेश यानी लाल बाग चा राजा के स्वरूप पर होती है। हर बार लाल बाग चा राजा का रंग रूप अनोखा होता है। लाल बाग चा राजा की इस प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया बेहद खास और पारंपरिक होती है। ये मूर्ति किसी सांचे में नहीं बल्कि हाथों से गढ़ी जाती है और इसे बनाने में कई महीने लग जाते हैं। 1935 से इस भव्य प्रतिमा को मुंबई का प्रसिद्ध कांबली परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनाता आ रहा है। गणेशोत्सव के महीनों पहले वर्कशॉप में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। मुख्य मूर्ति को आकार देने के लिए POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी और बांस के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विशाल काय मूर्ति को मजबूत आधार मिले। सबसे पहले मूर्ति को स्थिरता देने के लिए लकड़ी और लोहे का ढांचा तैयार किया जाता है। कामली परिवार के मूर्तिकार हाथों से मिट्टी और POP का लेप लगाकर बाप्पा के अंगों, चेहरे और मुकुट को तराशते हैं। आखिर में बाप्पा की आंखें बनाई जाती हैं, जो इस मूर्ति का सबसे आकर्षक हिस्सा होती हैं। इसके बाद पूरी प्रतिमा को सुंदर रंगों से रंगा जाता है और विशेष आभूषणों से सजाया जाता है, दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर साल लाल बाग चा राजा की प्रतिमा का चेहरा, मुकुट और पूरे शरीर की बनावट लगभग समान रखी जाती है। हाँ, लेकिन प्रतिमा को नया स्वरूप देने के लिए उसकी मुद्राएं और श्रृंगार एक अलग थीम पर किया जाता है। पिछले साल यानी 2025 में लाल बाग चा राजा का स्वरूप कुछ ऐसा नजर आया था। ये प्रतिमा लगभग 14 से 15 फीट की भव्य ऊंचाई वाली थी, जिसे राजसी अंदाज में विराजित किया गया था। बाप्पा ने गहरे गुलाबी रंग की मखमली धोती और तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध शिवारी नामम से सजा अंग वस्त्र धारण किया था। गणपति के सिर पर सोने का भव्य मुकुट लगाया गया था। बाप्पा के एक हाथ में चक्र और दूसरे में शंख सुशोभित था। पंडाल को एक सुनहरे शाही महल जैसा लुक दिया गया था। पंडाल में स्वर्ण स्तंभ लगाए गए थे, जिनके दोनों ओर हाथियों और उनके वाहन मूषक की सुंदर मूर्तियां रखी गई थी। अब की बार भी लाल बाग चा राजा गणेश मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया भर के श्रद्धालु लाल बाग चा राजा का स्वरूप निहारने की प्रतीक्षा में हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धूमधाम और भक्तिभाव से गणपति की पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मोदक के बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि गौरीनंदन को मोदक बहुत पसंद है। बप्पा को 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा है। ये भी बता दें कि मोदक संस्कृत के शब्द मोदा से आया है, जिसका मतलब होता है कि आनंद यानी कि खुशी, यानी एक मिष्ठान जिससे आनंद मिलता हो। तो चलिए आपको बताते हैं मोदक की शुरुआत कैसे हुई और ये गणपति का सबसे प्रिय भोग कैसे बन गया।

0: गोल मटोल सुंदर सजीला,
1: क्या रूप सजा है।
0: ऊपर अध्यात्म का सफेद रंग और अंदर जैसे भक्ति का भाव भरा है। मोद यानी आनंद देने वाला है ये, इसीलिए तो नाम मोदक है। और इसका महत्व ये है कि महाकाय यानी बप्पा को सबसे प्रिय है, इसीलिए तो बप्पा के आने से पहले महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में घर घर मोदक तैयार हो रहे हैं। जैसे बप्पा पूरे देश में पूजे जाते हैं, ठीक वैसे ही मोदक हर शहर में बनाए जाते हैं। पर परंपरा और स्वाद में महाराष्ट्र के उकडीशे मोदक का जवाब नहीं। देखिए कैसे सधे हुए हाथ पहले चावल के आटे से परत तैयार करते हैं। इसके अंदर नारियल, काजू, बादाम और गुड़ का मिश्रण भरा जाता है, फिर भाप में पकाया जाता है। जायके के लिए जरा सा घी और सजाने के लिए केसर।
2: आहा, इसके अंदर जो मिश्रण है वो बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है। और वाकई में स्वाद बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। उकड़ी का मोदक मुझे लगता है कि दूसरे भी राज्यों में बहुत ही रेयर जगह मिलता होगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के हर घरों में बन रहा है, तो शॉप में तो होगा ही। अच्छा, कितनी देर में एक बन जाता है ये?
3: ये दो, एक दो मिनट में बन जाता है।
0: मुंबई में गणेश गली के पास जहाँ लालबाग चौराहा का भी पंडाल है, मोदक की भारी मांग होती है। न सिर्फ इसे बप्पा को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है, बल्कि भेंट स्वरूप रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दिया जाता है।
2: इतना मराठियों को और स्पेशली महाराष्ट्र की संस्कृति बन गई है ये मोदक जो है, उकड़ी का मोदक। क्यों इतना ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और क्यों इतना ज्यादा आप लोग इसमें घुले हुए?
3: मतलब ये अभी तो पारंपरिक ही है, मतलब परंपरा से ही बनते आ रहे हैं, मतलब बहुत साल से ही बनते ही आ रहा है। और ज़्यादातर मतलब ये गुड़ है, उसमें नारियल है, नारियल तो हम शुभ ही मानते हैं उसको जैसे। और गुड़ का मतलब जैसे गोडवा रहता है अच्छे, हम त्यौहार के लिए हम सब मिठाई खाते हैं। और काजू बादाम रहते हैं उसमें भी हम त्यौहार में यूज़ करते हैं, इसके लिए सब ये गोडवा रहता है, इसके लिए हम मतलब त्यौहार में जो मीठा रहता है इसके लिए हम ये सब सामग्री।
2: मुँह में मिठास जाए प्रसाद के तौर पे लोग पसंद करें, इसलिए उकड़ी का ये जो मोदक है बहुत ज्यादा इसे पसंद किया जाता है।
0: एक मिठाई जिसका अपना इतिहास, अपनी खास परंपरा है, गणपति की भक्ति से गहरी जुड़ी है। जब बप्पा पंडाल में विराजेंगे, भक्तों के चेहरे पर खुशी होगी और सामने सजे होंगे उनके प्रिय मोदक। इन मोदकों में सिर्फ मिठास नहीं, भक्तों की श्रद्धा भी घुली है।
4: गणेश जी कुछ घंटों में पधारने वाले हैं और उसकी तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तारदालकर फैमिली है जो पुणे के कोथुड़ में रहती है, ये इस तरह के जो गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए ये मोदक बनाते हैं। लेकिन ये जो मोदक है बाहर जाते हैं, यानी कि सिंगापुर जाते हैं और महाराष्ट्र के कई कोनों में ये जो मोदक है वो जाते हैं और इसके साथ ही इनका बिजनेस भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक 12 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये जो गणेश फेस्टिवल है इस दौरान ये जो मोदक है उसका आस्वाद लेने के लिए हर कोई तरसता है।
5: सबसे पहले 15 साल पहले हमने, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने मिलकर ये सोचा कि महाराष्ट्रियन फूड हेरिटेज हमें बरकरार रखना है, इसलिए हमने ये शुरुआत की, स्टार्टअप किया ये बिजनेस को। पहले तो सिर्फ 100 मोदक बिके पहले साल, उसके बाद धीरे धीरे करके अब हजारों लाखों में हमारा मोदक बना चुके हैं आज तक हम।
0: मुंबई हो या पुणे, महाराष्ट्र में हर जगह इस वक्त बड़ी तादाद में मोदक बनाए जा रहे हैं। वजह भी है, गणेशोत्सव में इनकी भारी मांग होती है, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और यहाँ तक कि मोदक विदेश भी जाते हैं।
6: माता जी ने तुरंत ही मोदक बनाया और मोदक गणपति जी को दिया। जैसे गणपति जी ने मोदक खाया वैसे ही गणपति जी को तो डकार आई, साथ साथ भोलेनाथ को भी 21 बार डकार आई। तो पार्वती माता जी ने पूछा कि प्रभु पाया तो मतलब गणेश जी ने, खाया तो गणेश जी ने, मतलब पाना बोलते हैं संस्कृत में। तो भोलेनाथ बोले कि सभी में गणपति हैं और मैं ही गणपति का रूप हूँ, गणपति ही मेरे रूप हैं, क्योंकि अथर्व इसमें लिखा है तम ब्रह्मा तम विष्णु तम दृष्टम दृष्ट गणेश, मतलब भगवान गणपति ही सभी देवी देवता के रूप माने जाते हैं। तभी से 21 मोदक गणपति जी को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। और 21 मोदक चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि गणपति जी के मतलब प्रसन्न होते हैं और जिनके यदि कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य नहीं हो रहा पा रहा है, तो 21 मोदक यदि आप चढ़ा दें तो गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं।
0: मोदक का अनूठा स्वाद इसे मन भावन बनाता है। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि उत्तर भारत में जहाँ भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाया जाता है, पश्चिम और दक्षिण भारत में उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि बप्पा को मोदक इतने पसंद क्यों है, तो सुनिए कहानी। माता पार्वती को इंद्र ने एक मोदक दिया था, मोदक एक लेकिन पुत्र दो, गणेश और कार्तिकेय। इसीलिए माता ने शर्त रख दी कि जो सभी तीर्थों की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही मोदक खाएगा। कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर तीर्थों की यात्रा पर निकल गए, लेकिन बुद्धिमान गणेश ने झटपट अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और दलील दी कि माता पिता में ही सभी तीर्थ हैं। पुत्र की बुद्धिमता से पार्वती प्रसन्न हुई और मोदक उन्हें दिया गया। लेकिन मोदक से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती और गणेश के अनसुया के आश्रम पहुंचे। तमाम खाद्य पदार्थों के बावजूद बालक गणेश का पेट नहीं भरा, तब अनुसुया ने उन्हें खाने के लिए मोदक दिया। चावल, नारियल और गुड़, मोदक इन तीन चीजों से बनता है और ये तीनों धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसीलिए मोदक से शुभता और पवित्रता का भाव भी जुड़ा है। मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक शुरू होते ही मिठाई का बाजार गुलजार हो जाता है, जहां भांति भांति के मोदक सजे हैं। मोदक के लिए मुंबई की लड्डू सम्राट दुकान भी मशहूर है, जहां वैसे तो अलग अलग स्वाद और नाम के मोदक मौजूद हैं, पर उकड़ी के मोदक की बात ही निराली है।
2: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। तस्वीरें खुद देखें, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। कुछ इस तरीके से फूलहार बनाने का काम इस समय मुंबई के लालबाग के राजा के आसपास इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं दूसरे भी मंडलों द्वारा स्थापित की जाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो श्री गणेश को जो सबसे ज्यादा पसंद मिठाई है उसे लेकर के है, यानी कि मोदक। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में, और जहाँ पर लालबाग के राजा भी विराजमान होते हैं और गणेश गली मुंबई के जो राजा के नाम से मशहूर हैं वो भी यहाँ विराजमान होते हैं।
0: मोदक की खासियत सिर्फ इसका स्वाद नहीं बल्कि इसका आकार भी है। जो ये हुनर जानते हैं वो नई पीढ़ी को इसकी बारीकियाँ समझाते भी हैं और उसे सिखाते भी हैं। उखरीचे के साथ तला हुआ मोदक भी अपनी अलग पहचान रखता है। गेहूं के आटे या फिर मैदे की सुनहरी कुरकुरी परत, अंदर गुड़ और नारियल की मीठी भरपाई, और अब इसी परंपरा में बच्चों के लिए चॉकलेट वाला अंदाज भी जुड़ चुका है। पिघली चॉकलेट को सांचे में डालकर उसमें मेवे और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं।
7: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं, और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए।
0: महाराष्ट्र से निकला स्वाद दिल्ली में चावल के साथ काजू, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट और कलाकंद में ढल गया। जेंजी की पसंद को देखते हुए चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर्स पर भी काम किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली की इन गलियों में मोदक की मिठास पुरानी है, लेकिन हर साल इसमें जुड़ता गया नया अंदाज जिसने इसे और खास बना दिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: तो बप्पा पधारने वाले हैं
0: और बप्पा के दर्शन लगातार हम आपको करवाते रहेंगे गुड न्यूज टुडे पर। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: क्या शुक्र के कमजोर होने से जीवन में सुख नहीं मिलता? क्या शुक्र के कमजोर होने से बेवजह के दुख आ जाते हैं? क्या शुक्र के बेहतर होने पर सुख पाना आसान होता है? क्या है शुक्र के कमजोर और मजबूत होने के लक्षण? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: जयंती पर कीजिए मुंबई के लालबाग चौराहा के पहले दर्शन, भव्य रूप में विराजे बप्पा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होने वाला है बप्पा का इंतजार, 2 दिन बाद देश भर में पधारेंगे भगवान गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के बनाए गए मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव में रंगा पूरा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग, 145 साल पुरानी परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां, कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम भेंट की 1-1 किलो की थालियां। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होने का मौका, ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुंबई में गणेशोत्सव से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आई, दर्शन होते ही भक्तों में जबरदस्त उत्साह। इस बार लालबाग के राजा का दरबार चांदी की नक्काशी से सजाया गया, भव्य सजावट भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। मुख्य प्रवेश द्वार पर दक्षिण भारत के मशहूर मीनाक्षी मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है, उसके ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा भी बनाई गई। गणेश उत्सव के 10 दिन में देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का अनुमान, पहली झलक के बाद भक्तों की बेसब्री और बढ़ी। लालबाग के राजा की वात्सल्य मूर्ति देखकर भक्त भावुक हुए, पहली झलक के साथ ही मुंबई में गणेश उत्सव की धूमधाम से शुरुआत। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियों में रंगा पूरा देश, पंडालों को दिया जा रहा अंतिम रूप, तैयार की जा रही है बप्पा की विशाल मूर्तियां। कर्नाटक के बेलगावी में चरम पर भव्य गणेशोत्सव की तैयारियां, ढोल नगाड़ों के बीच अपने अपने पंडालों में भेजी जा रही है गणपति की विशाल प्रतिमाएं। अलग अलग आकारों और स्वरूपों में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए उमड़े भक्त सड़कों में। गणपति बप्पा मौर्य का उद्घोष, भक्तों का उत्साह। मध्य प्रदेश और छतरपुर में तैयार की जा रही है गणपति की कई तरह की प्रतिमाएं, जोरों पर मूर्तियों में रंग भरने और सजाने का काम। वाराणसी में भी बप्पा की मूर्तियों का निर्माण कार्य जोरों पर जारी, घर से लेकर पंडालों तक बनाए जा रही प्रतिमाएं। अम्बाजी मंदिर में 501 दीपकों से भव्य आरती की गई, अद्भुत नजारा देखने बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। शाशु चौक में शेषनाग की 2 और मोर की प्रतिकृति के साथ आरती हुई, भक्तों ने दीपक हाथ में लेकर आरती में हिस्सा लिया। देगाम अमीन युवक मंडल के 3 भाइयों ने अनोखी 501 दीपक आरती की, जिग्नेश और मीत अमीन ने शरीर पर आरती के दीपक रखकर भक्ति दिखाई। अम्बाजी मंदिर में नाडियाड से आए भक्तों ने गरबा भी खेला। नवचंडी यज्ञ और छप्पन भोग अन्नकूट जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नाडियाड का ये संघ पिछले 162 सालों से अम्बाजी आकर करता है भक्ति। 20 से 26 सितंबर तक होने वाले भादरवी महामेले में से पहले मंदिर में खास आयोजन जारी। नागपुर में धूमधाम से मारबत बढ़ गया उत्सव मनाया गया। 145 साल पुरानी इस परंपरा को देखने सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे। होला त्यौहार के दूसरे दिन काली और पीली मारबत का जुलूस निकाला गया। पूजा के बाद दोनों मारबत को शहर में घुमाया गया और अंत में दहन किया गया। मारबत के साथ बड़गया नाम के छोटे छोटे पुतले भी निकले और इन पुतलों को समाज में फैली बुराइयों का प्रतीक माना जाता है और बाद में जला दिया जाता है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के दौर में विरोध के तौर पर इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। साल 1881 से शुरू हुआ मारबत बड़गया जुलूस आज भी नागपुर में उसी उत्साह के साथ निकाला जाता है। मारबत बड़गया उत्सव देश में अपनी तरह की अनोखी परंपरा जो अब नागपुर की खास पहचान बन चुकी है। सीकर में भादो अमावस्या पर बिंदल कुलदेवी मंदिर में मेहंदी उत्सव का आयोजन। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। इस खास आयोजन पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। भक्तिभाव से गाए गए मंगल गीत, हाथ में रचाई मेहंदी। श्रद्धालुओं ने बंगाली ढोल की थाप पर किया धनुषी नृत्य। महिलाओं ने माता रानी को समर्पित सिंदूर बंगाली परंपरा पर आधारित सिंदूर खेला। कोलकाता से विशेष रूप से मंगवाए गए फूलों के साथ मां बिंदल कुल देवी की प्रतिमा का श्रृंगार हुआ। भादव अमावस्या को लेकर कुल देवियों को भोग लगाने के लिए देश भर से पहुंचे प्रवासी। शहर के आधा दर्जन से अधिक शक्ति मंदिरों में धार्मिक आयोजन। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में अंतिम चरण में गणेश चतुर्थी की तैयारियां। भव्य रूप से सजाया जा रहा मंदिर। 13 सितंबर की रात से ही श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर। 14 सितंबर की सुबह ध्वज पूजन के साथ ही गणेश उत्सव की शुरुआत। पहले दिन भगवान गणेश को लगाया जाएगा 1,25,000 मोदकों का महाभोग। उत्सव के 10 दिन में प्रतिदिन होगा बप्पा का विशेष श्रृंगार। धर्मनगरी चित्रकूट में भाद्रपद मास की अमावस्या में श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। भगवान कामतनाथ मंदिर में किए दर्शन। पुष्पटनी अमावस्या के रूप में भी जानी जाती है अमावस्या। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान ध्यान का विशेष महत्व। कोलकाता के साई भक्त सत्यम खन्ना ने शिरडी साई मंदिर में चांदी की 3 थालियां चढ़ाई। 1-1 किलो है। इन थालियों का वजन 6,00,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही कीमत। साई मंदिर में चढ़ाई गई चांदी की 3 थालियों का इस्तेमाल अब आरती और पूजन के लिए होगा। साई भक्त परिवार ने बाबा के चरणों में भेंट की। सत्यम खन्ना ने ये 3 थालियां अपने दिवंगत माता पिता और ससुर की याद में अर्पित की है। सत्यम की पत्नी वंदना ने आरती के दौरान बाबा के सामने चांदी की थाली देखी। इसके बाद उन्होंने 3 दिवंगत परिजनों की याद में 3 थालियां चढ़ाने का फैसला किया। साईं भक्तों को बाबा पर अपार विश्वास। भक्तों के मुताबिक बाबा जानते मन की बात, बिना मांगे दे देते हैं सब कुछ। शिरडी के साईं दरबार में भक्तों की अनोखी भेंट। छत्तीसगढ़ के साईं भक्त ने बाबा को अर्पित किया स्वर्ण मुकुट। 9 तोले का है ये सोने का मुकुट। 14,00,000 रुपए है अनुमानित कीमत। इस मुकुट पर की गई है शानदार कारीगरी। मनोकामना पूर्ण होने पर परिवार मंदिर समिति को भेंट किया ये मुकुट। 55 वर्षों से लगातार बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आता है परिवार। महाराष्ट्र के परभणी में दिखी बैलपोल उत्सव की रौनक। किसानों ने अपने बैलों का भव्य श्रृंगार किया। पूजा अर्चना के बाद किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली वृषभराज की जुलूस। रंग बिरंगे सजे नजर आए बैल। दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में ब्रिक्स बाजार लगा। यहाँ कई देशों की खास कला और हस्तशिल्प देखने को मिल रही है। ब्रिक्स बाजार में अलग अलग देशों के कपड़े और हथकरघा दिखाए जा रहे हैं। हर देश की अपनी खास डिजाइन और कला यहाँ नजर आ रही है। बाजार में हाथ से बनाई गई कई खूबसूरत चीजें रखी गई हैं। इनमें पारंपरिक शिल्प और कलाकृतियां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। ब्रिक्स बाजार में सदस्य और पार्टनर देशों की संस्कृति भी देखने को मिल रही है। बाजार अलग अलग देशों की कला को करीब से समझने का मौका देता है। ब्रिक्स बाजार में भारत की पारंपरिक कला भी दुनिया के सामने रखी गई। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में ये आयोजन संस्कृति और दोस्ती का संदेश देता है। ब्रिक्स समिट के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट की। तमिल साहित्य की तिरुकुल रूसी भाषा में किया इसका अनुवाद। तमिल संगम साहित्य का सबसे पुराना साहित्य है तिरुकुल। मशहूर रूसी दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय भी थे इससे। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में ये पहल शांति और अहिंसा का संदेश देती किताब। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी को भी प्रेरित कर चुकी है किताब। प्रधानमंत्री मोदी भी मन की बात में कर चुके हैं जिक्र। दुनिया ने एक बार फिर से देखी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की गहरी दोस्ती की तस्वीरें। दोनों एक साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार। सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आना जारी। ब्रिक्स समिट के लिए सजाई गई राजधानी दिल्ली। रंग बिरंगे फूलों और पोस्टर्स से सजावट। साफ सफाई का रखा जा रहा है खास ख्याल। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली की 35 से ज्यादा सड़कों पर असर। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्शन। ब्रिक्स समिट से पहले राजधानी दिल्ली रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाई। भारत मंडपम, तीन मूर्ति सर्कल, कौटिल्य मार्ग, सर्कल हाउस रोशन। आम जनता की सहूलियत के लिए कल होने वाले ब्रिक्स समिट के डिनर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। वीआईपी मूवमेंट के तहत ट्रैफिक जाम रोकने के लिए संसद भवन से बस में आएंगे सभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। ब्रिक्स समिट के कारण ट्रैफिक पाबंदियों के बीच परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली मेट्रो का बड़ा ऐलान। 13 सितंबर को सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक के खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ। यूपी में 75 जिलों के गांव मंडल पहुंचकर महिलाओं की आय बढ़ाने की तैयारी में योगी सरकार। दुग्ध उत्पादन से जुड़ी 3.94 लाख महिला सदस्य। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा मुक्ति की एक बैठक की। पर्वों से पहले यूपी के 681 प्रमुख मार्ग होंगे गड्ढा मुक्त। गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दिवाली, छठ के मार्गों पर ज्यादा फोकस। यूपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री हुई हनुमान अंश फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। यूपी के मेरठ में सरकार दे रही है मॉडर्न कृषि को बढ़ावा। आधुनिक यंत्र और सब्सिडी योजना से किसानों को फायदा। महंगी मशीनें अब हुई किसानों के बजट में। सरकारी सब्सिडी का फायदा लेकर किसान अब पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक खेती भी कर पाएंगे। इन योजनाओं के तहत अब ऋण लेना होगा आसान। सरल हुई बैंक से लोन की प्रक्रिया। समृद्ध किसान कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। इससे उनकी आय में भी हो रहा है इजाफा। आधुनिक खेती का मॉडल बन रहा है इलाका। देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत। कानपुर के शिक्षक उदेश्वर सचान की केबीसी में एंट्री। गरीब बच्चों के लिए चला रहे स्कूल। 400 बच्चों को मुफ्त शिक्षा। बच्चों को किताबें और ड्रेस भी मुफ्त में। उदेश्वर सचान बने सभी के लिए मिसाल। अमिताभ बच्चन ने की उदेश्य की तारीफ। 25 लाख के सवाल तक पहुंचे उदेश्य। केबीसी में जीते 12.5 लाख रुपए। कानपुर में 400 बच्चों को मुफ्त पढ़ाने वाला उदेश्य सचान को केबीसी में जाने का मौका मिला। 25 लाख रुपए की रकम जीतकर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने की बात कही। गुजरात के बंतारा से नांदनी वापस आएगी महादेवी उर्फ माधवी हाथी। जल्द ही नांदनी मठ में होगा आगमन। माधुरी हाथी की वापसी की खबर से कोल्हापुर वासियों में खुशी की लहर। नांदनी मठ में माधुरी हाथी की उपलब्ध कराई जाएंगी सभी जरूरी सुविधाएं। यूपी के गोंडा जिले में घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से गांव के खेतों में भरा पानी। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ भूस्खलन। श्रीवासा के पास पैदल यात्रा मार्ग बाधित। बाराबंकी में बढ़ा पानी का स्तर। सरयू नदी में बढ़ा जलस्तर। आसपास के गांवों में आम जनजीवन प्रभावित। खतरे के निशान से ऊपर सरयू नदी। बाढ़ और कटान की दोहरी परेशानी झेल रहे ग्रामीण। दक्षिणी सिक्किम के संगमो इलाके में एक बड़े भूस्खलन की घटना, आसपास के कई घर प्रभावित। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान सिनेमाघरों में रिलीज। मलयालम ब्लॉकबस्टर उपम का हिंदी रीमेक है प्रदर्शनी की फिल्म। अरशद वारसी की क्राइम ड्रामा फिल्म कमासान Z5 पर रिलीज। कुख्यात डाकू सरदार महाराज और उसे पकड़ने के लिए तैनात एसटीएफ अधिकारी आदित्य की कहानी है कमासान। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज द रेवोल्यूशनरीज रिलीज। सच्ची घटनाओं से प्रेरित है 4 युवा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की मेगा फिल्म फ्रेंचाइजी श्रीमद भागवतम भाग 1 विष्णुरात का टीजर पोस्टर जारी, 2027 में रिलीज होगी। परिणीति चोपड़ा की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज शक ट्रस्ट नो वन का ट्रेलर रिलीज, 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी। शंघाई में बाज जैसा उड़ने वाला रोबोट दिखाया गया, इसमें असली पंख लगाए गए हैं। रोबोट का वजन 600 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। असली पंखों की वजह से इसकी आवाज काफी कम, ये ड्रोन से ज्यादा चुपचाप उड़ सकता है। ये रोबोट पक्षियों के झुंड में आसानी से घुल मिल सकता है, इसे दूर से ही निगरानी करने में मदद मिलेगी। ये खास रोबोट शंघाई के टेक्नोलॉजी फोरम में पेश हुआ, वैज्ञानिकों ने इसे पक्षियों की उड़ान से प्रेरित बताया। चीन के तियानमिंग पहाड़ पर वर्ल्ड विंगसूट चैंपियनशिप हुई, खिलाड़ी करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ों के बीच उड़ते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के ताही पॉल मोनरो ने स्पीड रेस में खिताब जीत लिया, उन्होंने सिर्फ 24.05 सेकंड में रेस पूरी की। नॉर्वे के जोआकिम दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 24.292 सेकंड्स में रेस पूरी कर सिल्वर मेडल हासिल किया। चीन के झांग शुपिंग ने तीसरा स्थान हासिल किया, 24.663 सेकंड के समय के साथ वो रहे तीसरे नंबर पर। तियानमेन पहाड़ की खूबसूरत वादियां हॉलीवुड फिल्म अवतार के नजारों जैसी दिखती हैं। चैंपियनशिप के बाद यहां विदेशी पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ी। इंग्लैंड में आसमान रंगीन हुआ, आइकॉन ऑफ द स्काई फेस्टिवल में एक साथ कई हॉट एयर बलून नजर आए। आसमान में दिखे अनोखे बलून, कुछ बलून जानवरों के चेहरों की शक्ल में थे जिन्हें देखकर लोग रोमांचित हुए। बलून उड़ाने की खास तैयारी, लोगों ने जमीन पर बड़े बलून में हवा भरी फिर उन्हें उड़ाने की तैयारी की। हवा में हुआ दिलचस्प नजारा, उड़ते वक्त दो हॉट एयर बलून एक दूसरे से बेहद करीब पहुंचे। एक साथ लैंडिंग हुई, उड़ान के बाद कई बलून मैदान में उतरे, पूरा इलाका रंग बिरंगे बलून से भर गया। दक्षिण कोरिया में पांडा शावक की पहली झलक, एवरलैंड थीम पार्क में 100 दिन के पांडा बच्चे ने पहली बार लोगों के सामने कदम रखा। पांडा का नाम रखा गया शुवाओ, पार्क ने शुक्रवार को इस नन्हे पांडा के नाम का ऐलान किया। दक्षिण कोरिया का चौथा पांडा बेबी शुवाओ से पहले फूबाओ, रुईबाओ और हुईबाओ का जन्म हो चुका है। 3 जून को हुआ था जन्म, शुवाओ का जन्म 2026 में हुआ और ये दक्षिण कोरिया में पांडा की तीसरी सफल प्राकृतिक ब्रीडिंग। पांडा परिवार बढ़ा, शुवाओ के माता पिता लेबाओ और आईबाओ 2016 में दक्षिण कोरिया पहुंचे थे और एवलैंड में रह रहे थे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: पंजाब के अमृतसर में ब्रिक्स 2026 को लेकर एक अनोखी कलाकृति तैयार की गई है और ये कलाकारी दिखाई है अमृतसर के डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल ने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई वैश्विक नेताओं के चित्र शामिल हैं। जगजोत एक फेमस चित्रकार और पेपर आर्टिस्ट हैं।
2: बारह और 13 सितंबर को दिल्ली का भारत मंडपम तैयार हो रहा है 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। जाहिर है इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम का मेजबान क्योंकि भारत है, ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के बीच इस बड़ी सी एक्रिलिक पेंटिंग की भी खूब चर्चा है, जिसे मशहूर पेपर आर्टिस्ट जगजोत रूबल ने तैयार किया। इसके जरिए जगजोत ग्लोबल लीडरशिप का संदेश देने की कोशिश करते नजर आए। पंजाब के अमृतसर में जगजोत ने यह अनोखी पेपर आर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ दूसरे ब्रिक्स लीडर्स को एक फ्रेम में दर्शाया है। 18 दिन की मेहनत के बाद 5 फीट की यह कलाकृति जगजोत रूबल के लिए ब्रिक्स 2026 की मास्टरपीस है। वो ये भी मानते हैं कि उन्होंने ब्रिक्स थीम वाली पेपर आर्ट के माध्यम से ग्लोबल एकता का जश्न सेलिब्रेट करने का संदेश दिया है।
3: सर पेंटिंग वाला जरा मैसेज आ एक फ्रेम दे विच सारे प्रेसिडेंट जिस तरह के मैं टाइटल देता ग्लोबल लीडरशिप मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म ते सारे देश दे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं ते इंडिया वास्ते बड़ी वड्डी गल है, इंडिया होस्ट करन जा रहा वा ते एक मैसेज देता यूनिटी का मैसेज देता कि सारे एक जगह ते आ रहे ने ते जिहड़ी इहनां दी डील होनी आ उहदे विच जरूर जिहड़ी देश दे विच लड़ाईआं लगदीआं पईआं वा उहदे ते भी जरूर मुद्दा उठाना चाहीदा।
2: बता दें कि जगजोत एक फेमस चित्रकार और पेपर आर्टिस्ट हैं। वो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख राजनेताओं और हस्तियों के शानदार पोर्ट्रेट और विशाल पेंटिंग्स बनाने के लिए काफी मशहूर हैं और उनके नाम भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। फिलहाल तो अमृतसर के इस आर्टिस्ट ने पेपर आर्ट के माध्यम से ग्लोबल डिप्लोमेसी की जो तस्वीर उकेरी है, इसने उनकी कलात्मकता का एक नया आयाम दुनिया को दिखाया है। उनकी ख्वाहिश भी है कि इस शानदार पेंटिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के वेन्यू पर प्रदर्शित किया जाए। यकीनन ब्रिक्स समिट से ठीक पहले तैयार की गई ये पेपर आर्ट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और वैश्विक नेताओं की मौजूदगी का कलात्मक अंदाज बयां करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: क्या शुक्र के कमजोर होने से जीवन में सुख नहीं मिलता? क्या शुक्र के कमजोर होने से बेवजह के दुख आ जाते हैं? क्या शुक्र के बेहतर होने पर सुख पाना आसान होता है? क्या है शुक्र के कमजोर और मजबूत होने के लक्षण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: जेएनडी पर कीजिए मुंबई के लालबाग के राजा के पहले दर्शन, भव्य रूप में विराजे बप्पा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होने वाला है बप्पा का इंतजार, 2 दिन बाद देश भर में पधारेंगे भगवान गणेश। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, गोराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग, 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां, कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम भेंट की 1-1 किलो की थाली। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होने का मौका, ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आज के कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में कि क्या आपका शुक्र कमजोर है। देखिए, शुक्र ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम वीनस कहते हैं, ये किसका ग्रह है? ये है ऐश्वर्य का ग्रह है। कुछ लोग होते हैं बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनका शुक्र भी काफी ज्यादा मजबूत होता है। और शुक्र से जुड़ी तमाम बातें पंडित जी से हम आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, घर में बहुत ज्यादा कांच की वस्तुओं का प्रयोग मत करिएगा। ग्लास वेयर्स, ग्लास के आइटम बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप कांच की चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो इससे आपके रिश्ते संवेदनशील हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे, लोग मेंटली परेशान होंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 12 सितंबर 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 7:46 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:55 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और पंडित जी, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कहीं हमारे दर्शकों का जो शुक्र ग्रह है वो कमजोर तो नहीं है, तो इसे लेकर के ही आपसे सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ग्रह की स्थिति को लक्षणों से जोड़ करके कैसे देखा जा सकता है, कैसे पता चले कि शुक्र कमजोर है?
1: जी देखिए, आज हम आपको लक्षणों के आधार पर ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका शुक्र ताकतवर है या आपका शुक्र कमजोर है। क्या लक्षण से ग्रह की स्थिति को जान सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव अवश्य होता है, आप माने तो भी होता है, ना माने तो भी होता है। व्यक्ति के स्वभाव, खान पान, करियर, इन तमाम चीजों पर ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। और आपके जो ग्रह हैं वो आपकी आदतों पर और पसंद नापसंद पर भी असर डालते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप लंबे समय तक देखें, उसको समझें, तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि उस पर किस ग्रह का प्रभाव है। और थोरोली देखने पे आप बड़े आराम से जान जाएंगे कि किस व्यक्ति का कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा ग्रह कमजोर है। शुक्र के कमजोर होने के या मजबूत होने के लक्षण बहुत जल्दी समझ में आते हैं। आपके पास थोड़ी सी दृष्टि हो, थोड़ा सा विजन हो, तो आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शुक्र मजबूत है या किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर है।
0: तो चलिए, बातचीत का जो सिलसिला है पंडित जी के साथ यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल आखिर क्या

0: हैं परिवार में मंगल कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो आखिर क्या लक्षण क्या है शुक्र के कमजोर होने के, आइए पंडित जी से इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं।
0: बहुत आराम से केवल लक्षण देखकर आप ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर है या नहीं है। अगर शुक्र कमजोर होगा तो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होगा, रूप रंग से भी आकर्षक नहीं होगा, अपने कपड़ों से, अपने प्रेजेंटेशन से भी आकर्षक नहीं होगा। शुक्र अगर कमजोर है तो व्यक्ति बहुत साफ सुथरे और अच्छे तरीके से नहीं रहेगा। सुविधा कितनी भी जुटा ले लेकिन सुख नहीं मिलेगा। गाड़ी तो होगी लेकिन घूम नहीं पाएगा, बढ़िया घर होगा लेकिन घर में रह नहीं पाएगा। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता। उसके अपोजिट जीवन में महिला की तरफ से कष्ट मिलने की संभावना बन जाती है और दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आता, दाम्पत्य जीवन कष्ट का कारण बनता है। जिनका शुक्र कमजोर होता है वो हमेशा दिखावे में लगे रहते हैं, प्रदर्शन में लगे रहते हैं, काम भाव सेक्सुअल डिजायर्स उनकी बहुत ज्यादा होती है और प्रदर्शन में दिखावे में लिप्त रहते हैं। शुक्र अगर अच्छा होगा ना तो आदमी बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच का होता है, उसकी भी अपनी कमियां हैं। लेकिन शुक्र अगर कमजोर होगा तो एक लाइन में आप समझिए कि जीवन में सब कुछ होने के बावजूद जो आनंद है, जो सुख है, वो आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि पर क्या कहता है।
0: कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर की बाधा दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें।

0: तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, इसी के साथ अभी समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमृता जी ने लिखा है और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं बरेली से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 5 जनवरी सन 1999। जन्म का समय शाम के 6:42। जन्म स्थान है बरेली। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल सकेगी, क्या भविष्य है उसका। अमृता जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो टीचिंग सेक्टर में कोशिश करें, शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करें, तो एजुकेशन फील्ड में उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों में प्रयास करने पर लाभ नहीं होगा। आपके बेटे के भटकने की संभावना बहुत है, इसलिए उनके ऊपर ध्यान और निगाह बनाए रखिएगा। अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनाइए। रोज सुबह इनसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इनको लाभ होगा।
1: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। याद रखें कि अपने बहुत डिटेल्स इसके साथ जरूर रखें।
0: अगला प्रश्न मिलिंद जी ने हमें लिखा है और मिलिंद जी हमें मेल लिखते हैं महाराष्ट्र से। मिलिंद जी की जन्म तारीख है 29 सितंबर 1973। जन्म का समय शाम के 7:00। जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र, और मेल लिख रहे हैं पुणे से। मिलिंद जी कह रहे हैं कि मैं अपना काम करता हूं टेक्नोलॉजी का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, और ये काम मेरा मध्यम चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कोई फिल्म प्रोडक्शन का, फिल्म डायरेक्शन का काम करूं, तो क्या इस क्षेत्र में मुझे सफलता मिल सकेगी। मिलिंद जी, अगर आप फिल्म के प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, निर्माण में, इन क्षेत्रों में अगर आप कोशिश करते हैं तो आप सफलता अवश्य पा सकेंगे, लेकिन आपको 2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। साल 2028 में आपके सफलता की संभावनाएं काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। आने वाला समय भी आपका अच्छा है, तो जो आप ग्राफिक्स का काम करते हैं वो करते रहिए, और साथ में आप फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन आदि के क्षेत्र में आगे बढ़िए, आप सफल होंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: तो शुक्र के कमजोर होने के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में तो हमने बात कर ली, पर शुक्र के मजबूत होने के क्या लक्षण हैं? आइए पंडित जी से ही इसके बारे में समझते हैं।
0: देखिए, जैसे आप लक्षणों से ये जान गए कि शुक्र कमजोर है, वैसे ही आप लक्षणों से ये भी जान सकते हैं कि शुक्र आपका मजबूत है। क्या लक्षण हैं? देखिए, अगर शुक्र मजबूत होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षक होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा। दिखने में कैसा भी हो, लेकिन उसका व्यवहार और उसका स्वभाव अद्भुत होगा, बड़े अच्छे, बड़े मीठे स्वभाव का होगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नाम और यश अर्जित करते हैं और आम तौर पर बड़े ग्लैमरस होते हैं, उनके अंदर काफी ग्लैमर होता है। और जब शुक्र आपको शुभ फल दे रहा हो तो ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी होता है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, सोने में तेज होते हैं, बड़े चैन से, बड़े आराम से कहीं भी सो जाते हैं। और अगर शुक्र आपका शुभ है, आपके पास पैसे जेब में भले ना हो, लेकिन सुख और सुविधा आपको बड़ी आसानी से जीवन में मिलेगी, जेब में पैसा नहीं होगा, फिर भी 5-स्टार होटल में रहेंगे, बढ़िया गाड़ियों से घूमेंगे, बढ़िया भोजन ग्रहण करेंगे, यानी हर तरह की सुख सुविधा आपके पास रहेगी साधन ना होने के बावजूद।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में लाभ के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर है, ऐसे लोग शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, ये इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
0: अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया होगा कि आपका शुक्र कमजोर है या नहीं है। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें? शुक्र के मंत्रों का भोर में जप करें। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः या ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का भोर में जप करें। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग नियमित रूप से करिएगा। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से अपना जीवन बिताइए। रोज नहाइए, सफाई से रहिए, रूटीन का पालन करिए। सुबह के समय मिश्री जरूर खाइए और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। सफेद रंग का या गुलाबी रंग का खूब प्रयोग करिए। महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए और शुक्र को मजबूत करने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक जरकन नाम का रत्न धारण करिएगा।
1: तो चलिए, बातचीत का जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कोई जोखिम ना लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी उनसे जान लेते हैं। तो पंडित जी आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी अगला प्रश्न अंगद गुप्ता जी ने हमें लिखा है और अंगद गुप्ता जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी सन 1990। जन्म का समय है शाम के 7:35। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी 2 साल से मेरे साथ नहीं रह रही है और साथ में रहना भी नहीं चाहती है, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा या डिवोर्स हो जाएगा और भविष्य मेरा कैसा रहेगा? अंगद जी, इस विवाह में आपसी सुलह समझौते से सेपरेशन होने की संभावना बनती है। ऐसा लगता है कि साल 2027 के आरंभ में आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन होगा। 2028 में आपके दूसरे विवाह के योग बनते हैं और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: तो चौथा सवाल आज के इस व्यूअर का ले रहे हैं पंडित जी, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका तरीका बेहद ही आसान है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं।
0: आज का अंतिम प्रश्न मयंक जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। मयंक जी की जन्म की तारीख है 8 नवंबर 2004। जन्म का समय शाम के 4:55। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मयंक जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूं, क्या मैं यूपीएससी में सफल हो सकता हूं या मुझे किसी और क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए? मयंक, आपकी कुंडली के हिसाब से आप एमपीएससी की तैयारी करें या बैंक फाइनेंस की बैंकिंग की नौकरियों की तैयारी करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अभी तो आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, तो थोड़ी मेहनत करिए, अभी सफलता पाने में समय है। लेकिन अगर एमपीएससी की बैंकिंग की फाइनेंस की नौकरी की तैयारी करते हैं तो उम्र के 26-27वें साल में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में था कि अगर किसी का वीनस स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, तो वो किस देवी देवता की पूजा अर्चना कर सकता है कि उसका वीनस जो है वो मजबूत हो सके?
0: जी देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह को मजबूत करने के लिए और ग्रह की समस्याओं से बचने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के नियम बताए गए हैं। अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं या अगर आप शुक्र से लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती, तो माता लक्ष्मी की पूजा श्री हरि भगवान विष्णु के साथ अगर नियमित रूप से आप करें तो शुक्र से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
1: तो चलिए, जिनका जन्मदिन 12 सितंबर को है, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जान लेते हैं।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 12 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में बड़े बदलाव होंगे, करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में अब पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी को विवाद नहीं करना चाहिए। इसका कारण क्या है? देखिए, वैसे तो पति पत्नी को हमेशा विवादों से बचना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को अगर पति पत्नी विवाद करते हैं तो ये विवाद जल्दी समाप्त नहीं होता। इसीलिए शुक्रवार के दिन वैवाहिक समस्याओं से और वैवाहिक विवादों से बचना चाहिए।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 12 सितंबर 2026 यानी कि दिन शनिवार का शुभ पहर यानी अच्छा पहर कौन सा है।
0: दिनांक 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, करियर संबंधी आपकी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हम पंडित जी से जानेंगे कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस धातु का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आपके लिए तांबा धारण करना अनुकूल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तांबा अगर आप पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य और आपका मन बेहतर बना रहेगा।
1: तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।

0: अगर आपका तालमेल घर के बड़ों के साथ ठीक ना बैठ रहा हो, दिक्कत हो रही हो, तो क्या करेंगे? घर में नियमित रूप से शिव जी की उपासना करेंगे। उनको रोज सुबह सफेद फूल अर्पित करेंगे और घर में खास तौर से शाम के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती नियमित रूप से जलाएंगे। घर की तरंगें बेहतर होंगी, बड़ों के साथ तालमेल अच्छा होगा।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।

0: सेना के तरकश में आएंगे नए नए हथियार। 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार। चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करते हैं लालबाग चौराहा की, जो मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय पंडालों में विराजमान होते हैं। लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक सामने आ गया और उनकी भव्यता दिव्यता देखते ही बनती है। हर साल गणेशोत्सव से पहले विनायक के भक्तों को लालबाग चौराहा की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार रहता है। लालबाग के राजा को भक्तों की मुरादें और इच्छाएं पूरी करने वाला भगवान माना जाता है। ऐसी अटूट मान्यता है कि सच्चे मन से उनके दर पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम इस गणेश पंडाल की स्थापना साल 1934 में हुई थी। मुंबई के परेल इलाके में कोली समुदाय के लोगों और व्यापारियों ने लालबाग के राजा को पहली बार स्थापित किया था, और इस साल लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल अपनी स्थापना के 93 वर्ष पूरे कर रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान यहाँ रोजाना 15,00,000 से अधिक श्रद्धालु अपने बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। अपनी मन्नतों के लिए घंटों लोग कतारों में इंतजार भी करते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होती। आम नागरिकों के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां भी यहाँ पहुंचते हैं अपने परिवारों के साथ बप्पा के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए। गणपति के सभी पंडालों में लालबाग चौराहा की ख्याति देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग 1 सदी से लालबाग के राजा हर साल गणेश उत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं, और इस साल लालबाग के राजा का पंडाल 92 साल पूरे कर रहा है। बता दें कि लालबाग चौराहा के पंडाल की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद अनोखी है।

0: पुढच्या वर्षी लव करेया, यानी अगले बरस तू जल्दी आ। भक्तों से यही वादा था, सो आ गए बाप्पा अपना वादा निभाने। अपनी पूरी भव्यता और विराट स्वरूप के साथ नवसाचा गणपति के रूप में, नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूरी करने वाले गणपति, लेकिन दुनिया इन्हें राजा के नाम से जानती है, लाल बाग चा राजा। अब बस इंतजार है तो लाल बाग चा राजा की पहली झलक का। लाल बाग चा राजा की महिमा वाकई निराली है। सिद्धि विनायक का ये स्वरूप और उनका ये पंडाल भक्तों को हमेशा से भाता रहा है। तभी तो गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ लाल बाग चा राजा के दरबार में ही जुटती है। चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा का दरबार सज चुका है, उत्सव की हर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस लाल बाग चा राजा के नए स्वरूप के अनावरण का। गणेश उत्सव के दौरान यूँ तो पूरी मुंबई में गणपति के कई पंडाल सजते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो लाल बाग चा राजा की। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर मन्नतों के गणेश यानी लाल बाग चा राजा के स्वरूप पर होती है। हर बार लाल बाग चा राजा का रंग रूप अनोखा होता है। लाल बाग चा राजा की इस प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया बेहद खास और पारंपरिक होती है। ये मूर्ति किसी सांचे में नहीं बल्कि हाथों से गढ़ी जाती है और इसे बनाने में कई महीने लग जाते हैं। 1935 से इस भव्य प्रतिमा को मुंबई का प्रसिद्ध कांबली परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनाता आ रहा है। गणेशोत्सव के महीनों पहले वर्कशॉप में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। मुख्य मूर्ति को आकार देने के लिए POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी और बांस के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विशाल काय मूर्ति को मजबूत आधार मिले। सबसे पहले मूर्ति को स्थिरता देने के लिए लकड़ी और लोहे का ढांचा तैयार किया जाता है। कामली परिवार के मूर्तिकार हाथों से मिट्टी और POP का लेप लगाकर बाप्पा के अंगों, चेहरे और मुकुट को तराशते हैं। आखिर में बाप्पा की आंखें बनाई जाती हैं, जो इस मूर्ति का सबसे आकर्षक हिस्सा होती हैं। इसके बाद पूरी प्रतिमा को सुंदर रंगों से रंगा जाता है और विशेष आभूषणों से सजाया जाता है, दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर साल लाल बाग चा राजा की प्रतिमा का चेहरा, मुकुट और पूरे शरीर की बनावट लगभग समान रखी जाती है। हाँ, लेकिन प्रतिमा को नया स्वरूप देने के लिए उसकी मुद्राएं और श्रृंगार एक अलग थीम पर किया जाता है। पिछले साल यानी 2025 में लाल बाग चा राजा का स्वरूप कुछ ऐसा नजर आया था। ये प्रतिमा लगभग 14 से 15 फीट की भव्य ऊंचाई वाली थी, जिसे राजसी अंदाज में विराजित किया गया था। बाप्पा ने गहरे गुलाबी रंग की मखमली धोती और तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध शिवारी नामम से सजा अंग वस्त्र धारण किया था। गणपति के सिर पर सोने का भव्य मुकुट लगाया गया था। बाप्पा के एक हाथ में चक्र और दूसरे में शंख सुशोभित था। पंडाल को एक सुनहरे शाही महल जैसा लुक दिया गया था। पंडाल में स्वर्ण स्तंभ लगाए गए थे, जिनके दोनों ओर हाथियों और उनके वाहन मूषक की सुंदर मूर्तियां रखी गई थी। अब की बार भी लाल बाग चा राजा गणेश मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया भर के श्रद्धालु लाल बाग चा राजा का स्वरूप निहारने की प्रतीक्षा में हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बाबा अनीप करोरी के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर विजय रथ जारी है। फिल्म ने 35वें दिन भी करोड़ों की कमाई, अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर आगे भी संत महापुरुषों के जीवन और उनके संदेश को बड़े पर्दे तक लाने की तैयारी में है।
2: जिस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर महज 10 लाख रुपए की कमाई से हुई, आज वही फिल्म करोड़ों की कमाई कर रही है। बात हो रही है फिल्म हनुमान अंश की। नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेश से प्रेरित इस फिल्म ने 35 दिन बाद ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इस फिल्म ने रिलीज के 35वें दिन करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 163 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 193 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी छोटे बजट से शुरू हुआ ये सफर अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी की कहानी बन चुका है।
3: मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, टीम का कोई सदस्य भी क्रेडिट नहीं ले सकता, सिर्फ महाराज जी को क्रेडिट जाता है क्योंकि इनकी आशीर्वाद हमारे साथ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो ऑडियंस है, जो डिवोटीज है, जो जो ये फिल्म देख रहा है थिएटर में जाकर, बहुत बहुत बार देख, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख रहा है, फैमिली के साथ देख रहा है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो एक एक महीना 30 दिन से ज्यादा हमारी फिल्म चल रही है थिएटर में। इनफैक्ट पहले हफ्ते के एंड में ही बता दिया गया था हमें कि फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई थी इंडस्ट्री में, लेकिन महाराज जी की ही कृपा है, उनकी आशीर्वाद है कि अभी हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, लोगों तक पहुंची। इनफैक्ट अभी ग्लोबल रिलीज भी हो रही है हमारी फिल्म पूरे दुनिया भर में।
2: फिल्म की इस कामयाबी के बीच प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंची। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद लिया। फिल्म की सफलता और संतों का आशीर्वाद अनुप्रिया नागर के लिए ये पल बेहद खास रहा।
3: बहुत ही ओवरवेल्म मैं फील कर रही थी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो हमेशा हमेशा के लिए मैं साथ में रखूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी भी घबराहट हो तो बस महादेव का स्मरण करो, बजरंगबली का स्मरण करो।
2: अनुप्रिया नागर ने हनुमान अंश की सफलता का श्रेय भगवान और संतों की कृपा को दिया। इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि यदि स्वामी कैलाशानंद महाराज की अनुमति मिली तो वो भविष्य में उनके जीवन चरित्र पर भी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगी।
3: मुझे दिखाई दी कि स्टीव जॉब्स जो है वो महाराज जी से प्रभावित हुए थे, और जब मैं वापस आई इंडिया कुछ काम के सिलसिले, तो मैं, मुझे लगता है महाराज जी ने ही मुझे हनुमान अंश की टीम से मिलाया। और तब शूटिंग हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बस थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी तब। और तब मुझे कहा गया था कि देखो ये फिल्म इस पड़ाव तक तो पहुंच गई है, लेकिन फंड्स की जरूरत है। तो तब पता नहीं, ये अगेन मैं कहती हूँ मेरा थॉट नहीं है, ये महाराज जी का ही थॉट है कि उन्होंने कहा कि बेटा जो भी तुमने कमाई की है तुम ये सब इसमें डाल दो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी सबको कि ये फिल्म तीन महिलाओं ने बनाई है, तीन महिलाओं ने ये प्रोड्यूस किया है फिल्म, तो मेरा तो सिर्फ 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें।
4: अच्छा, आज स्वामी जी से भी मुलाकात हुई, स्वामी जी के ऊपर भी आपने फिल्म बनाने की बात की।
3: मैं चाहूंगी, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और उनकी जो टीचिंग्स है, जो उनकी तपस्या है, वो मैं पूरे विश्व तक ले जाऊं। पर जब वो चाहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो वही मार्गदर्शन देंगे।
5: उनसे कहा कि गुरुजी मैं आपके ऊपर बनाना चाहती हूँ, पर मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हमें अपनी साधना करने दो, और अभी हमारे ऊपर कोई पिक्चर ना बनाओ। अभी तो आप उन बुजुर्गों के ऊपर पिक्चर बनाओ जो देश के बड़े महात्मा थे, जो बड़े महात्मा हैं, जो बुजुर्ग साधु हैं, उनके ऊपर बनाओ। हमारे ऊपर आप तब बनाना जब हमारी इच्छा होगी, और हमारे हमें जब भगवान शिव की या भगवती की जब प्रेरणा होगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मेरे ऊपर तुम बनाना।
2: हनुमान अंश के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। यूके में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के दौरान अनुप्रिया नागर एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के जीवन पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स के जीवन के कठिन दौर में बाबा नीम करोली का गहरा प्रभाव रहा था। इसी प्रेरणा ने उन्हें भारत के महान संतों और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिया, जिसके बाद हनुमान अंश की नींव रखी गई। अनुप्रिया का लक्ष्य आने वाले समय में भी ऐसे ही महान संत महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक फिल्में बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब आपको ले चलते हैं श्रीनगर की मशहूर डल झील, जहां पर इन दिनों सिनेमा पानी पर उतर आया है। झील के रहरों के बीच बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों का मजा। कश्मीर में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बीच डल झील का ये सिनेमाई अंदाज लोगों को खूब भा रहा है।
6: कश्मीर की वादियां, डल झील की लहरें और सामने बड़ा पर्दा। शाम का आसमान जैसे ही रंग बदलता है, डल झील का नजारा भी बदल जाता है। हाउस बोट और शिकारे के बीच सजता है फ्लोटिंग सिनेमा, और पानी पर बैठकर शुरू होता है फिल्मों का सफर। सिनेमा देखने का ये अंदाज श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के लिए किसी यादगार अनुभव से कम नहीं। यहाँ थिएटर की चार दीवारें नहीं, खुला आसमान है, कुर्सियों की कतारें नहीं, झील की लहरें हैं और स्क्रीन के पीछे है कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी तरफ खींचा।
7: एक्सपीरियंस हमने किया है यहाँ पे कि हमने चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह में देखे कि रोड साइड थिएटर्स वगैरह होते हैं, मगर ये जो डल के अंदर इन्हें थिएटर क्रिएट किया है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्पेशली एक ऐसी मूवी जो कश्मीर में शूट की गई है, सारी यादें ताज़ा हो जाती है इनको देखे। हमारे
6: फ्लोटिंग सिनेमा में इस बार बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग ने माहौल को और खास बना दिया। बड़े पर्दे पर पुराने दौर की फिल्में और सामने वही कश्मीर जो कभी हिंदी फिल्मों की कहानियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। किसी के लिए ये पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका है तो किसी के लिए कश्मीर में फिल्म देखने का बिल्कुल नया अनुभव।
8: हर साल ये फेस्टिवल होता रहे और इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहें ताकि जो पुरानी रिवायत थी जम्मू एंड कश्मीर की बॉलीवुड के साथ वो फिर से एक कनेक्ट हो और फिर से फिल्म स्टार्स बॉलीवुड के लोग पूरे मुल्क से इंटरनेशनल लोग यहाँ आए फिल्म शूट करें, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारा जो फिल्म टूरिज्म का पोटेंशियल है उसमें मदद मिले।
6: दरअसल कश्मीर और भारतीय सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है। 60 और 70 के दशक में तो कश्मीर की कली, जंगली, आरजू और कभी कभी जैसी फिल्मों ने कश्मीर की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस तरह पेश किया कि घाटी खुद एक सिनेमाई किरदार बन गई। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, डल झील, शिकारे और वादियों में गूंजते गीत, कश्मीर की ये तस्वीर देश ही नहीं दुनिया के दर्शकों की कल्पना का हिस्सा बन गई। घाटी के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 135 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां पहुंची थी।
9: बहुत ही यूनिक हुआ है इस बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ है बेसिकली कश्मीर में। इससे पहले यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा नहीं हुआ है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जितनी मूवीज आप देख रहे हैं सब कश्मीर बेस्ड शो कर रहे हैं। अब जैसे ये मूवी जंगली है, मैंने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, ये पूरी मूवी ही कश्मीर में शूट हुई थी।
10: फ्लोटिंग सिनेमा मेरे सामने ही चल रहा है तो ये जंगली पिक्चर यहीं शूट हुई है। बहुत मैं बचपन में छोटा था जो ये पिक्चर आई थी, तो इसको देखकर मुझे बचपन की यादें ताज़ा हो गई और मैं और भी भाइयों से पर्यटकों से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में आएं और जो ये यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है इसकी वजह से भी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
6: शाम ढलती है, डल झील पर रोशनी जगमगाती है और बड़े पर्दे पर चलती है फिल्म। कश्मीर की जिस खूबसूरती ने कभी बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाया था, आज वही खूबसूरती खुद एक बार फिर सिनेमा का हिस्सा बन रही है। डल झील का ये फ्लोटिंग सिनेमा सिर्फ एक नया आकर्षण नहीं बल्कि कश्मीर और सिनेमा के पुराने रिश्ते की एक नई तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए आपको लिए चलते हैं लद्दाख और आपको मिलवाते हैं उन रियल हीरो से जो देश की रक्षा के लिए खुद बंदूकें तो नहीं उठाते लेकिन देश के उन सैनिकों की राह आसान बनाते हैं जो एलएसी जैसी दुर्गम सीमा पर 2400 घंटे देश की निगरानी करते हैं। देखिए हमारे सहयोगी मीर फरीद की खारदुंगला से ये रिपोर्ट।
11: करीबन 18,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, सांसों में घुलती ऑक्सीजन की कमी और दुर्गम पहाड़, ये तस्वीरें लद्दाख में खारदुंगला टॉप के नजदीक के इलाके की हैं। ये वो जगह है जहां आमतौर पर इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां मौजूद ये लोग सड़क बनाने का बेहद चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं और हौसले की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार काम में जुटे ये वो गुमनाम चेहरे हैं जो खुद भले ही हथियार उठाने वाले सैनिक नहीं हैं, लेकिन देश की सेना के जवानों की राह आसान बनाने वाले ये असली हीरो हैं। इनकी मेहनत देश की सबसे ऊंची सरहदों तक पहुंच सहज बना रही है।
12: अब ये जो वर्क फोर्स आप देख रहे हैं इस ऑल्टीट्यूड पे 50% ऑक्सीजन पे ये लोग ये ढलाई और इतने मेहनत का जो काम करते हैं, ज्यादातर ये वर्क फोर्स जो है झारखंड से है और ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स जो भी खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट्स है वहां पे तैनात रहते हैं। ड्यूटी का कोई ये नहीं है, पूरा दिन तो काम है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई यानी कि कोई लैंडस्लाइड हो गई, रास्ता बंद हो गया, तो अचानक इनको जो है डिप्लॉय होना पड़ता है।
11: ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उस सरहद तक पहुंचने वाली लाइफलाइन है जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद सेना के जवान देश की सुरक्षा का मोर्चा संभालते हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एलएसी के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करने का अभियान शुरू किया। तब से यहां पर हर मौसम में चालू रहने वाली शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं, आवाजाही सुगम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको अंजाम देने में जुटे हैं ऐसे सैकड़ों मजदूर जो मौसम की दुश्वारियों के बावजूद यहां पर अपने काम में रम चुके हैं।
13: हम काम कर रहे हैं 2022।
12: तो ये बताइए, जब पहले आए तो दिक्कत कितनी हुई, क्योंकि यहाँ सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
13: वो थोड़ा बहुत होता है फर्स्ट वर्ष में, इसके बाद आदत हो जाता है।
12: आदत हो जाता है। तो दिन में जब आप ये काम करते हैं, ये पूरे रास्ते में आपके लोग जो है फैले हुए हैं, कितना मुश्किल है ये काम?
13: ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मतलब इधर उधर है, थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा ही काम होता है, ज्यादा काम नहीं होता है।
12: कितने सालों से यहाँ है?
13: 3 महीने से आगे।
12: अच्छा, 3 महीने से। तो क्या ज्यादा दिक्कत परेशानियां इस जगह पे होती हैं, क्या क्या आपको रोज जो है जूझना पड़ता है?
13: दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीजन का ही दिक्कत है, बाकी
12: ऑक्सीजन का दिक्कत है। वो कितना मेहनत का काम।
11: हकीकत तो यही है कि अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर ये लोग देश के सबसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें 6 महीने में एक बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन ये लोग बिना थके बिना रुके अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ चुनौती सिर्फ वज्र के समान कठोर पहाड़ नहीं है बल्कि मौसम का मिजाज भी है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
12: जैसे ही अक्टूबर आएगा तो यहाँ बर्फ होगी, ठंड जो है माइनस में चले जाएगा 15-20 तक, और फिर इन हाइट्स पे सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये असली लोग हैं जो कि पूरे साल यहाँ काम करते हैं, और जो बॉर्डर रोड्स आज हम देख रहे हैं जिस शक्ल में, कितने अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं, पूरा LAC LOC तक कनेक्ट हो रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स के तहत काम हो रहा है। तो यही लोग हैं जो इन दुर्गम हाइट्स पे इन मुश्किल इलाकों में काम करते हैं, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इनके पीछे के जो आप कहेंगे असली अनसंग हीरोज यही मजदूर हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं।
11: इन इलाकों में कभी बर्फीला तूफान आता है तो कभी लैंडस्लाइड होता है और कभी अचानक सैलाब भी आ जाता है, लेकिन इनका काम रुकता नहीं है। जहां मशीनें भी लड़खड़ा जाती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से पत्थरों को तोड़कर रास्ते तैयार करते हैं ताकि इन दुर्गम इलाकों में सरहदों की हिफाजत करने में जुटे सेना के जवानों तक रसद और जरूरी साजो सामान पहुंचाया जा सके। हर मुश्किल के बावजूद इनका काम जारी रहता है क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। लद्दाख के खारदुंगला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: सेना के तर्कश में आएंगे नए नए हथियार, 1,00,000 करोड़ का वार प्लान तैयार, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का बूस्टर डोज। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: गुड न्यूज टुडे ने पहले ही ये एक कंफर्म और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इस बार कहीं ना कहीं लालबाग के राजा की जो थीम है वो रामेश्वर से जोड़ी जाएगी और बिल्कुल वही देखने मिल रहा है। देखिए कितने ज्यादा सुंदर इस समय लालबाग के राजा तो लग ही रहे हैं, लेकिन लालबाग के राजा का ये जो मंदिर परिसर है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। बकायदा यहाँ पर त्रिशूल लगा है, डमरू लगाया गया है और डायमंड से इस पूरे वातावरण को सजाया गया है। साथ ही साथ बप्पा की जो दरबार का भीतर का जो तस्वीर है वो सिल्वर और गोल्डन रूप में है। आपको बता दें कि लगभग तमाम एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है इस समय लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। 14 तारीख से सुबह 5 बजे ही बप्पा का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं साथ ही साथ इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं, मुंबई पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर साथ ही साथ बीएमसी के बहुत से ऐसे आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में लीन रहते हैं वो सारे इस समय यहाँ मौजूद हैं और लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। बेहद ज्यादा इस समय सुंदर लालबाग के राजा नजर आ रहे हैं और हमेशा की तरह वही आंखें, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे वो सभी को देख रही हैं और कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी से ये कहना चाह रही पप्पा की आंखें कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखरने के लिए हम आ गए। और वाकई में इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। 14 तारीख से यानी कि 2 दिन बाद ही बप्पा का दरबार खुल जाएगा और कल रात से ही बप्पा के लिए लोग कतारों में खड़े हो जाएंगे जो उनके पैर छूना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय लालबाग के राजा के दरबार में इस समय मौजूद हूं और अब लालबाग के राजा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, जो भी सेवादार हैं वो इस समय सभी यहां पर मौजूद हो गए हैं। साथ ही साथ मीडिया भी एक बड़ी संख्या में यहां मौजूद है और जैसा कि आपको बताएं लालबाग के राजा इस समय मुंबई देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई यहां पर आकर के उनका दर्शन करना चाहता है।
1: लालबाग का राजा जब भी आने वाले रहते हैं तो जैसे हमारे घर के सदस्य आ रहे हैं ऐसे 10 दिन का माहौल रहता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे छोटा बच्चा भी है, वो भी लालबाग के राजा के लिए उत्सुक है। वो भी कितनी भीड़ हो कुछ भी हो पर राजा के दर्शन पहले चाहिए रहते हैं।
0: लेकिन आप तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही होंगी क्योंकि बाकी लोगों को 14 तारीख से दर्शन मिलेगा वो भी घंटों कतार में रहने के बाद, लेकिन आप तो सीधे मुख्य दर्शन, कितनी एक्साइटेड है?
1: जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो यहाँ पे जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, अफकोर्स लालबाग की राजा की मान्यता है तो वो हिसाब से भीड़ तो रहती है, लेकिन बहुत सारे भाविक जो है सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं तो सब जगह से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से भी यहाँ पे भाविक आते रहते हैं। गणपति बप्पा
2: लालबाग के राजा को हम लोग दर साल आते हैं, हर साल आते हैं। कहानियां तो बहुत सारी है बट हम लोग बहुत मतलब पूरे साल राह देख रहे होते हैं कि इस साल हमें गणपति के दर्शन हो जाए और ये जो फर्स्ट लुक होता है इसके लिए हम लोग पूरे साल राह देख रहे होते हैं।
0: अच्छा, इस पर रामेश्वर की थीम नजर आ रही है यानी कि शंकर भगवान इर्द गिर्द होंगे अपने सुपुत्र श्री गणेश जी के लिए, तो मजा आएगा देखने में।
2: हाँ, इसीलिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। इस बार की थीम भी अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और जो थीम है उस हिसाब से सब कुछ किया गया है, तो बहुत एक्साइटेड है 10 दिन लालबाग के राजा की सेवा में देने के लिए।
0: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। क्या कहेंगी लालबाग के राजा का जो पर्दा है कुछ देर में हटने वाला है, कितनी एक्साइटेड हो, क्या बोलेंगे?
2: बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग हर साल देखने आते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है।
0: क्या काम करते हैं?
2: हम लोग तो जॉब करते हैं आईटी में।
0: लेकिन मुझे लगता है 9-10 दिन की छुट्टी ले लेंगे इस बार।
2: ले लेंगे पक्का,
3: ले लिए
0: सारी सेवा। लालबाग के राजा का आईडी कार्ड भी आपको मिल गया, राइट? लालबाग के राजा का आसपास ही रहते हैं
2: यार, बाजू में ही रहते हैं हम लोग, बस पड़ता।
0: जितनी भी जगह है ये भर जाएगी, चलने की जगह नहीं होने वाली है इतना ज्यादा,
2: घर से बाहर नहीं निकल सकते।
0: आप क्या कहेंगे लालबाग के राजा जब भी आते हैं कितनी एक्साइटनेस होती है और कैसे आप इस जीवन को जीते हो, लालबाग के राजा को लेकर क्या कहोगे?
3: आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरा पहला साल है, जस्ट मैरिड ओवर हियर।
4: गणपति के सभी पंडालों में लालबाग चौराजा की ख्याति देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग एक सदी से लालबाग चौराजा हर साल गणेशोत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं और इस साल लालबाग चौराजा पंडाल के 92 साल पूरे हो रहे हैं। बता दें कि लालबाग चौराजा के पंडाल की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद अनोखी है।

0: चा राजा की पहली झलक का। लाल बाग चा राजा की महिमा वाकई निराली है। सिद्धि विनायक का ये स्वरूप और उनका ये पंडाल भक्तों को हमेशा से भाता रहा है। तभी तो गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ लाल बाग चा राजा के दरबार में ही जुटती है। चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा का दरबार सज चुका है। उत्सव की हर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस लाल बाग चा राजा के नए स्वरूप के अनावरण का। गणेश उत्सव के दौरान यूं तो पूरी मुंबई में गणपति के कई पंडाल सजते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो लाल बाग चा राजा की। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर मन्नतों के गणेश यानी लाल बाग चा राजा के स्वरूप पर होती है। हर बार लाल बाग चा राजा का रंग रूप अनोखा होता है। लाल बाग चा राजा की इस प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया बेहद खास और पारंपरिक होती है। ये मूर्ति किसी सांचे में नहीं बल्कि हाथों से गढ़ी जाती है और इसे बनाने में कई महीने लग जाते हैं। 1935 से इस भव्य प्रतिमा को मुंबई का प्रसिद्ध कांबली परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनाता आ रहा है। गणेशोत्सव के महीनों पहले वर्कशॉप में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। मुख्य मूर्ति को आकार देने के लिए POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी और बांस के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विशाल काय मूर्ति को मजबूत आधार मिले। सबसे पहले मूर्ति को स्थिरता देने के लिए लकड़ी और लोहे का ढांचा तैयार किया जाता है। कामली परिवार के मूर्तिकार हाथों से मिट्टी और POP का लेप लगाकर बाप्पा के अंगों, चेहरे और मुकुट को तराशते हैं। आखिर में बाप्पा की आंखें बनाई जाती हैं, जो इस मूर्ति का सबसे आकर्षक हिस्सा होती हैं। इसके बाद पूरी प्रतिमा को सुंदर रंगों से रंगा जाता है और विशेष आभूषणों से सजाया जाता है। दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर साल लाल बाग चा राजा की प्रतिमा का चेहरा, मुकुट और पूरे शरीर की बनावट लगभग समान रखी जाती है। हाँ, लेकिन प्रतिमा को नया स्वरूप देने के लिए उसकी मुद्राएं और श्रृंगार एक अलग थीम पर किया जाता है। पिछले साल यानी 2025 में लाल बाग चा राजा का स्वरूप कुछ ऐसा नजर आया था। ये प्रतिमा लगभग 14 से 15 फीट की भव्य ऊंचाई वाली थी, जिसे राजसी अंदाज में विराजित किया गया था। बापा ने गहरे गुलाबी रंग की मखमली धोती और तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध शिवारी नामम से सजा अंग वस्त्र धारण किया था। गणपति के सिर पर सोने का भव्य मुकुट लगाया गया था। बापा के एक हाथ में चक्र और दूसरे में शंख सुशोभित था। पंडाल को एक सुनहरे शाही महल जैसा लुक दिया गया था। पंडाल में स्वर्ण स्तंभ लगाए गए थे, जिनके दोनों ओर हाथियों और उनके वाहन मूषक की सुंदर मूर्तियां रखी गई थी। अब की बार भी लाल बाग चा राजा गणेश मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया भर के श्रद्धालु लाल बाग चा राजा का स्वरूप निहारने की प्रतीक्षा में हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धूमधाम और भक्तिभाव से गणपति की पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मोदक के बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि गौरी नंदन को मोदक बहुत पसंद है। बप्पा को 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा है। ये भी बता दें कि मोदक संस्कृत के शब्द मोदा से आया है, जिसका मतलब होता है कि आनंद यानी कि खुशी, यानी एक मिष्ठान जिससे आनंद मिलता हो। तो चलिए आपको बताते हैं मोदक की शुरुआत कैसे हुई और ये गणपति का सबसे प्रिय भोग कैसे बन गया।

गोल मटोल सुंदर सजीला, क्या रूप सजा है। ऊपर अध्यात्म का सफेद रंग और अंदर जैसे भक्ति का भाव भरा है। मोद यानी आनंद देने वाला है ये, इसीलिए तो नाम मोदक है। और इसका महत्व ये है कि महाकाय यानी बप्पा को सबसे प्रिय है, इसीलिए तो बप्पा के आने से पहले महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में घर घर मोदक तैयार हो रहे हैं।

0: जैसे बप्पा पूरे देश में पूजे जाते हैं, ठीक वैसे ही मोदक हर शहर में बनाए जाते हैं। पर परंपरा और स्वाद में महाराष्ट्र के उकडीशे मोदक का जवाब नहीं। देखिए कैसे सधे हुए हाथ पहले चावल के आटे से परत तैयार करते हैं। इसके अंदर नारियल, काजू, बादाम और गुड़ का मिश्रण भरा जाता है, फिर भाप में पकाया जाता है। जायके के लिए जरा सा घी और सजाने के लिए केसर।
1: इसके अंदर जो मिश्रण है वो बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है, और वाकई में स्वाद बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। उकड़ी का मोदक मुझे लगता है कि दूसरे भी राज्यों में बहुत ही रेयर जगह मिलता होगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के हर घरों में बन रहा है, तो शॉप में तो होगा ही। अच्छा, कितनी देर में एक बन जाता है ये?
2: ये दो, एक दो मिनट में बन जाता है।
0: मुंबई में गणेश गली के पास जहाँ लालबाग चौराहा का भी पंडाल है, मोदक की भारी मांग होती है। न सिर्फ इसे बप्पा को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है, बल्कि भेंट स्वरूप रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दिया जाता है।
1: इतना मराठियों को और स्पेशली महाराष्ट्र की संस्कृति बन गई है ये मोदक जो है, उकड़ी का मोदक, क्यों इतना ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और क्यों इतना ज्यादा आप लोग इसमें घुले हुए?
2: मतलब ये अभी तो पारंपरिक ही है, मतलब परंपरा से ही बनते आ रहे हैं, मतलब बहुत साल से ही बनते ही आ रहा है। और ज़्यादातर मतलब ये गुड़ है, उसमें नारियल है, नारियल तो हम शुभ ही मानते हैं उसको जैसे, और गुड़ का मतलब जैसे गोडवा रहता है अच्छे, हम त्यौहार के लिए हम सब मिठाई खाते हैं, और काजू बादाम रहते हैं उसमें भी हम त्यौहार में यूज़ करते हैं, इसके लिए सब ये गोडवा रहता है, इसके लिए हम मतलब त्यौहार में जो मीठा रहता है इसके लिए हम ये सब सामग्री
1: के मुँह में मिठास जाए प्रसाद के तौर पे लोग पसंद करें, इसलिए उकड़ी का ये जो मोदक है बहुत ज्यादा इसे पसंद किया जाता है।
0: एक मिठाई जिसका अपना इतिहास, अपनी खास परंपरा है, गणपति की भक्ति से गहरी जुड़ी है। जब बप्पा पंडाल में विराजेंगे भक्तों के चेहरे पर खुशी होगी और सामने सजे होंगे उनके प्रिय मोदक। इन मोदकों में सिर्फ मिठास नहीं, भक्तों की श्रद्धा भी घुली है।
3: गणेश जी कुछ घंटों में पधारने वाले हैं और उसकी तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो तारदालकर फैमिली है जो पुणे के कोथुड़ में रहती है, ये इस तरह के जो गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए ये मोदक बनाते हैं, लेकिन ये जो मोदक है बाहर जाते हैं यानी कि सिंगापुर जाते हैं और महाराष्ट्र के कई कोनों में ये जो मोदक है वो जाते हैं और इसके साथ ही इनका बिजनेस भी हो जाता है, लेकिन इसके अलावा एक 12 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये जो गणेश फेस्टिवल है इस दौरान ये जो मोदक है उसका आस्वाद लेने के लिए हर कोई तरसता है।
4: सबसे पहले 15 साल पहले हमने, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने मिलके ये सोचा कि महाराष्ट्रियन फूड हेरिटेज हमें बरकरार रखना है, इसलिए हमने ये शुरुआत की, स्टार्टअप किया ये बिजनेस को। पहले तो सिर्फ 100 मोदक बिके पहले साल, उसके बाद धीरे धीरे करके अब हजारों लाखों में हमारा मोदक बना चुके हैं आज तक हम।
0: मुंबई हो या पुणे, महाराष्ट्र में हर जगह इस वक्त बड़ी तादाद में मोदक बनाए जा रहे हैं। वजह भी है, गणेशोत्सव में इनकी भारी मांग होती है, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और यहाँ तक कि मोदक विदेश भी जाते हैं।
5: माता जी ने तुरंत ही मोदक बनाया और मोदक गणपति जी को दिया। जैसे गणपति जी ने मोदक खाया वैसे ही गणपति जी को तो डकार आई, साथ ही साथ भोलेनाथ को भी किस बार डकार आई। तो पार्वती माता जी ने पूछा कि प्रभु पाया तो मतलब गणेश जी ने खाया, तो गणेश जी ने मतलब पाना बोलते हैं संस्कृत में, तो भोलेनाथ बोले कि सभी में गणपति हैं और मैं ही गणपति का रूप हूँ, गणपति ही मेरे रूप हैं, क्योंकि अथर्वशीर्ष में लिखा है तम ब्रह्मा तम विष्णु तम दृष्ट तम दृष्ट गणेश, मतलब भगवान गणपति ही सभी देवी देवता के रूप माने जाते हैं। तभी से 21 मोदक गणपति जी को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, और 21 मोदक चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि गणपति जी के मतलब प्रसन्न होते हैं, और जिनके यदि कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य नहीं हो रहा पा रहा है, तो 21 मोदक यदि आप चढ़ा दें तो गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं।
0: मोदक का अनूठा स्वाद इसे मन भावन बनाता है, लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि उत्तर भारत में जहाँ भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाया जाता है, पश्चिम और दक्षिण भारत में उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि बप्पा को मोदक इतने पसंद क्यों है, तो सुनिए कहानी। माता पार्वती को इंद्र ने एक मोदक दिया था, मोदक एक लेकिन पुत्र दो, गणेश और कार्तिकेय। इसीलिए माता ने शर्त रख दी, कि जो सभी तीर्थों की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही मोदक खाएगा। कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर तीर्थों की यात्रा पर निकल गए, लेकिन बुद्धिमान गणेश ने झटपट अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और दलील दी कि माता पिता में ही सभी तीर्थ हैं। पुत्र की बुद्धिमता से पार्वती प्रसन्न हुई और मोदक उन्हें दिया गया। लेकिन मोदक से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती और गणेश के अनसुया के आश्रम पहुंचे। तमाम खाद्य पदार्थों के बावजूद बालक गणेश का पेट नहीं भरा, तब अनुसुया ने उन्हें खाने के लिए मोदक दिया। चावल, नारियल और गुड़, मोदक इन तीन चीजों से बनता है और ये तीनों धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसीलिए मोदक से शुभता और पवित्रता का भाव भी जुड़ा है। मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक शुरू होते ही मिठाई का बाजार गुलजार हो जाता है, जहां भांति भांति के मोदक सजे हैं। मोदक के लिए मुंबई की लड्डू सम्राट दुकान भी मशहूर है, जहां वैसे तो अलग अलग स्वाद और नाम के मोदक मौजूद हैं, पर उकड़ी के मोदक की बात ही निराली है।
1: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। तस्वीरें खुद देखें, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। कुछ इस तरीके से फूलहार बनाने का काम इस समय मुंबई के लालबाग के राजा के आसपास इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं दूसरे भी मंडलों द्वारा स्थापित की जाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो श्री गणेश को जो सबसे ज्यादा पसंद मिठाई है उसे लेकर के है, यानी कि मोदक। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में, और जहाँ पर लालबाग के राजा भी विराजमान होते हैं और गणेश गली मुंबई के जो राजा के नाम से मशहूर हैं वो भी यहाँ विराजमान होते हैं।
0: मोदक की खासियत सिर्फ इसका स्वाद नहीं बल्कि इसका आकार भी है। जो ये हुनर जानते हैं वो नई पीढ़ी को इसकी बारीकियाँ समझाते भी हैं, उसे सिखाते भी हैं। उखरीचे के साथ तला हुआ मोदक भी अपनी अलग पहचान रखता है। गेहूं के आटे या फिर मैदे की सुनहरी कुरकुरी परत, अंदर गुड़ और नारियल की मीठी भरपाई, और अब इसी परंपरा में बच्चों के लिए चॉकलेट वाला अंदाज भी जुड़ चुका है। पिघली चॉकलेट को सांचे में डालकर उसमें मेवे और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं।
6: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं, और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए।
0: महाराष्ट्र से निकला स्वाद दिल्ली में चावल के साथ काजू, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट और कलाकंद में ढल गया। जेंजी की पसंद को देखते हुए चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर्स पर भी काम किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली की इन गलियों में मोदक की मिठास पुरानी है, लेकिन हर साल इसमें जुड़ता गया नया अंदाज जिसने इसे और खास बना दिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो बप्पा पधारने वाले हैं और बप्पा के दर्शन लगातार हम आपको करवाते रहेंगे गुड न्यूज टुडे पर। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: बाबा अनीब करोरी के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर विजय रथ जारी है। फिल्म ने 35वें दिन भी करोड़ों की कमाई, अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। फिल्म के प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर आगे भी संत महापुरुषों के जीवन और उनके संदेश को बड़े पर्दे तक लाने की तैयारी में है।
3: जिस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर महज 10 लाख रुपए की कमाई से हुई, आज वही फिल्म करोड़ों की कमाई कर रही है। बात हो रही है फिल्म हनुमान अंश की। नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेश से प्रेरित इस फिल्म ने 35 दिन बाद ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इस फिल्म ने रिलीज के 35वें दिन करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 163 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 193 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी छोटे बजट से शुरू हुआ ये सफर अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी की कहानी बन चुका है।
4: मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, टीम का कोई सदस्य भी क्रेडिट नहीं ले सकता, सिर्फ महाराज जी को क्रेडिट जाता है क्योंकि इनकी आशीर्वाद हमारे साथ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो ऑडियंस है, जो डिवोटीज है, जो जो ये फिल्म देख रहा है थिएटर में जाकर, बहुत बहुत बार देख, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख रहा है, फैमिली के साथ देख रहा है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो एक महीना 30 दिन से ज्यादा हमारी फिल्म चल रही है थिएटर में। इनफैक्ट पहले हफ्ते के एंड में ही बता दिया गया था हमें कि फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई थी इंडस्ट्री में, लेकिन महाराज जी की ही कृपा है, उनकी आशीर्वाद है कि अभी हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, लोगों तक पहुंची। इनफैक्ट अभी ग्लोबल रिलीज भी हो रही है हमारी फिल्म पूरे दुनिया भर में।
3: फिल्म की इस कामयाबी के बीच प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंची। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद लिया। फिल्म की सफलता और संतों का आशीर्वाद अनुप्रिया नागर के लिए ये पल बेहद खास रहा।
4: बहुत ही ओवरवेल्म मैं फील कर रही थी। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो हमेशा हमेशा के लिए मैं साथ में रखूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी भी घबराहट हो तो बस महादेव का स्मरण करो, बजरंगबली का स्मरण करो।
3: अनुप्रिया नागर ने हनुमान अंश की सफलता का श्रेय भगवान और संतों की कृपा को दिया। इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि यदि स्वामी कैलाशानंद महाराज की अनुमति मिली तो वो भविष्य में उनके जीवन चरित्र पर भी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगी।
4: मुझे दिखाई दी कि स्टीव जॉब्स जो है वो महाराज जी से प्रभावित हुए थे, और जब मैं वापस आई इंडिया कुछ काम के सिलसिले, तो मुझे लगता है महाराज जी ने ही मुझे हनुमान अंश की टीम से मिलाया। और तब शूटिंग हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बस थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी तब। और तब मुझे कहा गया था कि देखो ये फिल्म इस पड़ाव तक तो पहुंच गई है, लेकिन फंड्स की जरूरत है। तो तब पता नहीं, ये अगेन मैं कहती हूँ ये मेरा थॉट नहीं है, ये महाराज जी का ही थॉट है कि उन्होंने कहा कि बेटा जो भी तुमने कमाई की है तुम ये सब इसमें डाल दो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी सबको कि ये फिल्म तीन महिलाओं ने बनाई है, तीन महिलाओं ने ये प्रोड्यूस किया है फिल्म, तो मेरा तो सिर्फ 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें।
5: अच्छा, आज स्वामी जी से भी मुलाकात हुई, स्वामी जी के ऊपर भी आपने फिल्म बनाने की बात की।
4: मैं चाहूंगी, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और उनकी जो टीचिंग्स है, जो उनकी तपस्या है, वो मैं पूरे विश्व तक ले जाऊं। पर जब वो चाहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो वही मार्गदर्शन देंगे।
6: उनसे कहा कि गुरुजी मैं आपके ऊपर बनाना चाहती हूँ, पर मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी हमें अपनी साधना करने दो और अभी हमारे ऊपर कोई पिक्चर ना बनाओ। अभी तो आप उन बुजुर्गों के ऊपर पिक्चर बनाओ जो देश के बड़े महात्मा थे, जो बड़े महात्मा है, जो बुजुर्ग साधु हैं उनके ऊपर बनाओ, हमारे ऊपर आप तब बनाना जब हमारी इच्छा होगी और हमारे हमें जब भगवान शिव की या भगवती की जब प्रेरणा होगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मेरे ऊपर तुम बनाना।
3: हनुमान अंश के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। यूके में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के दौरान अनुप्रिया नागर एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के जीवन पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स के जीवन के कठिन दौर में बाबा नीम करोली का गहरा प्रभाव रहा था। इसी प्रेरणा ने उन्हें भारत के महान संतों और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिया, जिसके बाद हनुमान अंश की नींव रखी गई। अनुप्रिया का लक्ष्य आने वाले समय में भी ऐसे ही महान संत महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक फिल्में बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भव्य और विराट स्वरूप में पधारे मुंबई के लालबाग के राजा जयंती पर। लालबाग चौराहा के पहले दर्शन सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होगा बप्पा का इंतजार, एक दिन बाद देश भर में पधारेंगे गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग, 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां, कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होना मौका, ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है, यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर खबर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा के बीच एक धुंध पैदा कर देती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हर खबर की पड़ताल होती है और हर खबर को परत दर परत खंगालने के बाद ही हम आप तक लाते हैं उस खबर का सच। तो आज ऐसी ही 2 खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए 2 वायरल वीडियोस की, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि बिहार में हाईवे की सड़क को टांके लगाकर ठीक किया जा रहा है। वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर बनी दीवारों को एमसील से रिपेयर किया गया। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे नेपाल का बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बाढ़ के दौरान कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और दोनों वीडियोस के जरिए काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में मजदूरों को सड़क में छेद करके स्टील की रॉड अंदर डालते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि वीडियो पटना बक्सर का है। दूसरा वीडियो मुंबई गोवा हाईवे का है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इस सड़क को ठीक करने के लिए एम सील का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए पत्थरों को चिपकाया गया। लेकिन सच्चाई क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
6: इन दो वीडियोस को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। इसके जरिए काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरारों को स्थायी रूप से ठीक करने के बजाय केवल पैचवर्क यानी मरम्मत करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य ने आम लोगों के बीच बहस को जन्म दे दिया। चिंता का कारण यह है कि करोड़ों की लागत से बनी नई सड़क और हाईवे पर बनी दीवारों में इतनी जल्दी दरारें कैसे आई। लोग गुणवत्ता और इस्तेमाल की गई सामान की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दोनों वीडियो को लेकर मीम्स बन रहे हैं। लोग तंज कस रहे हैं, सरकार के नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहे हैं। सड़क अधूरी और कटी हुई दिखाई दे रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को आरा बक्सर नेशनल हाईवे का बताते हुए यह दावा किया कि NH 922 का हाल देखिए। पटना बक्सर 4 लेन में लगाने पड़ रहे हैं टाके। अभी कुछ ही दिन पहले यह चमचमाती सड़क बनकर तैयार हुई थी और अभी से इसका दम निकलने लगा है। रोड जगह जगह से टूट रही है। देखकर साफ लग रहा है कि सरकार और ठेकेदार मिलकर सड़क की मरम्मत नहीं बल्कि उसका पंचर साट रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से बनी नई सड़क का यह हाल वाकई चिंताजनक है। वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि यह विकास है या सिर्फ खाना पूर्ति। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस वीडियो के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया और लिखा, विक्रमशिला सेतु के रफू के बाद में बिहार सरकार की सड़क पर टाका टेक्नोलॉजी। अब दूसरे वीडियो को देखिए। इसे शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई गोवा हाईवे पर बने ओवरब्रिज की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इन दोनों वीडियो के जरिए सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहा है। सड़क अधूरी और कटी हुई नजर आती है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है, मानो सड़क नहीं कोई कपड़ा हो जिसे रफू किया जा रहा हो। वहीं दूसरे वीडियो में मजदूरों को किसी हाईवे के साइड के पत्थर को चिपकाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को मुंबई गोवा हाईवे का बताया जा रहा है और दोनों वीडियोस लगातार वायरल किए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों वीडियोस को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और इसको लेकर जो दावा है हमने उसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दोनों वीडियोस को बारी बारी से खंगाला। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। इस दौरान हमें ये नजर आया कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क का एक हिस्सा खराब है जिसे बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें रफू जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। ड्रिल करके जहां जहां दरारें देखने को मिल रही हैं उसे भरा जा रहा है। हालांकि इस दौरान ये कहीं भी नजर नहीं आता कि सरिये को अंदर फिट किया जा रहा है। वीडियो देखने से साफ इशारा मिल रहा है कि ये पूरा वीडियो नहीं है, एक खास हिस्से को काटकर वायरल किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दूसरे वीडियो की भी जांच की जिसमें हाईवे के साइड पर पत्थरों को एक खास पॉइंट पर रखा गया है। ये हर जगह पर नहीं किया गया, दरार वाले हिस्से में ही इसे चिपकाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पुलों पर स्ट्रक्चरल मूवमेंट की जानकारी हासिल करने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां पर कोई बड़ी दरारें होती और एमसील से चिपकाया जाता तो फिर यहां पर गाड़ियों के आने जाने का मूवमेंट बंद कर दिया जाता, क्योंकि गाड़ियों के दबाव में यह अस्थायी तरीका काम नहीं करेगा। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि सड़क की सतह के दरारों को मजबूत करने की ये मानक इंजीनियरिंग तकनीक है या फिर काम चलाऊ काम किया जा रहा है। दूसरा सवाल यह कि अगर दोनों वीडियोस को लेकर दावा सही है तो फिर अब तक ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना।
6: वायरल हो रहे दोनों वीडियो का सच झूठ क्या है ये जानने के लिए हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। सबसे पहले हमने पहले वीडियो की जांच की, वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सोशल मीडिया साइट्स पर इस साल जून महीने में छपी इसके बारे में कई खबरें मिली। यह इसके बारे में यही जानकारी मिली कि वायरल हो रहा वीडियो पटना बक्सर NH 922 का ही है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जानकारी दी गई थी। 22 जून को प्रकाशित इस रिपोर्ट में बिहार के पटना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हवाले से ये बताया गया था कि भोजपुर जिले के बिहिया में NH 922 हाईवे के कुछ हिस्सों को काटते और भरते हुए वायरल हो रहे वीडियो के बारे में गलत जानकारी दी गई है। वीडियो में दिख रहा कार्य किसी निर्माण की खामी का नहीं बल्कि नियमित और सुनियोजित रखरखाव का हिस्सा है। कंक्रीट की सड़क में छोटे मोटे जोड़ों और दरारों को ठीक करने के लिए स्टिचिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी। वायरल वीडियो मरम्मत के बीच के चरण का है जिससे सड़क का हिस्सा अधूरा और कटा हुआ दिखाई दिया। काम पूरा होने के बाद सतह को मानक स्तर पर ठीक कर दिया जाता है।
5: स्टिचिंग जैसे जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट जो हाईवे में बनाते हैं ना, सीमेंट रोड बनाते हैं, तो उसमें जो स्लैब होता है उसमें जो है जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है वो कंटिन्यूअस ना होके स्लैब फॉर्मेशन में होता है, उसमें स्लैब बनती है 3.5 मीटर बाय 4 मीटर। तो जब उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो उनको स्टिचिंग मेथड से, अगर हमारे क्रैक्स बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, जैसे 3 mm है 5 mm तक क्रैक्स है, तो उनको स्टिचिंग करके ठीक किया सकता है। तो स्टिचिंग प्रॉपर कैसे करते हैं कि थोड़ा सा स्मॉल डाया का रिइंफोर्समेंट है और उसको डायगनली जो है उसमें इंसर्ट करते हैं क्रैक्स पोर्शन में। तो ये स्टिचिंग मेथड से भी सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट को ठीक करने की एक विधि है।
6: दरअसल स्टिचिंग प्रक्रिया कंक्रीट सड़कों और उनके जॉइंट्स या दरारों की मरम्मत और मजबूती बढ़ाने की एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें कंक्रीट स्लैब की टूटी हुई किनारों या दरारों को आपस में बांधकर जोड़ा जाता है ताकि सड़क अधिक समय तक टिक सके। यहाँ से साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे दूसरे वीडियो की पड़ताल में जुटी। इस वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि मुंबई गोवा हाईवे की कंक्रीट की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। हमने इसकी सत्यता जानने के लिए पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हम एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर पहुंचे। वीडियो में लोकेशन को भी टैग किया गया था। इसके अनुसार ये वीडियो मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का है। सर्च के दौरान हमें एक और इंस्टाग्राम यूजर पर वायरल हो रहे वीडियो जैसा ही वीडियो मिला। यहाँ पर भी यही जानकारी दी गई थी कि मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का वीडियो है और एमसील से दरारों को जोड़ा जा रहा है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि यशराज शेल के नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये वीडियो सबसे पहले पोस्ट किया था। NHAI ने इस वीडियो पर रिप्लाई भी किया था। NHAI यह साफ करना चाहता है कि VUP के पास जमीन के धंसने और जोड़ों के अलग होने की जो समस्या देखी गई, वह मानसून में बहुत ज्यादा बारिश के बाद हुई। VUP को मार्च 2026 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था और मानसून शुरू होने से पहले जमीन धंसने या किसी खराबी का कोई संकेत नहीं मिला था। वीडियो में डेक स्लैब की जो स्टिचिंग दिख रही है, वे प्रभावित PQC पैनल को सील करने और मजबूत करने के लिए तकनीकी रूप से मंजूर वैज्ञानिक तरीके का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जोड़ों के अलग होने की समस्या को ठीक करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, RE वॉल पैनल पर मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की हलचल या खिसकने की लगातार जांच और रिकॉर्डिंग की जा सके। इन मॉनिटरिंग डिवाइस को लगाने का मतलब यह नहीं है कि सुधार के उपाय नाकाफी है। जमीन धंसने की घटना के बाद सुरक्षा के जरूरी इंतजामों के साथ ट्रैफिक को तुरंत सर्विस रोड पर डायवर्ट कर दिया गया। अभी प्रभावित हिस्से पर ट्रैफिक की इजाजत नहीं है। जब तक जरूरी सुधार का काम पूरा नहीं हो जाता और पूरी तकनीकी जांच से यह पक्का नहीं हो जाता कि यह सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए सुरक्षित है, तब तक यह जगह ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी।
5: तो चिपकाने जैसा तो कुछ नहीं होता है बिटुमिनस रोड में। क्रैक सीलिंग जरूर होता है। क्रैक्स की जो विड्थ होती है ना, वो 1 mm 2 mm 3 mm 5 mm, तो जो स्मॉल क्रैक्स हैं उनको तो हम क्रैक सीलिंग से फिलअप कर सकते हैं। उसमें बिटुमिनस मिक्स केवल, अगर बहुत स्मॉल क्रैक्स हैं तो उनको केवल बिटुमिन मटेरियल से फिलअप कर देते हैं। थोड़ा सा वाइट क्रैक्स हैं उनको हम बिटुमिनस और स्लरी मिक्स करके उससे फिलअप कर देते हैं।
6: सर्च के दौरान हमें एक एक्स यूजर का पोस्ट भी मिला जिसमें उन्होंने मुंबई गोवा हाईवे वाले वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे का मखौल उड़ाते हुए यह कहा कि टेलटेल क्रैक गेज के जरिए मरम्मत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन वायरल करने वालों को इस तकनीक के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर टेलटेल क्रैक गेज तकनीक है क्या। दरअसल टेलटेल क्रैक गेज एक ऐसा सटीक और सरल उपकरण है जिसका उपयोग दीवारों, नींवों और दूसरे संरचनाओं में आई दरारों के चौड़े होने, बंद होने या खिसकने की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ में नेपाल में बहुत ज्यादा तबाही मची और इसी बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इस दौरान नेपाल में कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
7: बीतते दिन के साथ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी नेपाल की बाढ़ से जोड़कर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है। इसी कड़ी में अब ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। वीडियो में एक जगह कुछ लोग एक उंगली को उठाकर कुछ पढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि एक शख्स माइक पर कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में जानमाल का काफी नुकसान हुआ था और इस बाढ़ में अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग इसमें लापता हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ा हुआ वीडियो है, क्योंकि खड़े लोगों के सामने एक मौलाना जैसा शख्स नजर आता है। मौलाना कुछ मंत्र जैसे पढ़ रहा है, जिसे ये लोग दोहरा भी रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस धर्मांतरण का ही है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि नेपाल आपदा के दौरान 41 लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपनाते तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जरूर बड़ी खबर होती, मीडिया आउटलेट्स में इसके बारे में कोई जानकारी होती, लेकिन ऐसा कहीं कुछ मिला नहीं। पूरे वीडियो में अरबी में मंत्र सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल, पहला सवाल यानी ये था कि अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें कोई भी नेपाली बोलता क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल कि नेपाल में आपदा के बीच 41 लोगों ने अगर इस्लाम धर्म अपनाया है तो इसके बारे में कहीं पर भी कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, इस रिपोर्ट में सच्चाई जानिए।
7: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। हमने इसके बारे में लगातार खोजबीन की, लेकिन इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें अप्रैल 2024 में एक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया वीडियो मिला। ये वीडियो वायरल वीडियो जैसा ही था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो का नेपाल में आई हालिया आपदा से कोई संबंध नहीं है। आगे की खोजबीन में हमें कुछ तस्वीरें मिली जिनमें हमें वही लोकेशन और कार्यक्रम मिला जैसा वायरल वीडियो में नजर आ रहा था। कैप्शन में उस स्थान की पहचान बदियाह स्थित अल दावा एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसके बाद गूगल मैप्स पर खोज करने पर हमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित मस्जिद गजवा अल मुतैरी मिली। गूगल मैप्स पर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें वायरल वीडियो से मेल खाती थीं, जिससे ये पुष्टि हो गई कि फुटेज सऊदी अरब के रियाद का था न कि नेपाल का। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले सबूतों से ये स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल में आई बाढ़ से 2 साल पहले का है और सऊदी अरब के रियाद का है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और अब वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: अगर आप एक दिन के लिए टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे?
3: प्रिंसिपल बनूंगी। मैं को होमवर्क दूंगा, मैं स्कूल नहीं आऊंगा, मैं सबको डांस कराऊंगा।
4: नन्हे बच्चे क्या सोच रहे हैं ये समझना मुश्किल होता है। ऐसे में जब एक स्कूल में उनसे पूछा गया कि एक दिन के लिए टीचर बने तो क्या करोगे, जवाब में बच्चों ने खूब बतकही की। उनके जवाब पूरे सोशल मीडिया की जान बने हैं और हंसा रहे हैं। कोई प्रिंसिपल बनने की बात करता है तो कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आने की बात करता है, कोई बच्चा टीचर बनने के बाद स्टूडेंट्स को आइसक्रीम खिलाने की बात करता है। बच्चों का ये मासूम जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
3: आइसक्रीम खिलाऊंगा।
4: कद छोटा हो सकता है लेकिन हिम्मत और दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। अब इस छोटी सी बच्ची को ही देख लीजिए। बाइक पर बैठने के लिए बच्ची ने ऐसा तरीका निकाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। बाइक पर सीधे चढ़ने की बजाय बच्ची पीछे की तरफ से पैर रखकर सीट पर बैठ जाती है। उसका ये तरीका देखकर लोग उसकी समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्ची का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कलयुग के श्रवण कुमार ने अपनी असहाय माँ की अंतिम या बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए जो किया, उसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दी। चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ अपनी बुजुर्ग माँ को भगवान बांके बिहारी के दर्शन कराने के लिए एक छोटे ने अनोखा और संघर्षपूर्ण रास्ता चुना। वो अपनी माँ को एक लोहे के तसले में बैठाकर और उसे अपने सिर पर रखकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। पैरों में छाले और रास्ते की ढेरों कठिनाइयों के बावजूद बेटे के कदमों की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आई। उसकी ये जिद केवल अपनी माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखने की थी। जब ये छोटा बेटा अपनी माँ को सिर पर उठाए मंदिर परिसर में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के साथ साथ इस बेटे की हिम्मत को सलाम कर रहा था। इस बेहद प्यारे वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। एक हैंड पपेट ने न सिर्फ मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों का दिन बना दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर तरफ मुस्कान बिखेर दी है। बातचीत के अंदाज से इसने सफर को मजेदार बना दिया।
5: हाय हाय, बहुत ही प्यारा नाम है।
6: थैंक यू।
5: कैसा लगा मैं?
6: हाँ?
5: मैं कैसा लगा?
6: बहुत
5: अच्छा लगा।
6: बहुत क्यूट
5: है। मेरे को तो शर्म आ गई। आप किधर जा रहे हो? मैं भी आ जाऊँ।
6: आ जाओ।
5: पक्का?
6: पक्का।
5: आपके दांत के अंदर घुस जाऊँ?
6: हाँ आ जाओ।
5: ये मेरे को आने नहीं देखा।
6: क्यों नहीं आने दोगे?
5: ये ऐसा ही है।
6: हाँ
5: मार दो इसको।
4: हनुमानंश फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जिसने इंटरनेट पर पारा पढ़ा दिया। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है उसे देखकर लोग अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे।

0: जिनके प्रीत में रमते देवर दानव एक समान एक समान। हर हर महादेव।
1: असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बैठाया और हंसते हुए आगे बढ़ी। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था, दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यही जज्बा खेल को खास बनाता है, क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं। वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। वो नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। ये जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। क्यूटनेस की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता हुआ नजर आ रहा है। पांडा की ये मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और इस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। नया टैडी मिला तो इस छोटे से पपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टैडी की बेलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टैडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
3: बात करते हैं लालबाग चौराजा की, जो मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय पंडालों में विराजमान होते हैं। लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक सामने आ गया और उनकी भव्यता दिव्यता देखते ही बनती है। हर साल गणेशोत्सव से पहले विनायक के भक्तों को लालबाग चौराजा की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार रहता है। लालबाग के राजा को भक्तों की मुरादें और इच्छाएं पूरी करने वाला भगवान माना जाता है। ऐसी अटूट मान्यता है कि सच्चे मन से उनके दर पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम इस गणेश पंडाल की स्थापना साल 1934 में हुई थी। मुंबई के परेल इलाके में कोली समुदाय के लोगों और व्यापारियों ने लालबाग के राजा को पहली बार स्थापित किया था और इस साल लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल अपनी स्थापना के 93 वर्ष पूरे कर रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान यहाँ रोजाना 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अपने बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। अपनी मन्नतों के लिए घंटों लोग कतारों में इंतजार भी करते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होती। आम नागरिकों के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां भी यहाँ पहुंचते हैं अपने परिवारों के साथ बप्पा के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।

0: अगर साथ निभाने वाला सच्चा हो तो दुनिया की सारी धन दौलत फीकी लगने लगती है। संसाधन भले ही सीमित हो लेकिन प्यार का एहसास अनलिमिटेड होता है। तस्वीर देखिए, लाइन में खड़े होकर पति अपना काम पूरा कर रहे हैं, तभी पत्नी की नजर उनके माथे के पसीने पर पड़ती है और हाथ में पकड़े पेपर से ही उन्हें हवा करने लगती है। पत्नी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। लोग कह रहे हैं उम्र के हर पड़ाव पर ऐसा ही जीवन साथी मिले। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन बेंच बॉय के नाम से मशहूर फेंग युक्सियांग इसके मिसाल हैं। महज 2 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चीन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 586 अंक हासिल किए और हुबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अब चिलचिलाती धूप में फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। उनका जज्बा हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। माँ तो माँ ही होती है, काम चाहे कितने भी हो, बच्चों के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। इस वीडियो में भी माँ की ममता का ऐसा ही खूबसूरत अंदाज नजर आया। माँ रोटी बनाने में व्यस्त है, लेकिन इसी बीच अपने लाल को दुलारना भी नहीं भूल रही। कभी प्यार से उसे छूती है तो कभी अपने आंचल के करीब कर लेती है, और बच्चा भी माँ का प्यार पाकर खिलखिला रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो माँ बच्चे के इसी अनमोल रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: भव्य और विराट स्वरूप में पधारे मुंबई के लालबाग के राजा जयंती पर। लालबाग से राजा के पहले दर्शन सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होगा बप्पा का इंतजार, एक दिन बाद देशभर में पधारेंगे गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग। 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां। कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होना मौका। ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं लालबाग चार राजा की, जिनकी पहली झलक सामने आ गई है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले हमेशा की तरह गणपति के पंडाल का पर्दा उठा और लालबाग चार राजा की भव्य प्रतिमा सामने आई। इस साल मुंबई के इस मशहूर पंडाल को रामेश्वर की थीम पर सजाया गया है। गोल्डन और सिल्वर लुक वाले इस पंडाल से आज आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराएंगे, साथ ही मन्नतों के राजा कहे जाने वाले गणपति और उनके पंडाल की कहानी भी बताएंगे। इसके बाद बात होगी मोदक की। मोदक के बिना बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है, पर भगवान गणेश को ये मिष्ठान क्यों पसंद है और इसके पीछे कहानी क्या है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र में मोदक कैसे बनाया जाता है ये भी दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं लालबागचा राजा के फर्स्ट लुक की।

0: गुड न्यूज टुडे ने पहले ही ये एक कंफर्म और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इस बार कहीं ना कहीं लालबाग के राजा की जो थीम है वो रामेश्वर से जोड़ी जाएगी और बिल्कुल वही देखने मिल रहा है। देखिए कितने ज्यादा सुंदर इस समय लालबाग के राजा तो लग ही रहे हैं, लेकिन लालबाग के राजा का ये जो मंदिर परिसर है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। बकायदा यहाँ पर त्रिशूल लगा है, डमरू लगाया गया है और डायमंड से इस पूरे वातावरण को सजाया गया है। साथ ही साथ बप्पा की जो दरबार का भीतर का जो तस्वीर है वो सिल्वर और गोल्डन रूप में है। आपको बता दें कि लगभग तमाम एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है इस समय लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। 14 तारीख से सुबह 5 बजे ही बप्पा का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं साथ ही साथ इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं, मुंबई पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर साथ ही साथ बीएमसी के बहुत से ऐसे आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में लीन रहते हैं वो सारे इस समय यहाँ मौजूद हैं और लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। बेहद ज्यादा इस समय सुंदर लालबाग के राजा नजर आ रहे हैं और हमेशा की तरह वही आंखें, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे वो सभी को देख रही हैं और कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी से ये कहना चाह रही बप्पा की आंखें कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखरने के लिए हम आ गए। और वाकई में इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। 14 तारीख से यानी कि 2 दिन बाद ही बप्पा का दरबार खुल जाएगा और कल रात से ही बप्पा के लिए लोग कतारों में खड़े हो जाएंगे जो उनके पैर छूना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय लालबाग के राजा के दरबार में इस समय मौजूद हूं और अब लालबाग के राजा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, जो भी सेवादार हैं वो इस समय सभी यहां पर मौजूद हो गए हैं। साथ ही साथ मीडिया भी एक बड़ी संख्या में यहां मौजूद है और जैसा कि आपको बताएं लालबाग के राजा इस समय मुंबई देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई यहां पर आकर के उनका दर्शन करना चाहता है।
1: लालबाग का राजा जब भी आने वाले रहते हैं तो जैसे हमारे घर के सदस्य आ रहे हैं ऐसे 10 दिन का माहौल रहता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे छोटा बच्चा भी है, वो भी लालबाग के राजा के लिए उत्सुक है। वो भी कितनी भीड़ हो, कुछ भी हो, पर राजा के दर्शन पहले चाहिए रहते हैं।
0: लेकिन आप तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही होंगी क्योंकि बाकी लोगों को 14 तारीख से दर्शन मिलेगा वो भी घंटों कतार में रहने के बाद, लेकिन आप तो सीधे मुख्य दर्शन, कितनी एक्साइटेड है?
1: जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो यहाँ पे जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, अफकोर्स लालबाग की राजा की मान्यता है तो वो हिसाब से भीड़ तो रहती है, लेकिन बहुत सारे भाविक जो है सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं तो सब जगह से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से भी यहाँ पे भाविक आते रहते हैं। गणपति बप्पा।
2: लालबाग के राजा को हम लोग दर साल आते हैं, हर साल आते हैं। कहानियां तो बहुत सारी है बट हम लोग बहुत मतलब पूरे साल राह देख रहे होते हैं कि इस साल हमें गणपति के दर्शन हो जाए और ये जो फर्स्ट लुक होता है इसके लिए हम लोग पूरे साल राह देख रहे होते हैं।
0: अच्छा, इस पर रामेश्वर की थीम नजर आ रही है यानी कि शंकर भगवान इर्द गिर्द होंगे अपने सुपुत्र श्री गणेश जी के लिए, तो मजा आएगा देखने में।
2: हाँ, इसीलिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। इस बार की थीम भी अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और जो थीम है उस हिसाब से सब कुछ किया गया है, तो बहुत एक्साइटेड है। 10 दिन लालबाग के राजा की सेवा में देने के लिए।
0: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। क्या कहेंगी लालबाग के राजा का जो पर्दा है कुछ देर में हटने वाला है, कितनी एक्साइटेड हो, क्या बोलेंगे?
3: बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग हर साल देखने आते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड
0: है। क्या काम करते हैं?
3: हम लोग तो जॉब करते हैं आईटी में।
0: लेकिन मुझे लगता है 9-10 दिन की छुट्टी ले लेंगे इस बार।
3: ले लेंगे पक्का,
4: ले लिए।
0: लालबाग के राजा का आईडी कार्ड भी आपको मिल गया, राइट? लालबाग के राजा का आईडी कार्ड, आस पास ही रहते हैं
3: यार, बाजू में ही रहते हैं हम लोग। बस पड़ता
0: जितनी भी जगह है ये भर जाएगी, चलने की जगह नहीं होने वाली है, इतना ज्यादा
3: घर से बाहर नहीं निकल सकते।
0: आप क्या कहेंगे लालबाग के राजा जब भी आते हैं कितनी एक्साइटनेस होती है और कैसे आप इस जीवन को जीते हो, लालबाग के राजा को लेकर क्या कहोगे?
4: आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरा पहला साल है, जस्ट मैरिड ओवर हियर।
5: गणपति के सभी पंडालों में लालबाग चौराजा की ख्याति देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग एक सदी से लालबाग चौराजा हर साल गणेशोत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं और इस साल लालबाग चौराजा पंडाल के 92 साल पूरे हो रहे हैं। बता दें कि लालबाग चौराजा के पंडाल की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद अनोखी है।

ऊर्जा वर्षी लव करेया, यानी अगले बरस तू जल्दी आ। भक्तों से यही वादा था, सो आ गए बापा अपना वादा निभाने। अपनी पूरी भव्यता और विराट स्वरूप के साथ नवसाचा गणपति के रूप में, नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूरी करने वाले गणपति, लेकिन दुनिया इन्हें राजा के नाम से जानती है, लाल बाग चा राजा। अब बस इंतजार है तो लाल बाग चा राजा की पहली झलक का। लाल बाग चा राजा की महिमा वाकई निराली है। सिद्धि विनायक का ये स्वरूप और उनका ये पंडाल भक्तों को हमेशा से भाता रहा है। तभी तो गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ लाल बाग चा राजा के दरबार में ही जुटती है। चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा का दरबार सज चुका है।

0: तो पूरी मुंबई में गणपति के कई पंडाल सजते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो लालबाग चार राजा की। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर मन्नतों के गणेश यानी लालबाग चार राजा के स्वरूप पर होती है। हर बार लालबाग चार राजा का रंग रूप अनोखा होता है। लालबाग चार राजा की इस प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया बेहद खास और पारंपरिक होती है। ये मूर्ति किसी सांचे में नहीं बल्कि हाथों से गढ़ी जाती है और इसे बनाने में कई महीने लग जाते हैं। 1935 से इस भव्य प्रतिमा को मुंबई का प्रसिद्ध कांबली परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी बनाता आ रहा है। गणेशोत्सव के महीनों पहले वर्कशॉप में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। मुख्य मूर्ति को आकार देने के लिए POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी और बांस के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विशाल काय मूर्ति को मजबूत आधार मिले। सबसे पहले मूर्ति को स्थिरता देने के लिए लकड़ी और लोहे का ढांचा तैयार किया जाता है। कामली परिवार के मूर्तिकार हाथों से मिट्टी और POP का लेप लगाकर बाप्पा के अंगों, चेहरे और मुकुट को तराशते हैं। आखिर में बाप्पा की आंखें बनाई जाती हैं, जो इस मूर्ति का सबसे आकर्षक हिस्सा होती हैं। इसके बाद पूरी प्रतिमा को सुंदर रंगों से रंगा जाता है और विशेष आभूषणों से सजाया जाता है। दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर साल लालबाग चार राजा की प्रतिमा का चेहरा, मुकुट और पूरे शरीर की बनावट लगभग समान रखी जाती है। हाँ, लेकिन प्रतिमा को नया स्वरूप देने के लिए उसकी मुद्राएं और श्रृंगार एक अलग थीम पर किया जाता है। पिछले साल यानी 2025 में लालबाग चार राजा का स्वरूप कुछ ऐसा नजर आया था। ये प्रतिमा लगभग 14 से 15 फीट की भव्य ऊंचाई वाली थी, जिसे राजसी अंदाज में विराजित किया गया था। बाप्पा ने गहरे गुलाबी रंग की मखमली धोती और तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध शिवारी नामम से सजा अंग वस्त्र धारण किया था। गणपति के सिर पर सोने का भव्य मुकुट लगाया गया था। बाप्पा के एक हाथ में चक्र और दूसरे में शंख सुशोभित था। पंडाल को एक सुनहरे शाही महल जैसा लुक दिया गया था। पंडाल में स्वर्ण स्तंभ लगाए गए थे, जिनके दोनों ओर हाथियों और उनके वाहन मूषक की सुंदर मूर्तियां रखी गई थी। अब की बार भी लालबाग चार राजा गणेश मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया भर के श्रद्धालु लालबाग चार राजा का स्वरूप निहारने की प्रतीक्षा में हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धूमधाम और भक्तिभाव से गणपति की पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मोदक के बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि गौरी नंदन को मोदक बहुत पसंद है। बप्पा को 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा है। ये भी बता दें कि मोदक संस्कृत के शब्द मोदा से आया है, जिसका मतलब होता है कि आनंद यानी कि खुशी, यानी एक मिष्ठान जिससे आनंद मिलता हो। तो चलिए आपको बताते हैं मोदक की शुरुआत कैसे हुई और ये गणपति का सबसे प्रिय भोग कैसे बन गया।

0: गोल मटोल सुंदर सजीला, क्या रूप सजा है। ऊपर अध्यात्म का सफेद रंग और अंदर जैसे भक्ति का भाव भरा है। मोद यानी आनंद देने वाला है ये, इसीलिए तो नाम मोदक है। और इसका महत्व ये है कि महाकाई यानी बप्पा को सबसे प्रिय है, इसीलिए तो बप्पा के आने से पहले महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में घर घर मोदक तैयार हो रहे हैं। जैसे बप्पा पूरे देश में पूजे जाते हैं, ठीक वैसे ही मोदक हर शहर में बनाए जाते हैं। पर परंपरा और स्वाद में महाराष्ट्र के उकडीशे मोदक का जवाब नहीं। देखिए कैसे सधे हुए हाथ पहले चावल के आटे से परत तैयार करते हैं। इसके अंदर नारियल, काजू, बादाम और गुड़ का मिश्रण भरा जाता है, फिर भाप में पकाया जाता है। जायके के लिए जरा सा घी और सजाने के लिए केसर।
1: हाँ हाँ हाँ,

0: इसके अंदर जो मिश्रण है वो बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है, और वाकई में स्वाद बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। उकड़ी का मोदक मुझे लगता है कि दूसरे भी राज्यों में बहुत ही रेयर जगह मिलता होगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के हर घरों में बन रहा है, तो शॉप में तो होगा ही। अच्छा, कितनी देर में एक बन जाता है ये?
1: ये दो, एक दो मिनट में बन जाता है।
2: मुंबई में गणेश गली के पास जहाँ लालबाग चा राजा का भी पंडाल है, मोदक की भारी मांग होती है। न सिर्फ इसे बप्पा को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है, बल्कि भेंट स्वरूप रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दिया जाता है।
0: इतना मराठियों को और स्पेशली महाराष्ट्र की संस्कृति बन गई है ये मोदक जो है, उकड़ी का मोदक, क्यों इतना ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और क्यों इतना ज्यादा आप लोग इसमें घुले हुए?
1: मतलब ये अभी तो पारंपरिक ही है, मतलब परंपरा से ही बनते आ रहे हैं, मतलब बहुत साल से ही बनते ही आ रहा है। और ज़्यादातर मतलब ये गुड़ है, उसमें नारियल है, नारियल तो हम शुभ ही मानते हैं उसको जैसे, और गुड़ का मतलब जैसे गोडवा रहता है अच्छे, हम त्यौहार के लिए हम सब मिठाई खाते हैं, और काजू बादाम रहते हैं उसमें भी हम त्यौहार में यूज़ करते हैं, इसके लिए सब ये गोडवा रहता है, इसके लिए हम मतलब त्यौहार में जो मीठा रहता है इसके लिए हम ये सब सामग्री
0: के मुँह में मिठास जाए प्रसाद के तौर पे लोग पसंद करें, इसलिए उकड़ी का ये जो मोदक है बहुत ज्यादा इसे पसंद किया जाता है।
2: एक मिठाई जिसका अपना इतिहास, अपनी खास परंपरा है, गणपति की भक्ति से गहरी जुड़ी है। जब बप्पा पंडाल में विराजेंगे, भक्तों के चेहरे पर खुशी होगी और सामने सजे होंगे उनके प्रिय मोदक। इन मोदकों में सिर्फ मिठास नहीं, भक्तों की श्रद्धा भी घुली है।
3: गणेश जी कुछ घंटों में पधारने वाले है और उसकी तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तारदालकर फैमिली जो पुणे के कोथुड़ में रहती है, ये इस तरह के जो गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए ये मोदक बनाते हैं, लेकिन ये जो मोदक है बाहर जाते हैं, यानी कि सिंगापुर जाते हैं और महाराष्ट्र के कई कोनों में ये जो मोदक है वो जाते हैं, और इसके साथ ही इनका बिजनेस भी हो जाता है, लेकिन इसके अलावा एक 12 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये जो गणेश फेस्टिवल है इस दौरान ये जो मोदक है उसका आस्वाद लेने के लिए हर कोई तरसता है।
4: सबसे पहले 15 साल पहले हमने, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने मिलके ये सोचा कि महाराष्ट्रियन फूड हेरिटेज हमें बरकरार रखना है, इसलिए हमने ये शुरुआत की, स्टार्टअप किया ये बिजनेस को। पहले तो सिर्फ 100 मोदक बिके पहले साल, उसके बाद धीरे धीरे के करके अब हजारों लाखों में हमारा मोदक बना चुके हैं आज तक हम।
2: मुंबई हो या पुणे, महाराष्ट्र में हर जगह इस वक्त बड़ी तादाद में मोदक बनाए जा रहे हैं। वजह भी है, गणेशोत्सव में इनकी भारी मांग होती है, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों, और यहाँ तक कि मोदक विदेश भी जाते हैं।
5: माता जी ने तुरंत ही मोदक बनाया और मोदक गणपति जी को दिया। जैसे गणपति जी ने मोदक खाया वैसे ही गणपति जी को तो डकार आई, साथ साथ भोलेनाथ को भी 21 बार डकार आई। तो पार्वती माता जी ने पूछा कि प्रभु पाया तो मतलब गणेश जी ने खाया तो गणेश जी ने, मतलब पाना बोलते हैं संस्कृत में, तो भोलेनाथ बोले कि सभी में गणपति हैं और मैं ही गणपति का रूप हूँ, गणपति ही मेरे रूप हैं, क्योंकि अथर्वशीर्ष में लिखा है तम ब्रह्मा तम विष्णु तम द्रस्त तम द्रस्त गणेश, मतलब भगवान गणपति ही सभी देवी देवता के रूप माने जाते हैं। तभी से 21 मोदक गणपति जी को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, और 21 मोदक चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि गणपति जी के मतलब प्रसन्न होते हैं, और जिनके यदि कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो 21 मोदक यदि आप चढ़ा दें तो गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं।
2: मोदक का अनूठा स्वाद इसे मन भावन बनाता है, लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि उत्तर भारत में जहाँ भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाया जाता है, पश्चिम और दक्षिण भारत में उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि बप्पा को मोदक इतने पसंद क्यों है, तो सुनिए कहानी। माता पार्वती को इंद्र ने एक मोदक दिया था, मोदक एक लेकिन पुत्र दो, गणेश और कार्तिकेय। इसीलिए माता ने शर्त रख दी कि जो सभी तीर्थों की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही मोदक खाएगा। कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर तीर्थों की यात्रा पर निकल गए, लेकिन बुद्धिमान गणेश ने झटपट अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और दलील दी कि माता पिता में ही सभी तीर्थ हैं। पुत्र की बुद्धिमता से पार्वती प्रसन्न हुई और मोदक उन्हें दिया गया। लेकिन मोदक से जुड़ी एक और कहानी है, जिसके मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती और गणेश के अनसुया के आश्रम पहुंचे। तमाम खाद्य पदार्थों के बावजूद बालक गणेश का पेट नहीं भरा, तब अनुसुया ने उन्हें खाने के लिए मोदक दिया। चावल, नारियल और गुड़, मोदक इन तीन चीजों से बनता है और ये तीनों धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसीलिए मोदक से शुभता और पवित्रता का भाव भी जुड़ा है। मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक शुरू होते ही मिठाई का बाजार गुलजार हो जाता है, जहां भांति भांति के मोदक सजे हैं। मोदक के लिए मुंबई की लड्डू सम्राट दुकान भी मशहूर है, जहां वैसे तो अलग अलग स्वाद और नाम के मोदक मौजूद हैं, पर उकड़ी के मोदक की बात ही निराली है।
0: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। तस्वीरें खुद देखें, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। कुछ इस तरीके से फूलहार बनाने का काम इस समय मुंबई के लालबाग के राजा के आसपास इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं दूसरे भी मंडलों द्वारा स्थापित की जाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो श्री गणेश को जो सबसे ज्यादा पसंद मिठाई है उसे लेकर के है, यानी कि मोदक। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में, और जहाँ पर लालबाग के राजा भी विराजमान होते हैं और गणेश गल्ले मुंबई के जो राजा के नाम से मशहूर हैं वो भी यहाँ विराजमान होते हैं।
2: मोदक की खासियत सिर्फ इसका स्वाद नहीं बल्कि इसका आकार भी है। जो ये हुनर जानते हैं वो नई पीढ़ी को इसकी बारीकियां समझाते भी हैं और उसे सिखाते भी हैं। उखरीचे के साथ तला हुआ मोदक भी अपनी अलग पहचान रखता है। गेहूं के आटे या फिर मैदे की सुनहरी कुरकुरी परत, अंदर गुड़ और नारियल की मीठी भरपाई, और अब इसी परंपरा में बच्चों के लिए चॉकलेट वाला अंदाज भी जुड़ चुका है। पिघली चॉकलेट को सांचे में डालकर उसमें मेवे और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं।
6: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं, और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए।
2: महाराष्ट्र से निकला स्वाद दिल्ली में चावल के साथ काजू, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट और कलाकंद में ढल गया। जेंजी की पसंद को देखते हुए चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर्स पर भी काम किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली की इन गलियों में मोदक की मिठास पुरानी है, लेकिन हर साल इसमें जुड़ता गया नया अंदाज जिसने इसे और खास बना दिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो बप्पा पधारने वाले हैं और बप्पा के दर्शन लगातार हम आपको करवाते रहेंगे गुड न्यूज टुडे पर। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: बाबा अनीप करोरी के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर विजय रथ जारी है। फिल्म ने 35वें दिन भी करोड़ों की कमाई, अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर आगे भी संत महापुरुषों के जीवन और उनके संदेश को बड़े पर्दे तक लाने की तैयारी में है।
11: जिस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर महज 10 लाख रुपए की कमाई से हुई, आज वही फिल्म करोड़ों की कमाई कर रही है। बात हो रही है फिल्म हनुमान अंश की। नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेश से प्रेरित इस फिल्म ने 35 दिन बाद ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इस फिल्म ने रिलीज के 35वें दिन करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 163 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 193 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी छोटे बजट से शुरू हुआ ये सफर अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी की कहानी बन चुका है।
13: मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, टीम का कोई सदस्य भी क्रेडिट नहीं ले सकता, सिर्फ महाराज जी को क्रेडिट जाता है क्योंकि इनकी आशीर्वाद हमारे साथ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो ऑडियंस है, जो डिवोटीज है, जो जो ये फिल्म देख रहा है थिएटर में जाकर, बहुत बहुत बार देख, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख रहा है, फैमिली के साथ देख रहा है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो एक एक महीना 30 दिन से ज्यादा हमारी फिल्म चल रही है थिएटर में। इनफैक्ट पहले हफ्ते के एंड में ही बता दिया गया था हमें कि फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई थी इंडस्ट्री में, लेकिन महाराज जी की ही कृपा है, उनकी आशीर्वाद है कि अभी हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, लोगों तक पहुंची। इनफैक्ट अभी ग्लोबल रिलीज भी हो रही है हमारी फिल्म पूरे दुनिया भर में।
11: फिल्म की इस कामयाबी के बीच प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंची। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद लिया। फिल्म की सफलता और संतों का आशीर्वाद अनुप्रिया नागर के लिए ये पल बेहद खास रहा।
13: बहुत ही ओवरवेल्म मैं फील कर रही थी। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो हमेशा हमेशा के लिए मैं साथ में रखूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी भी घबराहट हो तो बस महादेव का स्मरण करो, बजरंगबली का स्मरण करो।
11: अनुप्रिया नागर ने हनुमान अंश की सफलता का श्रेय भगवान और संतों की कृपा को दिया। इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि यदि स्वामी कैलाशानंद महाराज की अनुमति मिली तो वो भविष्य में उनके जीवन चरित्र पर भी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगी।
13: मुझे दिखाई दी कि स्टीव जॉब्स जो है वो महाराज जी से प्रभावित हुए थे, और जब मैं वापस आई इंडिया कुछ काम के सिलसिले, तो मैं, मुझे लगता है महाराज जी ने ही मुझे हनुमान अंश की टीम से मिलाया। और तब शूटिंग हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बस थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी तब। और तब मुझे कहा गया था कि देखो ये फिल्म इस पड़ाव तक तो पहुंच गई है, लेकिन फंड्स की जरूरत है। तो तब पता नहीं, ये अगेन मैं कहती हूँ मेरा थॉट नहीं है, ये महाराज जी का ही थॉट है कि उन्होंने कहा कि बेटा जो भी तुमने कमाई की है तुम ये सब इसमें डाल दो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी सबको कि ये फिल्म तीन महिलाओं ने बनाई है, तीन महिलाओं ने ये प्रोड्यूस किया है फिल्म, तो मेरा तो सिर्फ 1/3 कंट्रीब्यूशन था इसमें।
14: अच्छा, आज स्वामी जी से भी मुलाकात हुई, स्वामी जी के ऊपर भी आपने फिल्म बनाने की बात की।
13: तो मैं चाहूंगी, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और उनकी जो टीचिंग्स है, जो उनकी तपस्या है, वो मैं पूरे विश्व तक ले जाऊं। पर जब वो चाहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो वही मार्गदर्शन देंगे।
15: उनसे कहा कि गुरुजी मैं आपके ऊपर बनाना चाहती हूँ, पर मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी हमें अपनी साधना करने दो, और अभी हमारे ऊपर कोई पिक्चर ना बनाओ। अभी तो आप उन बुजुर्गों के ऊपर पिक्चर बनाओ जो देश के बड़े महात्मा थे, जो बड़े महात्मा है, जो बुजुर्ग साधु हैं, उनके ऊपर बनाओ। हमारे ऊपर आप तब बनाना जब हमारी इच्छा होगी, और हमारे हमें जब भगवान शिव की या भगवती की जब प्रेरणा होगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मेरे ऊपर तुम बनाना।
11: हनुमान अंश के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। यूके में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के दौरान अनुप्रिया नागर एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के जीवन पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स के जीवन के कठिन दौर में बाबा नीम करोली का गहरा प्रभाव रहा था। इसी प्रेरणा ने उन्हें भारत के महान संतों और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिया, जिसके बाद हनुमान अंश की नींव रखी गई। अनुप्रिया का लक्ष्य आने वाले समय में भी ऐसे ही महान संत महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक फिल्में बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भव्य और विराट स्वरूप में पधारे मुंबई के लालबाग के राजा जयंती पर। लालबाग चौराहे के पहले दर्शन सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होगा बप्पा का इंतजार, एक दिन बाद देशभर में पधारेंगे गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग। 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां। कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होना मौका। ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर खबर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा के बीच एक धुंध पैदा कर देती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हर खबर की पड़ताल होती है और हर खबर को परत दर परत खंगालने के बाद ही हम आप तक लाते हैं उस खबर का सच। तो आज ऐसी ही 2 खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए 2 वायरल वीडियोस की, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि बिहार में हाईवे की सड़क को टांके लगाकर ठीक किया जा रहा है। वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर बनी दीवारों को एमसील से रिपेयर किया गया। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे नेपाल का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाढ़ के दौरान कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दोनों वीडियोस के जरिए काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में मजदूरों को सड़क में छेद करके स्टील की रॉड अंदर डालते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि वीडियो पटना बक्सर का है। दूसरा वीडियो मुंबई गोवा हाईवे का है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इस सड़क को ठीक करने के लिए एम सील का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए पत्थरों को चिपकाया गया। लेकिन सच्चाई क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
2: इन दो वीडियोस को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। इसके जरिए काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरारों को स्थायी रूप से ठीक करने के बजाय केवल पैचवर्क यानी मरम्मत करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य ने आम लोगों के बीच बहस को जन्म दे दिया। चिंता का कारण यह है कि करोड़ों की लागत से बनी नई सड़क और हाईवे पर बनी दीवारों में इतनी जल्दी दरारें कैसे आई। लोग गुणवत्ता और इस्तेमाल की गई सामान की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दोनों वीडियो को लेकर मीम्स बन रहे हैं। लोग तंज कस रहे हैं, सरकार के नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहे हैं। सड़क अधूरी और कटी हुई दिखाई दे रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को आरा बक्सर नेशनल हाईवे का बताते हुए यह दावा किया कि NH 922 का हाल देखिए। पटना बक्सर 4 लेन में लगाने पड़ रहे हैं टाके। अभी कुछ ही दिन पहले यह चमचमाती सड़क बनकर तैयार हुई थी और अभी से इसका दम निकलने लगा है। रोड जगह जगह से टूट रही है। देखकर साफ लग रहा है कि सरकार और ठेकेदार मिलकर सड़क की मरम्मत नहीं बल्कि उसका पंचर साट रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से बनी नई सड़क का यह हाल वाकई चिंताजनक है। वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि यह विकास है या सिर्फ खाना पूर्ति। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस वीडियो के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया और लिखा, विक्रमशिला सेतु के रफू के बाद में बिहार सरकार की सड़क पर टाका टेक्नोलॉजी। अब दूसरे वीडियो को देखिए। इसे शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई गोवा हाईवे पर बने ओवरब्रिज की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इन दोनों वीडियो के जरिए सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहा है। सड़क अधूरी और कटी हुई नजर आती है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है, मानो सड़क नहीं कोई कपड़ा हो जिसे रफू किया जा रहा हो। वहीं दूसरे वीडियो में मजदूरों को किसी हाईवे के साइड के पत्थर को चिपकाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को मुंबई गोवा हाईवे का बताया जा रहा है और दोनों वीडियोस लगातार वायरल किए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों वीडियोस को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और इसको लेकर जो दावा है हमने उसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दोनों वीडियोस को बारी बारी से खंगाला। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। इस दौरान हमें ये नजर आया कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क का एक हिस्सा खराब है जिसे बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें रफू जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। ड्रिल करके जहां जहां दरारें देखने को मिल रही हैं उसे भरा जा रहा है। हालांकि इस दौरान ये कहीं भी नजर नहीं आता कि सरिये को अंदर फिट किया जा रहा है। वीडियो देखने से साफ इशारा मिल रहा है कि ये पूरा वीडियो नहीं है, एक खास हिस्से को काटकर वायरल किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दूसरे वीडियो की भी जांच की जिसमें हाईवे के साइड पर पत्थरों को एक खास पॉइंट पर रखा गया है। ये हर जगह पर नहीं किया गया, दरार वाले हिस्से में ही इसे चिपकाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पुलों पर स्ट्रक्चरल मूवमेंट की जानकारी हासिल करने के लिए यह किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां पर कोई बड़ी दरारें होती और एमसील से चिपकाया जाता तो फिर यहां पर गाड़ियों के आने जाने का मूवमेंट बंद कर दिया जाता, क्योंकि गाड़ियों के दबाव में ये अस्थायी तरीका काम नहीं करेगा। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि सड़क की सतह के दरारों को मजबूत करने की ये मानक इंजीनियरिंग तकनीक है या फिर काम चलाऊ काम किया जा रहा है। दूसरा सवाल यह कि अगर दोनों वीडियोस को लेकर दावा सही है तो फिर अब तक ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना।
2: वायरल हो रहे दोनों वीडियो का सच झूठ क्या है, ये जानने के लिए हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। सबसे पहले हमने पहले वीडियो की जांच की, वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सोशल मीडिया साइट्स पर इस साल जून महीने में छपी इसके बारे में कई खबरें मिली। यह इसके बारे में यही जानकारी मिली कि वायरल हो रहा वीडियो पटना बक्सर NH 922 का ही है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जानकारी दी गई थी। 22 जून को प्रकाशित इस रिपोर्ट में बिहार के पटना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हवाले से ये बताया गया था कि भोजपुर जिले के बिहिया में NH 922 हाईवे के कुछ हिस्सों को काटते और भरते हुए वायरल हो रहे वीडियो के बारे में गलत जानकारी दी गई है। वीडियो में दिख रहा कार्य किसी निर्माण की खामी का नहीं बल्कि नियमित और सुनियोजित रखरखाव का हिस्सा है। कंक्रीट की सड़क में छोटे मोटे जोड़ों और दरारों को ठीक करने के लिए स्टिचिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी। वायरल वीडियो मरम्मत के बीच के चरण का है जिससे सड़क का हिस्सा अधूरा और कटा हुआ दिखाई दिया। काम पूरा होने के बाद सतह को मानक स्तर पर ठीक कर दिया जाता है।
3: स्टिचिंग जैसे जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट जो हाईवे में बनाते हैं ना, सीमेंट रोड बनाते हैं, तो उसमें जो स्लैब होता है उसमें जो है जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है वो कंटिन्यूअस ना होकर स्लैब फॉर्मेशन में होता है। उसमें स्लैब बनती है 3.5 मीटर बाय 4 मीटर, तो जब उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो उनको स्टिचिंग मेथड से, अगर हमारे क्रैक्स बहुत ज्यादा वाइड नहीं है जैसे 3 mm है 5 mm तक क्रैक्स हैं, तो उनको स्टिचिंग करके ठीक किया सकता है। तो स्टिचिंग प्रॉपर कैसे करते हैं कि थोड़ा सा स्मॉल डाया का रिइंफोर्समेंट है और उसको डायगनली जो है उसमें इंसर्ट करते हैं क्रैक्स पोर्शन में, तो ये स्टिचिंग मेथड से भी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट को ठीक करने की एक विधि है।
2: दरअसल स्टिचिंग प्रक्रिया कंक्रीट सड़कों और उनके ज्वाइंट्स या दरारों की मरम्मत और मजबूती बढ़ाने की एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें कंक्रीट स्लैब की टूटी हुई किनारों या दरारों को आपस में बांधकर जोड़ा जाता है ताकि सड़क अधिक समय तक टिक सके। यहां से साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे दूसरे वीडियो की पड़ताल में जुटी। इस वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि मुंबई गोवा हाईवे की कंक्रीट की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। हमने इसकी सत्यता जानने के लिए पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हम एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर पहुंचे। वीडियो में लोकेशन को भी टैग किया गया था। इसके अनुसार ये वीडियो मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का है। सर्च के दौरान हमें एक और इंस्टाग्राम यूजर पर वायरल हो रहे वीडियो जैसा ही वीडियो मिला। यहाँ पर भी यही जानकारी दी गई थी कि मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का वीडियो है और एमसील से दरारों को जोड़ा जा रहा है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि यशराज शेल के नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये वीडियो सबसे पहले पोस्ट किया था। NHAI ने इस वीडियो पर रिप्लाई भी किया था। NHAI यह साफ करना चाहता है कि VUP के पास जमीन के धंसने और जोड़ों के अलग होने की जो समस्या देखी गई, वह मानसून में बहुत ज्यादा बारिश के बाद हुई। VUP को मार्च 2026 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था और मानसून शुरू होने से पहले जमीन धंसने या किसी खराबी का कोई संकेत नहीं मिला था। वीडियो में डेक स्लैब की जो स्टिचिंग दिख रही है, वे प्रभावित PQC पैनल को सील करने और मजबूत करने के लिए तकनीकी रूप से मंजूर वैज्ञानिक तरीके का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जोड़ों के अलग होने की समस्या को ठीक करने का काम किया जा रहा है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। आरी वॉल पैनल पर मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की हलचल या खिसकने की लगातार जांच और रिकॉर्डिंग की जा सके। इन मॉनिटरिंग डिवाइस को लगाने का मतलब यह नहीं है कि सुधार के उपाय नाकाफी है। जमीन धंसने की घटना के बाद सुरक्षा के जरूरी इंतजामों के साथ ट्रैफिक को तुरंत सर्विस रोड पर डायवर्ट कर दिया गया। अभी प्रभावित हिस्से पर ट्रैफिक की इजाजत नहीं है जब तक जरूरी सुधार का काम पूरा नहीं हो जाता और पूरी तकनीकी जांच से यह पक्का नहीं हो जाता कि यह सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए सुरक्षित है, तब तक यह जगह ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी।
3: तो चिपकाने जैसा तो कुछ नहीं होता है बिटुमिनस रोड में। क्रैक सीलिंग जरूर होता है। क्रैक्स की जो विड्थ होती है ना, वो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, तो जो स्मॉल क्रैक्स हैं उनको तो हम क्रैक सीलिंग से फिलअप कर सकते हैं। उसमें बिटुमिनस मिक्स केवल अगर बहुत स्मॉल क्रैक्स हैं तो उनको केवल बिटुमिन मटेरियल से फिलअप कर देते हैं। थोड़ा सा वाइट क्रैक्स हैं उनको हम बिटुमिनस और स्लरी मिक्स करके उससे फिलअप कर देते हैं।
2: सर्च के दौरान हमें एक एक्स यूजर का पोस्ट भी मिला जिसमें उन्होंने मुंबई गोवा हाईवे वाले वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे का मखौल उड़ाते हुए यह कहा कि टेलटेल क्रैक गेज के जरिए मरम्मत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन वायरल करने वालों को इस तकनीक के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर टेलटेल क्रैक गेज तकनीक है क्या। दरअसल टेलटेल क्रैक गेज एक ऐसा सटीक और सरल उपकरण है जिसका उपयोग दीवारों, नींवों और दूसरे संरचनाओं में आई दरारों के चौड़े होने, बंद होने या खिसकने की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ में नेपाल में बहुत ज्यादा तबाही मची और इसी बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इस दौरान नेपाल में कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
4: हर बीतते दिन के साथ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी नेपाल की बाढ़ से जोड़कर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसी कड़ी में अब ये वीडियो वायरल हुआ है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। वीडियो में एक जगह कुछ लोग एक उंगली को उठाकर कुछ पढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि एक शख्स माइक पर कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में जानमाल का काफी नुकसान हुआ था और इस बाढ़ में अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग इसमें लापता हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ा हुआ वीडियो है क्योंकि खड़े लोगों के सामने एक मौलाना जैसा शख्स नजर आता है। मौलाना कुछ मंत्र जैसे पढ़ रहा है जिसे ये लोग दोहरा भी रहे हैं लेकिन ये प्रोसेस धर्मांतरण का ही है ये साफ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके क्योंकि नेपाल आपदा के दौरान 41 लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपनाते तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जरूर बड़ी खबर होती, मीडिया आउटलेट्स में इसके बारे में कोई जानकारी होती लेकिन ऐसा कहीं कुछ मिला नहीं। पूरे वीडियो में अरबी में मंत्र सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल, पहला सवाल यानी ये था कि अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें कोई भी नेपाली बोलता क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल कि नेपाल में आपदा के बीच 41 लोगों ने अगर इस्लाम धर्म अपनाया है तो इसके बारे में कहीं पर भी कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, इस रिपोर्ट में सच्चाई जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। हमने इसके बारे में लगातार खोजबीन की लेकिन इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें अप्रैल 2024 में एक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया वीडियो मिला। ये वीडियो वायरल वीडियो जैसा ही था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो का नेपाल में आई हालिया आपदा से कोई संबंध नहीं है। आगे की खोजबीन में हमें कुछ तस्वीरें मिली जिनमें हमें वही लोकेशन और कार्यक्रम मिला जैसा वायरल वीडियो में नजर आ रहा था। कैप्शन में उस स्थान की पहचान बदियाह स्थित अल दावा एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसके बाद गूगल मैप्स पर खोज करने पर हमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित मस्जिद गजवा अल मुतैरी मिली। गूगल मैप्स पर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें वायरल वीडियो से मेल खाती थीं, जिससे ये पुष्टि हो गई कि फुटेज सऊदी अरब के रियाद का था न कि नेपाल का। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले सबूतों से ये स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल में आई बाढ़ से 2 साल पहले का है और सऊदी अरब के रियाद का है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: अगर आप एक दिन के लिए टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे?
11: प्रिंसिपल बनूंगी। मैं को होमवर्क दूंगा। मैं स्कूल नहीं आऊंगा। मैं सबको डांस कराऊंगा।
12: नन्हे बच्चे क्या सोच रहे हैं ये समझना मुश्किल होता है। ऐसे में जब एक स्कूल में उनसे पूछा गया कि एक दिन के लिए टीचर बने तो क्या करोगे, जवाब में बच्चों ने खूब बतकही की। उनके जवाब पूरे सोशल मीडिया की जान बने हैं और हंसा रहे हैं। कोई प्रिंसिपल बनने की बात करता है तो कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आने की बात करता है, कोई बच्चा टीचर बनने के बाद स्टूडेंट्स को आइसक्रीम खिलाने की बात करता है। बच्चों का ये मासूम जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
11: आइसक्रीम खिलाना।
12: कद छोटा हो सकता है, लेकिन हिम्मत और दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। अब इस छोटी सी बच्ची को ही देख लीजिए। बाइक पर बैठने के लिए बच्ची ने ऐसा तरीका निकाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। बाइक पर सीधे चढ़ने की बजाय बच्ची पीछे की तरफ से पैर रखकर सीट पर बैठ जाती है। उसका ये तरीका देखकर लोग उसकी समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्ची का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कलयुग के श्रवण कुमार ने अपनी असहाय माँ की अंतिम या बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए जो किया, उसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दी। चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ अपनी बुजुर्ग माँ को भगवान बांके बिहारी के दर्शन कराने के लिए एक छोटे ने अनोखा और संघर्षपूर्ण रास्ता चुना। वो अपनी माँ को एक लोहे के तसले में बैठाकर और उसे अपने सिर पर रखकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। पैरों में छाले और रास्ते की ढेरों कठिनाइयों के बावजूद बेटे के कदमों की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आई। उसकी ये जिद केवल अपनी माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखने की थी। जब ये छोटा बेटा अपनी माँ को सिर पर उठाए मंदिर परिसर में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के साथ साथ इस बेटे की हिम्मत को सलाम कर रहा था। इस बेहद प्यारे वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। एक हैंड पपेट ने न सिर्फ मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों का दिन बना दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर तरफ मुस्कान बिखेर दी है। बातचीत के अंदाज से इसने सफर को मजेदार बना दिया।
9: हाय हाय, बहुत ही प्यारा नाम है।
13: थैंक
9: यू। कैसा लगा मैं?
13: हाँ?
9: मैं कैसा लगा?
13: बहुत अच्छा
9: लगा।
13: बहुत
9: क्यूट। तेरे को तो शर्म आ गई। आप किधर जा रहे हो?
13: मैं
9: भी आ जाऊँ।
13: आ जाओ।
9: पक्का?
13: पक्का।
9: आपके बैग के अंदर घुस जाऊँ?
13: हाँ, आ जाओ।
9: ए?
13: हाँ, आ
9: जाओ। मेरे को आने नहीं देगा?
13: क्यों नहीं आने दोगे?
14: कॉमर्स सिक्स रोड
13: बोलो।
9: ये ऐसा ही है। हाँ,
13: गलत है। मारो,
9: मार दो इसको।
12: हरमानंश फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जिसने इंटरनेट पर पारा पढ़ा दिया। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है, उसे देखकर लोग अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे हैं।

0: महादेव।
1: असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बैठाया और हंसते हुए आगे बढ़े। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था, दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यही जज्बा खेल को खास बनाता है, क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं। वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। वो नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। ये जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। क्यूटनेस की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता हुआ नजर आ रहा है। पांडा की ये मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और इस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। नया टैडी मिला तो इस छोटे से पपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टैडी की बेलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टैडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करते हैं लालबाग चौराहा की, जो मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय पंडालों में विराजमान होते हैं। लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक सामने आ गया और उनकी भव्यता दिव्यता देखते ही बनती है। हर साल गणेशोत्सव से पहले विनायक के भक्तों को लालबाग चौराहा की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार रहता है। लालबाग के राजा को भक्तों की मुरादें और इच्छाएं पूरी करने वाला भगवान माना जाता है। ऐसी अटूट मान्यता है कि सच्चे मन से उनके दर पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम इस गणेश पंडाल की स्थापना साल 1934 में हुई थी। मुंबई के परेल इलाके में कोली समुदाय के लोगों और व्यापारियों ने लालबाग के राजा को पहली बार स्थापित किया था और इस साल लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल अपनी स्थापना के 93 वर्ष पूरे कर रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान यहाँ रोजाना 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अपने बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। अपनी मन्नतों के लिए घंटों लोग कतारों में इंतजार भी करते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होती। आम नागरिकों के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां भी यहाँ पहुंचते हैं अपने परिवारों के साथ बप्पा के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए। इसीलिए खबर के किंतु
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: अगर साथ निभाने वाला सच्चा हो तो दुनिया की सारी धन दौलत फीकी लगने लगती है। संसाधन भले ही सीमित हो लेकिन प्यार का एहसास अनलिमिटेड होता है। तस्वीर देखिए, लाइन में खड़े होकर पति अपना काम पूरा कर रहे हैं, तभी पत्नी की नजर उनके माथे के पसीने पर पड़ती है और हाथ में पकड़े पेपर से ही उन्हें हवा करने लगती है। पत्नी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। लोग कह रहे हैं उम्र के हर पड़ाव पर ऐसा ही जीवन साथी मिले। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन बेंच बॉय के नाम से मशहूर फेंग युक्सियांग इसके मिसाल हैं। महज 2 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चीन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 586 अंक हासिल किए और हुबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अब चिलचिलाती धूप में फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। उनका जज्बा हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। माँ तो माँ ही होती है, काम चाहे कितने भी हो, बच्चों के लिए उसका प्यार कभी कम। माँ तो माँ ही होती है, काम चाहे कितने भी हो, बच्चों के लिए उसका प्यार कभी कम। लाल को देखकर खिलखिला रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो माँ बच्चे के इसी अनमोल रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: भव्य और विराट स्वरूप में पधारे मुंबई के लालबाग के राजा। जयंती पर लालबाग चौराहा के पहले दर्शन सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होगा बप्पा का इंतजार, एक दिन बाद देश भर में पधारेंगे गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग। 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां। कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होना मौका। ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं लालबाग चार राजा की, जिनकी पहली झलक सामने आ गई है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले हमेशा की तरह गणपति के पंडाल का पर्दा उठा और लालबाग चार राजा की भव्य प्रतिमा सामने आई। इस साल मुंबई के इस मशहूर पंडाल को रामेश्वर की थीम पर सजाया गया है। गोल्डन और सिल्वर लुक वाले इस पंडाल से आज आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराएंगे, साथ ही मन्नतों के राजा कहे जाने वाले गणपति और उनके पंडाल की कहानी भी बताएंगे। इसके बाद बात होगी मोदक की। मोदक के बिना बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है, पर भगवान गणेश को ये मिष्ठान क्यों पसंद है और इसके पीछे कहानी क्या है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र में मोदक कैसे बनाया जाता है ये भी दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं लालबागचा राजा के फर्स्ट लुक की।

0: गुड न्यूज टुडे ने पहले ही ये एक कंफर्म और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इस बार कहीं ना कहीं लालबाग के राजा की जो थीम है वो रामेश्वर से जोड़ी जाएगी और बिल्कुल वही देखने मिल रहा है। देखिए कितने ज्यादा सुंदर इस समय लालबाग के राजा तो लग ही रहे हैं, लेकिन लालबाग के राजा का ये जो मंदिर परिसर है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। बकायदा यहाँ पर त्रिशूल लगा है, डमरू लगाया गया है और डायमंड से इस पूरे वातावरण को सजाया गया है। साथ ही साथ बप्पा की जो दरबार का भीतर का जो तस्वीर है वो सिल्वर और गोल्डन रूप में है। आपको बता दें कि लगभग तमाम एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है इस समय लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। 14 तारीख से सुबह 5 बजे ही बप्पा का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं साथ ही साथ इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं, मुंबई पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर साथ ही साथ बीएमसी के बहुत से ऐसे आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में लीन रहते हैं वो सारे इस समय यहाँ मौजूद हैं और लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। बेहद ज्यादा इस समय सुंदर लालबाग के राजा नजर आ रहे हैं और हमेशा की तरह वही आंखें, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे वो सभी को देख रही हैं और कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी से ये कहना चाह रही पप्पा की आंखें कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखरने के लिए हम आ गए। और वाकई में इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। 14 तारीख से यानी कि 2 दिन बाद ही बप्पा का दरबार खुल जाएगा और कल रात से ही बप्पा के लिए लोग कतारों में खड़े हो जाएंगे जो उनके पैर छूना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय लालबाग के राजा के दरबार में इस समय मौजूद हूं और अब लालबाग के राजा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, जो भी सेवादार हैं वो इस समय सभी यहां पर मौजूद हो गए हैं। साथ ही साथ मीडिया भी एक बड़ी संख्या में यहां मौजूद है और जैसा कि आपको बताएं लालबाग के राजा इस समय मुंबई देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई यहां पर आकर के उनका दर्शन करना चाहता है।
1: लालबाग का राजा जब भी आने वाले रहते हैं तो जैसे हमारे घर के सदस्य आ रहे हैं ऐसे 10 दिन का माहौल रहता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे छोटा बच्चा भी है, वो भी लालबाग के राजा के लिए उत्सुक है। वो भी कितनी भीड़ हो कुछ भी हो पर राजा के दर्शन पहले चाहिए रहते हैं।
0: लेकिन आप तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही होंगी क्योंकि बाकी लोगों को 14 तारीख से दर्शन मिलेगा वो भी घंटों कतार में रहने के बाद, लेकिन आप तो सीधे मुख्य दर्शन, कितनी एक्साइटेड है?
1: जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो यहाँ पे जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, अफकोर्स लालबाग की राजा की मान्यता है तो वो हिसाब से भीड़ तो रहती है, लेकिन बहुत सारे भाविक जो है सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं तो सब जगह से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से भी यहाँ पे भाविक आते रहते हैं। गणपति बप्पा।
2: लालबाग के राजा को हम लोग दर साल आते हैं, हर साल आते हैं। कहानियां तो बहुत सारी है बट हम लोग बहुत मतलब पूरे साल राह देख रहे होते हैं कि इस साल हमें गणपति के दर्शन हो जाए और ये जो फर्स्ट लुक होता है इसके लिए हम लोग पूरे साल राह देख रहे होते हैं।
0: अच्छा, इस पर रामेश्वर की थीम नजर आ रही है यानी कि शंकर भगवान इर्द गिर्द होंगे अपने सुपुत्र श्री गणेश जी के लिए, तो मजा आएगा देखने में।
2: हाँ, इसीलिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। इस बार की थीम भी अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और जो थीम है उस हिसाब से सब कुछ किया गया है, तो बहुत एक्साइटेड है 10 दिन लालबाग के राजा की सेवा में देने के लिए।
0: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। क्या कहेंगी लालबाग के राजा का जो पर्दा है कुछ देर में हटने वाला है, कितनी एक्साइटेड हो, क्या बोलेंगे?
3: बहुत, हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग हर साल देखने आते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है।
0: क्या काम करते हैं?
3: हम लोग तो जॉब करते हैं आईटी में।
0: लेकिन मुझे लगता है 9-10 दिन की छुट्टी ले लेंगे इस बार।
3: ले लेंगे पक्का।
0: ले लिए। लालबाग के राजा का आईडी कार्ड भी आपको मिल गया, राइट? लालबाग के राजा का आसपास ही रहते हैं
3: यार, बाजू में ही रहते हैं हम लोग। अच्छा। बस पड़ता
0: जितनी भी जगह है ये भर जाएगी, चलने की जगह नहीं होने वाली है इतना ज्यादा,
3: घर से बाहर नहीं निकल सकते।
0: आप क्या कहेंगे लालबाग के राजा जब भी आते हैं कितनी एक्साइटनेस होती है और कैसे आप इस जीवन को जीते हो, लालबाग के राजा को लेकर क्या कहोगे?
4: आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरा पहला साल है, जस्ट मैरिड ओवर ईयर।
5: गणपति के सभी पंडालों में लालबाग चौराजा की ख्याति देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग एक सदी से लालबाग चौराजा हर साल गणेशोत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं और इस साल लालबाग चौराजा पंडाल के 92 साल पूरे हो रहे हैं। बता दें कि लालबाग चौराजा के पंडाल की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद अनोखी है।

पुढच्या वर्षी लव करेया, यानी अगले बरस तू जल्दी या। भक्तों से यही वादा था, सो आ गए बाप्पा अपना वादा निभाने। अपनी पूरी भव्यता और विराट स्वरूप के साथ नवसाचा गणपति के रूप में, नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूरी करने वाले गणपति, लेकिन दुनिया इन्हें राजा के नाम से जानती है, लाल बाग चा राजा। अब बस इंतजार है तो लाल बाग चा राजा की पहली झलक का। लाल बाग चा राजा की महिमा वाकई निराली है। सिद्धि विनायक का ये स्वरूप और उनका ये पंडाल भक्तों को हमेशा से भाता रहा है। तभी तो गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ लाल बाग चा राजा के दरबार में ही जुटती है। चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा का दरबार सज चुका है, उत्सव की हर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस लाल बाग चा राजा के नए स्वरूप के अनावरण का। गणेश उत्सव के दौरान यूं तो पूरी मुंबई में गणपति के कई पंडाल सजते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो लाल बाग चा राजा की। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर मन्नतों के गणेश यानी लाल बाग चा राजा के स्वरूप पर होती है। हर बार लाल बाग चा राजा का रंग रूप अनोखा होता है। लाल बाग चा राजा की इस प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया बेहद खास और पारंपरिक होती है। ये मूर्ति किसी सांचे में नहीं बल्कि हाथों से गढ़ी जाती है और इसे बनाने में कई महीने लग जाते हैं। 1935 से इस भव्य प्रतिमा को मुंबई का

0: गणेशोत्सव के महीनों पहले वर्कशॉप में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। मुख्य मूर्ति को आकार देने के लिए POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी और बांस के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विशाल काय मूर्ति को मजबूत आधार मिले। सबसे पहले मूर्ति को स्थिरता देने के लिए लकड़ी और लोहे का ढांचा तैयार किया जाता है। कामली परिवार के मूर्तिकार हाथों से मिट्टी और POP का लेप लगाकर बाप्पा के अंगों, चेहरे और मुकुट को तराशते हैं। आखिर में बाप्पा की आंखें बनाई जाती हैं, जो इस मूर्ति का सबसे आकर्षक हिस्सा होती हैं। इसके बाद पूरी प्रतिमा को सुंदर रंगों से रंगा जाता है और विशेष आभूषणों से सजाया जाता है। दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर साल लालबाग चाहे राजा की प्रतिमा का चेहरा, मुकुट और पूरे शरीर की बनावट लगभग समान रखी जाती है। हाँ, लेकिन प्रतिमा को नया स्वरूप देने के लिए उसकी मुद्राएं और श्रृंगार एक अलग थीम पर किया जाता है। पिछले साल यानी 2025 में लालबाग चाहे राजा का स्वरूप कुछ ऐसा नजर आया था। ये प्रतिमा लगभग 14 से 15 फीट की भव्य ऊंचाई वाली थी, जिसे राजसी अंदाज में विराजित किया गया था। बापा ने गहरे गुलाबी रंग की मखमली धोती और तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध शिवारी नामम से सजा अंग वस्त्र धारण किया था। गणपति के सिर पर सोने का भव्य मुकुट लगाया गया था। बापा के एक हाथ में चक्र और दूसरे में शंख सुशोभित था। पंडाल को एक सुनहरे शाही महल जैसा लुक दिया गया था। पंडाल में स्वर्ण स्तंभ लगाए गए थे, जिनके दोनों ओर हाथियों और उनके वाहन मूषक की सुंदर मूर्तियां रखी गई थी। अब की बार भी लालबाग चा राजा गणेश मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दुनिया भर के श्रद्धालु लालबाग चा राजा का स्वरूप निहारने की प्रतीक्षा में हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धूमधाम और भक्तिभाव से गणपति की पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मोदक के बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि गौरी नंदन को मोदक बहुत पसंद है। बप्पा को 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा है। ये भी बता दें कि मोदक संस्कृत के शब्द मोदा से आया है, जिसका मतलब होता है कि आनंद यानी कि खुशी, यानी एक मिष्ठान जिससे आनंद मिलता हो। तो चलिए आपको बताते हैं मोदक की शुरुआत कैसे हुई और ये गणपति का सबसे प्रिय भोग कैसे बन गया।

0: गोल मटोल सुंदर सजीला, क्या रूप सजा है। ऊपर अध्यात्म का सफेद रंग और अंदर जैसे भक्ति का भाव भरा है। मोद यानी आनंद देने वाला है ये, इसीलिए तो नाम मोदक है। और इसका महत्व ये है कि महाकाय यानी बप्पा को सबसे प्रिय है, इसीलिए तो बप्पा के आने से पहले महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में घर घर मोदक तैयार हो रहे हैं। जैसे बप्पा पूरे देश में पूजे जाते हैं, ठीक वैसे ही मोदक हर शहर में बनाए जाते हैं। पर परंपरा और स्वाद में महाराष्ट्र के उकडीशे मोदक का जवाब नहीं। देखिए कैसे सधे हुए हाथ पहले चावल के आटे से परत तैयार करते हैं। इसके अंदर नारियल, काजू, बादाम और गुड़ का मिश्रण भरा जाता है, फिर भाप में पकाया जाता है। जायके के लिए जरा सा घी और सजाने के लिए केसर।
1: आहा, इसके अंदर जो मिश्रण है वो बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है, और वाकई में स्वाद बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। उकड़ी का मोदक मुझे लगता है कि दूसरे भी राज्यों में बहुत ही रेयर जगह मिलता होगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के हर घरों में बन रहा है, तो शॉप में तो होगा ही। अच्छा, कितनी देर में एक बन जाता है ये?
2: ये दो, एक दो मिनट में बन जाता है।
0: मुंबई में गणेश गली के पास जहाँ लाल बादशाह राजा का भी पंडाल है, मोदक की भारी मांग होती है। न सिर्फ इसे बप्पा को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है, बल्कि भेंट स्वरूप रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दिया जाता है।
1: इतना मराठियों को और स्पेशली महाराष्ट्र की संस्कृति बन गई है ये मोदक जो है, उकड़ी का मोदक, क्यों इतना ज्यादा लोग इसको पसंद कर

0: करते हैं और क्यों इतना ज्यादा आप लोग इसमें घुले हुए हैं?
1: मतलब ये अभी तो पारंपरिक ही है, मतलब परंपरा से ही बनते आ रहे हैं, मतलब बहुत साल से बनते ही आ रहा है। और ज़्यादातर मतलब ये गुड़ है, उसमें नारियल है, नारियल तो हम शुभ ही मानते हैं उसको जैसे, और गुड़ का मतलब जैसे गोडवा रहता है अच्छे, हम त्यौहार के लिए हम सब मिठाई खाते हैं, और काजू बादाम रहते हैं उसमें भी हम त्यौहार में यूज़ करते हैं, इसके लिए सब ये गोडवा रहता है, इसके लिए हम मतलब त्यौहार में जो मीठा रहता है इसके लिए हम ये सब सामग्री
0: के मुँह में मिठास जाए प्रसाद के तौर पे लोग पसंद करें, इसलिए उकड़ी का ये जो मोदक है बहुत ज्यादा इसे पसंद किया जाता है।
2: एक मिठाई जिसका अपना इतिहास, अपनी खास परंपरा है, गणपति की भक्ति से गहरी जुड़ी है। जब आप पापंडाल में विराजेंगे भक्तों के चेहरे पर खुशी होगी और सामने सजे होंगे उनके प्रिय मोदक। इन मोदकों में सिर्फ मिठास नहीं, भक्तों की श्रद्धा भी घुली है।
3: गणेश जी कुछ घंटों में पधारने वाले हैं और उसकी तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तारदालकर फैमिली है जो पुणे के कोथुड़ में रहती है, ये इस तरह के जो गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए ये मोदक बनाते हैं, लेकिन ये जो मोदक है बाहर जाते हैं यानी कि सिंगापुर जाते हैं और महाराष्ट्र के कई कोनों में ये जो मोदक है वो जाते हैं और इसके साथ ही इनका बिजनेस भी हो जाता है, लेकिन इसके अलावा एक 12 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये जो गणेश फेस्टिवल है इस दौरान ये जो मोदक है उसका आस्वाद लेने के लिए हर कोई तरसता है।
4: सबसे पहले 15 साल पहले हमने, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने मिलके ये सोचा कि महाराष्ट्रियन फूड हेरिटेज हमें बरकरार रखना है, इसलिए हमने ये शुरुआत की, स्टार्टअप किया ये बिजनेस को। पहले तो सिर्फ 100 मोदक बिके पहले साल, उसके बाद धीरे धीरे के करके अब हजारों लाखों में हमारा मोदक बना चुके हैं आज तक हम।
2: मुंबई हो या पुणे, महाराष्ट्र में हर जगह इस वक्त बड़ी तादाद में मोदक बनाए जा रहे हैं। वजह भी है, गणेशोत्सव में इनकी भारी मांग होती है, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और यहाँ तक कि मोदक विदेश भी जाते हैं।
5: माता जी ने तुरंत ही मोदक बनाया और मोदक गणपति जी को दिया। जैसे गणपति जी ने मोदक खाया वैसे ही गणपति जी को तो डकार आई, साथ साथ भोलेनाथ को भी किस बार डकार आई। तो पार्वती माता जी ने पूछा कि प्रभु पाया तो मतलब गणेश जी ने खाया तो गणेश जी ने, मतलब पाना बोलते हैं संस्कृत में। तो भोलेनाथ बोले कि सभी में गणपति हैं और मैं ही गणपति का रूप हूँ, गणपति ही मेरे रूप हैं, क्योंकि अथर्वशीर्ष इसमें लिखा है तम ब्रह्मा तम विष्णु तम दृष्टम दृष्ट गणेश, मतलब भगवान गणपति ही सभी देवी देवता के रूप माने जाते हैं। तभी से 21 मोदक गणपति जी को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और 21 मोदक चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि गणपति जी के मतलब प्रसन्न होते हैं, और जिनके यदि कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य नहीं हो रहा पा रहा है, तो 21 मोदक यदि आप चढ़ा दें तो गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं।
2: मोदक का अनूठा स्वाद इसे मन भावन बनाता है, लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि उत्तर भारत में जहाँ भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाया जाता है, पश्चिम और दक्षिण भारत में उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि बप्पा को मोदक इतने पसंद क्यों है, तो सुनिए कहानी। माता पार्वती को इंद्र ने एक मोदक दिया था, मोदक एक लेकिन पुत्र दो, गणेश और कार्तिकेय। इसीलिए माता ने शर्त रख दी कि जो सभी तीर्थों की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही मोदक खाएगा। कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर तीर्थों की यात्रा पर निकल गए, लेकिन बुद्धिमान गणेश ने झटपट अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और दलील दी कि माता पिता में ही सभी तीर्थ हैं। पुत्र की बुद्धिमता से पार्वती प्रसन्न हुई और मोदक उन्हें दिया गया। लेकिन मोदक से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती और गणेश के अनसुया के आश्रम पहुंचे। तमाम खाद्य पदार्थों के बावजूद बालक गणेश का पेट नहीं भरा, तब अनुसुया ने उन्हें खाने के लिए मोदक दिया। चावल, नारियल और गुड़, मोदक इन तीन चीजों से बनता है और ये तीनों धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसीलिए मोदक से शुभता और पवित्रता का भाव भी जुड़ा है। मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक शुरू होते ही मिठाई का बाजार गुलजार हो जाता है। जहां भांति भांति के मोदक सजे हैं, मोदक के लिए मुंबई की लड्डू सम्राट दुकान भी मशहूर है। जहां वैसे तो अलग अलग स्वाद और नाम के मोदक मौजूद हैं, पर उकड़ी के मोदक की बात ही निराली है।
0: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। तस्वीरें खुद देखें, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। कुछ इस तरीके से फूलहार बनाने का काम इस समय मुंबई के लालबाग के राजा के आसपास इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं दूसरे भी मंडलों द्वारा स्थापित की जाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो श्री गणेश को जो सबसे ज्यादा पसंद मिठाई है उसे लेकर के है, यानी कि मोदक। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में, और जहाँ पर लालबाग के राजा भी विराजमान होते हैं और गणेश गल्ले मुंबई के जो राजा के नाम से मशहूर हैं वो भी यहाँ विराजमान होते हैं।
2: मोदक की खासियत सिर्फ इसका स्वाद नहीं बल्कि इसका आकार भी है। जो ये हुनर जानते हैं वो नई पीढ़ी को इसकी बारीकियाँ समझाते भी हैं और उसे सिखाते भी हैं। उखरीचे के साथ तला हुआ मोदक भी अपनी अलग पहचान रखता है। गेहूं के आटे या फिर मैदे की सुनहरी कुरकुरी परत, अंदर गुड़ और नारियल की मीठी भरपाई, और अब इसी परंपरा में बच्चों के लिए चॉकलेट वाला अंदाज भी जुड़ चुका है। पिघली चॉकलेट को सांचे में डालकर उसमें मेवे और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं।
6: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं, और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए।
2: महाराष्ट्र से निकला स्वाद दिल्ली में चावल के साथ काजू, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट और कलाकंद में ढल गया। जेंजी की पसंद को देखते हुए चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर्स पर भी काम किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली की इन गलियों में मोदक की मिठास पुरानी है, लेकिन हर साल इसमें जुड़ता गया नया अंदाज जिसने इसे और खास बना दिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो बप्पा पधारने वाले हैं और बप्पा के दर्शन लगातार हम आपको करवाते रहेंगे गुड न्यूज टुडे पर। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बाबा अनीप करोरी के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर विजय रथ जारी है। फिल्म ने 35वें दिन भी करोड़ों की कमाई, अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर आगे भी संत महापुरुषों के जीवन और उनके संदेश को बड़े पर्दे तक लाने की तैयारी में है।
2: जिस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर महज 10 लाख रुपए की कमाई से हुई, आज वही फिल्म करोड़ों की कमाई कर रही है। बात हो रही है फिल्म हनुमान अंश की। नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेश से प्रेरित इस फिल्म ने 35 दिन बाद ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इस फिल्म ने रिलीज के 35वें दिन करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 163 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 193 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी छोटे बजट से शुरू हुआ ये सफर अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी की कहानी बन चुका है।
3: मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, टीम का कोई सदस्य भी क्रेडिट नहीं ले सकता, सिर्फ महाराज जी को क्रेडिट जाता है क्योंकि इनकी आशीर्वाद हमारे साथ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो ऑडियंस है, जो डिवोटीज है, जो ये फिल्म देख रहा है थिएटर में जाकर, बहुत बहुत बार देख, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख रहा है, फैमिली के साथ देख रहा है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो एक महीना 30 दिन से ज्यादा हमारी फिल्म चल रही है थिएटर में। इनफैक्ट पहले हफ्ते के एंड में ही बता दिया गया था हमें कि फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई थी इंडस्ट्री में, लेकिन महाराज जी की ही कृपा है, उनकी आशीर्वाद है कि अभी हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, लोगों तक पहुंची। इनफैक्ट अभी ग्लोबल रिलीज भी हो रही है हमारी फिल्म पूरे दुनिया भर में।
2: फिल्म की इस कामयाबी के बीच प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंची। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद लिया। फिल्म की सफलता और संतों का आशीर्वाद अनुप्रिया नागर के लिए ये पल बेहद खास रहा।
3: बहुत ही ओवरवेल्म मैं फील कर रही थी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उस हमेशा हमेशा के लिए मैं साथ में रखूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी भी घबराहट हो तो बस महादेव का स्मरण करो, बजरंगबली का स्मरण करो।
2: अनुप्रिया नागर ने हनुमान अंश की सफलता का श्रेय भगवान और संतों की कृपा को दिया। इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि यदि स्वामी कैलाशानंद महाराज की अनुमति मिली तो वो भविष्य में उनके जीवन चरित्र पर भी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगी।
3: मुझे दिखाई दी कि स्टीव जॉब्स जो है वो महाराज जी से प्रभावित हुए थे, और जब मैं वापस आई इंडिया कुछ काम के सिलसिले, तो मुझे लगता है महाराज जी ने ही मुझे हनुमान अंश की टीम से मिलाया। और तब शूटिंग हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बस थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी तब। और तब मुझे कहा गया था कि देखो ये फिल्म इस पड़ाव तक तो पहुंच गई है, लेकिन फंड्स की जरूरत है। तो तब पता नहीं, ये अगेन मैं कहती हूँ मेरा थॉट नहीं है, ये महाराज जी का ही थॉट है कि उन्होंने कहा कि बेटा जो भी तुमने कमाई की है तुम ये सब इसमें डाल दो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी सबको कि ये फिल्म तीन महिलाओं ने बनाई है, तीन महिलाओं ने ये प्रोड्यूस किया है फिल्म, तो मेरा तो सिर्फ 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें।
4: अच्छा, आज स्वामी जी से भी मुलाकात हुई,
3: तो मैं चाहूंगी, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाऊं और उनकी जो टीचिंग्स है, जो उनकी तपस्या है, वो मैं पूरे विश्व तक ले जाऊं। पर जब वो चाहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो वही मार्गदर्शन देंगे।
5: उनसे कहा कि गुरुजी मैं आपके ऊपर बनाना चाहती हूं, पर मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी हमें अपनी साधना करने दो और अभी हमारे ऊपर कोई पिक्चर ना बनाओ। अभी तो आप उन बुजुर्गों के ऊपर पिक्चर बनाओ जो देश के बड़े महात्मा थे, जो बड़े महात्मा है, जो बुजुर्ग साधु हैं, उनके ऊपर बनाओ। हमारे ऊपर आप तब बनाना जब हमारी इच्छा होगी और हमें जब भगवान शिव की या भगवती की जब प्रेरणा होगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मेरे ऊपर तुम बनाना।
2: हनुमान अंश के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। यूके में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के दौरान अनुप्रिया नागर एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के जीवन पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स के जीवन के कठिन दौर में बाबा नीम करोली का गहरा प्रभाव रहा था। इसी प्रेरणा ने उन्हें भारत के महान संतों और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिया, जिसके बाद हनुमान अंश की नींव रखी गई। अनुप्रिया का लक्ष्य आने वाले समय में भी ऐसे ही महान संत महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक फिल्में बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: भव्य और विराट स्वरूप में पधारे मुंबई के लालबाग के राजा जयंती पर, लालबाग चौराहा के पहले दर्शन सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होगा बप्पा का इंतजार, एक दिन बाद देश भर में पधारेंगे गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग, 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां, कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होना मौका, ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है, यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर खबर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा के बीच एक धुंध पैदा कर देती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हर खबर की पड़ताल होती है और हर खबर को परत दर परत खंगालने के बाद ही हम आप तक लाते हैं उस खबर का सच। तो आज ऐसी ही 2 खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए 2 वायरल वीडियोस की, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि बिहार में हाईवे की सड़क को टांके लगाकर ठीक किया जा रहा है। वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर बनी दीवारों को एमसील से रिपेयर किया गया। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे नेपाल का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाढ़ के दौरान कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दोनों वीडियोस के जरिए काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में मजदूरों को सड़क में छेद करके स्टील की रॉड अंदर डालते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि वीडियो पटना बक्सर का है। दूसरा वीडियो मुंबई गोवा हाईवे का है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इस सड़क को ठीक करने के लिए एम सील का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए पत्थरों को चिपकाया गया। लेकिन सच्चाई क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
2: इन दो वीडियोस को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। इसके जरिए काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरारों को स्थायी रूप से ठीक करने के बजाय केवल पैचवर्क यानी मरम्मत करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य ने आम लोगों के बीच बहस को जन्म दे दिया। चिंता का कारण यह है कि करोड़ों की लागत से बनी नई सड़क और हाईवे पर बनी दीवारों में इतनी जल्दी दरारें कैसे आई। लोग गुणवत्ता और इस्तेमाल की गई सामान की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दोनों वीडियो को लेकर मीम्स बन रहे हैं। लोग तंज कस रहे हैं, सरकार के नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहे हैं। सड़क अधूरी और कटी हुई दिखाई दे रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को आरा बक्सर नेशनल हाईवे का बताते हुए यह दावा किया कि एनएच 922 का हाल देखिए। पटना बक्सर 4 लेन में लगाने पड़ रहे हैं टाके। अभी कुछ ही दिन पहले यह चमचमाती सड़क बनकर तैयार हुई थी और अभी से इसका दम निकलने लगा है। रोड जगह जगह से टूट रही है। देखकर साफ लग रहा है कि सरकार और ठेकेदार मिलकर सड़क की मरम्मत नहीं बल्कि उसका पंचर साट रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से बनी नई सड़क का यह हाल वाकई चिंताजनक है। वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि यह विकास है या सिर्फ खाना पूर्ति। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस वीडियो के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया और लिखा, विक्रमशिला सेतु के रफू के बाद में बिहार सरकार की सड़क पर टाका टेक्नोलॉजी। अब दूसरे वीडियो को देखिए। इसे शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई गोवा हाईवे पर बने ओवरब्रिज की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इन दोनों वीडियो के जरिए सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहा है। सड़क अधूरी और कटी हुई नजर आती है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है, मानो सड़क नहीं कोई कपड़ा हो जिसे रफू किया जा रहा हो। वहीं दूसरे वीडियो में मजदूरों को किसी हाईवे के साइड के पत्थर को चिपकाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को मुंबई गोवा हाईवे का बताया जा रहा है और दोनों वीडियोस लगातार वायरल किए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों वीडियोस को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और इसको लेकर जो दावा है हमने उसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दोनों वीडियोस को बारी बारी से खंगाला। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। इस दौरान हमें ये नजर आया कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क का एक हिस्सा खराब है जिसे बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें रफू जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। ड्रिल करके जहां जहां दरारें देखने को मिल रही हैं उसे भरा जा रहा है। हालांकि इस दौरान ये कहीं भी नजर नहीं आता कि सरिये को अंदर फिट किया जा रहा है। वीडियो देखने से साफ इशारा मिल रहा है कि ये पूरा वीडियो नहीं है, एक खास हिस्से को काटकर वायरल किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दूसरे वीडियो की भी जांच की जिसमें हाईवे के साइड पर पत्थरों को एक खास पॉइंट पर रखा गया है। ये हर जगह पर नहीं किया गया, दरार वाले हिस्से में ही इसे चिपकाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पुलों पर स्ट्रक्चरल मूवमेंट की जानकारी हासिल करने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां पर कोई बड़ी दरारें होती और एमसील से चिपकाया जाता तो फिर यहां पर गाड़ियों के आने जाने का मूवमेंट बंद कर दिया जाता, क्योंकि गाड़ियों के दबाव में ये अस्थायी तरीका काम नहीं करेगा। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि सड़क की सतह के दरारों को मजबूत करने की ये मानक इंजीनियरिंग तकनीक है या फिर काम चलाऊ काम किया जा रहा है। दूसरा सवाल यह कि अगर दोनों वीडियोस को लेकर दावा सही है तो फिर अब तक ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना।
2: वायरल हो रहे दोनों वीडियो का सच झूठ क्या है, ये जानने के लिए हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। सबसे पहले हमने पहले वीडियो की जांच की, वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सोशल मीडिया साइट्स पर इस साल जून महीने में छपी इसके बारे में कई खबरें मिली। यह इसके बारे में यही जानकारी मिली कि वायरल हो रहा वीडियो पटना बक्सर NH 922 का ही है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जानकारी दी गई थी। 22 जून को प्रकाशित इस रिपोर्ट में बिहार के पटना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हवाले से ये बताया गया था कि भोजपुर जिले के बिहिया में NH 922 हाईवे के कुछ हिस्सों को काटते और भरते हुए वायरल हो रहे वीडियो के बारे में गलत जानकारी दी गई है। वीडियो में दिख रहा कार्य किसी निर्माण की खामी का नहीं बल्कि नियमित और सुनियोजित रखरखाव का हिस्सा है। कॉन्क्रीट की सड़क में छोटे मोटे जोड़ों और दरारों को ठीक करने के लिए स्टिचिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी। वायरल वीडियो मरम्मत के बीच के चरण का है जिससे सड़क का हिस्सा अधूरा और कटा हुआ दिखाई दिया। काम पूरा होने के बाद सतह को मानक स्तर पर ठीक कर दिया जाता है।
3: स्टिचिंग जैसे जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट जो हाईवे में बनाते हैं ना, सीमेंट रोड बनाते हैं, तो उसमें जो स्लैब होता है उसमें जो है जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है वो कंटिन्यूस ना होकर स्लैब फॉर्मेशन में होता है। उसमें स्लैब बनती है 3.5 मीटर बाय 4 मीटर, तो जब उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो उनको स्टिचिंग मेथड से, अगर हमारे क्रैक से बहुत ज्यादा वाइड नहीं है जैसे 3 mm है 5 mm तक क्रैक्स है, तो उनको स्टिचिंग करके ठीक किया सकता है। तो स्टिचिंग प्रॉपर कैसे करते हैं कि थोड़ा सा स्मॉल डाया का रिइंफोर्समेंट है और उसको डायगनली जो है उसमें इंसर्ट करते हैं क्रैक्स पोर्शन में, तो ये स्टिचिंग मेथड से भी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट को ठीक करने की एक विधि है।
2: दरअसल स्टिचिंग प्रक्रिया कंक्रीट सड़कों और उनके जॉइंट्स या दरारों की मरम्मत और मजबूती बढ़ाने की एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें कंक्रीट स्लैब की टूटी हुई किनारों या दरारों को आपस में बांधकर जोड़ा जाता है ताकि सड़क अधिक समय तक टिक सके। यहाँ से साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे दूसरे वीडियो की पड़ताल में जुटी। इस वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि मुंबई गोवा हाईवे की कंक्रीट की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। हमने इसकी सत्यता जानने के लिए पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हम एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर पहुंचे। वीडियो में लोकेशन को भी टैग किया गया था। इसके अनुसार ये वीडियो मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का है। सर्च के दौरान हमें एक और इंस्टाग्राम यूजर पर वायरल हो रहे वीडियो जैसा ही वीडियो मिला। यहाँ पर भी यही जानकारी दी गई थी कि मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का वीडियो है और एमसील से दरारों को जोड़ा जा रहा है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि यशराज शेल के नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये वीडियो सबसे पहले पोस्ट किया था। NHAI ने इस वीडियो पर रिप्लाई भी किया था। NHAI यह साफ करना चाहता है कि VUP के पास जमीन के धंसने और जोड़ों के अलग होने की जो समस्या देखी गई, वह मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश के बाद हुई। VUP को मार्च 2026 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था और मॉनसून शुरू होने से पहले जमीन धंसने या किसी खराबी का कोई संकेत नहीं मिला था। वीडियो में डेक स्लैब की जो स्टिचिंग दिख रही है, वे प्रभावित PQC पैनल को सील करने और मजबूत करने के लिए तकनीकी रूप से मंजूर वैज्ञानिक तरीके का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जोड़ों के अलग होने की समस्या को ठीक करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, आरी वॉल पैनल पर मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की हलचल या खिसकने की लगातार जांच और रिकॉर्डिंग की जा सके। इन मॉनिटरिंग डिवाइस को लगाने का मतलब यह नहीं है कि सुधार के उपाय नाकाफी है। जमीन धंसने की घटना के बाद सुरक्षा के जरूरी इंतजामों के साथ ट्रैफिक को तुरंत सर्विस रोड पर डायवर्ट कर दिया गया। अभी प्रभावित हिस्से पर ट्रैफिक की इजाजत नहीं है जब तक जरूरी सुधार का काम पूरा नहीं हो जाता और पूरी तकनीकी जांच से यह पक्का नहीं हो जाता कि यह सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए सुरक्षित है, तब तक यह जगह ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी।
3: तो चिपकाने जैसा तो कुछ नहीं होता है। बिटुमिनस रोड में क्रैक सीलिंग जरूर होता है। क्रैक्स की जो विड्थ होती है ना, वो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, तो जो स्मॉल क्रैक्स हैं उनको तो हम क्रैक सीलिंग से फिलअप कर सकते हैं। उसमें बिटुमिनस मिक्स केवल अगर बहुत स्मॉल क्रैक्स हैं तो उनको केवल बिटुमिन मटेरियल से फिलअप कर देते हैं। थोड़ा सा वाइट क्रैक्स हैं उनको हम बिटुमिनस और सलरी मिक्स करके उससे फिलअप कर देते हैं।
2: सर्च के दौरान हमें एक एक्स यूजर का पोस्ट भी मिला जिसमें उन्होंने मुंबई गोवा हाईवे वाले वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे का मखौल उड़ाते हुए यह कहा कि टेलटेल क्रैक गेज के जरिए मरम्मत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन वायरल करने वालों को इस तकनीक के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर टेलटेल क्रैक गेज तकनीक है क्या। दरअसल टेलटेल क्रैक गेज एक ऐसा सटीक और सरल उपकरण है जिसका उपयोग दीवारों, नींवों और दूसरे संरचनाओं में आई दरारों के चौड़े होने, बंद होने या खिसकने की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ में नेपाल में बहुत ज्यादा तबाही मची और इसी बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इस दौरान नेपाल में कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
4: बीतते दिन के साथ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी नेपाल की बाढ़ से जोड़कर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसी कड़ी में अब ये वीडियो वायरल हुआ है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। वीडियो में एक जगह कुछ लोग एक उंगली को उठाकर कुछ पढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि एक शख्स माइक पर कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में जानमाल का काफी नुकसान हुआ था और इस बाढ़ में अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग इसमें लापता हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ा हुआ वीडियो है क्योंकि खड़े लोगों के सामने एक मौलाना जैसा शख्स नजर आता है। मौलाना कुछ मंत्र जैसे पढ़ रहा है जिसे ये लोग दोहरा भी रहे हैं लेकिन ये प्रोसेस धर्मांतरण का ही है ये साफ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके क्योंकि नेपाल आपदा के दौरान 41 लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपनाते तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जरूर बड़ी खबर होती, मीडिया आउटलेट्स में इसके बारे में कोई जानकारी होती लेकिन ऐसा कहीं कुछ मिला नहीं। पूरे वीडियो में अरबी में मंत्र सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल, पहला सवाल यानी ये था कि अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें कोई भी नेपाली बोलता क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल कि नेपाल में आपदा के बीच 41 लोगों ने अगर इस्लाम धर्म अपनाया है तो इसके बारे में कहीं पर भी कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, इस रिपोर्ट में सच्चाई जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। हमने इसके बारे में लगातार खोजबीन की लेकिन इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें अप्रैल 2024 में एक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया वीडियो मिला। ये वीडियो वायरल वीडियो जैसा ही था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो का नेपाल में आई हालिया आपदा से कोई संबंध नहीं है। आगे की खोजबीन में हमें कुछ तस्वीरें मिली जिनमें हमें वही लोकेशन और कार्यक्रम मिला जैसा वायरल वीडियो में नजर आ रहा था। कैप्शन में उस स्थान की पहचान बदियाह स्थित अल दावा एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसके बाद गूगल मैप्स पर खोज करने पर हमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित मस्जिद गजवा अल मुतैरी मिली। गूगल मैप्स पर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें वायरल वीडियो से मेल खाती थी जिससे ये पुष्टि हो गई कि फुटेज सऊदी अरब के रियाद का था न कि नेपाल का। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले सबूतों से ये स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल में आई बाढ़ से 2 साल पहले का है और सऊदी अरब के रियाद का है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धो।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
9: अगर आप एक दिन के लिए टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे?
10: प्रिंसिपल बनूंगी। मैं मैम को होमवर्क दूंगा। मैं स्कूल नहीं आऊंगा। मैं सबको डांस कराऊंगा।
11: नन्हे बच्चे क्या सोच रहे हैं ये समझना मुश्किल होता है। ऐसे में जब एक स्कूल में उनसे पूछा गया कि एक दिन के लिए टीचर बने तो क्या करोगे, जवाब में बच्चों ने खूब बतकही की। उनके जवाब पूरे सोशल मीडिया की जान बने हैं और हंसा रहे हैं। कोई प्रिंसिपल बनने की बात करता है तो कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आने की बात करता है। कोई बच्चा टीचर बनने के बाद स्टूडेंट्स को आइसक्रीम खिलाने की बात करता है। बच्चों का ये मासूम जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
10: आइसक्रीम खिलाऊंगा। बुक चेक करूंगी।
11: कद छोटा हो सकता है लेकिन हिम्मत और दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। अब इस छोटी सी बच्ची को ही देख लीजिए। बाइक पर बैठने के लिए बच्ची ने ऐसा तरीका निकाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। बाइक पर सीधे चढ़ने की बजाय बच्ची पीछे की तरफ से पैर रखकर सीट पर बैठ जाती है, उसका ये तरीका देखकर लोग उसकी समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्ची का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कलयुग के श्रवण कुमार ने अपनी असहाय माँ की अंतिम या बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए जो किया, उसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दी। चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ अपनी बुजुर्ग माँ को भगवान बांके बिहारी के दर्शन कराने के लिए एक छोटे ने अनोखा और संघर्षपूर्ण रास्ता चुना। वो अपनी माँ को एक लोहे के तसले में बैठाकर और उसे अपने सिर पर रखकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। पैरों में छाले और रास्ते की ढेरों कठिनाइयों के बावजूद बेटे के कदमों की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आई। उसकी ये जिद केवल अपनी माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखने की थी। जब ये छोटा बेटा अपनी माँ को सिर पर उठाए मंदिर परिसर में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के साथ साथ इस बेटे की हिम्मत को सलाम कर रहा था। इस बेहद प्यारे वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। एक हैंड पपेट ने न सिर्फ मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों का दिन बना दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर तरफ मुस्कान बिखेर दी है। बातचीत के अंदाज से इसने सफर को मजेदार बना दिया।
8: हाय हाय। बहुत ही प्यारा नाम है।
12: थैंक यू।
8: कैसा लगा मैं?
12: ना?
8: मैं कैसा लगा?
12: बहुत अच्छा।
8: अच्छा लगा?
12: बहुत क्यूट।
8: तेरे को तो शरण आ गई। आज किधर जा रहे हो? मैं भी आ जाऊँ।
12: आ जाओ।
8: पक्का? आपके दांत के अंदर घुस जाऊँ?
12: आ जाओ।
8: ये मेरे को आने नहीं देगा।
12: क्यों नहीं आने दोगे?
8: ये ऐसा ही है।
12: हाँ।
8: मार दो इसको।
11: हरमानंश फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जिसने इंटरनेट पर पारा पढ़ा दिया। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है उसे देखकर लोग अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे हैं।

0: महादेव।
1: असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बैठाया और हंसते हुए आगे बढ़े। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था, दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यही जज्बा खेल को खास बनाता है, क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं। वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। वो नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। ये जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। क्यूटनेस की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता हुआ नजर आ रहा है। पांडा की ये मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और इस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। नया टैडी मिला तो इस छोटे से पपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टैडी की बेलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टैडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बात करते हैं लालबाग चौराजा की, जो मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय पंडालों में विराजमान होते हैं। लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक सामने आ गया और उनकी भव्यता दिव्यता देखते ही बनती है। हर साल गणेशोत्सव से पहले विनायक के भक्तों को लालबाग चौराजा की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार रहता है। लालबाग के राजा को भक्तों की मुरादें और इच्छाएं पूरी करने वाला भगवान माना जाता है। ऐसी अटूट मान्यता है कि सच्चे मन से उनके दर पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम इस गणेश पंडाल की स्थापना साल 1934 में हुई थी। मुंबई के परेल इलाके में कोली समुदाय के लोगों और व्यापारियों ने लालबाग के राजा को पहली बार स्थापित किया था, और इस साल लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल अपनी स्थापना के 93 वर्ष पूरे कर रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान यहाँ रोजाना 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अपने बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। अपनी मन्नतों के लिए घंटों लोग कतारों में इंतजार भी करते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होती। आम नागरिकों के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां भी यहाँ पहुंचते हैं अपने परिवारों के साथ बप्पा के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए।

0: और आपको समझाएंगे। देखिए, मैं
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अगर साथ निभाने वाला सच्चा हो तो दुनिया की सारी धन दौलत फीकी लगने लगती है। संसाधन भले ही सीमित हो लेकिन प्यार का एहसास अनलिमिटेड होता है। तस्वीर देखिए, लाइन में खड़े होकर पति अपना काम पूरा कर रहे हैं, तभी पत्नी की नजर उनके माथे के पसीने पर पड़ती है और हाथ में पकड़े पेपर से ही उन्हें हवा करने लगती है। पत्नी का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। लोग कह रहे हैं उम्र के हर पड़ाव पर ऐसा ही जीवन साथी मिले। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऑनलाइन बेंच बॉय के नाम से मशहूर फेंग युक्सियांग इसके मिसाल हैं। महज 2 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चीन के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 586 अंक हासिल किए और हुबेई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अब चिलचिलाती धूप में फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। उनका जज्बा हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। माँ तो माँ ही होती है, काम चाहे कितने भी हो, बच्चों के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। इस वीडियो में भी माँ की ममता का ऐसा ही खूबसूरत अंदाज नजर आया। माँ रोटी बनाने में व्यस्त है, लेकिन इसी बीच अपने लाल को दुलारना भी नहीं भूल रही। कभी प्यार से उसे छूती है तो कभी अपने आंचल के करीब कर लेती है, और बच्चा भी माँ का प्यार पाकर खिलखिला रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो माँ बच्चे के इसी अनमोल रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: भव्य और विराट स्वरूप में पधारे मुंबई के लालबाग के राजा जयंती पर लालबाग चौराहे के पहले दर्शन सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होगा बप्पा का इंतजार, एक दिन बाद देशभर में पधारेंगे गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग, 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां, कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होना मौका, ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं लालबाग चौराहा की, जिनकी पहली झलक सामने आ गई है। गणेश उत्सव शुरू होने से पहले हमेशा की तरह गणपति के पंडाल का पर्दा उठा और लालबाग चौराहा की भव्य प्रतिमा सामने आई। इस साल मुंबई के इस मशहूर पंडाल को रामेश्वर की थीम पर सजाया गया है। गोल्डन और सिल्वर लुक वाले इस पंडाल से आज आपको लालबाग के राजा के दर्शन कराएंगे, साथ ही मन्नतों के राजा कहे जाने वाले गणपति और उनके पंडाल की कहानी भी बताएंगे। इसके बाद बात होगी मोदक की। मोदक के बिना बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है, पर भगवान गणेश को ये मिष्ठान क्यों पसंद है और इसके पीछे कहानी क्या है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। मुंबई और महाराष्ट्र में मोदक कैसे बनाया जाता है ये भी दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं लालबाग चौराहा के फर्स्ट लुक की।

0: गुड न्यूज टुडे ने पहले ही ये एक कंफर्म और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इस बार कहीं ना कहीं लालबाग के राजा की जो थीम है वो रामेश्वर से जोड़ी जाएगी और बिल्कुल वही देखने मिल रहा है। देखिए कितने ज्यादा सुंदर इस समय लालबाग के राजा तो लग ही रहे हैं, लेकिन लालबाग के राजा का ये जो मंदिर परिसर है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। बकायदा यहाँ पर त्रिशूल लगा है, डमरू लगाया गया है और डायमंड से इस पूरे वातावरण को सजाया गया है। साथ ही साथ बप्पा की जो दरबार का भीतर का जो तस्वीर है वो सिल्वर और गोल्डन रूप में है। आपको बता दें कि लगभग तमाम एक भीड़ यहाँ पर मौजूद है इस समय लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए। 14 तारीख से सुबह 5 बजे ही बप्पा का दर्शन करना शुरू हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं साथ ही साथ इस मंडल के जो पदाधिकारी हैं, मुंबई पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर साथ ही साथ बीएमसी के बहुत से ऐसे आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं गणेश उत्सव में लीन रहते हैं वो सारे इस समय यहाँ मौजूद हैं और लालबाग के राजा का दर्शन कर रहे हैं। बेहद ज्यादा इस समय सुंदर लालबाग के राजा नजर आ रहे हैं और हमेशा की तरह वही आंखें, ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे वो सभी को देख रही हैं और कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी से ये कहना चाह रही है पप्पा की आंखें कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखरने के लिए हम आ गए और वाकई में इस दिन का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। 14 तारीख से यानी कि 2 दिन बाद ही बप्पा का दरबार खुल जाएगा और कल रात से ही बप्पा के लिए लोग कतारों में खड़े हो जाएंगे जो उनके पैर छूना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस समय लालबाग के राजा के दरबार में इस समय मौजूद हूं और अब लालबाग के राजा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकारिणी मेंबर्स हैं, जो भी सेवादार हैं वो इस समय सभी यहां पर मौजूद हो गए हैं। साथ ही साथ मीडिया भी एक बड़ी संख्या में यहां मौजूद है और जैसा कि आपको बताएं लालबाग के राजा इस समय मुंबई देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई यहां पर आकर के उनका दर्शन करना चाहता है।
1: लालबाग का राजा जब भी आने वाले रहते हैं तो जैसे हमारे घर के सदस्य आ रहे हैं ऐसे 10 दिन का माहौल रहता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे छोटा बच्चा भी है, वो भी लालबाग के राजा के लिए उत्सुक है। वो भी कितनी भीड़ हो, कुछ भी हो, पर राजा के दर्शन पहले चाहिए रहते हैं।
0: लेकिन आप तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही होंगी क्योंकि बाकी लोगों को 14 तारीख से दर्शन मिलेगा, वो भी घंटों कतार में रहने के बाद, लेकिन आप तो सीधे मुख्य दर्शन, कितनी एक्साइटेड है?
1: जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो यहाँ पे जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, अफकोर्स लालबाग की राजा की मान्यता है तो वो हिसाब से भीड़ तो रहती है, लेकिन बहुत सारे भाविक जो है सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं तो सब जगह से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से भी यहाँ पे भाविक आते रहते हैं। गणपति बप्पा,
0: गणपति बप्पा।
2: लालबाग के राजा को हम लोग दर साल आते हैं, हर साल आते हैं। कहानियां तो बहुत सारी है बट हम लोग बहुत मतलब पूरे साल राह देख रहे होते हैं कि इस साल हमें गणपति के दर्शन हो जाए और ये जो फर्स्ट लुक होता है इसके लिए हम लोग पूरे साल राह देख रहे होते हैं।
0: अच्छा, इस पर रामेश्वर की थीम नजर आ रही है यानी कि शंकर भगवान इर्द गिर्द होंगे अपने सुपुत्र श्री गणेश जी के लिए, तो मजा आएगा देखने में।
2: हाँ, इसीलिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। इस बार की थीम भी अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है और जो थीम है उस हिसाब से सब कुछ किया गया है, तो बहुत एक्साइटेड है 10 दिन लालबाग के राजा की सेवा में देने के लिए।
0: गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। क्या कहेंगी लालबाग के राजा का जो पर्दा है कुछ देर में हटने वाला है, कितनी एक्साइटेड हो, क्या बोलेंगे?
2: बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग यहीं पे रहते हैं और हम लोग हर साल देखने आते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है।
0: क्या काम करते हैं?
2: हम लोग तो जॉब करते हैं आईटी में।
0: लेकिन मुझे लगता है 9-10 दिन की छुट्टी ले लेंगे इस बार।
2: ले लेंगे पक्का,
3: ले लिए।
0: लालबाग के राजा का आईडी कार्ड भी आपको मिल गया, राइट? लालबाग के राजा का आईडी कार्ड, आसपास ही रहते
2: हैं? यार बाजू में ही रहते हैं हम लोग, बस पड़ता।
0: जितनी भी जगह है ये भर जाएगी, चलने की जगह नहीं होने वाली है, इतना ज्यादा
2: घर से बाहर नहीं निकल सकते।
0: आप क्या कहेंगे लालबाग के राजा जब भी आते हैं कितनी एक्साइटनेस होती है और कैसे आप इस जीवन को जीते हो, लालबाग के राजा को लेकर क्या कहोगे?
4: आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरा पहला साल है, जस्ट मैरिड ओवर हियर।
5: गणपति के सभी पंडालों में लालबाग चौराजा की ख्याति देश और दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग एक सदी से लालबाग चौराजा हर साल गणेशोत्सव के दौरान बेहद धूमधाम से पधारते हैं और इस साल लालबाग चौराजा पंडाल के 92 साल पूरे हो रहे हैं। बता दें कि लालबाग चौराजा के पंडाल की तरह ही उनकी स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद अनोखी है।

0: बच्चा वर्षी लव करेया, यानी अगले बरस तू जल्दी आ। भक्तों से यही वादा था, सो आ गए बापा अपना वादा निभाने। अपनी पूरी भव्यता और विराट स्वरूप के साथ नवसाचा गणपति के रूप में, नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूरी करने वाले गणपति, लेकिन दुनिया इन्हें राजा के नाम से जानती है, लाल बाग चा राजा। अब बस इंतजार है तो लाल बाग चा राजा की पहली झलक का। लाल बाग चा राजा की महिमा वाकई निराली है। सिद्धि विनायक का ये स्वरूप और उनका ये पंडाल भक्तों को हमेशा से भाता रहा है। तभी तो गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ लाल बाग चा राजा के दरबार में ही जुटती है। चतुर्थी से पहले लाल बाग चा राजा का दरबार सज चुका है, उत्सव की हर तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस लाल बाग चा राजा के नए स्वरूप के अनावरण का। गणेश उत्सव के दौरान यूं तो पूरी मुंबई में गणपति के कई पंडाल सजते हैं, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो लाल बाग चा राजा की। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर मन्नतों के गणेश यानी लाल बाग चा राजा के स्वरूप पर होती है। हर बार लाल बाग चा राजा का रंग रूप अनोखा होता है। लाल बाग चा राजा की इस प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया बेहद खास और पारंपरिक होती है।
1: धूमधाम और भक्तिभाव से गणपति की पूजा शुरू होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मोदक के बप्पा की पूजा अधूरी मानी जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि गौरी नंदन को मोदक बहुत पसंद है। बप्पा को 21 मोदक अर्पित करने की परंपरा है। ये भी बता दें कि मोदक संस्कृत के शब्द मोदा से आया है, जिसका मतलब होता है कि आनंद यानी कि खुशी, यानी एक मिष्ठान जिससे आनंद मिलता हो। तो चलिए आपको बताते हैं मोदक की शुरुआत कैसे हुई और ये गणपति का सबसे प्रिय भोग कैसे बन गया।

0: और अंदर जैसे भक्ति का भाव भरा है। मोद यानी आनंद देने वाला है ये, इसीलिए तो नाम मोदक है। और इसका महत्व ये है कि महाकाय यानी बप्पा को सबसे प्रिय है, इसीलिए तो बप्पा के आने से पहले महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में घर घर मोदक तैयार हो रहे हैं। जैसे बप्पा पूरे देश में पूजे जाते हैं, ठीक वैसे ही मोदक हर शहर में बनाए जाते हैं। पर परंपरा और स्वाद में महाराष्ट्र के उकडीशे मोदक का जवाब नहीं। देखिए कैसे सधे हुए हाथ पहले चावल के आटे से परत तैयार करते हैं। इसके अंदर नारियल, काजू, बादाम और गुड़ का मिश्रण भरा जाता है, फिर भाप में पकाया जाता है। जायके के लिए जरा सा घी और सजाने के लिए केसर।
1: इसके अंदर जो मिश्रण है वो बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है, और वाकई में स्वाद बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। उकड़ी का मोदक मुझे लगता है कि दूसरे भी राज्यों में बहुत ही रेयर जगह मिलता होगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के हर घरों में बन रहा है तो शॉप में तो होगा ही। अच्छा, कितनी देर में एक बन जाता है
2: ये? एक दो मिनट में बन जाता है।
0: मुंबई में गणेश गली के पास जहाँ लाल बादशाह राजा का भी पंडाल है, मोदक की भारी मांग होती है। न सिर्फ इसे बप्पा को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है, बल्कि भेंट स्वरूप रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दिया जाता है।
1: इतना मराठियों को और स्पेशली महाराष्ट्र की संस्कृति बन गई है ये मोदक जो है, उकड़ी का मोदक, क्यों इतना ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और क्यों इतना ज्यादा आप लोग इसमें घुले हुए?
2: मतलब ये अभी तो पारंपरिक ही है, मतलब परंपरा से ही बनते आ रहे हैं, मतलब बहुत साल से ही बनते ही आ रहा है। और ज़्यादातर मतलब ये गुड़ है, उसमें नारियल है, नारियल तो हम शुभ ही मानते हैं उसको जैसे, और गुड़ का मतलब जैसे गोडवा रहता है अच्छे, हम त्यौहार के लिए हम सब मिठाई खाते हैं, और काजू बादाम रहते हैं उसमें भी हम त्यौहार में यूज़ करते हैं, इसके लिए सब ये गोडवा रहता है, इसके लिए हम मतलब त्यौहार में जो मीठा रहता है इसके लिए हम ये सब सामग्री
1: के मुँह में मिठास जाए प्रसाद के तौर पे लोग पसंद करें, इसलिए उकड़ी का ये जो मोदक है बहुत ज्यादा इसे पसंद किया जाता है।
0: एक मिठाई जिसका अपना इतिहास, अपनी खास परंपरा है, गणपति की भक्ति से गहरी जुड़ी है। जब बप्पा पंडाल में विराजेंगे भक्तों के चेहरे पर खुशी होगी और सामने सजे होंगे उनके प्रिय मोदक। इन मोदकों में सिर्फ मिठास नहीं, भक्तों की श्रद्धा भी घुली है।
3: गणेश जी कुछ घंटों में पधारने वाले हैं और उसकी तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तारदालकर फैमिली है जो पुणे के कोथुड़ में रहती है, ये इस तरह के जो गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए ये मोदक बनाते हैं, लेकिन ये जो मोदक है बाहर जाते हैं, यानी कि सिंगापुर जाते हैं और महाराष्ट्र के कई कोनों में ये जो मोदक है वो जाते हैं, और इसके साथ ही इनका बिजनेस भी हो जाता है, लेकिन इसके अलावा एक 12 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये जो गणेश फेस्टिवल है इस दौरान ये जो मोदक है उसका आस्वाद लेने के लिए हर कोई तरसता है।
4: सबसे पहले 15 साल पहले हमने, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने मिलके ये सोचा कि महाराष्ट्रियन फूड हेरिटेज हमें बरकरार रखना है, इसलिए हमने ये शुरुआत की, स्टार्टअप किया ये बिजनेस को। पहले तो सिर्फ 100 मोदक बिके पहले साल, उसके बाद धीरे धीरे करके अब हजारों लाखों में हमारा मोदक बना चुके हैं आज तक हम।
0: मुंबई हो या पुणे, महाराष्ट्र में हर जगह इस वक्त बड़ी तादाद में मोदक बनाए जा रहे हैं। वजह भी है, गणेशोत्सव में इनकी भारी मांग होती है, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों, और यहाँ तक कि मोदक विदेश भी जाते हैं।
5: माता जी ने तुरंत ही मोदक बनाया और मोदक गणपति जी को दिया। जैसे गणपति जी ने मोदक खाया वैसे ही गणपति जी को तो डकार आई, साथ ही साथ भोलेनाथ को भी 21 बार डकार आई। तो पार्वती माता जी ने पूछा कि प्रभु पाया तो भव, मतलब गणेश जी ने खाया तो गणेश जी ने, मतलब पाना बोलते हैं संस्कृत में। तो भोलेनाथ बोले कि सभी में गणपति हैं और मैं ही गणपति का रूप हूँ, गणपति ही मेरे रूप हैं, क्योंकि 28वें में लिखा है तम ब्रह्मा तम विष्णु तम द्रस्त तम द्रस्त गणेश, मतलब भगवान गणपति ही सभी देवी देवता के रूप माने जाते हैं। तभी से 21 मोदक गणपति जी को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, और 21 मोदक चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि गणपति जी के मतलब प्रसन्न होते हैं, और जिनके यदि कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो 21 मोदक यदि

0: चढ़ा दें तो गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं।
1: मोदक का अनूठा स्वाद इसे मन भावन बनाता है। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि उत्तर भारत में जहां भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाया जाता है, पश्चिम और दक्षिण भारत में उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि बप्पा को मोदक इतने पसंद क्यों है, तो सुनिए कहानी। माता पार्वती को इंद्र ने एक मोदक दिया था, मोदक एक लेकिन पुत्र दो, गणेश और कार्तिकेय। इसीलिए माता ने शर्त रख दी कि जो सभी तीर्थों की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही मोदक खाएगा। कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर तीर्थों की यात्रा पर निकल गए, लेकिन बुद्धिमान गणेश ने झटपट अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और दलील दी कि माता पिता में ही सभी तीर्थ हैं। पुत्र की बुद्धिमता से पार्वती प्रसन्न हुई और मोदक उन्हें दिया गया। लेकिन मोदक से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती और गणेश के अनसुया के आश्रम पहुंचे। तमाम खाद्य पदार्थों के बावजूद बालक गणेश का पेट नहीं भरा, तब अनुसुया ने उन्हें खाने के लिए मोदक दिया। चावल, नारियल और गुड़, मोदक इन तीन चीजों से बनता है और ये तीनों धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसीलिए मोदक से शुभता और पवित्रता का भाव भी जुड़ा है। मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक शुरू होते ही मिठाई का बाजार गुलजार हो जाता है, जहां भांति भांति के मोदक सजे हैं। मोदक के लिए मुंबई की लड्डू सम्राट दुकान भी मशहूर है, जहां वैसे तो अलग अलग स्वाद और नाम के मोदक मौजूद हैं, पर उकड़ी के मोदक की बात ही निराली है।
2: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। तस्वीरें खुद देखें, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। कुछ इस तरीके से फूलहार बनाने का काम इस समय मुंबई के लालबाग के राजा के आसपास इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं दूसरे भी मंडलों द्वारा स्थापित की जाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो श्री गणेश को जो सबसे ज्यादा पसंद मिठाई है उसे लेकर के है, यानी कि मोदक। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में, और जहाँ पर लालबाग के राजा भी विराजमान होते हैं और गणेश गली मुंबई के जो राजा के नाम से मशहूर हैं वो भी यहाँ विराजमान होते हैं।
1: मोदक की खासियत सिर्फ इसका स्वाद नहीं बल्कि इसका आकार भी है। जो ये हुनर जानते हैं वो नई पीढ़ी को इसकी बारीकियाँ समझाते भी हैं और उसे सिखाते भी हैं। उखरीचे के साथ तला हुआ मोदक भी अपनी अलग पहचान रखता है। गेहूं के आटे या फिर मैदे की सुनहरी कुरकुरी परत, अंदर गुड़ और नारियल की मीठी भरपाई, और अब इसी परंपरा में बच्चों के लिए चॉकलेट वाला अंदाज भी जुड़ चुका है। पिघली चॉकलेट को सांचे में डालकर उसमें मेवे और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं।
3: बप्पा आ रहे हैं और बप्पा के आने की तैयारियां हर तरफ दिखाई पड़ रही है। आज हम आपको दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लेकर आए हैं, और चांदनी चौक की उस दुकान पर जहां पिछले 35 साल से लगातार मोदक तैयार किया जा रहा है, बप्पा का फेवरेट भोग तैयार हो रहा है। आज भी हम आपको यहां पर अलग अलग तरह के मोदक की तैयारी दिखा रहे हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं उनकी मेकिंग दिखा रहे हैं। किचन में हम मौजूद हैं और आपको बात करवाएंगे उन लोगों से भी जो पिछले 35 सालों से लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये दुकान 1910 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन ये इस दुकान के उन लोगों का इनोवेशन ही था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई चीज़ लाई जाए जो कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से चल जाए। और नए के नाम पर वो पहुँचे महाराष्ट्र और वहाँ से लेकर आए ये सांचा। ये वो पहला सांचा है जो इस दुकान के पूर्वज लेकर आए थे मोदक बनाने के लिए।
1: महाराष्ट्र से निकला स्वाद दिल्ली में चावल के साथ काजू, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, हेजलनट और कलाकंद में ढल गया। जेंजी की पसंद को देखते हुए चॉकलेट और उसके अलग अलग फ्लेवर्स पर भी काम किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली की इन गलियों में मोदक की मिठास पुरानी है, लेकिन हर साल इसमें जुड़ता गया नया अंदाज जिसने इसे और खास बना दिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो बप्पा पधारने वाले हैं और बप्पा के दर्शन लगातार हम आपको करवाते रहेंगे गुड न्यूज टुडे पर। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बाबा अनीप करोरी के जीवन से प्रेरित फिल्म हनुमानंश का बॉक्स ऑफिस पर विजय रथ जारी है। फिल्म ने 35वें दिन भी करोड़ों की कमाई, अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा। फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर आगे भी संत महापुरुषों के जीवन और उनके संदेश को बड़े पर्दे तक लाने की तैयारी में है।
3: जिस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर महज 10 लाख रुपए की कमाई से हुई, आज वही फिल्म करोड़ों की कमाई कर रही है। बात हो रही है फिल्म हनुमानंश की। नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेश से प्रेरित इस फिल्म ने 35 दिन बाद ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। इस फिल्म ने रिलीज के 35वें दिन करीब 10 करोड़ रुपए की कमाई की। भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 163 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 193 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी छोटे बजट से शुरू हुआ ये सफर अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी की कहानी बन चुका है।
4: मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, टीम का कोई सदस्य भी क्रेडिट नहीं ले सकता, सिर्फ महाराज जी को क्रेडिट जाता है क्योंकि इनकी आशीर्वाद हमारे साथ रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जो ऑडियंस है, जो डिवोटीज है, जो जो ये फिल्म देख रहा है थिएटर में जाकर, बहुत बहुत बार देख, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख रहा है, फैमिली के साथ देख रहा है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो एक एक महीना 30 दिन से ज्यादा हमारी फिल्म चल रही है थिएटर में। इनफैक्ट पहले हफ्ते के एंड में ही बता दिया गया था हमें कि फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई थी इंडस्ट्री में, लेकिन महाराज जी की ही कृपा है, उनकी आशीर्वाद है कि अभी हमारी फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, लोगों तक पहुंची। इनफैक्ट अभी ग्लोबल रिलीज भी हो रही है हमारी फिल्म पूरे दुनिया भर में।
3: फिल्म की इस कामयाबी के बीच प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंची। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की और संतों का आशीर्वाद लिया। फिल्म की सफलता और संतों का आशीर्वाद अनुप्रिया नागर के लिए ये पल बेहद खास रहा।
4: बहुत ही ओवरवेल्ड मैं फील कर रही थी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो हमेशा हमेशा के लिए मैं साथ में रखूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी भी घबराहट हो तो बस महादेव का स्मरण करो, बजरंगबली का स्मरण करो।
3: अनुप्रिया नागर ने हनुमान अंश की सफलता का श्रेय भगवान और संतों की कृपा को दिया। इस दौरान उन्होंने इच्छा जताई कि यदि स्वामी कैलाशानंद महाराज की अनुमति मिली तो वो भविष्य में उनके जीवन चरित्र पर भी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगी।
4: मुझे दिखाई दी कि स्टीव जॉब्स जो है वो महाराज जी से प्रभावित हुए थे, और जब मैं वापस आई इंडिया कुछ काम के सिलसिले, तो मैं, मुझे लगता है महाराज जी ने ही मुझे हनुमान अंश की टीम से मिलाया। और तब शूटिंग हो गई थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बस थोड़ी कठिनाइयां आ रही थी तब। और तब मुझे कहा गया था कि देखो ये फिल्म इस पड़ाव तक तो पहुंच गई है, लेकिन फंड्स की जरूरत है। तो तब पता नहीं, ये अगेन मैं कहती हूँ मेरा थॉट नहीं है, ये महाराज जी का ही थॉट है कि उन्होंने कहा कि बेटा जो भी तुमने कमाई की है तुम ये सब इसमें डाल दो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी सबको कि ये फिल्म तीन महिलाओं ने बनाई है, तीन महिलाओं ने ये प्रोड्यूस किया है फिल्म, तो मेरा तो सिर्फ 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें।
5: अच्छा, आज स्वामी जी से भी मुलाकात हुई, स्वामी जी के ऊपर भी आपने फिल्म बनाने की बात की।
4: मैं चाहूंगी, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और उनकी जो टीचिंग्स है, जो उनकी तपस्या है, वो मैं पूरे विश्व तक ले जाऊं। पर जब वो चाहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तो वही मार्गदर्शन देंगे।
6: उनसे कहा कि गुरुजी मैं आपके ऊपर बनाना चाहती हूं, पर मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हमें अपनी साधना करने दो, और अभी हमारे ऊपर कोई पिक्चर ना बनाओ, अभी तो आप उन बुजुर्गों के ऊपर पिक्चर बनाओ जो देश के बड़े महात्मा थे, जो बड़े महात्मा है, जो बुजुर्ग साधु हैं, उनके ऊपर बनाओ, हमारे ऊपर आप तब बनाना जब हमारी इच्छा होगी, और हमारे हमें जब भगवान शिव की या भगवती की जब प्रेरणा होगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मेरे ऊपर तुम बनाना।
3: हरमान अंश के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। यूके में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के दौरान अनुप्रिया नागर एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के जीवन पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि स्टीव जॉब्स के जीवन के कठिन दौर में बाबा नीम करोली का गहरा प्रभाव रहा था। इसी प्रेरणा ने उन्हें भारत के महान संतों और सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिया, जिसके बाद हनुमान अंश की नींव रखी गई। अनुप्रिया का लक्ष्य आने वाले समय में भी ऐसे ही महान संत महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक फिल्में बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
1: भव्य और विराट स्वरूप में पधारे मुंबई के लालबाग के राजा जयंती पर। लालबाग से राजा के पहले दर्शन सोमवार सुबह 5 बजे से शुरू होंगे नियमित दर्शन। खत्म होगा बप्पा का इंतजार, एक दिन बाद देश भर में पधारेंगे गणपति। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बप्पा के लिए बनाए जा रहे पसंदीदा मोदक। ऐतिहासिक मारवत महोत्सव के रंग में रंगा नागपुर, बुराइयों के प्रतीक पुतलों के जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग। 145 साल पुरानी है परंपरा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को आरती के लिए मिली चांदी की 3 थालियां। कोलकाता के भक्त ने माता पिता और ससुर के नाम से भेंट की 1-1 किलो की थालियां। ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में लगा ब्रिक्स बाजार, देश की समृद्ध हस्तकला और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होना मौका। ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना मकसद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना हर खबर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा के बीच एक धुंध पैदा कर देती है। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हर खबर की पड़ताल होती है और हर खबर को परत दर परत खंगालने के बाद ही हम आप तक लाते हैं उस खबर का सच। तो आज ऐसी ही दो खबरों की पड़ताल हम करने जा रहे हैं ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए दो वायरल वीडियोस की, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि बिहार में एक हाईवे की सड़क को टांके लगाकर ठीक किया जा रहा है। वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर बनी दीवारों को एमसील से रिपेयर किया गया। इस वीडियो की सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे नेपाल का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाढ़ के दौरान कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दोनों वीडियोस के जरिए काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में मजदूरों को सड़क में छेद करके स्टील की रॉड अंदर डालते हुए दिखाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि वीडियो पटना बक्सर का है। दूसरा वीडियो मुंबई गोवा हाईवे का है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इस सड़क को ठीक करने के लिए एम सील का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए पत्थरों को चिपकाया गया। लेकिन सच्चाई क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
2: इन दो वीडियोस को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। इसके जरिए काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरारों को स्थायी रूप से ठीक करने के बजाय केवल पैचवर्क यानी मरम्मत करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मरम्मत कार्य ने आम लोगों के बीच बहस को जन्म दे दिया। चिंता का कारण यह है कि करोड़ों की लागत से बनी नई सड़क और हाईवे पर बनी दीवारों में इतनी जल्दी दरारें कैसे आई। लोग गुणवत्ता और इस्तेमाल की गई सामान की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दोनों वीडियो को लेकर मीम्स बन रहे हैं। लोग तंज कस रहे हैं, सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहे हैं। सड़क अधूरी और कटी हुई दिखाई दे रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को आरा बक्सर नेशनल हाईवे का बताते हुए यह दावा किया कि NH 922 का हाल देखिए। पटना बक्सर 4 लेन में लगाने पड़ रहे हैं टाके। अभी कुछ ही दिन पहले यह चमचमाती सड़क बनकर तैयार हुई थी और अभी से इसका दम निकलने लगा है। रोड जगह जगह से टूट रही है। देखकर साफ लग रहा है कि सरकार और ठेकेदार मिलकर सड़क की मरम्मत नहीं बल्कि उसका पंचर साट रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से बनी नई सड़क का यह हाल वाकई चिंताजनक है। वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि यह विकास है या सिर्फ खाना पूर्ति। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस वीडियो के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया और लिखा, विक्रमशिला सेतु के रफू के बाद में बिहार सरकार की सड़क पर टाका टेक्नोलॉजी। अब दूसरे वीडियो को देखिए। इसे शेयर करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई गोवा हाईवे पर बने ओवरब्रिज की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इन दोनों वीडियो के जरिए सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। पहले वीडियो में मजदूर किसी हाईवे पर दरारों की मरम्मत करते हुए दिख रहा है। सड़क अधूरी और कटी हुई नजर आती है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दोबारा ठीक से बनाने के बजाय टूटी हुई सड़क में होल करके सरिया डाला जा रहा है, मानो सड़क नहीं कोई कपड़ा हो जिसे रफू किया जा रहा हो। वहीं दूसरे वीडियो में मजदूरों को किसी हाईवे के साइड के पत्थर को चिपकाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को मुंबई गोवा हाईवे का बताया जा रहा है और दोनों वीडियोस लगातार वायरल किए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों वीडियोस को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और इसको लेकर जो दावा है हमने उसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दोनों वीडियोस को बारी बारी से खंगाला। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो को देखा। इस दौरान हमें ये नजर आया कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सड़क का एक हिस्सा खराब है जिसे बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें रफू जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। ड्रिल करके जहां जहां दरारें देखने को मिल रही हैं उसे भरा जा रहा है। हालांकि इस दौरान ये कहीं भी नजर नहीं आता कि सरिये को अंदर फिट किया जा रहा है। वीडियो देखने से साफ इशारा मिल रहा है कि ये पूरा वीडियो नहीं है, एक खास हिस्से को काटकर वायरल किया गया है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने दूसरे वीडियो की भी जांच की जिसमें हाईवे के साइड पर पत्थरों को एक खास पॉइंट पर रखा गया है, ये हर जगह पर नहीं किया गया, दरार वाले हिस्से में ही इसे चिपकाया गया है। ऐसा लग रहा है कि पुलों पर स्ट्रक्चरल मूवमेंट की जानकारी हासिल करने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां पर कोई बड़ी दरारें होती और एमसील से चिपकाया जाता तो फिर यहां पर गाड़ियों के आने जाने का मूवमेंट बंद कर दिया जाता, क्योंकि गाड़ियों के दबाव में यह अस्थायी तरीका काम नहीं करेगा। ऐसे में हमारा पहला सवाल यह था कि सड़क की सतह के दरारों को मजबूत करने की ये मानक इंजीनियरिंग तकनीक है या फिर काम चलाओ काम किया जा रहा है। दूसरा सवाल यह कि अगर दोनों वीडियोस को लेकर दावा सही है तो फिर अब तक ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना।
2: वायरल हो रहे दोनों वीडियो का सच झूठ क्या है, ये जानने के लिए हमने दोनों वीडियो की बारी बारी से पड़ताल की। सबसे पहले हमने पहले वीडियो की जांच की, वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें सोशल मीडिया साइट्स पर इस साल जून महीने में छपी इसके बारे में कई खबरें मिली। यह इसके बारे में यही जानकारी मिली कि वायरल हो रहा वीडियो पटना बक्सर NH 922 का ही है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जानकारी दी गई थी। 22 जून को प्रकाशित इस रिपोर्ट में बिहार के पटना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हवाले से ये बताया गया था कि भोजपुर जिले के बिहिया में NH 922 हाईवे के कुछ हिस्सों को काटते और भरते हुए वायरल हो रहे वीडियो के बारे में गलत जानकारी दी गई है। वीडियो में दिख रहा कार्य किसी निर्माण की खामी का नहीं बल्कि नियमित और सुनियोजित रखरखाव का हिस्सा है। कंक्रीट की सड़क में छोटे मोटे जोड़ों और दरारों को ठीक करने के लिए स्टिचिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी। वायरल वीडियो मरम्मत के बीच के चरण का है जिससे सड़क का हिस्सा अधूरा और कटा हुआ दिखाई दिया। काम पूरा होने के बाद सतह को मानक स्तर पर ठीक कर दिया जाता है।
3: स्टिचिंग जैसे जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट जो हाईवे में बनाते हैं ना, सीमेंट रोड बनाते हैं, तो उसमें जो स्लैब होता है उसमें जो है जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है वो कंटिन्यूस ना होकर स्लैब फॉर्मेशन में होता है। उसमें स्लैब बनती है 3.5 मीटर बाई 4 मीटर, तो जब उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो उनको स्टिचिंग मेथड से, अगर हमारे क्रैक्स बहुत ज्यादा वाइड नहीं है जैसे 3 mm है 5 mm तक क्रैक्स है, तो उनको स्टिचिंग करके ठीक किया सकता है। तो स्टिचिंग प्रॉपर कैसे करते हैं कि थोड़ा सा स्मॉल डायगर रिइंफोर्समेंट है और उसको डायगनली जो है उसमें इंसर्ट करते हैं क्रैक्स पोर्शन में, तो ये स्टिचिंग मेथड से भी सीमेंट कंक्रीट पेमेंट को ठीक करने की एक विधि है।
2: दरअसल स्टिचिंग प्रक्रिया कंक्रीट सड़कों और उनके जॉइंट्स या दरारों की मरम्मत और मजबूती बढ़ाने की एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें कंक्रीट स्लैब की टूटी हुई किनारों या दरारों को आपस में बांधकर जोड़ा जाता है ताकि सड़क अधिक समय तक टिक सके। यहां से साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे दूसरे वीडियो की पड़ताल में जुटी। इस वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि मुंबई गोवा हाईवे की कंक्रीट की दीवारों को एमसिल से चिपकाया जा रहा है। हमने इसकी सत्यता जानने के लिए पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला। इस दौरान हम एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर पहुंचे। वीडियो में लोकेशन को भी टैग किया गया था। इसके अनुसार ये वीडियो मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का है। सर्च के दौरान हमें एक और इंस्टाग्राम यूजर पर वायरल हो रहे वीडियो जैसा ही वीडियो मिला। यहाँ पर भी यही जानकारी दी गई थी कि मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित नागो ठाणे ब्रिज का वीडियो है और एमसील से दरारों को जोड़ा जा रहा है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि यशराज शेल के नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये वीडियो सबसे पहले पोस्ट किया था। NHAI ने इस वीडियो पर रिप्लाई भी किया था। NHAI यह साफ करना चाहता है कि VUP के पास जमीन के धंसने और जोड़ों के अलग होने की जो समस्या देखी गई, वह मानसून में बहुत ज्यादा बारिश के बाद हुई। VUP को मार्च 2026 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था और मानसून शुरू होने से पहले जमीन धंसने या किसी खराबी का कोई संकेत नहीं मिला था। वीडियो में डेक स्लैब की जो स्टिचिंग दिख रही है, वे प्रभावित PQC पैनल को सील करने और मजबूत करने के लिए तकनीकी रूप से मंजूर वैज्ञानिक तरीके का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जोड़ों के अलग होने की समस्या को ठीक करने का काम किया जा रहा है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, आरी वॉल पैनल पर मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की हलचल या खिसकने की लगातार जांच और रिकॉर्डिंग की जा सके। इन मॉनिटरिंग डिवाइस को लगाने का मतलब यह नहीं है कि सुधार के उपाय नाकाफी है। जमीन धंसने की घटना के बाद सुरक्षा के जरूरी इंतजामों के साथ ट्रैफिक को तुरंत सर्विस रोड पर डायवर्ट कर दिया गया। अभी प्रभावित हिस्से पर ट्रैफिक की इजाजत नहीं है जब तक जरूरी सुधार का काम पूरा नहीं हो जाता और पूरी तकनीकी जांच से यह पक्का नहीं हो जाता कि यह सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए सुरक्षित है, तब तक यह जगह ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी।
3: तो चिपकाने जैसा तो कुछ नहीं होता है। बिटुमिनस रोड में क्रैक सीलिंग जरूर होता है। क्रैक्स की जो विड्थ होती है ना, वो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, तो जो स्मॉल क्रैक्स हैं उनको तो हम क्रैक सीलिंग से फिलअप कर सकते हैं। उसमें बिटुमिनस मिक्स केवल अगर बहुत स्मॉल क्रैक्स हैं तो उनको केवल बिटुमिन मटेरियल से फिलअप कर देते हैं। थोड़ा सा वाइट क्रैक्स हैं उनको हम बिटुमिनस और सलरी मिक्स करके उससे फिलअप कर देते हैं।
2: सर्च के दौरान हमें एक एक्स यूजर का पोस्ट भी मिला जिसमें उन्होंने मुंबई गोवा हाईवे वाले वीडियो को लेकर किए जा रहे दावे का मखौल उड़ाते हुए यह कहा कि टेलटेल क्रैक गेज के जरिए मरम्मत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन वायरल करने वालों को इस तकनीक के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर टेलटेल क्रैक गेज तकनीक है क्या। दरअसल टेलटेल क्रैक गेज एक ऐसा सटीक और सरल उपकरण है जिसका उपयोग दीवारों, नींवों और दूसरे संरचनाओं में आई दरारों के चौड़े होने, बंद होने या खिसकने की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ में नेपाल में बहुत ज्यादा तबाही मची और इसी बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि इस दौरान नेपाल में कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
4: बीतते दिन के साथ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी नेपाल की बाढ़ से जोड़कर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसी कड़ी में अब ये वीडियो वायरल हुआ है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। वीडियो में एक जगह कुछ लोग एक उंगली को उठाकर कुछ पढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि एक शख्स माइक पर कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में जानमाल का काफी नुकसान हुआ था और इस बाढ़ में अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग इसमें लापता हैं और इस वक्त नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपदा में 41 नेपाली युवकों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ा हुआ वीडियो है क्योंकि खड़े लोगों के सामने एक मौलाना जैसा शख्स नजर आता है। मौलाना कुछ मंत्र जैसे पढ़ रहा है जिसे ये लोग दोहरा भी रहे हैं लेकिन ये प्रोसेस धर्मांतरण का ही है ये साफ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके क्योंकि नेपाल आपदा के दौरान 41 लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपनाते तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जरूर बड़ी खबर होती, मीडिया आउटलेट्स में इसके बारे में कोई जानकारी होती लेकिन ऐसा कहीं कुछ मिला नहीं। पूरे वीडियो में अरबी में मंत्र सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल, पहला सवाल यानी ये था कि अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें कोई भी नेपाली बोलता क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल कि नेपाल में आपदा के बीच 41 लोगों ने अगर इस्लाम धर्म अपनाया है तो इसके बारे में कहीं पर भी कोई प्रमाणिक जानकारी अब तक सामने क्यों नहीं आई, इस रिपोर्ट में सच्चाई जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। हमने इसके बारे में लगातार खोजबीन की लेकिन इस दौरान हमें इस घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें अप्रैल 2024 में एक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया वीडियो मिला। ये वीडियो वायरल वीडियो जैसा ही था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो का नेपाल में आई हालिया आपदा से कोई संबंध नहीं है। आगे की खोजबीन में हमें कुछ तस्वीरें मिली जिनमें हमें वही लोकेशन और कार्यक्रम मिला जैसा वायरल वीडियो में नजर आ रहा था। कैप्शन में उस स्थान की पहचान बदियाह स्थित अल दावा एसोसिएशन के रूप में की गई थी। इसके बाद गूगल मैप्स पर खोज करने पर हमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित मस्जिद गजवा अल मुतैरी मिली। गूगल मैप्स पर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें वायरल वीडियो से मेल खाती थी जिससे ये पुष्टि हो गई कि फुटेज सऊदी अरब के रियाद का था न कि नेपाल का। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले सबूतों से ये स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल में आई बाढ़ से 2 साल पहले का है और सऊदी अरब के रियाद का है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: अगर आप एक दिन के लिए टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे?
7: प्रिंसिपल बनूंगी। मैं को होमवर्क दूंगा, मैं स्कूल नहीं आऊंगा, मैं सबको डांस कराऊंगा।
8: नन्हे बच्चे क्या सोच रहे हैं ये समझना मुश्किल होता है। ऐसे में जब एक स्कूल में उनसे पूछा गया कि एक दिन के लिए टीचर बने तो क्या करोगे, जवाब में बच्चों ने खूब बतकही की। उनके जवाब पूरे सोशल मीडिया की जान बने हैं और हंसा रहे हैं। कोई प्रिंसिपल बनने की बात करता है तो कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आने की बात करता है, कोई बच्चा टीचर बनने के बाद स्टूडेंट्स को आइसक्रीम खिलाने की बात करता है। बच्चों का ये मासूम जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
7: आइसक्रीम खिलाऊंगा।
8: कद छोटा हो सकता है लेकिन हिम्मत और दिमाग की कोई सीमा नहीं होती। अब इस छोटी सी बच्ची को ही देख लीजिए। बाइक पर बैठने के लिए बच्ची ने ऐसा तरीका निकाला कि देखने वाले भी हैरान रह गए। बाइक पर सीधे चढ़ने की बजाय बच्ची पीछे की तरफ से पैर रखकर सीट पर बैठ जाती है। उसका ये तरीका देखकर लोग उसकी समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्ची का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कलयुग के श्रवण कुमार ने अपनी असहाय माँ की अंतिम या बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए जो किया, उसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दी। चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ अपनी बुजुर्ग माँ को भगवान बांके बिहारी के दर्शन कराने के लिए एक छोटे ने अनोखा और संघर्षपूर्ण रास्ता चुना। वो अपनी माँ को एक लोहे के तसले में बैठाकर और उसे अपने सिर पर रखकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए। पैरों में छाले और रास्ते की ढेरों कठिनाइयों के बावजूद बेटे के कदमों की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आई। उसकी ये जिद केवल अपनी माँ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखने की थी। जब ये छोटा बेटा अपनी माँ को सिर पर उठाए मंदिर परिसर में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। हर कोई इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के साथ साथ इस बेटे की हिम्मत को सलाम कर रहा था। इस बेहद प्यारे वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है। एक हैंड पपेट ने न सिर्फ मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों का दिन बना दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर तरफ मुस्कान बिखेर दी है। बातचीत के अंदाज से इसने सफर को मजेदार बना दिया।
9: हाय हाय। बहुत ही प्यारा नाम है।
10: थैंक यू।
9: कैसा लगा मैं? हां? कैसा लगा?
10: बहुत अच्छा
9: लगा।
10: बहुत क्यूट
9: है। तेरे को तो शरण आ गई। आप किधर जा रहे हो?
10: मैं ये कॉमर्स सीख रही हूं।
9: मैं भी आ जाऊँ?
10: आ जाओ।
9: पक्का? आपके दांत के अंदर घुस जाऊँ?
10: हाँ आ जाओ।
9: ये मेरे को आने नहीं देगा।
10: क्यों नहीं आने दोगे?
9: ये ऐसा ही है। हाँ
10: मार दो
9: इसको।
8: हनुमानंश फिल्म का सुपरहिट भजन जब जिद पर आ गई पार्वती सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। साधु तिवारी की आवाज में गाए इस गाने पर अब तक लाखों रील्स बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जिसने इंटरनेट पर पारा पढ़ा दिया। इस वीडियो में शोमिका गुप्ता नाम की महिला ने गाने के बोल पर जो जवाब दिया है उसे देखकर लोग अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे हैं।

0: हर हर महादेव।
1: असली जीत सिर्फ मुकाबला जीतने में नहीं बल्कि खेल भावना दिखाने में होती है। इस वीडियो में जीत के बाद खिलाड़ी ने हारी हुई लड़की को अपनी पीठ पर बैठाया और हंसते हुए आगे बढ़ी। दोनों के चेहरे पर जीत और खुशी की चमक साफ नजर आई। एक तरफ मुकाबले का जोश था, दूसरी तरफ एक दूसरे के लिए सम्मान। यही जज्बा खेल को खास बनाता है, क्योंकि मैदान में ट्रॉफी कोई एक जीतता है लेकिन दिल दोनों जीत लेते हैं। वफादारी के साथ साथ समझदारी हो तो फिर क्या कहने। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ खेत में पानी पहुंचाने में मदद करता दिखाई दे रहा है। वो नाली से बह रहे पानी को पैरों से सही डायरेक्शन देते हुए खेत में पहुंचाने में मदद करता है। मालिक खेत में सिंचाई का काम कर रहा है और कुत्ता भी उसके साथ लगा हुआ है। ये जिस तरह पानी को खेत की ओर ले जाने में मदद करता दिखाई दे रहा है, उसे देखकर लोग उसकी समझदारी और अपने मालिक के साथ की तारीफ कर रहे हैं। क्यूटनेस की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है। इस वीडियो में एक लड़की और पांडा साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि लड़की के पैर में चोट लगी है और वो जिस तरह कदम बढ़ा रही है, पांडा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उसके साथ कदम मिलाता हुआ नजर आ रहा है। पांडा की ये मासूम हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है। वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और इस प्यारी बॉन्डिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। नया टैडी मिला तो इस छोटे से पपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही टैडी की बेलिंग हुई, पपी ने उसे तुरंत उठाया और लेकर ऐसे भागा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। टैडी को गाड़ी की तरह खींचते हुए पपी की खुशी देखने लायक है। अब लगता है कि पूरा दिन इसी नए खिलौने के साथ बीतने वाला है। पपी के चेहरे की खुशी देखकर यही कहेंगे, आज तो इसकी सच में लॉटरी लग गई।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: Good news today.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करते हैं लालबाग चौराजा की, जो मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय पंडालों में विराजमान होते हैं। लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक सामने आ गया और उनकी भव्यता दिव्यता देखते ही बनती है। हर साल गणेशोत्सव सबसे पहले विनायक के भक्तों को लालबाग चौराजा की पहली झलक का बेसब्री से इंतजार रहता है। लालबाग के राजा को भक्तों की मुरादें और इच्छाएं पूरी करने वाला भगवान माना जाता है। ऐसी अटूट मान्यता है कि सच्चे मन से उनके दर पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम इस गणेश पंडाल की स्थापना साल 1934 में हुई थी। मुंबई के परेल इलाके में कोली समुदाय के लोगों और व्यापारियों ने लालबाग के राजा को पहली बार स्थापित किया था और इस साल लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल अपनी स्थापना के 93 वर्ष पूरे कर रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान यहाँ रोजाना 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अपने बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। अपनी मन्नतों के लिए घंटों लोग कतारों में इंतजार भी करते हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होती। आम नागरिकों के साथ साथ महाराष्ट्र और देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां भी यहाँ पहुंचते हैं अपने परिवारों के साथ बप्पा के दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।